ओम शांति। जिस तरह भगवान ने हमें पाला उसी तरह हम दूसरों को पालें। कितने भाग्यशाली हैं वो आत्माएं जो प्रभु पालना में पल रहे हैं। प्रभु पालना पाकर जिन्होंने दूसरों की पालना करना सीख लिया है वे सचमुच महान बन जाते हैं, वे पूर्वज बन जाते हैं। उनके द्वारा जन्म जन्म भी अनेकों की पालना होती है। बाबा ने हमें पाला प्यार देकर, बाबा ने हमारी पालना की बहुत अच्छी गाइडेंस देकर, उसने हमारी पालना की बहुत बहुत अच्छी समय पर टचिंग देकर, शक्तियां देकर हम भी दूसरों की पालना करना सीखें। जहां दूसरों की पालना बहुत अच्छी होती है वहां सेवाओं में रौनक रहती है, चारों ओर हरियाली रहती है, सभी का मन प्रेम और आनंद से भरपूर रहता है। और जहां पालना का अभाव रहता है वहां लोगों में दूरी रहती है, संगठन में एकता का अभाव दिखाई देता है, सूखापन नजर आता है। सेवाओं की सफलता के लिए भी पालना आवश्यक है। हम एक पौधा भी लगाते हैं, उसकी पालना करते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप का ध्यान रखते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं, चिड़िया पशु पक्षी उसे खा न जाएं। हम भी जो पौधा लगाते हैं, जिन आत्माओं को बाबा का बनाते हैं, उनको सींचना, उनकी पालना करना, उन्हें आगे बढ़ाना, उन्हें अवसर देना, उनकी योग्यताओं का लाभ उठाना या उनको योग्य बनाना, ये सब पालना हमें दूसरों को देनी है। ये बहुत सुंदर कला है और प्रभु पालना हमें देनी है सबको, इसका भी हमें बहुत ध्यान रहे। कई आत्माएं डायरेक्ट प्रभु पालना का अनुभव नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारे द्वारा उन्हें ईश्वरीय पालना की अनुभूति हो, उन्हें वही अलौकिक आत्मिक प्रेम मिले, उन्हें गाइडेंस मिले, उनकी समस्याओं का हम समाधान कर पाए, उन्हें मदद दे पाए, ये बहुत श्रेष्ठ पालना है। जिसे सबको पालना देनी है उसे दो गुणों को विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करना होगा। एक रहम भाव, दूसरा सहयोग देने की वृत्ति। हमें सबको सहयोग देना है क्योंकि जो आत्माएं हमारे पास आई हैं वो संपूर्ण नहीं हैं, वो प्राप्त करने आई हैं, वो समस्याएं लेकर आई हैं, वो विषय विकार और पापों की बड़ी बड़ी गठरियां, बोझ की गठरियां अपने सिर पर लेकर आई हैं। हमें उन्हें हल्का करना है, हमें उनके बोझ उतारने हैं। हमारे पास आते ही यदि कोई व्यक्ति बहुत हल्का हो जाए, खुशियों से भरपूर हो जाए, तो समझ लें ये उनकी बहुत श्रेष्ठ पालना हम कर रहे हैं। और हमारे पास आकर कोई भारी हो जाए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, हमारी बात सुनकर किसी के दुख बढ़ जाएं, तो समझो हमारे अंदर पालना का गुण संस्कार नहीं है। बाबा भी चाहते हैं जैसे मैंने सब महान आत्माओं की पालना की है, अब ये महान आत्माएं अपने दूसरे छोटे भाई बहनों की बहुत अच्छी तरह पालना करें। तो पालना करने को अपनी नेचर बनाएंगे। आज सारा दिन हमें संसार की पालना करनी है, प्रकृति की पालना करनी है। और ये पालना होती है वाइब्रेशंस देकर, सभी को ख्याल रहे। संसार में और पालना भी दूसरे मनुष्य दूसरों को दे सकते हैं, कोई सहयोग भी देते हैं, कोई दूसरों को मेडिकली बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई और बहुत तरह की सहायता दूसरों को करते हैं हम जानते हैं, परंतु वाइब्रेशंस देना, वाइब्रेशंस देकर वायुमंडल को पवित्र और पावरफुल बनाना, वाइब्रेशंस देकर निराश आत्मा को, दिल शिकस्त हुई आत्मा को जो बहुत सब कुछ अपना गंवा चुकी है, उसको फिर से खुशी देना, उसके जीवन में आशाओं की किरण जगाना, जो आत्माएं सुसाइड करने को तैयार हैं उन्हें नवजीवन देना,
ये पालना हम वाइब्रेशंस देकर ही करते हैं। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ग्लोब के ऊपर स्थित हूँ, परम धाम में सर्वशक्तिवान बाबा है, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और फिर मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। फैलाएंगे सारा दिन और संकल्प देंगे संसार को, सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, दुखों से मुक्त हो जाएं, शांत हो जाएं, निर्भय हो जाएं। आज सारा दिन विश्व की ये पालना करते रहना है। ओम शांति।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। अपनी मनोदशा इस प्रकार की रखनी चाहिए कि हम प्रथम कोटि के श्रेष्ठ कार्य करने के योग्य हैं। हम में ऐसी योग्यता है कि हम श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जब हम बढ़िया ढंग उत्तम स्तर के कार्य कर सकते हैं, हम में वैसे कार्य करने की क्षमता है। हम में वैसे कार्य करने की क्षमता है तो हम छोटे या घटिया कामों से संतुष्ट क्यों हों? तब हम दूसरे अथवा तीसरे दर्जे के घटिया कामों को क्यों कर अपने हाथ में लें? अर्थ यह है कि व्यक्ति को हर समय प्रत्येक स्थिति में उच्च स्तर पर ही रहना चाहिए, सर्वोत्तम स्तर ही अपनाना चाहिए। यदि निराशा ने मन में घेरा डाल लिया है, निरुत्साहित हो चुका है, तो उसके लिए उच्च स्तर पर सर्वोत्तम स्तर पर रहना असंभव हो जाएगा। संसार में सदा निराश रहने या अपने आप को निरुत्साहित अनुभव करते रहने से बढ़कर कोई कष्ट नहीं है। अपनी मनोवृत्ति को आशा से भरिए, उसका इलाज कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि जीवन में आप हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिए। निरंतर निराश रहने वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बुरी बात यह है कि वह अपने कार्यों के संबंध में अपनी कल्पना द्वारा भद्दे चित्र अंकित करने लगते हैं। अपने ही कामों के परिणामों के भद्दे चित्र अंकित करने से उनके मन में निराशा जड़े जमा लेती है और निराशा के बाद व्यक्ति चिंतित रहने लगता है। जो व्यक्ति बीमार होने पर निराशा के जाल में उलझ जाता है, उसे यही विश्वास होने लगता है कि उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वह यह धारणा बना लेता है कि उसका रोग असाध्य हो रहा है और इसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। वह मौत से डरता तो है, पर अपनी भ्रष्ट कल्पना द्वारा मौत को सदा ही अपने सम्मुख खड़ी हुई देखता है। वस्तुतः मनुष्य की कल्पना बुरी बातों का अनुमान बहुत जल्दी लगा लेती है, उसके चित्र बड़ी कुशलता से बनाती है, जबकि अच्छे चित्र बनाने का उसे अभ्यास करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कल्पना को अच्छे चित्र बनाने का अभ्यास कराए। हमारे मन की जैसी हालत होगी, हमारी जैसी मनोदशा होगी, जीवन के साथ भी वैसा होगा। जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता रहता है, परिस्थिति के साथ हमारी स्थिति भी बदलती रहती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हमारी मनोदशा अच्छी होती है, उसमें कोई निराशा और चिंता नहीं होती, तो उस समय हमें हर वस्तु सुंदर दिखती है। प्रकृति का हर रंग मनमोहक और सुंदर दिखाई देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप रात्रि को पूर्ण निद्रा के बाद प्रसन्न मन से सैर को जाते हैं। शीतल समीर के मंद झोंके यह अनुभव कराते हैं कि हम पूर्णतः स्वस्थ हैं। हम प्रसन्न होते हैं, निराशा की कोई झलक मन पर नहीं होती। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई देती है। चहचहाते पक्षी सुंदर मालूम होते हैं। सूर्य का पीला गोला बड़ा लुभावना लगता है। घास का हरा कालीन मखमली प्रतीत होता है। पेड़ पौधे और फूल भी अपनी निराली छटा से सुशोभित दिखाई देते हैं। और संभवतः दूसरे ही दिन जब आप उसी स्थान पर प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते हैं तो बड़ा मनहूस दिखाई देने लगता है। चहचहाते पक्षी किसी कष्ट से कराहते दिखाई देते हैं। सूर्य का चमकदार गोला तब उदास दिखाई देता है और घास का हरा मखमली कालीन कुम्हलाता प्रतीत होता है। सब कुछ पहले दिन की अपेक्षा परिवर्तित दिखती है। इस समय उसमें सौंदर्य नहीं दिखलाई पड़ता है। यह सब मनोदशा के कारण होता है। इसका अर्थ यही है कि हम अपनी मनोदशा के अनुरूप ही संसार के सब पदार्थों को देखते और उनका अनुभव करते हैं। परिवर्तन वस्तुतः हमारी मनोदशा में होता है, सांसारिक पदार्थों में नहीं। इन बातों से सिद्ध है कि मनुष्य अपनी मनोदशा को सदा स्वस्थ और संयत रखें। अपनी मनःस्थिति को आशा से भरपूर रखिए, निर्मल स्वच्छ सत्य से ओतप्रोत रखिए। यदि वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना चाहते हैं, यदि प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में उसके निर्माता का स्वरूप देखना चाहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी मनोदशा को सही स्थिति में रखना होगा। सत्य तो यह है कि हम प्रकृति को जो कुछ भी देते हैं वह उसी वस्तु को हमें प्रतिदिन में देती है। रस्किन ने गौरव युक्त देवी भावों का प्रतिदिन वर्णन किया। यदि आपकी मनोदशा श्रेष्ठ एवं दिव्य है तो प्रकृति भी आपको देवी भाव ही प्रतिदिन में देगी। यदि आप में दिव्य गुण और दिव्य विचार होंगे तो दिव्य पदार्थ आपके पास स्वयं चले आएंगे। प्रकृति हमारे विचारों के अनुरूप ही हमसे व्यवहार करती है। जिस समय हमारी मनःस्थिति सही नहीं होती है, जिस समय हमारे मन में निराशा ईर्ष्या के भाव होते हैं, उस समय हम वस्तुओं और घटनाओं को यथार्थ रूप में देखने में असमर्थ रहते हैं। उस समय सब चीजें विकृत रूप में दिखाई देती हैं। उस समय उनमें कोई सौंदर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। मनोवृत्तियों को इस प्रकार से अनुप्रेरित और शिक्षित करें कि हर समय जीवन में सौंदर्य का अनुभव दर्शन कराती रहें।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे बड़ा ज्ञान स्वयं को जानना है। मन का मंथन करें, विचारों को शुद्ध करें और आत्मा की शांति का अनुभव करें। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

जानते कि यदि हम अपनी मनोवृत्तियों, मनोदशाओं अथवा मनस्थिति को ठीक रख सकें, तो हम कैसे कैसे चमत्कार कर सकते हैं। यदि हम सर्वोच्च आकांक्षा के स्तर पर अपनी भावनाओं को स्थिर रख सकें, तो हमें सभी प्राकृतिक पदार्थों से प्रसन्नता प्राप्त होगी। ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकृति हम पर एक अद्भुत चमत्कार प्रकट कर रही है। हम जानते हैं कि प्रकृति हमसे जो कुछ भी प्राप्त करती है, वही बदले में देती भी है। यदि मन सर्वोच्च स्थिति या स्वाभाविक स्थिति में रहता है, तो हमें अपार आनंद प्राप्त होगा। कठिनाई यही है कि हमें यह ज्ञात ही नहीं है कि संसार हमें अपनी मानसिक स्थिति के अनुरूप ही दिखाई देता है। हमारी मानसिक स्थिति रंगीन है, तो यह संसार रंगीन ही दिखाई देगा। यदि मन पर निराशा का काला लबादा है, तो संसार भी निराशा से घिरा हुआ ही दिखाई देगा। यह कैसे हो सकता है कि अपनी आंखों पर तो हमने काला चश्मा लगा रखा है और हमें दिखाई दे सफेद। बहुत से लोगों का विचार है कि मानसिक स्थिति पर अपना अधिकार नहीं होता। मनोदशा हमारी अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं हो सकती। ऐसे ही लोगों का यह कहना है कि हमें तो यह निराशाजनक मानसिक स्थिति अपने बाप दादा से विरासत में मिली है, पता नहीं हम इसमें परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा सोचना भूल है, गलत है। हम अपनी मानसिक स्थिति को बदल सकते हैं, अपनी मनोदशा में ठीक उसी प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं जिस प्रकार हम अपने वस्त्रों, अपनी पोशाक, वेशभूषा को बदल सकते हैं। घोर से घोर निराशा की भावना को भी दूर किया जा सकता है, निरुत्साह को दूर भगाया जा सकता है और निष्क्रियता को तिलांजलि दी जा सकती है, बशर्ते विरोधी भावों को जगाया जाए। विरोधी भाव है उत्साह, साहस और कर्मठता। अगर इन भावों को हम अपने में जगा लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी मनोदशा को भी बदल सकते हैं, अपनी परिस्थिति को भी बदल सकते हैं। और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। अगर उत्साह, साहस और कर्मठता के भाव हमने अपने जीवन में धारण किए हैं,

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

ज्यों ही मन में निराशा का संचार हो, मन उदास हो, संदेह और भय से आक्रांत हो, चिंतित हो, सब और सुना सुना सा प्रतीत हो, उसी समय इनकी विरोधी भावनाओं को मन में जगा दें। आज से यह प्रण कर लीजिए कि अपने मन में निराशा की भावना नहीं आने देंगे। यदि ऐसी निराशाजनक भावना आए तो फौरन समझ जाइए, उसी समय अपने मन में रचनात्मक विचार लाइए, तुरंत ही अपने मन में उच्च विचार लाइए। ऐसा करने पर ही आप निराशा रूपी घातक शत्रु का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। अपने विचारों में परिवर्तन लाना कोई कठिन काम नहीं है, इसमें सीखने जैसी कोई बात नहीं है। हमारी मानसिक स्थिति हमारी इच्छा शक्ति के वश में होती है और हम अपनी मानसिक स्थिति को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। जो मनुष्य प्रेमी हैं, प्रेम करना जिसका स्वभाव है, उनको सब कुछ प्रेममय दिखता है। उसके लिए संसार का स्वरूप ही बदल जाता है, उसके लिए सभी पदार्थ सुंदर है, गौरवमय बन जाते हैं, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति वैसी है। यह कहना सर्वथा गलत है कि निराशा की भावना विरासत में मिलती है। वास्तव में अपने द्वारा हम अपने समाज का ढांचा खड़ा करते हैं, अपने संसार की रचना करते हैं। हम जिन भावों का चुनाव करते हैं उन्हीं के अनुरूप हमारा संसार बनता है, और यह भावों का चुनाव सर्वथा हमारे अपने वश की बात है, उसके लिए हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। एक क्षार दूसरे क्षार को निष्क्रिय कर देता है, जिस तरह सूर्य की किरणें धुंध को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार आशा और उत्साह के स्पर्श मात्र से निराशा और निष्क्रियता नष्ट हो जाती है। अपनी मानसिक स्थिति को स्वस्थ बनाएं, उसे सुधारें, परिवर्तन करें। यदि निराशा के विषाक्त कीटाणुओं ने उस पर आक्रमण कर उसे रुग्ण बना दिया है, तो रचनात्मक विचारों की औषधि से स्वस्थ बनाएं, रचनात्मक ढंग से सोचें, ध्वंसात्मक निषेधात्मक दृष्टि से नहीं। ऐसा कर हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकेंगे, जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। यदि हम बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं, तो क्या अपने आप से निराशा के झाड़ झंखाड़ों को उखाड़ कर वहां पर सुंदर फूल नहीं खिला सकते? सोचिए इस पर, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, बस जरूरत है तो अपने विचारों को बदलने की, अपने आप में सकारात्मकता लाने की, एक नई आशा, उमंग और उत्साह भरने की। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए।

0: काल चक्र का पहिया फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष प्रजापिता ब्रह्मा के जीवन में घटित उन घटनाओं को लेकर जिससे ईश्वरीय सेवाओं में बाधा उत्पन्न हुई। ब्रह्मचर्य एवं पवित्रता जैसे नियमों को लेकर ब्रह्मा बाबा को निशाना बनाया गया। रूढ़िवादियों द्वारा कई अन्य मुद्दों पर उनका कड़ा विरोध किया गया। यहां तक कि संस्था को अपने नाम का स्पष्टीकरण भी देना पड़ा। लेकिन इस पूरे क्रम में ब्रह्मा बाबा की स्थिति अचल अथवा स्थिर रही। सबके प्रति उनकी दृष्टि एक समान ही बनी रही।
1: अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता युग प्रवर्तक ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा की जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूप।

0: भारत में एक ओर ईश्वरीय सेवाओं का विस्तार हो रहा था, नए नए सेवा केंद्र खुल रहे थे, ब्रह्मा कुमारी बहनों को विभिन्न मंचों एवं आयोजनों में आमंत्रित किया जा रहा था।
1: स्वयं ब्रह्मा बाबा भी हर क्षण नई युक्तियों से परमात्म ज्ञान जन जन तक पहुंचाने की योजना बनाते रहते थे और यज्ञ वत्सों का मार्गदर्शन करते रहते थे। लेकिन उसी बीच विरोधी स्वर भी तेज हो रहे थे, खासकर गृहस्थी वाले ब्रह्मचर्य व्रत की पालना को लेकर तैयार नहीं थे,
0: अपनी पत्नियों पर तमाम तरह के अत्याचार कर रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। इससे दूसरे लोगों के मन की शंकाएं भी बढ़ती जा रही थी।
2: अरे भाई, इस संस्था में तो जादू है, जो वहां जाता है वो वहीं का हो जाता है, इसलिए अपने घर के किसी सदस्य को वहां जाने नहीं देना चाहिए।
3: सच कहते हो, इनसे बचकर रहना है। ये ब्रह्मा कुमारियां तो पति पत्नी को भाई बहन बनाकर रहने की शिक्षा देती है।
4: इतना ही नहीं भाई, ये तो ऐसे पथभ्रष्ट लोग हैं कि बाहर से दिखावे के तौर पर लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहते हैं।
5: अरे भाई, बात यही खत्म नहीं होती। इनके धर्म का तो अता पता भी नहीं है, न जाने किस धर्म के लोग हैं ये।
6: मुझे तो ये अमेरिका के एजेंट मालूम पड़ते हैं। धर्म की आड़ लेकर ये उन्हीं के लिए गवाह का कार्य करते हैं। इन्हें खर्च के लिए पैसे भी अमेरिका से ही मिलते हैं।
0: समाज में खुद को धर्म का ठेकेदार मानने वाले तो धमकी देने से भी पीछे नहीं रहते। वे सेवा केंद्रों को आग लगाने, ईश्वरीय विश्वविद्यालय को जड़ से उखाड़ देने की धमकी देते। इन सब बातों का ईश्वरीय ज्ञान जानने की इच्छा रखने वालों पर कहीं न कहीं गहरा प्रभाव पड़ रहा था।
1: वे सेवा केंद्रों पर जाने से संकोच करने लगे। अगर कोई परिवार के विरोध के बावजूद चला जाता तो उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता, जबकि कोई अगर रूढ़िवादियों द्वारा फैलाए जा रहे अफवाहों एवं भ्रामक बातों को ध्यान से सुनता तो उसे पता चलता कि उनमें कितना विरोधाभास छिपा है। एक ओर पति पत्नी को भाई बहन बनाने की चर्चा होती, दूसरी ओर उनके ही चरित्र पर लांछन लगाए जाते। ये परस्पर विरोधी बातें नहीं थी तो क्या थी? एक ओर आरोप लगाया कि संस्था को अमेरिका से पैसे मिलते हैं, दूसरी ओर यह भी कहा जाता था कि ये तो चंदा या दान तक नहीं लेते।
0: इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान किस प्रकार अंधविश्वास एवं मिथ्या मान्यताओं की दलदल में फंसा है, किस प्रकार वो दूसरों को भी झूठे प्रचार का शिकार बनाता है। बड़ी विडंबना थी कि लोग सत्य जानने की चेष्टा या प्रयत्न नहीं करते। इस बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी ने बताया है।
3: मनुष्य आत्माएं भ्रांतियों के मकड़ जाल में फंस गई थी। उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि आखिर ईश्वरीय संस्था किस प्रकार देश की महिलाओं में एक नई जागृति, नई चेतना लाकर भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने का कार्य कर रहा है। ब्रह्मचर्य की पालना, आहार विहार की शुद्धि, संयम नियम साधना सदाचार एवं सात्विकता की प्रेरणा देकर एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर रहा है। लोग तो सिर्फ ईर्ष्यावश झूठ का ढिंढोरा पीट रहे थे।

0: धर्म संस्थापक के साथ उस जमाने के लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। स्वयं श्रीमद् भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवत के अध्ययन से भी यह स्पष्ट होता है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान का अपना अवतरण हुआ तब लोग उन्हें पहचान नहीं सके थे। ब्रह्मा बाबा को भी कुछ वैसे ही विरोध एवं आलोचना का सामना करना पड़ा।
1: यहाँ 1961 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ में घटी एक घटना का उल्लेख आवश्यक हो जाता है, जब संस्था के कुछ एक विरोधियों ने शहर के पंडितों, पुरोहितों, पुजारियों आदि को तरह तरह से उकसाया।
2: पंडित जी, आप देख नहीं रहे हैं कि यह ब्रह्मा कुमारियां कैसा प्रचार कर रही है, ये कैसा पंथ चला रही हैं? आप उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं?
3: आप सच कह रहे हैं, हमारे मन में भी काफी समय से विचार चल रहा है कि कुछ तो करना होगा। हमारे शिष्य शिष्याएं भी अब ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्र पर जाने लगी हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे हैं।
4: ये बात भी बड़ी अजीब है, ब्रह्मा कुमारियां ना जाने कैसे प्रैक्टिकल जीवन की कोई पुस्तक पढ़े बिना अपने अनुभव के आधार पर शिक्षा देती है, योग सिखाती हैं।
5: मुझसे तो कुछ शिष्य कहने लगे कि महाराजा जी, आप योग क्यों नहीं सिखाते। वे प्रश्न करने लगे कि आप कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, जबकि ब्रह्मा कुमारियां आत्मा को निर्लेप नहीं बताती। वह ये भी कहती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परंतु आप तो कहते हैं कि वे हर जगह है, कण कण में है।
1: सत्य क्या है ये ना विरोधियों को मालूम था और ना पंडित पुजारियों को, उनमें जानने की इच्छा भी नहीं थी। मन में सिर्फ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विरुद्ध ईर्ष्या एवं घृणा थी।
0: उन्हें लगता था कि छोटी छोटी कन्याएं एवं माताएं भला क्या ज्ञान दे सकती हैं। इस प्रकार सभी एक दूसरे को भड़काने लगे और बढ़ चढ़कर आग में घृत डालने लगे। यहां तक कि सरकार से संस्था के खिलाफ कार्यवाही करने, उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उपद्रवियों एवं विरोधियों ने सेवा केंद्रों की बिजली काट दी, पानी बंद करा दिया, लोगों को डराया धमकाया जाने लगा। ब्रह्मा कुमारी बहनों को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया गया। समाचार पत्रों ने भी ऐसी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया।
1: विरोध जताने वाले अपनी जिद पर अड़े थे और राजनीतिक दलों के नेताओं पर दबाव भी बना रहे थे। तब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे गलत भ्रांतियां फैलाकर उन पर अत्याचार हो रहे हैं। ये भी कहा कि वे हर प्रकार की जांच पड़ताल के लिए तैयार है, लेकिन गुंडागर्दी बंद होनी चाहिए।
0: प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन जब समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित हुई तो हापुड़ के जिलाधिकारी ने विरोध करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू कर दी। ये मामला विधानसभा में उठाया गया, जिस पर सरकार ने जवाब दिया कि जांच पड़ताल के बाद यही पता चला है कि संस्था की गतिविधियां कानून के विरुद्ध नहीं है, यह एक शांतिप्रिय धार्मिक संस्था है, इसलिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इस तरह दिए एवं तूफान की लड़ाई में अंततः विजय सत्य की हुई। ये एक ईश्वरीय चमत्कार भी था।

0: गौर करने वाली बात ये थी कि विरोधियों ने चाहे जितने सितम ढाए, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहने व भाई ईश्वरीय मर्यादा का पालन करते रहे, शांति बनाई रखी, कभी उत्तेजना में नहीं आए, न क्रोध किया और न किसी को घृणा की दृष्टि से देखा। सदा स्नेह पूर्ण शब्दों से आचार व्यवहार किया।
1: इसमें ब्रह्मा बाबा की अचल अवस्था ने उन्हें हिम्मत दी, क्योंकि इतना कुछ घटित होने के बावजूद बाबा के मुखमंडल पर न विरोधियों के प्रति घृणा के भाव की रेखाएं दिखी, न चिंता के चिन्ह और न ही कोई दुविधा, मनमुटाव व द्वेष के प्रकंपन। वे तो अपनी मौलाई मस्ती में मस्त थे। बाबा कहते थे,
2: बच्चे, ये तो कल्प पहले भी हुआ था। परमात्मा जब अपना कार्य करते हैं अथवा ज्ञान यज्ञ स्थापित करते हैं तो उसमें विघ्न तो पड़ते ही हैं। याद रखो कि सच की बेड़ी डोलती है परंतु डूबती नहीं है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। अंत में विजय सत्य की होती है। ये छोटी मोटी घटनाएं तो इस ईश्वरीय यज्ञ की स्थापना के समय से लेकर होती आ रही हैं। लेकिन आप सदा आत्मस्थिति में स्थिर रहो, इस मस्ती में मस्त रहो कि यह स्वयं भगवान का कार्य है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। उस सर्वशक्तिवान के कार्य को कोई रोक नहीं सकता है।

मैं काल चक्र ब्रह्मा बाबा के हर्षित मुख एवं उस पर निश्चिंतता के भाव को देखकर हतप्रभ हो जाता हूं। उन्होंने सदैव खुश रहने की शिक्षा दी और कहा कि हरेक बात में कोई न कोई कल्याण छिपा होता है। परीक्षाएं आती रहती हैं, कल्प पहले भी आई थीं और सबने उन्हें पार किया था, आगे भी करना है, भावी बनकर रहना है, साक्षी बनकर रहना है, हर हालत में राजी रहना है, फिक्र से फारिग रहना है। उन्हें शिव बाबा पर अटूट निश्चय था कि वे सब ठीक ही करेंगे। बादल आए हैं तो वे बिखर भी जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ती रही।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं। इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं, जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरी खुशी मुझसे छीन लेती हैं, या मैं देखूं तो मैं खुश नहीं रह पाता। उसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आई थी वो थे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहीं ना कहीं जो गुजर गया, जो कल था, उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मैंने, जब लेट गो किया या उस पास्ट को प्रेजेंट नहीं बनने दिया तो मेरी खुशी फिर मैं क्रिएट कर पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर की तरफ देखते हैं। फ्यूचर यानी मेरी प्लानिंग मेरे जीवन का आधार हो जाता है कि मुझे यहाँ यहाँ यहाँ यहाँ ये सब कुछ करना है। तो क्या उसको करते हुए भी मैं कहीं अपनी खुशी से तो परे नहीं जा रहा? कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: पास्ट को तो हमने मान लिया, हम सब जानते हैं सिस्टर शिवानी की पास्ट को नहीं पकड़ कर रखना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने पिछले कई कड़ियों में ये बात आई कि क्या ऐसा प्रोसीजर है कि हम जो गुजर गया उसे जाने दें और उसे अपना प्रेजेंट ना बनाएं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग तो हर कोई करता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, अचीवमेंट्स की बात करते हैं, और फिर एक लक्ष्य साध कर उस पर आगे बढ़ते जाना। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि मैं अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता हुआ अपनी आज की स्टेबिलिटी को मेंटेन कर पाऊं।
1: Yeah, very important, क्योंकि इस पर जब हम बात करें तो बहुत ज्यादा questions मुझे लगता उठने वाले हैं कि क्या फ्यूचर प्लान नहीं करें। अलग अलग तरह से हम इसको देखते कि कैसे हम, जैसे हमने पिछली बार देखा कि हम पास्ट में बहुत ज्यादा जीते हैं, हम यहाँ हैं लेकिन मन पास्ट के बारे में सोच रहा, उतना ही हम देखते कि हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा जीते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं खुशी को जब हम ढूंढते हैं तो खुशी को हम फ्यूचर में बहुत ढूंढते हैं। आई एम नॉट हैप्पी नाउ बट आई विल बी हैप्पी
0: इफ दिस थिंग हैपेंस, वंस आई विल अचीव दिस।
1: सो व्हेन आई से आई विल बी हैप्पी व्हेन दिस हैपेंस, आई हैव पुट माय हैप्पीनेस इनटू द फ्यूचर, एंड तब मेरा सारा ध्यान ये होता कि ये होगा तो खुशी होगी। अब दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, अगर ये होगा तब खुशी होगी। जब ये थॉट आती तो साथ में ये भी थॉट आ जाएगी, अगर नहीं हुआ तो। यू सी, व्हेनेवर देयर, नो, इट कुड बी फियर, इट्स ओनली अ फियर,
0: एंड आई विल नॉट बी हैप्पी, यू नो, इट विल टेक अवे माय हैप्पीनेस।
1: दैट इज व्हाट वी सॉ अर्लियर, कि जब भी हैप्पीनेस किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है तब फियर ऑटोमेटिकली आ जाता, क्योंकि जहां डिपेंडेंसी है वहां ये इनसिक्योरिटी तो होने ही वाली है कि अगर वो नहीं हुआ तो, या अगर वो चले गए तो, व्हाटएवर। सो डिपेंडेंसी एंड इनसिक्योरिटी ये साथ साथ जाएंगे। जहां मेरी किसी चीज पर डिपेंडेंसी है तो एक थॉट अंदर इनसिक्योरिटी का साथ साथ आ ही जाएगा। तो हैप्पीनेस एंड फियर कैन नॉट बी टुगेदर। आई एम लुकिंग फॉर हैप्पीनेस देन, दैट मीन आई एम नॉट हैप्पी नाउ, आई एम सेइंग ये होगा तो आई विल बी हैप्पी, लेकिन नाउ व्हाट एम आई क्रिएटिंग? साथ साथ मैं वो फियर के थॉट्स भी क्रिएट करना शुरू कर देती कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो, अगर नहीं हो पाया, अगर वो नहीं कर पाए, अगर वो कल मेरे साथ नहीं हुए। सी, बहुत सारी चीज़ें हमें जीवन में मिली हैं लेकिन हम बहुत बार फियर में जीते हैं कि कहीं ये हमारे से छूट ना जाए। तो उस प्रोसेस में क्या होता, हम उनको प्रेजेंट में, सी, फियर ऑफ लूजिंग जॉब, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉपर्टी पोजेशन, फियर ऑफ लूजिंग फैमिली, कहीं मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए, एंड सबसे ज्यादा फियर कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। अब इन सारी लिस्ट ऑफ फियर्स में हमें ये भी पता है कि एक ना एक दिन सारी चीजें जो मिली हैं वो जाने ही हैं, लेकिन वो जब तक मिली हैं उनको इंजॉय करने की बजाय मैं फ्यूचर को एंटिसिपेट कर करके अभी क्या क्रिएट करती? See, once we understand happiness creation है यहाँ पर, happiness is not outside, तो मुझे सिर्फ सारा दिन क्या चेक करना, मेरी thoughts क्या है, मेरी thoughts क्या है। तो अब जितनी देर मैं ये सोच रही हूँ ये होगा तो, साथ में दूसरी thought ही आएगी,
0: अगर ये नहीं हुआ तो।
1: तो अब जब मैं fear, वैसे भी जब मैं सोच रही हूँ कि ये होगा तो अभी मैं खुश नहीं हूँ, मैं अपने आप को ये कह रही हूँ ये होगा तो खुशी होगी, तो अभी का इमोशन कौन सा है? फियर का है। तो इसलिए हर पल हमने देखा, इस पल में अगर हम इस पल के बारे में सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले, तो ये पल कैसा बीता? डर में। तब तक फिर यहाँ गए, तब कौन से पल के बारे में सोचा? नेक्स्ट वाले।
0: तो एंटिसिपेशन में, डर में, डर में, ये होगा,
1: ऐसे करते करते आपकी पूरी जर्नी किस में बीती?
0: और वो पल तो निकलते ही गए, मैंने सोचा था कि एक साल के अंदर अंदर ये होगा।
1: देखो अलग अलग तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते, एक होता है जो लोग बहुत चिंता करते हैं, जो मेरे को लगता है हम सब चिंता करते हैं, वरी, वेरी वरी काइंड ऑफ पर्सनालिटी, जो वरी करते हैं वो किसके बारे में सोच रहे हैं?
0: फ्यूचर
1: के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये हुआ तो। एक दिन सिर्फ चेक करना कि वरी की जो थॉट्स होती है उसमें होता क्या है, किस तरह की हम थॉट क्रिएट करते, हम आने वाले पल के बारे में, फ्यूचर के बारे में एक इमेज क्रिएट कर देते, वो इमेज अच्छी नहीं होती है। चिंता मतलब कि कुछ बुरा होने वाला है, चिंता मतलब कुछ अच्छा होने वाला है, ये थॉट नहीं आएगा। तो चिंता मतलब कुछ ट्रेजेडी, कुछ कैटास्ट्रोफ, कुछ गड़बड़ वाला होने वाला है, वो इमेज हम अभी क्रिएट कर देते और अभी इस पल उस इमेज को देख देख के
0: डरते
1: रहते हैं। सो आई बेसिकली क्रिएट अ फ्यूचर इमेज, नॉट अ प्लेजेंट वन, एंड आई यूज दैट पिक्चर इन माई प्रेजेंट मोमेंट एंड आई क्रिएट पेन। सो माई

0: every moment worrying about the next moment, my every moment is passing in
1: pain
0: because I'm creating a picture of.
1: Just suppose I am very poor, you know, mere ghar mein sab chaos hai, mere jeevan mein crisis aaya hua hai, jisko main kuch nahi kar pa raha. That is the time when I, you know, apna kaam to karm to karta hi rahunga, lekin, you know, you keep on anticipating your future and where you see that, you know, you'll get money, ye cheeze sort out hoti jayengi, hota jayega. At least it's giving me happiness for that time because abhi jo main chah raha tha wo nahi ho raha.
0: इसको हम कहेंगे ड्रीमिंग पर्सनालिटी कि आप अभी यहाँ है लेकिन यहाँ आप टुमारो में है. यू ऑलरेडी गॉन टुमारो एंड यू विल फाइंड पीपल हु लव टू बी इन देयर टुमारो. जिसको हम कहेंगे ये तो ख्वाबों में ही रहते हैं अपने ज्यादा दिन. क्यों वो ख्वाबों में रहते हैं? उनको आज पसंद नहीं है. They are in pain. See, when will I escape from today and live in the tomorrow?
1: I think most of us are actually. You know, we don't want to live in
0: present. Each one needs to check. Har ek apna apna dekhega.
1: Why we don't want to live in present?
0: Kyunki abhi mere andar dard hai. मैं उस दर्द के ऊपर काम नहीं करना चाहती हूँ. मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ इससे, पर मैं फील तो अच्छा करना चाहती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ
1: कहीं पे भी. हाँ, किसी
0: और. See, we taking different ways of, you know, escaping these thoughts of pain. जो हमने देखा, चाहे टीवी देखना है, चाहे हॉलीडे पर जाना है, वो ये क्या कर रहा था? वो ये कर रहा था कि ये अभी वाली जो दर्द वाली thoughts हैं, इनको थोड़ी देर के लिए, एटलीस्ट चलो घंटे के लिए भी, एटलीस्ट एक घंटे के लिए मैं इनको साइड पे करूँ, मैं कुछ और देखूँ, आई फील गुड. जितनी देर मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ, सपोज मैं 15 मिनट, अभी मैं बहुत दर्द में हूँ, लेकिन मैंने माइंड को अपने अगले साल में शिफ्ट कर दिया और मैं फ्यूचर के बारे में सोचते गई एंड आई क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर. तो 15 मिनट क्या हुआ? आई एस्केप्ड, आई रैन अवे फ्रॉम माई प्रेजेंट थॉट्स ऑफ पेन एंड आई लिव्ड इन द फ्यूचर एंड आई क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटिफुल फ्यूचर. आई फेल्ट नाइस आफ्टर दैट.
1: आई कम बैक रिफ्रेश्ड. But can I, can't I
0: work
1: more? I
0: don't come back refreshed. I come back even more in pain. क्योंकि ऐसे
1: ये तो अभी बचा है यहाँ पे.
0: अभी तो नहीं है ना, लेकिन जो भी हम कहते हैं ना, पास्ट की भी मेमोरीज, चलो आज बहुत दर्द में है लेकिन पिछला साल बहुत अच्छा बीता था, राइट? तो चलो पिछले साल को याद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. 10 मिनट याद कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा. 11वां मिनट क्या हुआ? दर्द हो गया. लेकिन अभी तो नहीं है ना वो
1: अभी क्यों नहीं आ सकता? एंड देन दिस, यू नो, कि वही चीज क्यों नहीं हो जाती?
0: पेन इज इन द प्रेजेंट मोमेंट. तो मुझे एड्रेस भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसको फेस भी कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ. अगर इफ आई कीप रनिंग अवे फ्रॉम माई पेन, दैट्स नॉट द सोल्यूशन. बीमारी है, लेट्स एड्रेस द इलनेस. बीमारी को ठीक करते हैं. ख्वाबों की दुनिया में जी के कि ये ठीक हो जाएगा तो ऐसा होगा, ठीक हो जाएगा. और अगर आज उसको ठीक नहीं किया, तो अगर आप सोचते भी रहे कि ये कल ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. अगर आज हम दर्द में हैं और अगर हमने उसको ठीक नहीं किया अपने थॉट्स को, तो कल कौन सी थॉट्स होंगे? सिचुएशंस चेंज हो जाएंगी. सी, हम क्यों कल के बारे में सोचते? क्योंकि हमने सोचा खुशी परिस्थितियों पे डिपेंडेंट है. तो आज परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं दर्द में हूँ, लेकिन आई एंटिसिपेट कि कल परिस्थिति ठीक हो जाएगी. एंड मैं कंक्लूजन ये ले आती हूँ कि जब परिस्थिति ठीक हो जाएगी तो कल मैं खुश होंगी. व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज कि यस, परिस्थितियाँ कल बहुत अच्छी हो जाएंगी. जो आपने जैसे कहा कि समवन इज वेरी पुअर, आज उनके पास धन नहीं है, हो सकता है जैसे वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कल उनके पास बहुत धन आ जाए, वेरी गुड, बट इट डज नॉट मीन कि उनके पास तब बहुत खुशी भी आ जाएगी. खुशी यहाँ की क्रिएशन है और उसको हमें हर पल में क्रिएट करना होगा. अगर हमने आज उसको नहीं क्रिएट किया, बिकॉज थॉट इज अ सीरीज ऑफ थॉट, तो अगर मेरा दिस थॉट इज इन पेन, देन माय नेक्स्ट थॉट विल ऑटोमेटिकली बी इन पेन, देन द नेक्स्ट थॉट विल ऑटोमेटिकली बी इन पेन. एंड दैट्स व्हाई वी से इफ टुडे इज इन पेन एंड आज उसको एड्रेस नहीं किया, तो टुमारो विल ऑटोमेटिकली स्टिल बी इन पेन. आप कितना भी सोचते जाओ कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बाहर अच्छा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो फिर भी दर्द क्रिएट होगा.
1: नहीं तो ये कहा जाता है कि सपनों में रहना चाहिए या सपने लेने तो चाहिए कम से कम. तो अगेन आई जस्ट वांट टू नो कि वेदर इट्स अ राइट पर्सनालिटी, राइट वे ऑफ
0: एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट. व्हाट इज, यू नो, फैंटेसाइजिंग बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में, एस्केपिंग फ्रॉम द प्रेजेंट. तो हाउ फार वुड दैट बी बेनिफिशियल फॉर मी? अगेन मैं एनर्जी, मैं अपनी वो थॉट पावर यूज कर रहा हूँ कुछ ऐसी चीज को क्रिएट करने में जो कि मेरे कंट्रोल में
1: है ही नहीं।
0: मेरे कंट्रोल में सिर्फ ये वाला पल है और इस पल में मेरी स्थिति, ये मेरे कंट्रोल में है, इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं
1: बट क्रिएटिविटी तो ये कहा जाता है कि यू नो क्रिएटिंग योर ओन ड्रीम्स,
0: क्रिएटिंग योर मोमेंट राइट नाउ। आप आज क्रिएट करते जाओ, आज से आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट होता जाएगा। सी व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अ सीरीज। आज अच्छा फील कर रहे होगे, घर पहुंचोगे, सबके साथ अच्छे होगे, रात को नींद अच्छी आएगी, कल सुबह उठोगे अच्छा ही फील करोगे। लेकिन आज चिंता में बिता दिया, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो कल क्या होगा?
1: कल वो आ जाएगा जिसने मुझे खुशी देनी है।
0: खुशी देनी है वो सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन आज अगर मैंने चिंता क्रिएट की थी तो कल भी मेरे मानसिक स्थिति कैसी होगी?
1: और हो सकता है वो सिचुएशन जब तक आए तब तक मेरे सर में दर्द हो चुका
0: और कल मेरे पास एक और कल है ना चिंता करने के लिए। सी अगर मेरी आदत बन गई है चिंता करने की, तो दिस इज गोइंग टू गो ऑन विद मी टिल द एंड। समवन वेरी ब्यूटिफुली सेड एट द एंडिंग फेज ऑफ देयर यू नो दिस पर्टिकुलर बर्थ, they said, I have spent all my life worrying about those things which never actually happened. हम पूरी जीवन बिताते हैं उन बातों के बारे में सोच के, चिंता करके, जो actually हुई नहीं। जब वो होगी तब देखेंगे ना, why do I create it beforehand? तो फिर हम कहते मैं इसलिए चिंता करता हूँ because I care. I worry because I care. तो हमने worry और care को जोड़ दिया। Care तो प्यार है, स्नेह की शक्ति है, और worry फियर की शक्ति है। तो फियर और स्नेह ये इकट्ठे नहीं हो सकता, दीज आर टू एनर्जीज।
1: आई एम अफ्रेड एक्चुअली दैट आई विल लूज फियर।
0: सो ये जो चिंता करने की आदत है, भविष्य का क्रिएट करके अभी डर में जीने की आदत है, इससे हमारी बहुत सारी एनर्जी डिप्लीट हो जाती और इससे मेरा प्रेजेंट मोमेंट डेफिनेटली दर्द में बीतता। दूसरा जो आपने कहा अचीवमेंट, अचीव करना है, वेरी गुड, आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। लेकिन उनको भी जो इस तरह की जीवन जीते हैं, जो डिपेंडेंट है अचीव करने में, तो क्या होता है उनका हर टाइम जो मानसिक स्थिति है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट टू अचीव नेक्स्ट। यू नो वो ऐसे नहीं बैठ पाएंगे विद नथिंग रियली हैपनिंग हियर, नेक्स्ट व्हाट टू अचीव, क्योंकि वो जो अचीवमेंट है वो उनको एक स्टिमुलेंट है, वो उनको एक किक देता है। समटाइम्स इट कुड बी रिकग्निशन, औरों का अप्रूवल, औरों से रिकग्निशन। समटाइम्स इट कुड बी जस्ट द रियलाइजेशन, हो गया ये मेरे से, ये भी हो गया। या समटाइम्स इट इज काम तो करते ही जाना है क्योंकि उसी से मुझे खुशी मिलती है। तो वो क्या करते हैं, अपना सेट करते जाते हैं, यू नो टिक चेकलिस्ट होती जाती है, ये हुआ अचीव किया। जिस पल अचीव करते हैं तो एक रिलीफ एक्सपीरियंस होता है, चलो ये भी हो गया, ये रिलीफ है, ये खुशी नहीं है, और ये भी बहुत थोड़ी देर रहेगी क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट, अब नेक्स्ट क्या अचीव करना है। तो जिन्होंने अपनी खुशी को इस अचीवमेंट पर भी डिपेंडेंट कर दिया, तो वो खुश भी नहीं होते उस पल, सिर्फ रिलीव्ड होते हैं, और वो भी लेकिन कितनी देर के लिए, शॉर्ट, नेक्स्ट मोमेंट नेक्स्ट। सो वी वॉन्ट हैप्पीनेस टू बी एवरी टाइम, एवरी टाइम, नॉट फियर में या इनसिक्योरिटी में या एंटिसिपेशन में, नेक्स्ट क्या होगा, या ये भी करना है क्योंकि जब ये कर लूंगा तब खुशी होगी। तब उनका सारा फोकस किस पे शिफ्ट हो जाता है, अब क्या करना है नेक्स्ट। उस प्रोसेस में प्रेजेंट पल बीत जाता है। अब ऐसे लोगों के जीवन में अचीवमेंट्स बहुत सारी आ जाते, दे अचीव अलॉट, क्योंकि उनका फोकस ही लाइफ में वो है, ये अचीव करना है। लेकिन खुशी, दे नीड टू आस्क देमसेल्व्स दैट दे नो बेस्ट कि उनका, क्योंकि वो जो पूरी यात्रा होती है फ्रॉम वन अचीवमेंट टू द नेक्स्ट अचीवमेंट, वो काफी
1: उसमें काफी वो जो फियर ऑफ यू नो लूजिंग, एंड देन जो मेरे पास है वो भी छूट जाएगा या वहां तक पहुंच जाऊंगा तब, वंडरफुल आई थिंक।
0: और वो कहीं ना कहीं उनकी खुशी उस अचीवमेंट पर बहुत डिपेंडेंट हो जाती है, यू नो, क्योंकि वो एक संस्कार बन गया।
1: जब वो नहीं मिल रहा होता तब तक ऐसे रहते हैं, ऐसे हो जाते हैं,
0: और उस अचीवमेंट को पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। दिस इज वेयर अ लॉट ऑफ अस स्टार्ट मेकिंग कॉम्प्रोमाइजेस, चाहे वो अपने वैल्यू सिस्टम पे है, चाहे वो अपनी फैमिली पर है, चाहे वो क्यों, क्योंकि अचीव करना, अचीव करना, अचीव करना, अचीव हो जाएगा खुशी, पता नहीं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क, दे हैव टू आस्क देमसेल्व्स। एंड जैसे ड्रीम करना, बहुत ज्यादा भविष्य के बारे में सोचना, अनदर वेरी कॉमन थिंग जो हम करते हैं, जो हम फ्यूचर में खुशी ढूंढते हैं, दैट इज आर डिजायर्स। एवरी वन, वी ऑल से कि इच्छाओं के बिना तो जीवन कैसे बीत सकता है। आई डिजायर फॉर दिस, आई डिजायर फॉर दिस, अगेन सेइंग ये होगा, आई कुड डिजायर फॉर ऑब्जेक्ट कि ये मिलेगा तो खुशी, आई कुड डिजायर फॉर मोर लव फ्रॉम पीपल, आई कुड इवन डिजायर फॉर मोर टाइम, और टाइम मिल जाए ना मुझे तो 24 घंटे ही कम पड़ते. तो ये डिजायर्स की भी जो हमारी लिस्ट है वो बहुत लंबी होती जाती, और कई बार तो पूरे भी होती जाती वो हमारी डिजायर, लेकिन जितनी डिजायर्स पूरी होती उतनी लिस्ट
1: और बड़ी होती जाती,
0: और भी लंबी होती जाती. क्योंकि ये इच्छाओं के पीछे एक बहुत सूक्ष्म सकल जो थॉट है वो ये कि जब ये डिजायर मेरी अचीव हो जाएगी, आई दैट सेल्फ विल बिकम कंप्लीट, यू नो, व्हेन आई गेट दिस मोर फ्रॉम यू आई विल बिकम कंप्लीट, आई विल बिकम कंटेंटेड. राजयोग हमें ये सिखाता I, the self,
1: is already
0: cannot be complete by anything outside. I am already complete. मुझे कुछ भी बाहर से नहीं चाहिए जिससे मैं
1: कंप्लीट हो जाऊं. क्यों नहीं करते, you know? हम फील कंप्लीट क्यों नहीं करते अगर हम है, you know, like if we understand this whole concept, तो हमें ये जो अर्च है बाहर से, चाहे प्यार की, चाहे ज्ञान की, चाहे किसी भी चीज़ की या अचीवमेंट की, ये फिर क्यों है?
0: बिलीफ सिस्टम. क्योंकि फीलिंग किस पे डिपेंडेंट है?
1: बिलीफ सिस्टम पर.
0: अगर मेरा बिलीफ ये है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, ये होगा तो आई विल फील कंप्लीट, तो देन आई विल फील लाइक दैट ओनली, एंड आई विल कीप लुकिंग फॉर इट.
1: लेट्स ट्राई टू चेंज दैट एंड से दैट आई एम ऑलरेडी फुल,
0: आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम ब्यूटीफुल.
1: बट हाउ विल आई क्रिएट दैट बिलीफ सिस्टम नाउ?
0: I create, अभी हमने क्रिएट कर दिया ऑलरेडी. अब इसको क्या करना है, इस बिलीफ सिस्टम को जीवन की यात्रा में लेके चलना है. जैसे ही कोई थॉट आए ये होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इमिजिएटली स्टॉप एंड टेल योरसेल्फ,
1: तो अच्छा तो
0: है, तो ऑलरेडी अच्छा, आई एम ऑलरेडी फीलिंग नाइस, हाँ ये हो वेरी गुड, लेकिन मेरा फीलिंग इसके होने पर डिपेंडेंट नहीं है. एक दिन इसको करके देखो, यू विल सडनली स्टार्ट फीलिंग वेरी वेरी लिबरेटेड. क्योंकि अभी तो हम इतनी चेन्स में बंधे हुए हैं कि ये सब होगा देन आई विल फील गुड, एंड ये सब कुछ मेरे अनुसार.
1: लेकिन वो जब हो रहा होता है तब तो वी फील, बिकॉज वी हैव क्रिएटेड दैट, ओह वी हैव क्रिएटेड दैट थॉट कि अगर वो होगा तभी फील करेंगे, इसीलिए जब वो होता है तो हम फील करते हैं.
0: लेकिन उसके बाद फिर हमने एक और थॉट भी तो क्रिएट हो गया था, अब ये होगा देन आई विल फील गुड. सी, जब से ही वो डिपेंडेंट है तो वो हमेशा ही डिपेंडेंट रहेगी. तो जैसे ही सपोज आई एम डिपेंडेंट कि आप मुझसे अच्छी तरह से बात करें, देन आई विल फील गुड. तो आपने मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात, आई फील वेरी गुड. लेकिन अब आई एम डिपेंडेंट कि आप हमेशा मुझसे अच्छी तरह से बात करेंगे, दैट इज समथिंग आई डोंट
1: एक्सपेक्टेड देन,
0: एंड देन इट्स नॉट ओनली ऑन यू, नाउ आई एक्सपेक्ट कि सब लोग हमेशा मुझसे बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे. हाउ फार इज दैट इन माई कंट्रोल?
1: एक बार मेरा एक बिलीफ सिस्टम ये रीइन्फोर्स हो गया कि मैंने ये सोचा था कि ये अच्छी तरह से बात करेंगे, मैं फील गुड करूंगी, वही हुआ तो हर जगह यही चलेगा.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो अगेन आई थिंक इट कैन, वी कैन रिवर्स इट. इस पर मैं बात करती हूँ कि कैसे, हाउ टू डू दैट. लेकिन उससे पहले एक थॉट पावर की जब बात होती है कि वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, यू नो, स्थूल में भी करें या जो भी चीज चाहिए, उसको क्रिएट करो, उस फ्यूचर को देखो और उसके बाद उसको विजुलाइज करो. मतलब थॉट क्रिएट किया, सपोज मुझे एक पोस्ट चाहिए, अच्छा मेरे को अपना कंपनी का सीईओ बनना है, आई क्रिएट दैट थॉट एंड देन आई स्टार्ट विजुलाइजिंग माई सेल्फ, स्टार्ट लिविंग इन दैट एंड स्टार्ट लिविंग इन, यू नो, गिविंग इट ऑल विदाउट एनी ट्रेस ऑफ, यू नो,
0: डाउट
1: एंड इट हैपेंस एंड पीपल आर डूइंग इट नाउ. आई एम लाइक इट्स सो मच इन थिंग नाउ.
0: ट्रू.
1: But then, am I able to live in my present then?
0: It all depends how you're feeling that time. See, some people are being able to achieve it, and yet at the same time, there are many, many people who are not being able to achieve this. Kyunki jaise hi, it's very good.
1: Because I tried this with myself. I was not able to achieve it.
0: Because once we understand thoughts create destiny, तो हमें जब ये समझ में आ गया तो हमने इसको किन चीजों के लिए यूज करना शुरू किया. आई क्रिएट अ थॉट तो मुझे ये मिलेगा, ये प्रमोशन मिलेगी, ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में. फिर हमने वो एनर्जी उसके प्रति क्रिएट करनी शुरू कर दी. लेकिन हम बहुत कम हैं जो उसमें एक भी थॉट ऑफ डाउट नहीं क्रिएट करते. क्योंकि जैसे हमने पहले देखा, ये होना ही चाहिए, ये हो, यू नो, आई गेट अटैच टू द आइडिया कि ये मुझे मिलना ही चाहिए. तो कहीं ना कहीं एक थॉट तो दर्द की जरूर क्रिएट होती,
1: सपोज
0: नहीं मिला तो. एंड मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाती हूँ उस प्रेडिक्टेड फ्यूचर पे, है ना, ये होना ही है, दिस हैज टू हैपन, इफ इट हैपन्स वेरी गुड, लेकिन बाय चांस नहीं हुआ तो. अगर वो नहीं हुआ, क्योंकि जब सब कुछ जो हो रहा है वो सारा कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब वो जब नहीं होता आई गो एब्सोल्यूटली. जब हम कहते हैं थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी, तो हमें ये समझना पड़ेगा जो थॉट्स मैं क्रिएट कर रही हूँ अभी, वो मेरी अभी की डेस्टिनी बना रहे हैं, अभी हाउ आई फील एंड ऑल्सो वॉट इज गोइंग टू हैपन विद मी. एंड सिमिलरली अभी जो मेरे साथ हो रहा है, इट इज बेस्ड ऑन मेनी थॉट्स दैट आई हैव क्रिएटेड इन द पास्ट. अब क्या होता, मैंने अभी तो अपनी थॉट की क्वालिटी चेंज कर ली, लेकिन हो सकता है पहले मैंने बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी थॉट्स पहले क्रिएट की थी विच हैज गॉन आउट इन टू द यूनिवर्स. जो हम कहते हैं ना थ्रो दिस एनर्जी आउट इन टू द यूनिवर्स, तो वो भी तो बहुत सारी एनर्जी भेजी हुई है विच इज ऑल्सो ऑन इट्स वे बैक. तो हम तुरंत रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, अभी मैंने ये थॉट क्रिएट किया ये मेरे साथ हो जाना चाहिए. गेटिंग अटैच्ड टू समथिंग ऑफ द फ्यूचर, मोर इम्पोर्टेंट वुड बी अभी अपना ध्यान रखते जाएं, एक तो अंदर और एक तो बाहर. काम कर रहे हैं आप, एफर्ट कर रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, हर मोमेंट को इस मोमेंट में अच्छा बिताते जाएं, एंड देन आप देखेंगे जैसे जैसे एक पल अच्छा बीतेगा तो अगला पल अच्छा बीतेगा ही बीतेगा. ये पल अगर अच्छा ना तो नेक्स्ट पल तो बीतना ही है. एंड ये करने से आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी शक्ति अक्यूमुलेट हो जाती है कि अगर सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं भी आती, कोई भी सिचुएशन, आपके अंदर बहुत ताकत है उस सिचुएशन को फेस करने की. लेकिन हर पल अगर इस फियर में या एंटिसिपेशन में अगले पल के लिए बिता दिया, तो हम इतने कमज़ोर हो जाते कि जब कोई सिचुएशन हमारे सामने आती जो हमारे फेवर में नहीं है, आई डोंट हैव द पावर टू फेस सिचुएशंस. सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं. ऑल दैट वी आर ट्राइंग टू डू, इस पूरी सीरीज में हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हम पावरफुल रहें, हम शक्तिशाली रहें, ताकि कुछ भी हो जाए आई विल बी एबल टू रिमेन स्टेबल. अब जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है, व्हाट थॉट्स एम आई क्रिएटिंग, अगेन आउट ऑफ कंट्रोल थॉट्स, अगेन फियरफुल थॉट्स, एंटिसिपेटरी थॉट्स, एनर्जी डिप्लीट होती जा रही, डिप्लीट होती जा रही, तो फिर मेरे अंदर की जो शक्ति है कम होती जा रही है.
1: तो अगर तो हाउ टू गो अबाउट, वी हैव टू मेक आवर फ्यूचर प्लान्स, वी हैव टू मेक आवर गोल्स एंड वर्क फॉर देम आल्सो. सो व्हाट एनर्जी,
0: अगर गोल बनाना भी है आपने तो गोल बना दें, लेकिन जैसे हमने पहले भी कहा एक्सपेक्टेशन, बट विदाउट गेटिंग डिपेंडेंट ऑन द एक्सपेक्टेशन, कि एक्सपेक्टेशन रखी लेकिन साथ साथ ये भी तैयारी कर ली कि अगर पूरा नहीं हुआ तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट हर्ट. सो सिमिलरली गोल बनाना है, आप गोल बना दें लेकिन लिविंग इन द
1: प्रेजेंट.
0: ये नहीं ये होगा तो खुशी मिलेगी. यू नो क्या होता है, गोल्स बनाना मतलब हमारा सारा लक्ष्य क्या हो जाता है, किसी तरह हाँ. वो गोल पूरा हो जाए.
1: एक्चुअली फिर हम किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होते. अमेजिंग है कि वी एक्चुअली हम इतने रिजिड हो जाते हैं फिर.
0: नहीं और क्या होता है, वो गोल को क्योंकि मैंने ये थॉट प्रोग्रामिंग कर ली कि ये गोल जब अचीव होगा तब खुशी मिलेगी, तो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए फिर कुछ भी करते जाऊंगे ना. इन द प्रोसेस आई कैन गो थ्रू स्ट्रेस, आई कैन क्रिएट एंगर, आई कैन हैव प्रॉब्लम्स इन रियल, लेकिन मुझे किसी भी तरह उस गोल को क्रिएट करना है. क्यों? क्योंकि मेरी खुशी वहां खड़ी है. यू सी, सो हाउ हेल्दी इज दिस फॉर मी, दिस आई हैव टू चेक कि मेरी एनर्जी कितनी डिप्लीट होती जा रही है. तो अगर हम एक दिन ट्राई करें इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि मेरा जो बेस्ट मोमेंट है वो ये वाला मोमेंट है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द फ्यूचर, आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पास्ट, आई हैव टू एंजॉय विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है
1: वो अच्छा
0: होने वाला है. क्यों मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है? अगर मैं एनर्जी ही अच्छी क्रिएट कर रही हूँ अभी, तो एनर्जी जो बाहर जाएगी वही एनर्जी वापस आने वाली है. सो आई क्रॉस एवरी मोमेंट विद द फर्म बिलीफ कि मेरे साथ जो भी होने वाला है वो अच्छा ही होने वाला है. ये मुझे अभी कैसा फील कराएगा?
1: गुड,
0: बहुत लाइट लाइट. आई टेक लाइफ इन अ क्रिएटिव वे, यू नो, कि हर पल ये हल्केपन से खेलते हुए. लाइफ इज मेंट टू बी एंजॉयड. हमने उसको बहुत सीरियस, यू नो, सीरियस वो क्यों कर दिया? क्योंकि भविष्य भविष्य का डर, नहीं हुआ तो क्या. एक एक पल को जीते जाए प्रेजेंट में. ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, करके देखना है कि एक दिन आने वाले कल के बारे में ना सोचकर आज को देखें. आज में भी हर पल को देखते जाएं तो आपका अगला पल अपने आप अच्छा होने वाला है।
1: और उसमें कोई भी सिचुएशन भी आ जाएगी, सपोज आज मैं ठीक हूँ लेकिन अगले ही पल कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, उसे हैंडल करने की भी मेरे पास शक्ति होगी क्योंकि मैं स्ट्रेस में नहीं हूँ। यू नो, कई बार क्या होता है क्योंकि हम देख ही नहीं पाते उस सिचुएशन को।
0: हर सिचुएशंस देखो आने वाली हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमें वो अभ्यास नहीं है उस प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, तो वो सिचुएशन आते ही भी हम बहुत सारा क्रिएट कर लेते हैं।
1: अब क्या होगा।
0: एंड एक्चुअली सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती है कोई भी। ये जिस फाइनेंशियल क्राइसिस की भी हमने बात की थी, इसको फेस प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करना है, लेकिन सारी एनर्जी किस में वेस्ट हो जाती है। हम कहते हैं ना एंथुजियाज्म खत्म, मोटिवेशन खत्म, क्यों? सारी एनर्जी किस में हो गई? अब क्या होगा, आगे क्या होगा? सेविंग्स खत्म हो गई तो बच्चों की
1: हमने पूरा विजुलाइज भी कर लिया होता है। हर बार कोई सिचुएशन आते हैं हम पहले फ्यूचर ही विजुलाइज करते हैं, तो समवेयर वी रियली नीड टू चेक। शिवानी, थैंक यू सो मच। और अगर आपके पास कोई बात, कोई सवाल है, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमें समझ में आई है कि जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड कर सकता है कि मेरा आज कैसा होगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, एक्चुअली वो प्लानिंग करना।
2: The child who inspired his father onto the path of martyrdom.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है, ढेर सारी खुशियों के साथ नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। चलिए, आज सदगुरुवार का दिन है तो आप सभी को सीधे ले चलते हैं शांति वन के प्रांगण में, जहाँ पर परमात्मा को भोग लगाया जा रहा है। तो आइए हम सभी मिलकर शामिल होते हैं अपने मन से। सुनते रहो, मस्कर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, हम बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और ये गीत शांति वन के प्रांगण में भूख लग रहा है बाबा को, परमात्मा को, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सुंदर वाइब्रेशंस बने हुए हैं और मुझे लगता है कि आप भी इस अनुभव को कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, 28 मई 2026 आज का तारीख है। राष्ट्रीय शके 1948, शके 7, गते 14, अधिक ज्येष्ठा गुरुवार आज है। विक्रम संवत 2083, अधिक ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष द्वादशी गुरुवार चित्रा आज है। इस्लामी हिजरी 1447, 10 जिलहिज जुमेरात सिमिक आज है। इसके साथ ही आज विशेष दिन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। तो क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एमनेस्टी एमनेस्टी का मतलब क्या है? हर वर्ष पिछले 58 सालों से 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1960 के बाद ये मानव अधिकार स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ज्वलंत विषय बना है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आपको सीधे ले चलता हूँ, एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार।
1: एक भजन है सर, वो हमारे को सुना दोगे तो आनंद आ
0: जाए। बिल्कुल, आनंद ही आनंद है।
1: आपका प्रोग्राम सुन करके तो हम तो आनंद तो हमेशा लेते ही है, लेकिन इस गाने को सुन करके और भी मजा लेंगे तो आनंद आ जाएगा।
0: बिल्कुल
1: प्रभु जी, अब की बार उभारो काया भी तुम्हारी, काया भी तुम्हारी। प्रभु जी, अब की बार उभारो माया भी तुम्हारी, काया भी तुम्हारी है। हम तो है नहीं तुम्हारा, लेकिन क्या करे, आपने हमारे को पैदा किया तो आपके साथ में रहकर जब बातों की करनी पड़ेगी तो साथ निभाना पड़ेगा। इसलिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुरेश भी वही इंतजार ही करते होंगे कि कभी बात करने का मौका मिल रहा है, तब बात करूँ मैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: धन्यवाद।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ। सुनते रहो मस्कर।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, मैं हूँ बिंदु वागले। आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज के हमारे खास मेहमान जिनको आप सुनेंगे थोड़ी देर में, विकास करंदीले हमारे साथ उपस्थित हैं। पूना शेगांव से आप बिलोंग करते हैं और अभी अभी आपने जो है अपनी करियर की शुरुआत करने वाले हैं और कलेक्ट्रेट में आपके जो है सिलेक्शन होने वाला है और ट्रेनिंग के बाद आप किसी न किसी कलेक्टर की पोजीशन पे आप रहेंगे, तो हमें बहुत खुशी हुई आपकी बातें सुनकर। तो विकास जी बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी, मैं चाहूँगा थोड़ा अपने बारे में बताइए आप।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में।
0: जी जी,
1: उसमें नेवासा तहसील है, उसमें गेवराई गांव है छोटा सा हमारा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरी पढ़ाई गांव में हुई है 10वीं तक, उसके बाद मैंने 11th 12th सिटी नगर जिले का शहर है उसमें कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मेरा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से कंप्लीट किया है और उसके बाद मैंने स्टेट सर्विस कहते हैं हमारे महाराष्ट्र में MPSC, उसकी तैयारी स्टार्ट की। और उसके बाद तीसरा प्रयास था मेरा, दो इंटरव्यू में फेलियर आने के बाद ये तीसरी बार मुझे सिलेक्शन मिल गया और ऑल महाराष्ट्र रैंक मेरा 11 था। मेरा मुझे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिल गई। और मेरे फैमिली में फैमिली बैकग्राउंड मेरा फार्मर है, मेरे माता पिता
0: जी।
1: और हमारे वो गांव के हमारे फैमिली डॉक्टर है, उनके हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, इसलिए उन्हीं के वजह से मुझे इस ओम शांति परिवार का परिचय हुआ। बहुत दिनों से हम यहाँ आना चाहते थे। हमारे डॉक्टर विजय गोसावी जी, उनके साथ हम यहाँ आए हैं। हमारी भी बहुत इच्छा थी यहाँ आने की, हमारा ज्वाइनिंग के लिए टाइम है इसलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बार बार आए।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। विकास जी बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे आपका सिलेक्शन हुआ और तीसरी बार में आपने अटेम्प्ट पूरा किया और पास हो गए, तो निश्चित तौर पे आपको उसका जो फल है वो मिल रहा है। और डॉक्टर विजय जी के साथ आपका संपर्क है, तो आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आना चाहते थे तो अभी आ गए हैं। अच्छा, मैं चाहूँगा कि अब गांव में जैसे कि आप जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताइए आसपास में आपके गाँव के पास।
1: हमारे गाँव मैं नेवासा तहसील से बिलोंग करता हूँ, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से। आपको संत ज्ञानेश्वर पता है?
0: जी जी,
1: उन्होंने नेवासा स्थल पे उस स्थल पे ज्ञानेश्वरी लिखी है।
0: अरे वाह,
1: उसको हम भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। आपको तीर्थ क्षेत्र शनि शिंगणापुर मालूम होगा।
0: जी, जी जी,
1: वो हमारे तालुका में ही बिलोंग करता है। उसके बाद देवगढ़ है और हमारा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है वो इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। वो निजामशाही की राजधानी, पुरानी निजामशाही की राजधानी थी। और हमारा ज्योग्राफिकल लोकेशन बताए तो गोदावरी नदी हमारे गांव के 10-12 किलोमीटर दूर से गोदावरी नदी जाती है।
0: अरे तो वहां पर खेती वगैरह का क्या सिचुएशन है?
1: खेती हमारे यहाँ मूला नदी, मूला डैम है, उसका पानी खेती को लोगों को मिलता है इसलिए उधर। और दूसरी साइड से प्रवारा, मूला और गोदावरी, ये तीन नदियाँ जाती है वहाँ से, इसलिए खेती अच्छी है। वहाँ गन्ने की खेती ज़्यादातर की जाती है। अभी हमारे यहाँ के फार्मर फल खेती के लिए शिफ्ट हो गए। आप दालिम बोलते हैं, वो दालिम की खेती कर रहे हैं, कोई खेत कोई गन्ने की खेती कर रहे हैं। खेती का बैकग्राउंड, खेती अच्छी है हमारे तालुका की, क्योंकि जल सिंचन वहाँ उपलब्ध है इसलिए खेती अच्छी
0: है। तो अन्य दूसरे गांव से ज़्यादा बेहतर है आपके यहाँ?
1: हाँ ठीक है, वो हमारे महाराष्ट्र में मराठवाला में सूखा पड़ता है।
0: जी, जी,
1: उससे बेटर है हमारा जो गांव है वो ठीक ठाक है उससे।
0: अच्छा, यहाँ की संस्कृति के बारे में थोड़ा बताइए हमें।
1: महाराष्ट्र के महाराष्ट्र की संस्कृति में बहुत बता सकते हैं, लेकिन फेमस है वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का वारकरी संप्रदाय पंढरपुर बोलते है। हमारे यहाँ के जो लोग पंढरपुर को जाते हैं तीर्थ यात्रा करते हैं उनको वारकरी कहते हैं। वो हर साल एकादशी रहती है, हर साल में दो बार जाते हैं। और महाराष्ट्र की कल्चरल में बोले तो लावणी, लावणी प्रसिद्ध है मराठी में। हाँ, महाराष्ट्र की लावणी भी प्रसिद्ध है।
0: चलिए विकास जी, बहुत ही अच्छी बात ये आपने बताया। और अब जब आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेंगे तो आपको क्या लगता है कि आपके, क्योंकि आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव के लोगों की जीवन शैली देखा है, तो आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप कलेक्ट्रेट पे जाएंगे या काम करना शुरू करेंगे तो किन चीज़ों पर ज़्यादा आपका फोकस होगा?
1: भाई हम, मैं, मेरे पिताजी खेती करते हैं, तो मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ वहाँ के मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा पता है।
0: जी जी,
1: मेरे अंदर वो इमोशनल बोलते हैं सेंसिटिविटी, वो ज़्यादा है कि हमारे फार्मर की क्या समस्याएं होती है
0: जी, जी,
1: उसके बारे में, हमारे यहाँ मजदूर काम करते हैं उनके प्रॉब्लम है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा
0: जी जी जी,
1: उनके लिए मुझे जितना करना कर सकता हूँ उतना मैं करना चाहता हूँ। फार्मर हो गए, मजदूर हो गए, एजुकेशन सेक्टर होगा
0: जी,
1: उसके
0: जी।
1: लिए मैं अपना 100% प्रयास करूंगा।
0: चलिए विकास जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। महाराष्ट्र के बारे में आपने बताया, वहाँ के कल्चर के बारे में बताया और अपने गांव के संस्कृति के बारे में और वहाँ की जो व्यवसाय है उसके बारे में आपने बताया। खेती मेन है और खेती के साथ में अब जो है हॉर्टिकल्चर से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि पानी की समस्या वहाँ नहीं है, तो फल वाली जो खेती है वो ज़्यादा कर रहे हैं, ये आपने बताया। निश्चित तौर पे फल फूलों के साथ अगर वो लोग अपना खेती बनाते हैं या खेती करते हैं तो अच्छी आमदनी भी होती है और एक अलग पहचान भी बनती है, तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज, रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे आप?
1: मैं सब ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए उसमें।
0: जी जी,
1: हमें हम लोग उस पर काम कर सकते हैं। हमारी कई गलतियाँ होती है, छोटी छोटी गलतियाँ रहती है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए पहले और उस पर काम करना चाहिए। और हमारे लाइफ में हमारा ड्रीम बड़ा होना चाहिए। ड्रीम हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम ड्रीम बड़ा देखें। और जाते जाते एक पंक्तियाँ सुनाता हूँ, वो मुझे मोटिवेट करती थी एग्जाम के दौर पे, प्रिपरेशन के दौर पे।
0: क्या बात।
1: जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम, जब तक सफल न हो चैन नींद त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जय कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
0: बहुत बढ़िया। चलिए विकास जी, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें सुनकर अच्छा लगा। और जिस तरह से आपने कहा कि यथासंभव मैंने दायरे में जो चीज़ें होगी वो मैं ज़रूर करूंगा, और बड़ा इमोशनल जो है हमारा कनेक्शन है फार्मर और फार्मर की ज़िंदगी से अच्छी तरह से वाकिफ हूं, तो उनके लिए बहुत कुछ करना है, ऐसे सपना लेकर आप अपने कार्य को करेंगे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर सारी रेडियो मधुबन की ओर से, टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ करते हैं। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में आपने विकास जी को सुना, आशा करूँगा कहीं ना कहीं आपको उनकी बातें अपने जहन में अगर कहीं टच हो गया हो।
2: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा, रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
3: सपोज एक स्टूडेंट है जिसका एक महीने के बाद एग्जाम्स हैं, वो आज बैठकर ना प्रिपरेशन करता है, ही इज प्लानिंग ऑल हिज लेसंस। जब प्लान करता है तो उसको समझ में आता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की 10th चैप्टर इज वेरी वेरी टफ, तो कैसा प्रोग्रामिंग करेगा? हे भगवान, सारे के सारे क्वेश्चंस 9 चैप्टर में से आए, Oh God, let not even a single question come from the 10th chapter. Tuck, first programming. और ये एक महीने तक ये स्टूडेंट क्या प्रोग्रामिंग देता है? If there is any question from the 10th chapter, I will be in trouble, I'll be in trouble, I'll be in trouble. एक महीने के बाद जैसे ये विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है, as soon as he gets a question paper, he is least bit bothered. How many questions have come from 9 chapters? He is trying to look out whether there is any question from the 10th chapter or not. और बस उनके आंखों के सामने ये क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर दिखाई देता है, एक महीने से क्या प्रोग्रामिंग कर रहा है? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन फ्रॉम द 10th चैप्टर, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, आई विल बी इन ट्रबल, ऑटोमेटिकली ही इज इन ट्रबल। और इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाता है, सारा पसीने पसीने छूटने लगते हैं, आंखों के सामने ब्लैकआउट हो जाता है, और जो 9 चैप्टर में से पढ़ा वो धीरे धीरे इवैपोरेट होकर उड़ने लगता है। व्हाई? बिकॉज इट्स द वे वी हैव प्रोग्रामड आवरसेल्व्स। थॉट्स आर द सॉफ्टवेयर। एक और उदाहरण देता हूं, जिस कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां पे जो स्टूडेंट्स थे राइट फ्रॉम 8:30 टू 3:30, यू नो, हम प्रोफेसर्स लेक्चरर्स बम्बार्ड आवर स्टूडेंट्स विद सो मच ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन. 3:30 बजे तक बच्चे इतने थक जाते थे कि कुछ पूछो मत. दे आर सो डैम टायर्ड. किसी तरह वो अपना बैग बैगेज उठाता है, समहाउ ही कम्स आउट और वो अपना घर देखता है 100 meters अवे. 100 meters सीम्स टू हिम एज 100 kilometers बिकॉज ही इज सो टायर्ड. और उस समय ये विद्यार्थी देखता है एक कुत्ता बहुत तेज से उसको काटने के लिए आ रहा है. क्या करेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गया हूं ना, कहेगा? नो, ही विल रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड, इफ नॉट द 100 meters वर्ल्ड रिकॉर्ड. लेकिन 100 meters इंडियन रिकॉर्ड तो उसको तोड़ना ही था. व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, ऐसा नहीं है कि उसके पास एनर्जी नहीं था, एनर्जी था, बट ही केप्ट ऑन प्रोग्रामिंग, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड. ऑटोमेटिकली द बॉडी मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन द सेम वे. जैसे ही उसने उस कुत्ते को देखा तो क्या किया, एक स्विच ऑफ किया, दूसरा स्विच ऑन किया, ही हैड एनर्जी एंड ही कुड रन एट द फास्टेस्ट ऑफ फास्ट स्पीड. जैसे ही घर में पहुंचा द फर्स्ट

that it does it, switch on the television. Right there from 7 o'clock to late 10 o'clock, he's there in front of the television. 10 baje wo realize karta hai, oh my god, tomorrow mujhe itne sare assignments submit karne hain. Aur 10 baje wo likhna aarambh karta hai. Sote sote 12 baj jate hain. 6 baje ka alarm rakhta hai aur uska ban mein yahi vichar aata ki main kaise uth paunga. Aur jaise hi 6 baje ka alarm bajta hai, tak 10 minute sota hu. Aur 10 minute ka kitna, 1 ghanta, 1.5 ghanta ho jata hai. Every day he is there in the campus late and he has to hear from the principal and the professors. एक महीने के बाद द क्रेजी प्रोफेसर द सेम प्रोफेसर स्वामीनाथन एंटर्स द क्लास एंड सेज टू द स्टूडेंट, हे स्टूडेंट्स, लिसन टू माय अनाउंसमेंट वेरी केयरफुली. टुमारो वी आर ऑल गोइंग टू अ ट्रिप टू खंडाला. प्लीज मेक इट श्योर दैट टुमारो यू आर रीचिंग द कैंपस शार्प 7 AM. एज यूजुअल टेलीविजन टिल 10 o'clock ही इज देयर इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन. सडनली 10 o'clock ही रियलाइजेस, माय गॉड, टुमारो ट्रिप टू खंडाला, मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, क्या क्या करना होगा. और 10 बजे वो प्रैक्टिस करना आरंभ करता है. हर दिन वो 12 बजे सोता है, लेकिन उस दिन वो 1 बजे सो रहा है. He has to reach the campus 7 AM. Every day he keeps the alarm at 6 o'clock. That day he keeps the alarm at 4 o'clock. Hardly 3 hours of sleep. लेकिन 4 बजे का अलार्म रखता है, लेकिन 3 बजे भी उठेगा, 3:15 बजे भी उठेगा, 3:30 बजे भी उठेगा. And before the alarm can ring, this gentleman is so fresh. It's a way we program ourselves. A sara din he's there in Khandala enjoying himself, playing in the ghats, enjoying with his friends. He had hardly had 3 to 3.5 hours of sleep, but no form of tiredness. It is the way we program ourselves. Aur aisa nahi hai ki hum chote ya students hi program karte hain. Hum bade bhi bahut aksar karke programming kar dete hain. Self programming. It's a kind of a programming that we do.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए बातें कर रहे थे एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के बारे में। मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार एक बुनियादी आज़ादी और सुरक्षा है जिसके लोग केवल इसलिए हकदार हैं क्योंकि वो मनुष्य है। वो मानव अधिकारों की यूनिवर्सल घोषणा में निहित है। ये मानव अधिकार सभी के हैं, चाहे वे किसी भी जाति, नागरिकता, लिंग, राष्ट्रीयता, जातीयता या क्षमता से संबंध रखता हो। हम सभी मानव अधिकारों के साथ पैदा होते हैं और वो लोगों से केवल इसलिए संबंध है क्योंकि वे मनुष्य हैं। तो आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो,
1: हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हम शांति सुरेश भाई बोलता हूँ।
0: गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते, बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस हम भी बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं और अभी अभी हमारे विकास जी से बहुत अच्छी बात हुई, तो विकास जी ने कई सारी बातें बताई कि जीवन में आगे कैसे बढ़े और वो कलेक्टर बन जाएंगे, शायद हमारी वो कलेक्टर बन जाए और जो गाँव का कहते ना कि गाँव की कोई भी जो इंसान गांव का होता है और गांव में कुछ अच्छा करने की कोशिश तो जरूर करता ही है, क्योंकि सब देखा है कि भाई मजदूरी कैसे होती है, काम कैसा होता है, काम कैसे इतनी परेशानियों से काम होता है, तो सभी जो समझते हैं वो कि गांव का कितना अच्छा काम कर सकते हैं, तो करना ही चाहिए। मैं तो यही बात करता हूँ कि हम गाँव में है, गाँव के कोई भी लोग बड़े बन जाते हैं, आगे चले जाते हैं, तो गाँव का कुछ न कुछ तो विकास करना ही चाहिए सर, क्योंकि बाहर विकास करे हो, गांव का विकास ना हो तो कैसे हो सकता है। इसलिए जो गांव में गांव की मिट्टी से पैदा हुए हैं, गांव का गांव में जीवन दिन गुजार रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे बड़े हुए, तो गांव का कुछ अच्छा करना ही चाहिए। तो वो कहते हैं कि भाई आपने ये जो आगे आए हैं ये अच्छा, बस हम तो ऐसा चाहिए सर कि सब आगे जाए, पढ़े लिखे, अच्छा कलेक्टर बने, कोई पुलिस ऑफिसर बने, कोई MLA बने, तो हमारे प्रधानमंत्री बताइए, तो हमारे छोटे से गांव है बटनगर में पैदा हुआ और आज दुनिया का फर्स्ट जो PM बन गए हैं, तो गांव का अच्छा, तो कई सारे उसके गांव में भी कई सारे वो अच्छे अच्छे बनाए हैं, बटनगर में भी ऐतिहासिक गांव है, तो बहुत अच्छा है सर। और चलो, गुरुवार है, बाबा का वार है, गुरु जी का भी दिन है, सबको गुरु की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना हमारे मित्रों को।
0: जी जी जी,
1: हो सके तो बस गुरु का ही जाना सुना देंगे आज कि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना ना हो कुछ, ऐसा ही भाव भरा गाना है।
0: जी जी,
1: आप लो संदेश मारा गुरु जी ने के जो

0: अपनो संदेशो मारा गुरु जी लेके जो, तो वही भजन है सर हमारा। गुरु जी से कम संदेश आप बहुत सा देते हैं और आपका गुरु भला करे, ऐसी शुभकामना। नमस्ते सर, ओम शांति।
1: जी जी नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM। अभी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे मित्र जो है याद कर रहे थे गीत को, वो गीत मैं कोशिश करता हूँ आपको सुना पाऊँ। और इसके साथ में जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मानव अधिकार के बारे में, मानव अधिकार को छीना नहीं जा सकता, कोई भी व्यक्ति, नियम, निगम, संगठन या सरकार किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकती। हालांकि वे अंतरस्तारणीय है, वो अखंडीय नहीं है। उल्लंघन लोगों को उनके अधिकारों का आनंद लेने से रोका जा सकता है, लेकिन वे मौजूदा अधिकारों को नहीं रोकते हैं। ये मानव अधिकार आज़ाद, न्याय, शांति के लिए आवश्यक है। तो चलिए, एमिनिस्ट इंटरनेशनल डे की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, गुरुवार है तो ये एक प्यारा सा भजन आपके नाम।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम मंगल कामनाएं करते हैं। अटलो संदेशु मारा गुरु जी न के जो, ये सुंदर गीत आप हेमंत चौहान की आवाज़ में सुन रहे थे। आइए, 28 मई 2026 आज का तारीख है और बातें कर रहे थे हम लोग खास आज एमनेस्टी इंटरनेशनल डे के बारे में, जहां मानव अधिकार के बारे में बातें की जाती हैं। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं और ये विशेष वीर सावरकर के बारे में बातें करते हैं, एन टी रामाराव के बारे में बातें करते हैं। एक क्रांतिकारी और एक नेता और एक्टर रहे हैं। वीर सावरकर जी क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी और राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर इनका नाम आता है। तो इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। जी हाँ, इनका जन्म आज ही के दिन महाराष्ट्र में हुआ था, बंगूर गांव नासिक के पास में, 28 मई 1883 को। तो ऐसा बताया जाता है, जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधा भाई का देहांत हो गया और विनायक दामोदर सावरकर 20वीं सदी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। हिंदू शब्द से बेहद लगाव इनका। वो कहते थे कि उन्हें आज़ाद वीर की जगह हिंदू संगठक कहा जाए। उन्होंने जीवन भर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए काम किया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार वो सदस्य चुने गए और 1937 में विश्व महासभा हिंदू के अध्यक्ष चुने गए और इस तरह से वो दादर मुंबई में रहकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे और बाद में वे निर्दोष सिद्ध भी हुए, राजनीति से संन्यास भी ले लिया और फिर लोगों की सेवा में और साहित्य के जगत में जुड़ गए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। तो आइए एक और सुंदर गीत आपको सुनाते हैं, दो पंछी दो तिनके। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए 9 बज चुके हैं, अब सीधे दिल्ली चलते हैं समाचारों की तरफ, उसके बाद फिर बातें करते हैं। सुनते रहो मुस्कुराते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ, मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया।

0: और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
5: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
6: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट की कसौटी।

0: ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है। नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, जैसे से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, 2 बार किया होगा, 10 बार किया होगा, 10 लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जो है तो मुख्यतः संगीत से जुड़ा, मगर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हमारे प्रत्येक के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान तो रखता ही है और साथ ही साथ काम भी करता है, मगर हम होते हैं इससे बिल्कुल अनजान। तो आपने अभी शुरुआत में तबला वादन का एक थोड़ा सा अंश सुना और अब मुझे सुनकर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी अजीब सी बात है और हमारा ताल से क्या मतलब है। तो श्रोताओं, मैं आपको इस विषय से रूबरू करा रही हूँ कि हमारा सबका किस प्रकार से ताल से मतलब होता है, मगर उससे पहले जरा ताल तो सुन लीजिएगा।

तो श्रोताओं, ताल का हमारे जीवन में महत्व ऐसे है कि ताल को संगीत में जो चक्र होता है उसको समय नापने का सूचक कहा जाता है। तो आप इसको एक छोटे से घड़ी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि घड़ी की टिक टिक करती आवाज पर एक बेहद निश्चित ताल पर चलती है, तभी तो हम अपनी घड़ियों से बिल्कुल सही समय देख सकते हैं। इसके विपरीत जो घड़ी धीमे चलती है वो खराब मानी जाती है या उसका सेल बदलवाया जाता है। चलिए एक और उदाहरण के माध्यम से मैं आपको एक बात स्पष्ट करती हूँ। आपने मार्च पास्ट तो देखा और सुना जरूर होगा। जो सेना के जवान मार्च पास्ट करते हुए देखते हैं तो वो इतना सटीक होता है कि उसको देखकर हम वाह वाह कह उठते हैं, क्योंकि उसकी सटीकता व उसका समय का समन्वय ही ऐसा होता है जो उसको एक्यूरेसी से नहीं करता है तो वह बाहर चला जाता है या उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सुनिए मार्च पास्ट।

जी हाँ, तो आपको मार्च पास की ताल सुनकर निश्चित तौर पर आपको एक साथ ताल में उठते पांव और हाथ याद आ गए होंगे। और अब हम यहाँ आते हैं संगीत की ताल पर। तो श्रोताओं, संगीत में ताल को प्राण कहा गया है। जिस प्रकार हमारे जीवन में जब तक प्राण रहते हैं हम जिंदा रहते हैं, उसी प्रकार जब तक संगीत में ताल है तो संगीत में प्राण होते हैं। बिना ताल के संगीत को मृत माना जाता है, यानी कि वह निर्जीव है। ऐसा संगीत देखने सुनने योग्य नहीं होता है और ऐसे संगीत से मनुष्य को आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो चलिए आपको सुनवाती हूँ एक कहरवा की लगी बहुत खूबसूरत तबले पर। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन की प्रस्तुति, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

दोस्तों, आपको यहाँ ये स्पष्ट हो गया होगा कि ताल की उत्पत्ति गति से होती है। ताल शब्द की उत्पत्ति ताल धातु से हुई है और तल शब्द का अर्थ है नीचे रहने वाला या धारण करने वाला। तो जैसे पृथ्वी अपने ऊपर सब कुछ धारण किए हुए है और उसी प्रकार मानव अपने तलवे पर पूरा शरीर धारण किए हुए है, उसी प्रकार ताल संगीत में गायन, वादन एवं नृत्य को अपने ऊपर धारण किए हुए है। मैं समझती हूँ, शायद आपको कोई चीज समझ में आ रही होगी। जिस तरह से तलवे पर हमारा पूरी बॉडी रहती है, उसी तरीके से जो ताल होती है तो गायन, वादन, नृत्य तीनों ही उस पर निर्धारित होते हैं। उसी प्रकार गायन, वादन, नृत्य को अपने ऊपर धारण किए हुए है। भारत में संगीत विषय पर प्राप्त प्राचीनतम ग्रंथ के रचयिता भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल नापने के साधन को ताल कहते हैं, तथा संगीत रत्नाकर में ताल के विषय में कहा गया है कि जिसमें गीत, वाद्य और नृत्य प्रतिष्ठित होते हैं वह ही ताल ही होती है। तो चलिए सुनवाते हैं आपको यह सब कुछ मगर संक्षिप्त में। अब मैं आपको सुनवाती हूँ डांस बेस तबला यानी कि ताल। और श्रोताओं, जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, इसमें मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि जो पंडित बिरजू महाराज जी हैं, उनको मैंने सामने से स्टेज पे कई बार डांस करते उनका परफॉर्मेंस देखा है। तो आपको उनका एक छोटा सा परफॉर्मेंस मैं आपको सुनवाती हूँ।

0: तघागन तगट घिन तघन तगट तघागन तगट तेट घिन तगट घिन दा। अगर आप मुझे समझ पाते ना, इन बोलों को समझ पाते, तो आज बड़ा बड़ा इनाम दे देते आप। तेट घिन तगट घिन दा, तेट घिन तगट घिन दा, तेट घिन तगट दा, दिन दिन दा।
1: वेलकम बैक टू द शो। तो श्रोताओं, अब मैं यहाँ आती हूँ हम सभी के जीवन की रोजमर्रा की बातों पर। तो जब हम अपनी कार्यशैली को समय अनुसार विभाजित करते हैं तो हम हमेशा सफल रहते हैं, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, वहाँ असफलता निश्चित तौर पर ही होती है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि समय का महत्व कितना है, चाहे जब हम अपना घर संभालते हैं, चाहे अपना ऑफिस संभाले, या कुछ और भी हम काम करते हैं या करवाते हैं, तो टाइम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो नृत्य में ताल का महत्व अत्यधिक होता है, क्योंकि नृत्यकार के घुंघरू की आवाज़ तबले पर ताल के अनुसार ही होनी चाहिए, और अगर वो इसे मिसमैच करता है तो सारी परफॉर्मेंस ही खराब हो जाती है। अब मैं आपको दूसरी ओर एक और ताल सुनवाती हूँ कि कैसे टाइम को एकाकार करते हैं जब डांस करते हैं। तो साथियों, यहाँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि घड़ी के उदाहरण से और हमारे भारतीय संगीत के हाथ से ताली देकर ही ताल को दर्शाया जाता है, और आपने अपने घरों में भजन व कीर्तन करते समय देखा अवश्य होगा कि महिलाएं किस तरह से हाथ की ताली देकर भजन गाती हैं। तो सुनिए

वेलकम बैक टू द शो। तो आपने इन तालों का, मैं समझती हूँ, और गानों का भरपूर आनंद लिया होगा, और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। पर जब हम किसी ताल को बजाते हैं तो दोस्तों उसके पीछे होता है कलाकार का ना जाने कितने वर्षों का रियाज, यानी कि प्रैक्टिस, तभी यह सौंदर्यपूर्ण तरीके से हम इसका प्रयोग कर पाते हैं। और एक विशेष बात यह है कि संगीत में संयम बहुत ही जरूरी होता है, यानी कि सहनशीलता बहुत जरूरी होती है, संयम बहुत जरूरी होता है, और ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों आपको शायद सुनने में दोनों चीज़ें एक सी लग रही होंगी, मगर ये हैं अलग अलग। संयम अलग होता है और सहनशीलता अलग होती है। तो अब मैं आपको यहाँ ताल के साथ साथ आपके जीवन के साथ में आपको जोड़ती हूँ, किस प्रकार जब आप अपने परिवार में सहनशीलता को बनाए रखते हैं और संयम से, यानी कि नियंत्रण से हम चलते हैं, तो परफेक्ट परिवार को बना पाते हैं और परफेक्ट दे पाते हैं, और साथ में मिलती है हमें संयम को व परिवार को खुशी। तो ताल से, यानी कि संगीत से, हमें कितनी बड़ी प्राप्ति होती है, इस बात पर आप गौर जरूर करिएगा। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ताल एक टाइमिंग होता है, तो टाइमिंग किस तरीके से होता है मैं आपको बता देती हूँ। वो इस तरीके से होता है कि मैं, चलिए आपको बोल के बताती हूँ, जैसे एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक एक दो, एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो दोस्तों इसमें टाइम तो एक ही है, लेकिन उसमें एक भी आया, दो भी आया, तीन भी आया और चार भी आया, और सारे के सारे बिल्कुल एक्यूरेट आए हैं। तो चलिए मैं आपको तीन ताल का एक कायदा बोलकर बताती हूँ। उसमें पहले सिंगल और उसके बाद डबल। धागे ना धागे थी ना, धागे ना धागे थी ना गे न धा तिरकिट, धागे ना धागे थी न किन ता तिरकिट, ताके न ताके धिना, धागे ना धागे धिन गिन धा तिरकिट, धागे धागे धिन गिन ता तिरकिट, धागे ना धागे थी ना, धागे ना धागे थी न गिन धा तिरकिट, धागे ना धागे धिन गिन ता तिरकिट, ताके न ताके थी ना, धागे ना धागे धिन गिन धा तिरकिट, धागे ना धागे धिन गिन। तो इसमें आपने सुना सिंगल डबल, तो आपने सुना चीज एक थी, टाइमिंग वो चल रहा था, लेकिन उसमें चार शब्द भी आए, आठ शब्द भी आए और सोलह भी आ गए, यानी कि एक ही उसमें इतनी सारी चीजें। तो इसको कहते हैं ताल में किस तरीके से टाइमिंग हमारा होता है। साथ ही साथ एक मैं आपको और भी बात बताती चलूं कि इसमें जैसे बताया कि संगीत का एकाग्रता का बहुत महत्व होता है। आपने सुना भी होगा कि एकाग्रता का सबसे अच्छा माध्यम संगीत होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन शास्त्रीय संगीत की जो कि हमारी फाउंडेशन है, तो मैं सुनवाती हूँ विलंबित ताल, यानी कि धीमे धीमे पेशेंस वाला जो तबला होता है, तो तबले का पेशकार। तो चलिए आप सुनिए और इसका आनंद उठाइए।

जो धीमे धीमे बजता हुआ तबला सुना, जिसकी स्टार्टिंग होती है, इसको हम पेशकार बोलते हैं। तो आपके मेरे कहे गए जो ऊपर के शब्द थे, मैंने बोला था सहनशीलता और संयम क्या होता है, तो इसमें आपको अवश्य ही प्रतीत हो जाएंगे। साथ ही अगर एकाग्रता ना होती तो संकेत भी ना होता। उसमें आपको एक और बहुत खूबसूरत चीज सुनवाती हूँ। रेडियो मधुबन की प्रस्तुति आप सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

तो श्रोता हूँ, आपने अभी बहुत तेज और बीच में धीमे वाला तबला बजता हुआ सुना, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि पहले तो बहुत धीरज से हमें धीमा ही तबला बजाना होता है, यानी कि फाउंडेशन मजबूत करनी होती है, उसके बाद में हम तेज आसानी से बजा सकते हैं। क्योंकि मैं भी तबले की स्टूडेंट हूँ, तो स्टार्टिंग में जो कोई भी आता है पहले उसको बहुत धीमे धीमे पेशेंस के साथ उस चीज़ को पक्का करना होता है। बाद में जब हमारी फाउंडेशन मजबूत हो जाती है तो आराम से हम इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं, उसमें फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर हमारी फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी, फाउंडेशन लड़खड़ा जाएगी, तो हम एक अच्छे आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते। इसीलिए मैंने आपको इन शब्दों का यूज़ कर जो बताया, सहनशीलता और धीरज और संयम, जब अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। गुरु किस तरीके से हमें बता रहे हैं, उनके बताए हिसाब से जब हम बजाते हैं तो नेचुरली हर स्टूडेंट जो होता है बहुत सफल होता है। तो चलिए आगे मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि जीवन में कोई भी जब हम काम करेंगे उसके लिए धीरज तो आवश्यकता तो होती है, क्योंकि आपने सुना होगा हरी मेक्स वरी। लेकिन जब हम किसी को धीरज से काम करना सीख जाते हैं, तो जैसे आपने तबले में बजता सुना, तो फिर जल्दी बजाना कोई मुश्किल नहीं होता है। तो आपको एक बात और बताऊँ, संगीत के जीवन में बहुत गहरी सबक भी सिखाता है। हमें ज़रूरत है उसको ग्रहण करने की। ताल द्वारा संगीत का मूल्यांकन, जब ताल संगीत के मूल्यांकन करने का एक मुख्य साधन होता है। संगीत में एक बार को बेसुरा हो सकता है लेकिन बेताला नहीं। आपने भी जैसे मान लीजिए शास्त्रीय संगीत नहीं सुना, लेकिन आपने भजन सुने होंगे, या आपने लोक संगीत सुने होंगे, या आपने ढोलक पे जैसे गाते बजाते हैं सुना होगा, और कहीं कोई जो बजाने वाला है वो बेताला हो जाए तो मज़ा नहीं आता है बिल्कुल भी, कहते हैं तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो बजाने वाला बेसुरा नहीं होगा। स्वर से थोड़ा सा भी हटने पर यदि ताल और लय संगीत में समन्वय स्थापित हो जाता है तो स्वर की कमी छिप जाती है। यानी कि जो ताल देने वाला अगर एक्सपर्ट होता है और जो सिंगिंग कर रहा है, अगर थोड़ा सा वाके पीछे होता है लेकिन वो इतना एक्सपर्ट होता है बजाने वाला कि उसमें बिल्कुल एक ही कार लगता है कि कुछ गलती नहीं हुई, तो बहुत अच्छा माना जाता है कलाकार। तो ताल की प्रतिभा के बल पर ही संगीतकार के संगीत का मूल्यांकन हो पाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि यदि अच्छे संगीतकार को यदि अच्छे ताल वादक की संगति प्राप्त नहीं होती है तो उसका प्रोग्राम असफल हो जाता है।

नृत्य के कलात्मक मूल्य की अनुभूति ताल के बोलों के निकास से ही संभव होती है। तो श्रोताओं, आज आपने शास्त्रीय संगीत में ताल के महत्व को सुना, साथ ही साथ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है ये भी जाना। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है तो आप हमें फोन करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए

हाय फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण मंगल, शूद्र का चरना, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

सुनेगा ये जहां कहेंगे जो हम सुनेगा।

समय सुबह का तब बनता है एकदम खास जब आती है उषा आशियाना के साथ। नमस्कार जी आप सभी को, राम राम जी, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणिसा। अगर तिल्ली की खराबी है तो क्या करेंगे, जरा सोचिए। उपाय तो जरूर बताएंगे लेकिन आप भी कुछ सोचिएगा। और जी हाँ सेजल, आज भी आपको एप्पल की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको सुंदर तरीके से सजा करके रखेंगे कि एकदम इच्छा हो जाएगी खाने की, तो बहुत ही क्रिएटिव तरीका सिखाएगी सेजल। और जी हाँ मैं भी आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और आज हम कैसे अपने जीवन में क्रिएटिव रहेंगे, कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहेंगे तो मन हमारा खुश भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तो इस विषय पर ही हम बातचीत भी करेंगे। और सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर प्यार और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। जरा विचार करिएगा कि ऐसा क्यों। प्रश्न तो आज का बड़ा ही सुंदर और सरल है, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: पुनः आप सभी का आशियाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर स्नेह प्यार सब कुछ प्राप्त होता है। सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर सत्कार प्यार स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार एक राजा थे, वन विहार को निकले थे। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी, उसमें जल भरा घड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांग लाने को कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा भी बड़ा अकड़ू था, उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तो तुझे नहीं मिलेगा। सिपाही निराश होकर लौट पड़ा। इसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने पास में जाकर कहा, अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ पड़ा, उसने कहा, पहले वाले का यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बना करके दबाव डालता है, जा जा, यहां से पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर वृद्ध जन को सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी।

0: इससे सभी जगह आदर, सत्कार, प्यार, स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
1: घरेलू नुस्खों का खजाना आशियाना,
2: रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
0: आइए अब आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दूंगी कि तिल्ली की खराबी हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए और सेंधा नमक लेना है 1/2 ग्राम, और फिर आप इनको आप मिला दीजिए। दोनों समय भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लीजिएगा, इससे तिल्ली की खराबी ठीक हो जाएगी, प्लीहा की विकृति दूर होगी। अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए, सेंधा नमक 1/2 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप फाकी लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा दोनों ही समय, सुबह और शाम को, ठीक है, भोजन के बाद। जब हम दोपहर का भोजन करते हैं उसके बाद और शाम का भोजन करते हैं उसके बाद आप ले लीजिए गर्म पानी के साथ, तो प्लीहा की विकृति दूर होगी। और भी सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ कि तिल्ली अथवा जिगर, जिसको यकृत भी कहते हैं, तिल्ली माने प्लीहा, दोनों अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप पुराना गुड़ 1.5 ग्राम और बड़ी पीली हरड़ के छिलके का चूर्ण, दोनों ही बराबर वजन मिला करके एक गोली इसकी बनाइए, और ऐसी गोली दिन में 2 बार सुबह सुबह शाम को हल्के गर्म पानी के साथ 1 महीने तक लेना है। इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे ना तो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तिल्ली और जिगर, जिसको हम यकृत और प्लीहा कहते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, शरीर हमारा ऐसा है कि कोई भी ऐसी वैसी समस्या शरीर सहन ही नहीं कर पाता है, कुछ अंदर गड़बड़ होने लगती है, वो हमसे सहन नहीं होता है। तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आप घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हो कि अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही बड़ा हुआ हो या बढ़ने की शिकायत है, तो आप पुराना गुड़ लीजिएगा 1.5 ग्राम और बड़ी पीली वाली हरड़, इसके छिलके का चूर्ण बरोबर मात्रा में लेना है, गुड़ और ये चूर्ण, इन दोनों को मिला करके आप गोली बनाइए, और फिर गोली बना करके 2 बार आपको लेना है सुबह और शाम को। और ये गोली लेने के बाद हल्का गर्म पानी, 9 सेका पानी आप पीजिएगा, 1 महीने तक लेंगे, तो इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके 3 दिन के प्रयोग से ही अम्ल पित्त का भी नाश हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, पेट दर्द में अजवाइन का चूर्ण 6 भाग और काला नमक पिसा हुआ 1 भाग लीजिएगा, और इसमें से 2 ग्राम मतलब 1/2 चम्मच गर्म जल से लीजिए, इससे पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों को अगर देना हो तो आधी मात्रा दीजिए, इससे क्या है अपारा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिट जाती है। तो फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप कि अजवाइन का चूर्ण लीजिएगा 6 भाग और काला नमक पीसा हुआ लेना है आपको 1 भाग, फिर दोनों को मतलब 1/2 चम्मच आप ये ले सकते हैं। पहले आपको मात्रा तो बताई दी है, अब आप इसकी फाकी लीजिए, ऊपर से गर्म जल पी लीजिएगा, इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अगर बच्चों के पेट की तकलीफ है तो उनको आधी मात्रा दीजिए, ठीक है। जैसे उम्र आपको बताना चाहूंगी, बच्चे 10 साल के, 11 साल के, ऐसे बच्चों के पेट में तकलीफ है तो आप आधी मात्रा दीजिए, इससे भी कम जैसे 4-5 साल के बच्चों के तकलीफ है तो आधी से भी आधी मात्रा दीजिए। देखिए, इससे अपारा भी ठीक होगा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिटेगी। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और चाहो तो आजमा सकते हो। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, लेकिन घरेलू नुस्खे कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों ही करिएगा, ठीक हो जाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसके दो जवाब है, दो प्रश्न मिक्स है।

दोनों ही जवाब आपको देना है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, कहीं भी जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो,
2: आपको कर रहा हूँ मैं। एक तो आपने वो प्रश्न पूछा था ना कि 5 जून को क्या क्या मनाते हैं।
1: हाँ जी,
2: तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
1: अच्छा,
2: विश्व पर्यावरण दिवस
1: जी,
2: यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
1: जी।
2: और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को।
1: अच्छा ठीक है, तो आप इंतजार करिएगा, आपके प्रश्न का जो आपने जवाब सुनाया है हम जरूर उसको सुनाएंगे बहुत ही जल्दी कार्यक्रम के अंत में। ठीक है जी, जी शुक्रिया। तो ये थे मुरलीधर जी माउंट आबू ढूंढाई से, और प्रश्न का जवाब देने की इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। आप भी जरूर कोशिश करिएगा। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर और सरल है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। ठीक है, और आइए अब आशियाना के किचन में पधारिए, आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। सेजल जिसने 10th का एग्जाम दिया है, अब 11th में आई है और ये आबू रोड की रहने वाली है। ये कहते ना बच्चे बड़े ही क्रिएटिव होते, कुछ न कुछ तो क्रिएटिव करते ही रहते हैं। और सचमुच में हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना, उनका फल फ्रूट रखोगे ना तो नहीं खाएंगे। हाँ, उनको आप पैकेट ला करके दे दोगे, कुरकुरे है इस तरह की चीजें, वो खाने के लिए लालायित रहेंगे लेकिन फल फ्रूट से दूर भागेंगे। लेकिन वो ही फल फ्रूट को अगर हम क्रिएटिव तरीके से प्लेट में सजा करके रख देते हैं अपने टी टेबल पर या अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर जहाँ पर भी आप भोजन करते हो, भोजन कक्ष में जहाँ बच्चों की नज़र तुरंत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर आप इस तरह क्रिएटिव तरीके से रखेंगे तो बच्चे अपने आप खाने के लिए कहेंगे, मांगेंगे जिद करके कि मुझे ये खाना है, ये खाना है। और क्रिएटिव तरीके से जो रखी हुई चीज है तो क्यों नहीं, बच्चों का तो क्या, बड़ों का भी दिल करता है। तो सेजल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताएगी कि एप्पल को किस क्रिएटिव तरीके से हम काट करके अपने मेज पर रखेंगे कि बच्चे खाने के लिए मचलेंगे। है सेजल, स्वागत रेडियो मधुबन में, स्वागत।
3: थैंक यू।
1: अच्छा, तो एप्पल को कैसे आप काटोगी, किस क्रिएटिव तरीके से काट करके आप प्लेट में सजाओगी, बताओगे आप हमारे श्रोता बंधु को।
3: जी, जब हम कोई एप्पल है ना, तो जैसे कि उसको नीचे का भाग तो हम रहने देंगे, उसके 3 भाग कर लेंगे और बीच का रहने देंगे उसे, मतलब कि जैसे कि जो काट लेंगे वो जो...
1: अच्छा, एक एप्पल लेनी है, साइज कौन सी लेनी है, बड़ी छोटी मीडियम,
3: कोई सी भी
1: साइज। फिर उसको क्या करना है, पहले तो धुलाई करनी है, स्वच्छ कपड़े से पोंछना है। फिर आपने कहा है कि 3 भाग में उसको काटनी है, तो ऊपर के भाग जिधर डंठल होता है उधर से काटनी है या नीचे के भाग से?
3: नीचे का भाग रहने देना है और डंठल की तरफ से काटना है।
1: अच्छा, तो ये कट कौन सा लगाना है, खड़ा कट लगाना है या आड़ा?
3: आड़ा,
1: आड़ा कट। अच्छा, फिर
3: उसके 3 भाग मतलब कि जो है ना उसको भाग करके उसके ऊपर वापस रख के उसमें जो लकड़ी की जो उसको ऐसे ऊपर की तरफ करके और उस पे लकड़ी लगा दो।
1: अच्छा, तो 3 कट लगाने हैं एप्पल के ऊपर, 3 आड़ा कट, और फिर नीचे से भी आड़ा कट ही लगाना है।
3: हाँ,
1: नीचे से भी आड़ा कट लगाना है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, ऊपर से भी आड़ा कट लगाना है और तीनों ही भाग को काट देना है, नीचे जुड़ा रहे ऊपर भी जुड़ा रहे। ठीक है, और बीच में से उन फाकों को पतली परत से काटना है, ऐसा नहीं कि पूरी फाक काट रहे आप, पूरी पूरी फाक अगर आप काटेंगे तो एप्पल के 2-3 टुकड़े हो जाएंगे, हमें टुकड़े नहीं करना है। ठीक है, 3 भाग से जैसे हम आलू की स्लाइस करते हैं ना, ऐसे एप्पल के थोड़ी मोटी वाली स्लाइस निकालनी है ना सेजल।
3: हाँ।
1: और फिर क्या करना है इनको,
3: फिर इनको डिजाइन में आप जमा दो।
1: अच्छा, तो सेजल ने बताया है कि जैसे हमने 3 स्लाइस तीनों ही भाग से काटी है, ठीक है, इनकी फिर आपको फाके करनी है, 3-3 फाके करके अब आपको जैसे नीचे का भाग आपका जगह हो चुकी है यहाँ पर, तो आप एक फाक रखिए, फिर उसको थोड़ा सा बरोबर मात्रा में न रख करके उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए, दूसरी फाँक, उसके ऊपर तीसरी फाँक रखिए थोड़ी सी और आगे, तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप ये तीनों ही फाँके तीनों ही तरफ लगाइएगा, और एक लकड़ी की स्टिक आती है जिससे हम फ्रूट भी खाते हैं तो उसका मुँह तीखा होता है, उसको आप डाल दीजिए ताकि ये फाँके अलग नहीं पड़े। ठीक है, तीनों ही फाँकों को, तीन भाग जो काटे हैं तीनों ही तरफ फाँके करके इन स्लाइस की और सजाइएगा और स्टिक लगा दीजिएगा। तो ये क्या है कि स्टिक लगाने से आपकी ये फाँके गिरेगी नहीं, और फिर इसको आप प्लेट में रख दीजिए, और फिर आप जहाँ भी आप भोजन करते हैं, जहाँ पर भी आप रखना पसंद करते हैं कि आपके बच्चों की नज़र पड़े, ऐसी जगह पर रखिए। तो बच्चे क्या, जैसे ही किचन में आएंगे नज़र पड़ेगी कि ये क्या चीज़ है मम्मी, ये तो हमको खानी है, एकदम बच्चे खुद मांगेंगे। तो माताएं तो बड़ी खुश हो जाएगी ना, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा फल फ्रूट खाए ताकि हेल्दी रहे, है ना। तो अब नहीं खाते, अक्सर बच्चों के नखरे होते हैं, वो ऐसी चटपटी चीज़ें खा लेंगे लेकिन फ्रूट से दूर भागते हैं। तो जो भी बच्चे दूर भागते हैं फ्रूट से, उनको आप इस तरीके से खिलाएंगे तो ज़रूर बच्चे खुद मांगेंगे और बड़े चाव से बड़े प्यार से खाएंगे। ठीक है, तो एप्पल काटना तो आपने सीख लिया ना। अब देखिए, ये क्या वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको काट करके बता दूं, लेकिन अभी सेजल ने क्या है प्रैक्टिकल में काटा है और काट करके मुझे बता रहे हैं कि दीदी ऐसे ऐसे किया जाता है, और आपके सामने बोल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये एप्पल, ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा। अगर कहीं कुछ आप भूल जाए या नहीं सही तरीके से हो रहा है तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, नंबर तो आप जानते ही हो, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स करिएगा। और एप्पल काटने का तरीका में कुछ भी थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेजल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा क्रिएटिव तरीका सिखाया है एप्पल को कैसे काटा जाता है।
3: थैंक्स।
1: आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बड़ा ही सरल है, ध्यान से सुनेंगे कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। ठीक है, दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक गीत सुनने के बाद हम पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: पुणे आशियाना में आप सभी का स्वागत है। महेश भाई शर्मा आबू रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हो आप?
1: नमस्कार जी, नमस्कार, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है जी।
0: जी जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ बोलो, क्या प्रश्न है जी?
0: जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है?
1: अच्छा, 5 जून को ये आ रहा है मातृ दिवस, मदर डे, ये तो नहीं है?
0: वो तो आपको जवाब देना, अभी हम नहीं बताएंगे।
1: अच्छा मदर, ठीक है।
0: अच्छा
1: वाह,
0: दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। पृथ्वी दिवस कब है? हाँ जी,
1: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, पृथ्वी दिवस तो यार जानते हो सर आप मेरे भी।
0: कोई बात नहीं, आप फिर से फोन कॉल्स कर सकते हो, ठीक है?
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका
1: जी।
0: तो आशियाना के किचन में आप सभी हो और सेजल ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एप्पल को काटना सिखाया, जिसको हम सेब भी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है। अब आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि अमरुद को कैसे काटा जाता है। लेकिन हमारे पहले श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो उनसे जरूर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: फिरोज भाई पालमपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्कार, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे। अभी मेरे पास बहन जी रेडियो नहीं है, तो आज के कोई प्रश्न हो तो बोलो, बताओ।
0: हाँ जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और मतलब पृथ्वी दिवस कब है?
2: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी, 5 जून को कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं हम सभी और पृथ्वी दिवस कब है?
2: अच्छा जी, तो पृथ्वी दिवस है ये अपना 22 अप्रैल
0: जी। और दूसरा जवाब?
2: और दूसरा सवाल है, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसमें क्या वो 5 तत्वों का जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाने के लिए, जंगल है, हवा है, पानी है, उसका वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए
0: जी।
2: और दूसरा ये 22 अप्रैल को जो पृथ्वी पर जो ये हो रहा है तो उसका जो
0: ये हम बात करेंगे फिरोज भाई, विस्तार में हम बात करेंगे। आज तो प्रश्न का जवाब ही दीजिएगा, जब भी होगा उस दिन हम बात करेंगे, है ना?
2: जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अब आप सभी आशियाना के किचन में है और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे हम काटेंगे कि बच्चे फिर से नहीं दोहराऊंगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम अच्छे क्रिएटिव तरीके से फल फ्रूट को काट के रखते हैं तो बच्चे अपने आप वो मन से मांगते हैं और खा भी लेते हैं। तो अमरुद की धुलाई करिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिएगा। अगर थोड़ा सा बड़े साइज का है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी साइज है आप लीजिएगा। और हमारे श्रोता बंधु से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि विषय को जो हम सिखा रहे हैं उसको पूरा करके। पर अभी चलिए उठा लेते हैं फोन। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
0: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी मित्रों की कृपा है। और आज मधुबन सुन रहा था, बहुत ही अच्छे नुस्खे भी बताए और एप्पल भी किस तरह काट के रखना चाहिए वो भी सिखाया। तो बच्चों को भी कोई भी नहीं खा सकता है, वो भी अपनी ओर आकर एप्पल को देख कर आकर्षित होगा, खाएगा।
0: जी जी दयाराम जी, आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: बिल्कुल मैम।
0: हाँ जी, प्रश्न तो आपने सुना ही है या दोहराऊं?
3: मैंने सुना है दीदी
0: जी।
3: आज के प्रश्न का सही जवाब है, जो हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है तो प्रकृति के प्रति सभी को जागरूक करना है।
0: जी जी जी, हम उस दिन जरूर बात करेंगे, है ना? जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होगा उस दिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है? बहुत सारे विस्तार में हम बातें करेंगे। बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े और आपने प्रश्न का जवाब देने की काफी अच्छी कोशिश की। तो बहुत ही देखिए सुंदर तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे काटेंगे, अमरुद जिसको हम राजस्थान में जामफल भी कहते हैं, ठीक है। आप जो भी साइज है लीजिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर ऊपर जो थोड़ा सा डंठल ऐसा होता है ना उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अब आप नीचे की साइड में से तो चिपका रखना है, ऐसे बिल्कुल फांके अलग नहीं पड़नी चाहिए और सभी तरफ से फांके इस आकार से काटिएगा कि जैसे कि गुलाब का फूल दिखाई दे ऐसा ही। तो बीच में जो आप काटेंगे ना, तो बीच में से तो आप वो कटिंग रखिएगा। और अब आपको क्या करना है, ऐसे ही तीन कट आपको लगाना है, आड़ा कट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे तक, लेकिन नीचे का डंठल अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का जो भाग है उससे अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का भाग चिपका रहे, ऊपर आप वो डंठल का भाग काट करके फिर बीच में थोड़ा सा रखना है, साइड में से मोटी मोटी स्लाइस तीनों तरफ से आपको कट करनी है। कट करने के बाद भी पूरे अलग नहीं करनी है, उसके बाद उसके लंबे लंबे चीरे लगाने हैं, तो सब तरफ से ये फांके हो जाएगी और बीच में वो जो डंठल का भाग काटा है वो डंडी की तरह दिखाई देगा, पतला पतला डंडी दिखाई देगा और नीचे से चिपका रहेगा। तो इस तरह अमरूद को काट करके भी अगर आप अपनी मेज पर रखते हैं, टी टेबल पर रखते हैं या डाइनिंग टेबल पर रखते हैं एक प्लेट के अंदर, तो भी बच्चे आकर्षित होंगे, खुद ब खुद मांगेंगे कि ये क्या चीज़ है मम्मा, ये हमें खाना है। तो बच्चे बड़े ही उत्साह से मांगेंगे और हर एक की इच्छा रहती है कि बच्चे इस तरह के फ्रूट खाए। तो इस तरह आप काट करके रख सकते हैं। देखिए हम सीधे सिंपल तरीके से सभी काटते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव तरीका भी आजमाते हैं तो कुछ नवीनता भी आ जाती है और बच्चे बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनके डिब्बे में इस तरह आप काट करके रख दीजिए टिफिन बॉक्स में, तो वो खोलेंगे तो अपने आप ही इच्छा हो जाएगी कि हम खा ले, वे है ना। तो ये अमरूद की कटिंग हो गई। अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ, पापड़, जो जग जाहिर है भोजन के साथ अक्सर लोग पापड़ लेते ही हैं, पापड़ को हम सेकते हैं, ठीक है, सेकते हैं, उस समय वो गरम गरम होता है तो एकदम नरम होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो कड़क हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पापड़ को सेकने के बाद उसका आकार समोसा की तरह कर दीजिए, फिर आप रखिए प्लेट में, कोई मेहमान भी आ गए या बच्चे हैं या आप खाना चाहते जो भी है घर के अन्य परिवार के सदस्य हैं, सभी को आप प्लेट में जो पापड़ पूरा ही सेक करके ऐसे खुला खुला रखते हैं, इसके जगह आप समोसे का आकार दे करके फिर आप रखिए, फिर ये ठंडा होने के बाद आकार आप नहीं दे पाओगे और ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तो टूटेगा नहीं, इसलिए जैसे ही सेका तुरंत ही गरम गरम को आप जो भी आकार चाहे दे सकते हो और फिर आप भोजन में पिरसिए पापड़ को, तो इस तरह भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह ये क्या चीज है। एक सेकंड के लिए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज है, कहीं समोसा तो नहीं लेकिन समोसा तो आप सभी जानते हो कि समोसा का थोड़ा सा कलर अलग होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक नई चीज समझेंगे कि ये क्या चीज है, फिर समझ जाएंगे कि अच्छा पापड़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि हमको भाई रोज भोजन कर रहे हैं और चलेगा, चलाना नहीं है, भोजन को आप रोज ही अलग अलग तरीके से रखिएगा और बड़े प्यार से बड़े ही भाव से रखिएगा कि खाने वाले की अपने आप इच्छा उत्पन्न हो और बड़े प्यार से वो भी खाए। तो ये पापड़ भी हो गया है और मसाला पापड़ भी आप बना सकते हो। मसाला पापड़ के लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे पापड़ आपने सेक लिया, ठीक है, सेक करके इसको एक कोन का आकार दे दीजिए, जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसे कोन का आकार आपको देना है। फिर इस आकार में आप थोड़े से टमाटर की कटिंग कर लीजिए, पत्ता गोभी की बारीक बारीक कद्दूकस कर लीजिए या कटिंग कर लीजिए, और हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए, अनार के दाने भी, इन सभी को थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप थोड़ा जलजीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक और ये सभी, मतलब काली मिर्च पाउडर भी आप चाहो तो डाल करके मिक्स करके आप पापड़ के अंदर भर करके, जैसे कोन बनाते हैं उसमें आइसक्रीम होती ना, ऐसे आप इसमें भर के भी प्लेट में दे सकते हो। तो देखिए सलाद भी हो जाएगा साथ में और पापड़ भी हम भोजन में रखते हैं तो पापड़ भी हो जाएगा। तो हो गए ना एक पंथ दो काज, कि पापड़ भी है, सलाद भी है और खाने वाले बड़े प्यार से खाएंगे कि वाह क्या खूब सजा के रखा है। तो कुछ जीवन में क्रिएटिव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पापड़, अमरूद, एप्पल, सबको क्रिएटिव तरीके से तो सजा दिया है। अब भोग तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, भोग ज़रूर लगाइएगा, सात्विक चीज़ों का भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि देखिए भोग लगाते समय हमारी भावनाएं एकदम निश्चल हो जाती है ना, बहुत ही भाव पूर्ण हो जाती है, बड़े ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उमड़ती है। तो वो वाइब्रेशंस भी भोजन में जाते हैं, जो भी हम बना रहे हैं उसमें जाते हैं, और फिर वो जो भी परिवार के सदस्य स्वीकार करते हैं तो उनमें भी वो भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भोजन हमेशा प्यार से परोसना चाहिए और भोजन को प्यार से करना चाहिए। भोजन करते समय अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ भी खाते पीते हैं तो मोबाइल देखते हुए खाते हैं, भले मुंह का कवा खत्म हो गया है, दूसरा कवा लेना है, लेकिन नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए कितने ही जने क्या भोजन के समय मोबाइल चलाते हैं तो आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भोजन और भजन हमेशा एकाग्रता में करना है, हमेशा एकांत में करना है। एकांत बोले तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों से हट करके आप करो, नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ करिए, प्यार भी बढ़ेगा, स्नेह भी बढ़ेगा, और हो सके तो उस समय बातें कम करिएगा, भोजन पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी करिएगा कि परमात्मा सभी को भूखा उठाता है लेकिन किसी को सुलाता नहीं है। तो अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ जब हम भोजन करते हैं तो सचमुच में वो भोजन एकदम महाप्रसाद बन जाता है और वो हमारे मन बुद्धि पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर करता है। ठीक है, तो ये तो आपने क्रिएटिव तरीका सीखा है। अब हम गीत सुनकर के पुनः आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रश्न में फिर से दोहरा रही हूँ, बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे भाई हमारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी का सही है। और मान लीजिए सही है तो भी क्या बात है, आपका भी तो नॉलेज काम आना चाहिए ना। तो आप भी जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जीवन में नवीनता लाते रहिए, जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। क्या कहेंगे आप? हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर और सरल है, विषय भी बहुत अच्छा है, जरूर आप जुड़िएगा। आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है? 2 प्रश्न है, 2 जवाब आपको देना है, क्योंकि सरल प्रश्न है। तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा, और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। दोनों में ही आप जरूर जुड़िएगा, जवाब भी दीजिएगा, अपने विचार भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय को आप स्पष्ट कर सकते हो कि जीवन में नवीनता लाना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी पता नहीं क्या क्या विषय लेकर के आ जाती है, लेकिन नवीनता तो देख के हर कोई चाहता है ना। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं या कितने भी फैसिलिटी में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों में ही हम ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। फिर ऐसा लगता है कि अरे क्या रोज़ ये का ये, कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। फिर लोग प्लान बनाते हैं, चलो थोड़ा सा घूम आए या फिर चलो कुछ नया करें, कुछ बनाए, जैसे कि भोजन का ही देख लेते हैं, ठीक है। रोज़ आपको सुबह पोहे खिला दिया जाए नाश्ते में, दिन के खाने में आपको रोटी सब्जी और शाम को कड़ी खिचड़ी, रोज़ यही, कोई चेंज नहीं। 4 दिन में आप लोग थक जाएंगे और आप ज़रूर कहेंगे कि अरे ये क्या, रोज़ पोहे, रोज़ रोटी सब्जी और रोज़ कड़ी खिचड़ी, ना भाई ना, कुछ तो बनाओ, है ना। सभी के साथ होता है, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही है, हर कोई। मैं भी होंगी तो मैं भी 4 दिन के बाद 5वें दिन परिवर्तन जरूर चाहूंगी कि नहीं, मुझे भी कुछ अलग बना करके खाना है। चाहे कोई बना के दे या नहीं दे, स्वयं ही बनाने लग पड़ते हैं फिर। तो जीवन में नवीनता क्यों जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? क्या आप नवीनता नहीं चाहते हैं? नवीनता चाहते हैं तो जरूर जुड़िएगा। भाई फोन कॉल से लगाना है आपको, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, नंबर लगा दीजिए 9414151415 पर कि आप किस तरह की नवीनता जीवन में लाते हैं। देखिए कपड़े का भी देख लीजिए, हम रोज ही आपको कोई कह दे कि आपको यही ड्रेस पहननी है 2 दिन में, ठीक है, आज पहननी है, कल धुलाई करनी है, कल दूसरी ड्रेस, फिर परसों वापिस पहननी है, 1 सप्ताह तो आप चला लेंगे। 1 सप्ताह के बाद आप क्या करेंगे, अरे मैं रोज क्यों ये पहनूं, क्या मेरे पास कपड़े नहीं है? नहीं है तो लाने की कोशिश करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आज ये कल वो परसों वो। तो हर चीज में हम नयापन देखते हैं, नवीनता चाहते हैं, तभी तो जीवन एक सुंदर तरीके से चलता है और शांति भी रहते हैं जीवन में। हेलो, हमारे श्रोता बंधु थे शायद, चलिए फिर से फोन कॉल्स करेंगे, कुछ कारण से बात नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं। हेलो,
3: नमस्ते सुरेश भाई।
2: हाँ जी सुरेश भाई, नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
3: बात बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है, और अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा रखा है, और
2: जी
3: कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दीदी बताया आपने कि भोजन की भी जो आपने बात की थी, हम हर रोज इतना ही भोजन करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है इतना क्या खाना, कुछ अच्छा बनाइए, कुछ नया बनाइए, ये भी सही है। हम हर रोज इतना एक कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है चलो आज दिन के दिन नया कपड़ा पहन दे तो अच्छा रहेगा, कुछ नया चेंजिंग करेंगे। तो जीवन में भी दीदी ऐसा ही है कि हम कुछ न कुछ नया करने की जरूरत है। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो बुरा भी काम करते हैं, कभी कभी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन हम कुछ नया चेंज करें, चलो आज हमने एक अच्छा काम कर दिया, चलो सेवा को कोई काम कर दिया तो हम आगे जाते और भी कोई नया सेवा का काम करेंगे, थोड़ा आगे जाके कुछ किसी को मदद करेंगे, किसी को कुछ काम आएंगे, और कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। जीवन में कई मोड आते हैं दीदी
2: जी,
3: और परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है
2: जी।
3: हम एक ही बात हर दौर लगा रखे हैं तो कोई ऐसा ना करे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश जरूर करना। तो नया चेंजिंग करना है जीवन में, कुछ नया धारण करना है, कोई अच्छी सेवा, अच्छी कोई बात, किसी को काम आना, किसी की मदद करना, ये भी जरूरी है
2: जी।
3: तो बस हम तो दीदी यही कि हर रोज नया कुछ करने की कोशिश जरूर करना जीवन में। हम कभी कभी हमारे को कच्चा किसी के पास हम बैठते तो कच्चा कोई किसी को गुण धारण करना, ये भी जरूरी है
2: जी। तो सुरेश भाई, जैसे आप सिलाई काम करते हैं, ठीक है, रोज एक जैसे सिलते हैं या कुछ अलग अलग डिजाइन भी रखते हैं आप?
3: नहीं दीदी, हम अलग अलग काम करते हैं
2: जी,
3: कभी कपड़े तो एक जैसा नहीं आते हैं और एक डिजाइन भी नहीं आती है, डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है
2: जी,
3: चेंजिंग बननी करनी पड़ती है। हम कभी नए कोई फैशन आती है तो नए फैशन का भी बनाना पड़ता है
2: जी। तो फिर आप पहले सीखते हैं फिर बनाते हैं?
3: हाँ, पहले देखते हैं बाद में बनाते हैं
2: जी।
3: और कभी कभी तो खुद पोस्टर भी ऐसा आता है कि इस पोस्टर से बनाना है तो बन जाता है
2: जी जी जी,
3: और हम बना भी देते हैं,
2: कोशिश करते हैं तो हो जाता है।
3: हाँ, हो जाता है, क्योंकि आज देखो कितनी फैशन डिजाइन जो मार्केट में आ रही है, तो चलना तो जरूरी है
2: जी।
3: इतना ही कपड़ा हम एक टाइप का पहनते तो पता ऐसा लगता है। देखो हम एक सैंपल दे तो जो जेठालाल का कार्यक्रम हम देखते हैं
2: जी।
3: तो खुद जेठालाल अलग अलग फिर डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं।
2: अच्छा। जी।
3: तो मैं कई बार देखा है कि सभी जो शॉर्ट होता है इसका अलग अलग डिजाइन का बनता है
2: जी।
3: तो चेंजिंग जरूर है दीदी, और करना है जीवन में चेंजिंग करना है, तरीके से भी जीना है
2: जी। जी, बहुत सुंदर, आभार आपका जी। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, सिलाई काम करते हैं। तो आपका कहना है कि सिलाई में भी हम नवीनता लाते हैं, कितनी बार तो पोस्टर के द्वारा भी डिजाइन कही जाती है कि ये पोस्टर और ये डिजाइन आपको डालनी है, तो भी बता रहे हैं कि हो जाता है, बिल्कुल कोशिश करते हैं तो हो जाता है सब कुछ। तो नवीनता जीवन में लाना बहुत जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? हर कोई चाहता है जीवन में नवीनता लाना, क्योंकि भाई आज भले हम क्रिएटिव नहीं करते हैं ना, रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। हेलो
4: हेलो, नमस्कार, ओम शांति दीदी।
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
4: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, दोस्तों मित्रों की कृपा है और आसपास का माहौल भी अच्छा है, और हरदम कुछ नया नया करने की जो जोश और जज्बा रखते है, और हर दिन कहीं न कहीं से कोई नई जानकारियों भी प्राप्त करके, और ये ऐसे कोई ग्रुप बनाए हुए उसमें डालना, ये हमारा स्वभाव है। तो दीदी मैं एक मेरा जो एग्जाम बताता हूँ
2: जी,
4: जो मैं दीदी पहले किसान था तो हम कई मजदूरियों करते थे, तो उसमें कहीं हमें सफलता ही नहीं मिलती थी, जैसे हम जो 400-500 रुपये मिलते थे तो उसमें हमारा गुजारा जो पूरा चलता ही था। तो हमने कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचा और कुछ पैसे ब्याज के ला के कुछ दो भैंसे खरीदी, और दो भैंसे जो भी आई तब हमने डेयरी में दूध भरना चालू कर दिया
2: जी।
4: डेयरी में दूध भरना चालू कर गया तो हमारी एक आमदनी आने लगी हर साल 5,000-6,000 रुपया महीने का, जो 10,000 तक पगार आया करते थे
2: जी।
4: तो हमने कुछ नया करने के लिए प्लान बनाया और सोचा, तभी हम आगे बढ़ पाए और उसमें हम सफल भी हुए
2: जी।
4: तो
2: हर
4: इंसान इस तरह का कार्यक्रम अच्छा अच्छा नया करने का कुछ जज्बा रखे, कुछ अपने जो माइंड से काम ले, तो वो बिल्कुल एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा रूप भी बनेंगे। बस नमस्कार दीदी
2: जी,
4: सभी
2: बहुत
4: को
2: सुंदर,
4: आपको भी
2: बहुत सुंदर, आभार आपका दयाराम जी। तो ये दयाराम जी लाखनी से थे और इनका कहना था कि पहले ये किसान थे, लेकिन किसान के साथ साथ जैसे 400-500 रुपए कमा लेते थे, लेकिन गाय भैंस ला करके दूध बेचना शुरू किया तो और भी ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि कुछ और भी नया करे, एक रस जीवन में टिक नहीं सकता है, क्योंकि एक रस से हम बोर हो जाते हैं, अलग अलग रस को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भोजन में कहा ना कि एक तरह का भोजन 4 दिन के बाद 5वें दिन तो बंदा परेशान ही हो जाएगा और कुछ न कुछ जरूर डिमांड करेगा कि भाई कुछ अलग बनाओ। तो हर कोई जीवन में नवीनता चाहता है और नवीनता के द्वारा ही एक खुशियां बरकरार रहती हैं। हम और भी आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, परंतु समय हो चला है एक अल्प विराम लेने का। तो अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। नई रात का नया सवेरा मेरे देश में आता है, कल जो था कंगाल केसरिया आज बजरिया गाता है। आज सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हम खुशनुमा जीवन की बातें कर रहे हैं कि कैसे जीवन में नवीनता लाना जरूरी है, जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही हमारे श्रोता बंधुओं ने भी अच्छी बातें बताई है। हम तो चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी सुने कि कैसे हम जीवन में नवीनता लाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को क्रिएटिव बनाएंगे। देखिए, जैसे कि आप आशियाना सुनते हैं, ठीक है, अब मैं रोज एक एक भजन सुनाऊंगी या एक ही गीत या एक ही कविता रोज सुनाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे ना। आप क्या कहेंगे, अरे ये उषा दीदी तो पता नहीं दूसरा कुछ सुनाती नहीं है, एक ही भजन, एक ही कविता या एक ही गीत सुनाती है। दूसरे दिन आप सुनना बंद कर देंगे। हर कोई नयापन चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, तो कौन लाएगा, हमें ही लाना पड़ेगा ना। देखिए, हमारे वैज्ञानिक है, अगर वो आविष्कार ही नहीं करते तो क्या हम साइंस के इतने चीजों का आनंद ले पाते, नहीं ले पाते ना। हम बस में ही चलते हैं, फ्लाइट आती नहीं तो फ्लाइट में कभी जाते ही नहीं, ट्रेन नहीं आती, या फिर मान लीजिए बस नहीं आती, या भले मान लीजिए टू व्हीलर नहीं आता, लेकिन नवीनता आई है ना। समय के साथ बदलाव आया है, और बदलाव आया है तो क्रिएटिविटी बढ़ी है ना, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। छोटे बच्चे को आप देखोगे खिलौने खेलते हैं, लेकिन वो भी अजीब तरीके से खेलेंगे, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे हम उनको खिलौने देंगे, जो भी करेंगे तो उनको गोल गोल गोल गोल सजाएंगे या टेढ़े मेढ़े सजाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ वो करते रहेंगे। उनको देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाह देखो बच्चे ने क्या, मतलब किस तरीके से ये सजा रहे हैं। भले उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके इन छोटी सी हरकत को देख करके हमें तो आनंद आता है ना कि बच्चे भी कुछ करना सीख रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, भाई वन लिखो, एक लिखो, गुजराती में तो एक एक कहते हैं, लेकिन हम जब वन लिखाना सिखाते, एक लिखाना सिखाते हैं, बच्चे को बार बार घुटाते हैं और बार बार वो घोटता है उसी को एक, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही उसको एक लिखना आ गया, फिर वो कुछ और सीखने की कोशिश करेगा कि एक तो लिख लिया ना, कितनी बार सिखाओगे, अब आगे बताओ। फिर हम उसको दो सिखाएंगे, फिर तीन सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए तो वही नवीनता है ना। ऐसे हर एक के जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन से हम बोर हो जाएंगे, और जीवन से बोर नहीं होना है। जहां हम जीवन से बोर हुए, समझ लीजिए जीवन हमारा खत्म, निराशा में डूब जाएगा। और निराशा वाला जीवन भला कोई जीवन है? आप अक्सर देखते होंगे रास्ते में कोई मिलता है तो एक तो खिलखिलाहट के साथ मिलता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ही आप में भी तरोताजगी आ जाती है कि चलो इस बंदे से बात ही कर लेते हैं, भले पहचान नहीं है फिर भी बोलेंगे राम राम जी, राम राम, नमस्कार, कुछ तो बोलेंगे ना, जय श्री कृष्ण, कुछ भी बोलेंगे, भले पहचान नहीं है लेकिन बोलेंगे। और एक आप देखेंगे कि अरे सामने वाले का चेहरा तो जैसे कि ऐसा लटका हुआ है कि 10 मन का वजन उसके सिर पर रख रखा है, तो पहचान वाला होगा फिर भी आप किनारा कर लेंगे, अरे भाई इसका मूड नहीं अच्छा लग रहा है, चलो अपन साइड से निकल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो जब एक उदास चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, तो सोचिए कि जीवन में एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज कौन पसंद करेगा। कोई ना कोई नवीनता आती रहती है और आनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको भोजन की बात बता रही थी कि हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग भी ट्राई करते रहते हैं, बहुत जने तो YouTube में से भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई परिवार वालों को रोज एक सा भोजन क्यों फिर से, चलो आज YouTube में से ये चीज सीख लूं, वो चीज सीख लूं, ऐसे कुछ भी सीखेंगे और फिर बनाएंगे, खिलाएंगे। तो ये सारी नवीनता है। तो जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, कुछ न कुछ करते रहिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वो कहते ना, एक ही आप लाइन में चलेंगे तो थक जाएंगे जीवन से, बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ नवीनता जरूरी है। और हाँ, जैसे कोई हमको कह दे कि आपको तो अब घर में ही रहना है, एक सप्ताह के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई एक सप्ताह तक घर में नहीं रह पाएगा, घर में सब कुछ है, खाना पीना उठना बैठना पंखा लाइट हवा सब कुछ है, पानी वगैरह, फिर भी हम एक सप्ताह घर में टिक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, अरे हम क्या घर में ही बंधे रहेंगे क्या, क्यों, हमें भी जीने का अधिकार है, इस तरह की बगावत भरी वाणी बोलने लगेंगे कि हम तो बाहर जाएंगे, कौन रोक सकता है हमें। हर कोई चेंज चाहता है। अब बाहर क्या है, बाहर जाएंगे तो भी आना तो हमको घर में ही है, मिलेगा तो सब कुछ घर में से ही। फिर भी इंसान बाहर जाता है, क्यों जाता है? कि भाई चार जनों से मिलेंगे, चार जनों से बात करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ सीखेंगे, इसलिए हम घर से बाहर जाते हैं, है ना। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में नवीनता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नवीनता लाने के लिए हमें बड़े बड़े खर्चे करने पड़ रहे, हमें नहीं चाहिए नवीनता, ऐसा नहीं है। बिना खर्चे के भी आप नवीनता कर सकते हैं, जैसे कि भोजन के लिए आपको कहा है, जैसे कि कपड़ों के लिए कहा है कि भाई दो ड्रेस आप रोज पहनेंगे तो वो जल्दी फटेगी, चार ड्रेस पांच ड्रेस रखेंगे तो थोड़ी देर से फटेगी, और नवीनता आती रहेगी। आज ये पहन लिया, दूसरे तीसरा दिन वो पहन लिया, तो नवीनता आती रहेगी, बोर भी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े खर्चों के द्वारा ही जीवन में नवीनता लानी है। आप चाहो तो आप किसी भी तरह नवीनता ला सकते हो। जैसे आप घर से बाहर निकले हो, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर लीजिए। जैसे बहुत सारे हम गांवों में देखते हैं पानी की व्यवस्था नहीं होती, बुजुर्ग भी जा करके दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप रुक जाइए, हम आपके लिए ले आते हैं। ये भी एक नवीनता आ गई ना, कि चलो कुछ तो किया आपने, किसी के लिए खुशियां मिली आपको अंदर से ही, वो भी दुआ देंगे और अंदर से भी खुशी होगी। कोई बच्चा है, उसके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा है, तो आप उसको थोड़ी सी मदद कर लीजिए, पढ़ा दीजिए। ये भी एक नवीनता आ गई कि चलो कुछ तो किया है और हमारी पढ़ाई भी वो बनी रहती है। नहीं तो फिर एक समय आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अपने जो भी शौक है, मौज है, उनको जिंदा रखिए और किसी न किसी तरीके से उसको आप आजमाते रहिए बीच बीच में, ठीक है। और कुछ नया सीखते रहिए, नया सीखेंगे तो जीवन में स्फूर्ति रहेगी और जीवन में खुशियां बनी रहेगी कि मैंने कुछ सीखा है। जैसे कि हमारे श्रोता बंधु ने बताया ना कि कैसे वो कपड़ों में भी नई नई डिजाइन डालते हैं, फिर खुशी तो मिलती है ना, अरे वाह मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये डिजाइन मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैंने बना दी तो खुशी हुई ना। स्वयं से वो कहते हैं नवीनता ला करके स्वयं को ही खुश रखना है। दूसरों के साथ तो खुशी से रहना ही है, दूसरों को खुशियां देनी ही है, लेकिन सबसे पहले खुशी किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे मैं आपके समक्ष कभी दो पंक्तियां बना बना करके रखती रहती हूँ, तो अब आपको कितनी खुशी मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मैंने कुछ बनाया और आपके समक्ष पिरसा, है ना। तो नवीनता लाते रहिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है कि नवीनता से ही हमारा जीवन और भी सुचारू रूप से चलता है और एनर्जी बनी रहती है। आइए अब फिर से सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सवाल चाहे स्वास्थ्य का हो या सफाई का, जवाबों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
2: प्यारे श्रोता बंधु, समय अब समाप्त होने को आया है। आज के कार्यक्रम आपने सुने हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विचार आप सभी ने सुना है कि मीठे वचन हमेशा बोलिए, इससे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, प्यार स्नेह सभी का मिलेगा। और रेसिपी में आज आपको क्रिएटिव तरीके से कैसे एप्पल काटा जाता है, अमरुद काटा जाता है, कैसे पापड़ आप समोसे की तरह डिजाइन बना कर रखेंगे या मसाला पापड़ बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। ऐसे नहीं कि खाली हमने सिखाई वही है, बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, सजा सकते हैं।

और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। हमारे श्रोता बंधुओं ने सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले फोन कॉल आया था माउंट आबू ढूंढई गांव से मुरलीधर जी का। उन्होंने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और पृथ्वी दिवस कल है 22 अप्रैल को। सुरेश भाई छोटाना से, महेश भाई शर्मा आबू रोड से, इन्होंने गलत जवाब दिया है। इन्होंने कहा 5 जून को मदर्स डे मनाएंगे, वो गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, आपका भी जवाब सही है। दयाराम जी लाखनी से, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और बाकी सभी ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, इसके लिए भी सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। अब मैं आपको नवीनता पर एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, मैंने पूछ लिया उसे, क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूं पगली, तुझे जीना सिखा रही थी, मैं जिंदगी हूं पगली, तुझे जीना सिखा रही थी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। चलो हम कर जिए, चलो हम सभी हंस कर जिए, चलो खुल कर जिए, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाला ये दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज अभी जियो, दूसरा पल हो ना हो, आज और अभी जियो, दूसरा पल हो या ना हो, आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले, आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले, आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफर यूं ही काटते चले, जिंदगी का

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही हो, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू, बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए, मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्कार
3: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
5: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकियाट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयां नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकियाट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
3: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं तो समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है जहां पर मेडिसिन्स की भी आवश्यकता होती है तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसे हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सोल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं आपकी स्पेशलिटीज और आपकी एक्सपर्टीज को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझें कि हाँ ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ हम मेंटली फिट हैं।
5: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है। हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
3: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
4: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स ए कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीजों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पे ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीजें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की जरूरत है।
3: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की जरूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान

0: देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिसे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
1: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोककर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है, पढ़ने से ही एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया आपको उसी समय फाइन करते हैं, ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहां हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
0: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिसे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
1: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा, तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी। जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द, और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है। तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियाँ ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद्व चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाएं।
0: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी।
1: बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
0: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते।
1: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
0: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
1: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
2: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए? बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीजें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीजें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही है, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना है, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें, ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
0: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम ऐड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटिफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहां पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गांव है, उस गांव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: ओके। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूं। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: बिल्कुल, मैं मुझे खुशी होगी आपको बताने में। मुझे बाई बोन आई में प्रॉब्लम है और मैं जन्म से दृष्टि बाधित हूँ और मुझे जन्म से मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था और
0: जी
1: मेरी ट्रीटमेंट हुई है मध्य प्रदेश इंदौर में डॉक्टर हाड़िया के पास।
0: जी
1: और स्टैंडर्ड 5 तक थोड़ा थोड़ा राइट आई में मुझे विजन था। स्टैंडर्ड 8 में आते आते मुझे मेरी संपूर्ण रोशनी चली गई। अभी फिलहाल मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे आई प्रेशर का प्रॉब्लम्स है।
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM

0: हमारे साथ हैं जय पटेल जी, नर्मदा जिले के राजपिपला शहर से। जी जय पटेल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको दृष्टि बाधित, आपको जो ब्लाइंडनेस है वो कब हुई और किस प्रकार से आपने शुरुआती दिन अपने बचपन को, मैं अपने आप की पढ़ाई पूरी की।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी, पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी, बाय बॉर्न ही। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया, डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई, लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपीपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपीपला के चैलेंजेस हैं या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर, वॉलंटियर?
1: देखो, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है, सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है और आपकी
1: यस,
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल्ड
1: हाँ
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किए कार्य से खुशी मिल रही है, तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी, आपने क्या प्लान किया है और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और
0: जी
1: इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोहिल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना।
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, उसका नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो अब जब हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं, फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो। और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है, क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई

0: जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है, खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस बच्चे
1: बिल्कुल
0: का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल
0: करते
1: वही
0: हैं?
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी।
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे और डिसेबल को हम आगे ले जाने में मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूँ।
0: जी
1: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: जी श्रोताओं जो
1: और
0: हमसे जी
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल दो टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरत से बिलोंग करती है, एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना जो
0: जी
1: बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
0: जी
1: बिल्कुल और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
0: हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
1: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
0: जी खैर
1: हाँ
0: कोई
1: बस
0: बात नहीं, और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
1: बिल्कुल। देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
0: जी
1: बिल्कुल वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
0: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: हमारे
1: बिल्कुल ऐसा
0: रास्ते।
1: ही मेरे
0: जी
1: साथ में हुआ है।
0: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
1: हाँ उनका मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं
0: जी
1: और उनके
0: जी
1: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है मैं।

0: जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
1: बिल्कुल। और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं, स्नेह मिलन,
0: जी
1: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं, ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
0: जी
1: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं, हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
0: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
1: और मेरे फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सब का भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
0: जी, किस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है? डेली आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
1: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
0: अच्छा,
1: और मेरी मदर।
0: जी, तो
1: हाँ
0: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना, टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
0: जी
1: पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
0: जी
1: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
0: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
1: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में किए, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा, पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है। बट हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
0: जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं। आपके जिले नर्मदा में क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
1: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं, ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
0: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
1: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
0: जी, मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलंटरी सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए, क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्ति को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
1: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में, सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं, ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
0: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन
1: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना, पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े। और उनको
0: कम्युनिटी तो
1: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए। उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
0: कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
1: यस, नर्मदा राजपिपला।
0: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग, क्या होगा इसमें विशेष?
1: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
1: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 72-80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
0: जी, आप
1: डिसेबल लोगों के लिए।
0: राजपिपला प्लान कर रहे हैं?
1: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग,
0: जी
1: राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब।
0: जी जी तो
1: हाँ
0: नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
1: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
0: जी,
1: सेवेंटी फाइव यस।
0: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ, और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
1: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
0: जी,
1: बिल्कुल
0: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है और
1: बिल्कुल,
0: लोगों से जुड़ने की
1: लोगों
0: आवश्यकता है।
1: के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवाज सत्य रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें, हम
1: बिल्कुल,
0: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
1: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
0: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
1: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ।
0: जी
1: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं। और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना वो बहुत ही एक्साइटेड बात है, आप सुनना। मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ। इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है। उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो। और अभी हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
0: तो मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है।

0: मां ने कहा।
1: नहीं मां, आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है।
0: सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा।
1: अच्छा, इतनी जिद कर रहा है तो सुन। बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है, मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना, वह यही लोटा था। तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा, परदादी, दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं, बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं। और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कह के मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों, संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों, आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां, कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं, जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा, दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं, इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक, संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर, पुरानी चीजों से ही संस्कृति, संस्कार, यादें, प्रेम, निष्ठा, ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को। बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं, लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है, मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो, सभी तक पहुंचाएं, ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
2: हेलो, मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
0: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुड्डियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देखकर वो वहीं ठिटक गई और छुपकर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि, आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी। और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलट कर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है। ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो चलो चलो चलो जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस थोरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। ताजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष कमल जी उपस्थित हैं, और आप विशेष जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हो चुके हैं, बालकों में अपनी विशेष सेवा दी है, और आप मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, और अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग विधा में आपने सेवा की है। निश्चित तौर पे आपका जो अनुभव है, एक बहुत बड़ा जो है मार्केटिंग एरिया को आपने संभाला, और साथ ही साथ मार्केटिंग के साथ साथ न्यू चैलेंजेस जो आपके जीवन में आते थे उसे एक नया टास्क बनाकर नए आइडियाज के साथ उसे फुलफिल करते थे, उसके ऊपर मात देते थे। तो निश्चित तौर पे जो आपका अनुभव है वो हमारे युवा साथियों को और भी अन्य जो भाई बहने सुनेंगे उन सब के लिए बड़ा काम का होगा। तो कमल कमलाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: नमस्ते, ओम शांति सबको। बहुत
0: ओम शांति जी, ओम शांति। और मैं चाहूंगा,
1: बहुत
0: जी,
1: ही
0: वर्तमान में आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए।
1: मैं अभी कोरबा में हूँ। ये जस्ट 2015 में रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद कुछ जॉब मिला था, लेकिन बाबा के सेवा में लगा हूँ। और कुछ स्कूल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मैं बच्चों के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट में बाबा के ज्ञान द्वारा उनको कैसा बुद्धि को विकास किया जाए, कैसे वो आगे बढ़े इस संसार में और अपना चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि मैंने बचपन से ही बहुत चैलेंजेस फेस किया है। तो मेरे को वो थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है जब चैलेंज आता है ना, एक जुनून आ जाता है उसको फेस करने के लिए, मैं ले लेता हूँ। और उसी कारण मैं सोचता हूँ कि ये जो मेरे को भगवान ने, बाबा ने अभी जो ज्ञान दिया है उसको मैं क्यों नहीं बांटूं। जब बांटता हूं तो मेरे को अत्यंत खुशी होती है, लगता है कि वो मेरे को कुछ बहुत बड़ा एक संपत्ति और एक आशीर्वाद मिल रहा है लोगों से। तो ऐसे ही मैं अभी कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज को लिया, और मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ऑब्जर्वर हूँ। वहाँ भी बीच बीच में मेरे को बुलाया जाता है और एग्जाम में भी बुलाया जाता है, और उससे काफ़ी लोगों को साथ में मेरा संपर्क हो जाता है। और जो नए नए तरीके हैं, अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको चेक एंड चेंज कैसे करें, उसको समझाने की मदद आता है।
0: कमल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि अब की आज के समय को देखते हुए
1: जी, अभी तो ऐसा है,
0: अभी के
1: देखिए,
0: समय में तो मैं समझ
1: अभी ऐसा है कि ये भारत जो है बहुत ही परिवर्तन हो रहा है। वैसे बाबा ने तो हमको बताया कि ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा, और श्रेष्ठ होके हम विश्व में सबसे आगे जाएंगे, और पूरा नजारा दिख रहा है। क्योंकि आज से जब मैं करीब करीब 45 साल पहले जब मैं जॉब शुरू किया था, बहुत ही छोटा था, और छोटे होने के कारण बहुत ही छोटे घर से मैं आया, और चैलेंजेस फेस करके मैं आगे बढ़ते गया। आपको बहुत ही लगा होगा कि मैं शुरुआत के जीवन में बहुत कम पद में यहाँ कार्य कर रहा। उसके बाद में मेरा 150 रुपया सैलरी था, और जब सर्वोच्च पद पर पहुंच गया मैं अपने लाइफ के टारगेट में, और साहस

0: श्रेय जो बाबा को जाता है। और वैसे ही आज के चैलेंजेस जो है विश्व के अंदर है, न कि डोमेस्टिक है, देश के अंदर नहीं है, ना कि स्टेट के अंदर है। चैलेंजेस बच्चे लोगों के में अंदर में बहुत ज्ञान है बच्चे लोगों के में, सिर्फ उनको डायरेक्शन चाहिए। और जब डायरेक्शन उनको मिल जाता है तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जितने भी विश्व में कंट्री है सब जगह भारतवर्षी वंशी आए हैं और उनको बहुत सुंदर मौका मिल रहा है। अपने जो ज्ञान है, हुनर है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको दिखाने के लिए। ऐसे अभी समय है परिवर्तन का। इस परिवर्तन को फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके जो उसको सामना कर पाएगा हाँ वही कर पाएगा। उसको समाना भी पड़ेगा चैलेंजेस को, निर्णय भी करना पड़ेगा कि हर एक मौके पे इतना गैजेट्स, इतना अपॉर्चुनिटी आ गया है। हमारे टाइम भी नहीं था, हमारे हमने नौकरी किया, हमने एक नौकरी ज्वाइन किया, उसी नौकरी में हमने पूरा जीवन बिता दिया। बहुत सी जगह दुबई से आया, इधर से आया, उधर से आया, लेकिन गया नहीं कि वो परिवार दोनों हम लोग एक ही जगह नौकरी करते थे। आज तो ऐसा नहीं है। देखिए हस्बैंड कहीं है, बच्चे कहीं हैं, हमारे बच्चे सब बाहर में हैं, हम लोग यहाँ हैं। तो चैलेंजेस उनके साथ में है, हमारे साथ में भी है जीवन में, क्योंकि तो हम अकेला कैसे रहे, ये अगर सोचेंगे तब तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, क्योंकि तो अभी 67-70 के आसपास में है। तो चैलेंजेस हर वयस्क के लिए, हर एज फैक्टर के लिए है। बच्चों के साथ में, छोटे छोटे बच्चे अभी जन्म होते हुए ही उनको स्कूल जाना पड़ता है, बहुत बड़ा टास्क मिलता है। हमारे टाइम में तो 5 साल के पहले एडमिशन ही नहीं होता था, अभी तो जस्ट बहुत बहुत कम समय में हो रहा है। तो चैलेंजेस देखा जाए ये अपॉर्चुनिटी है। अगर चैलेंजेस को मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लूं तो मैं तो सक्सेस हो जाऊंगा। ये भारत एल्युमिनियम कंपनी जो है वो इंडिया का नंबर 1 था उस समय में जब मैं ज्वाइन किया। उसके बाद में प्राइवेट हो गया है 2001 में, चैलेंज आया। और हमारे साथियों ने ये चैलेंजेस फेस करने के लिए बहुत से तकलीफें आई। जब मैं बाबा का बन गया तो ऐसा लग रहा था, जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आया ऐसा लग रहा था कि पूरा हमें सब बनी बने ही मिल रहा है, हमें ऊपर से ऐसा लग रहा है अष्ट शक्ति हमारे पास में, निर्णय का शक्ति, परज्ञ की शक्ति, क्योंकि दोनों में बहुत अंतर था, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। और इसमें रिवार्ड भी ज्यादा है प्राइवेट में। जब हम प्राइवेट में ज्वाइन करते हैं चैलेंजेस ज्यादा है और चेंजेस भी ज्यादा है, रिवार्ड भी ज्यादा है। जब हम उसको अपने मस्तिष्क में ले लेते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है मैं कैसे आगे बढ़ूं, उसके हिसाब से फिर अपना शरीर के अंदर एक
1: अपॉर्चुनिटीज
0: स्मृति।
1: भी है ये आपने बताया, और मुझे
0: जी
1: लगता है कि हम लोगों को हमें पता हो तो हमारा जो टास्क है करने का काम जो है वो आसान हो सकता है।
0: जी

0: मुश्किल घड़ी का जो समय है, कुछ एग्जाम्पल के साथ हमें अगर बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या ऐसा सिचुएशन हुआ आपने उसमें न्यू चैलेंजेस जो आपके पास आए उसको न्यू आइडियाज में, आइडियाज के साथ उसे कंपीट किया या उसके ऊपर मात किया, थोड़ा सा बताइए। जी
1: हाँ श्योर। एक्चुअली क्या है, जब प्राइवेट हुआ तो 67 डेज का स्ट्राइक हुआ प्लांट के अंदर में, और उसी साल मेरा मदर का डेथ हो गया उसी समय।
0: जी
1: और डेथ में क्या हुआ, मैं हमारे कल्चर के हिसाब से 30 डेज हम बाहर खाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते, उस समय ज्ञान में भी नहीं है, 2001 में। तो हमको प्लांट जाना पड़ा एज ए अधिकारी के रूप में, जो अफसर
0: जी
1: थे। तो मैंने चला गया, उस समय भगवान को याद किया, शिव बाबा का तो मैं बचपन से ही भक्त था। उसके बाद गीता रोज पाठ करते थे, गीता पॉकेट में लेके मैं निकल पड़ा। निकलने के बाद क्यों कि जा नहीं पा रहे थे, स्ट्राइक चल रहा था कामगारों का, तो हमने ये सोचा कि कैसे करके वहां जाए। तो हमने वहीं अपना प्लांट के अंदर में खाना बनाने का कोशिश किया। उस समय इंडक्शन हीटर भी नहीं था, कैंटीन में अपना शुरू किया। और चैलेंजेस में हमको दिखा, उस समय इंटरनेट भी मेरे रूम में था, पूरा बालकों के अंदर में लिमिटेड यूज था, क्योंकि मार्केटिंग के जॉब के लिए इंटरनेट बहुत जरूरी था 2001 में। और उसके पहले हमने वायरलेस के रूप में भी हमारे सेट था हमारे रूम के अंदर में। तो उस चैलेंज को फेस कर 67 डेज मैं प्लांट के अंदर था। अंदर रहने के बाद मेरे को ऐसा शक्तियां मिलती रही, तब मैं गीता रोज एक अध्याय पढ़ता था। पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं कोई प्रॉब्लम में नहीं हूँ, ना मदर का शोक का दुख का कोई भी मेरे को ऐसा अनुभव नहीं हुआ। और मैं आराम से, और कनेक्ट भी नहीं था हमारे घर के साथ में, क्योंकि सारे टेलीफोन लाइन अगर डिस्कनेक्ट कर दिए थे, काट दिए थे, ताकि उनको कुछ थ्रेट ना आए, कुछ ना आए। तो ऐसे चैलेंजेस फेस करके 2001 में, और जब प्लांट चालू करना रहा तब प्लांट नहीं चल रहा था, वो प्लांट ऐसा बंद हो गया था कि उसको फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन चूंकि ऐसा हमारे संगठन में काफी अधिकारी थे जो कि सब मिलके, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं देखते थे कौन सा डिपार्टमेंट का है, उनका जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल नहीं देखते थे, सब मिलके एक वार फुटिंग में वहां काम किया। करने के बाद उसको चलाया, चलाने के बाद काफी रिवार्ड भी मिला सबको, और हमें तो ऐसा रिवार्ड उसके बाद बाबा के जब बने, ऐसा रिवार्ड मिलता गया मिलता गया मिलता गया। मैं जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना ऊंचा पद में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को देगा। और मेरे को एक एक यूनिट नहीं, ये कोरबा का जो बड़ा प्लांट था, उसके बाद नया जब प्लांट आया झारसुगुड़ा में, उड़ीसा में, हमारे यहाँ से करीब करीब 250 किलोमीटर दूर है, उसका भी इंचार्ज मार्केटिंग का बनाया गया है। तो मैं कुछ दिन यहाँ रहता था, कुछ दिन वहां रहता था। रहने के बाद भी यह तो एकदम आसान हो जाता है जब आप ज्ञान में, हम ज्ञान में आते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, स्मृतियां दिलाती है, आज का नहीं, 5000 साल पहले का तुम क्या थे, क्या रहे होगे, तुम्हारे मतलब पास्ट क्या था, अब उसको स्मृति में लाओ, सब तुम्हारे आ जाएगा। अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 2001 जो है एक कल की बात है मेरे लिए, इसलिए कल की बात लग रहा है। मैं तो 5000 ईयर बैक की कैलकुलेशन कर रहा हूँ। जब आदमी कैलकुलेशन जो है बहुत अनंत के स्थिति में चला जाता है, तो उसको तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए चैलेंजेस बहुत आई। प्रोडक्ट सबसे ये था कि सबसे खराब प्रोडक्ट निकलता था जब प्लांट 67 डेज के बाद चालू हुआ। अब ये उस चैलेंज को फेस करने के लिए
0: बिल्कुल
1: हमने नया नया प्रोडक्ट बनाया, ताकि उस क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में क्या बेस्ट प्राइस दे, और हमने उसमें डबल प्रॉफिट किया, क्योंकि हमारे उसमें जो अवगुण था उसको गुण में हमने बदल दिया। मेटल के अंदर इम्प्योरिटी था, उस इम्प्योरिटी को स्ट्रेंथ में बदल दिया कि कैसे करके उस मेटल को यूज है, उसका यहाँ इन हाउस डेवलप किया। डेवलप करने के बाद उनको डेमो दिया, बोलते साहब यही तो मेरे को चाहिए था, हम तो इम्पोर्ट कर रहे थे। और वो हमें जो वरदान के रूप में प्राप्त हुआ, जो हमें नुकसान होना था वरदान के रूप में प्राप्त हुआ। वो मेटल इसरो में भी गया, यहाँ से त्रिवेंद्रम में गया, यूज किया, बोले ऐसे मेटल हमें आज तक नहीं मिला, बहुत अच्छा है।
0: अनुभव है वो आपने शेयर किया, जहां पर आपने सुस्ती से मैंने इसकी परीक्षा आपने की और उसके बाद जो है प्लान बंद होने वाले उसके बाद उसके पर काम किया टीम वर्क काम किया तो वो उसी तरह से
2: लाइव कॉन्फ्रेंस बन दी रहा
0: बिजनेस हाउस
2: ये भाई
0: बहुत ही अच्छी बात। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हिमाचल से संतोष जी जुड़े हुए हैं। संतोष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि आप हमारे कमल जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत डेडिकेट करें। स्वागत जी।
2: जी ओम शांति
0: ओम शांति ओम शांति सुनाइए।

0: बहुत बहुत
1: चलिए संतोष जी,
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत
0: आपका,
1: धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही प्यारा संगीत
0: थैंक
1: जी,
0: यू
1: शुक्रिया। आइए फिर से, मैं कमल जी, और आप हिमाचल में अपनी सेवा देते हैं तो कभी आपकी सेवाओं के बारे में भी बात करेंगे।
0: जी जरूर
1: अभी
0: जरूर
1: कमल जी से
0: जी
1: मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। कमल जी, मैं चाहूंगा कि आगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं, तो कई बार चीजें एक जगह सफलता मिल जाती है तो उसके बाद फिर काफी अपॉर्चुनिटीज हमको मिल जाता है, लेकिन एक सफलता मिलने में जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमें। काफी मेहनत के बाद हमें सफलता हासिल लगती है, हाथ लगती है, तो उसके बाद फिर हमें अपॉर्चुनिटीज के बाद और अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि आपको फिर दूसरा प्लांट भी मिला जहां पर आपने मार्केटिंग का काम संभाला, तो मार्केटिंग आपके लिए इतना आसान था कि उसको कैसे आपने ठीक से किया, थोड़ा सा बताइए। आपके पास क्या पहले से मार्केटिंग का कोई अनुभव था या फिर डायरेक्टली आपने इस पे अच्छा काम किया?
2: प्रोडक्शन में, जब मैं प्रोडक्शन में ज्वाइन किया तो उस प्रोडक्ट को मैं लगन से देखा कि उसमें क्या क्या खूबियां है, क्या क्या स्ट्रेंथ है, शक्तियां है, जो मार्केट में मैं उसको कभी जाऊंगा तो उसको कर पाऊंगा। लक्ष्य

0: कि मैं मार्केटिंग और इस प्रोडक्ट को लेने के लिए मेरे को इसका गुण को मेरे को देखना पड़ेगा। तो उस हर एक डिपार्टमेंट में मैं काम किया, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में गया, उसके बाद मैं दूसरे डिपार्टमेंट में गया। जितना भी डिपार्टमेंट मेरा बदलता गया तो हर एक डिपार्टमेंट से मेरे को कुछ ना कुछ उसमें गुण खूबियाँ दिखाई दी। और एज ए ओवरऑलिंग में मैं देखा कि प्लांट के अंदर में मैंने मेरे चेहरे के सामने में प्लांट का और ए प्रोडक्ट का, प्लांट प्रोडक्ट और उसका परफॉर्मेंस का, थ्री पी, प्लांट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, उसमें क्या क्या गुण है, उसका क्या क्या हम चैलेंजेस करके उसको आगे बना सकते हैं। तो मैं एक प्लानिंग डिपार्टमेंट में मेरे को भेजा, प्रोडक्शन प्लानिंग में दिया कि भाई
1: अच्छा
0: आप इस प्रोडक्शन से निकल के आप प्लानिंग कर लो कि क्या प्रोडक्ट आप जो बोलते हो ना उसको करके दिखाओ। तो हमने करके दिखाया, अब माल तो बन गया, अच्छे अच्छे बन रहा है, लेकिन कस्टमर एंड में वो प्लांट का सामान ठीक से नहीं जा रहा है। बोले कि क्या कंप्लेन काफी आती थी, डैमेज हो जाता है, यहाँ से एल्युमिनियम बहुत ही सॉफ्ट है और रोड भी उस समय में इतना अच्छा नहीं था देश में, ट्रक भी यहाँ रिमोट एरिया में ट्रक भी ठीक से नहीं मिलता था। तो मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं डैमेज हम जो बना के देते हैं वो कस्टमर में नहीं मिलता है, यूज वो बोल रहा है इससे तो हम दूसरे से खरीद लें। तो बोले, मेरे को बोला कि आप ही संभाल लो ये डिपार्टमेंट, तो वो डिपार्टमेंट का मेरे को बना दिया हेड। तो मैं प्लानिंग भी आ गया और वो मेरे साथ में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक है वो भी आ गया। लॉजिस्टिक जब आया तो हमने देखा कि उसको भी जितना जितना कमियां थी यहाँ से, और मैं काफी अच्छा लोगों के साथ में, मेरा जो सहयोगी था बहुत ही अच्छा था, उनके साथ में सहयोग करने और जितने भी प्रॉब्लम था उसको मैं समाने के लिए समाया, और समाने के बाद में उसको परखने की शक्ति ऐसा दिया बाबा ने उस समय। और मैं देखा कि नंबर वन बनने के लिए मेरे को थोड़ा सा दिन रात एक करना पड़ेगा। उस समय मेरा ड्यूटी रहता था करीब करीब 18 घंटा, 19 घंटा, कभी कभी 20 घंटा भी होता था, कभी ऐसा होता था 2-3 दिन तक घर भी नहीं आते थे। तो उसमें बच्चे और मिसेस थोड़ा परेशान हो जाते थे कि भाई 3 दिन से घर नहीं आ रहा है, वहाँ खाना वगैरह सब मिल जाता था। लेकिन जब तक एक जुनून था कि इसको चैलेंजेस को इसको सही करके लेंगे तो एकदम आसान हो जाता था। और वो प्रोडक्ट ऐसा हुआ कि आज जो है विश्व के अंदर में वेदांता का माल हर जगह जा रहा है और जा रहा है। हमें यहाँ कोरबा में ही हूँ मैं, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर में हूँ प्लांट के, लेकिन जब खबर मिलता खबर मिलता है
1: अच्छा
0: सॉरी, जब खबर मिलता है तो बहुत ही आनंद आ जाता है कि सही में वो दिन और आज के दिन में, वो दिन चैलेंजेस था, आज चैरिटी का दिन है और नाचने गाने का दिन है, और वो खूबी मेरे को एकदम सामने दिखाई दे रहा है। हाँ रमेश भाई, ऐसे में हर समय जो भी आपका चैलेंजेज आता है हमारे जीवन में, अगर उसको हम अच्छे तरीके से समझ ले और उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे कि इसके लिए मेरे कुछ गिफ्ट आने वाला है जीवन में और कुछ अच्छा रास्ता दिखेगा, तो सही में। तो उसमें क्या करता था मैंने कि बचपन में जब साइकिल चलाना सीखा तो साइकिल पे सीट का तो मेरा लेंथ में नहीं आता था, मैं वो अंदर से पैर लगा के सीखता था, एक दो बार गिरा भी हूँ, लेकिन चलाने के बाद मजा आया। माँ बोले कि वही है जीवन में, जितने भी चैलेंजेज आएगा हम चेंज कर लेंगे, तो जीवन में चैरिटी चैरिटी, और बहुत ही सुंदर अनुभव होगा, आनंद आएगा।
1: बिल्कुल चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, तो उसके लिए हमको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं। जैसे आप 18 घंटे काम करते थे और परिवार से दूर रहते थे और खाना पीना बनाने का आपको है सहयोग मिल जाता था वहीं पर कंपनी में, लेकिन बात यह है कि एक तपस्या तो रही कि आपको किसी भी तरह से इस चीज को सीखना है और सफलता हासिल करना है, तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपने कड़ी मेहनत की। अब आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे आज के समय में जैसे कि मार्केटिंग की बात हम लोग करें, पहले मार्केटिंग के लिए क्या क्या चीजें अवेलेबल थी और अभी क्या चीजें अवेलेबल है, और पहले के तुलना में अभी की तुलना में क्या डिफरेंस है मार्केटिंग में। जी
0: जी अभी देखिए चैलेंजेस अभी ज्यादा है, उस समय अपॉर्चुनिटी बहुत कम था।
1: अच्छा,
0: ये रिमोट एरिया था, ट्राइबल एरिया था कोरबा, और यहाँ से हमें बिलासपुर रायपुर जाने में कम से कम 10-12 घंटा लगता था। कभी कभी तो हम ट्रेन और कार रास्ता ये सब देखते हुए मल्टी मॉड्यूल में यहाँ से जाना रायपुर, और नागपुर के पहले कहीं फ्लाइट नहीं था हमारे टाइम में। नागपुर यहाँ से करीब करीब काफी दूर है, करीब 8-10 घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए। उस समय में करीब 16-18 घंटा लगता था। उसके बाद हम फ्लाइट पकड़ते थे दिल्ली और बॉम्बे जाने के लिए, फ्लाइट पकड़ते थे तो फ्लाइट में तो 1 घंटा लगता था, 1.5 घंटा लगता था, लेकिन यहाँ से जाने के लिए 12 घंटा, वो चैलेंजेस था। अभी वो तो बहुत कम समय में आ गया, यहाँ भी आपको बिलासपुर में एयरपोर्ट आ गया, रायपुर में आ गया, यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस भी है आपका वेदांता। अच्छा। का और नजदीक में ही 8 किलोमीटर में एयर स्ट्रिप है, उसमें भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। और सबसे बढ़िया कि कम्युनिकेशन जो है उस जमाने में, मैं 1976 से यहाँ आया था, यहाँ आपको विश्वास नहीं होगा, अगर हम मैं कलकत्ता जो अपने घर जाने के लिए यहाँ से निकलता था तो एक पोस्टल बैग निकलता था यहाँ से, उसमें एक दिन या एक हफ्ता पहले लिखवाना पड़ता था हमें यहाँ छोड़ने के लिए, बॉम्बे मेल पकड़ने के लिए। यहाँ से 32 किलोमीटर था, एक हफ्ता पहले उसमें रिक्वेस्ट भरना पड़ता कंपनी के लिए, वो पोस्टल में चिट्ठी आती थी कंपनी के गाड़ी में, उसी गाड़ी में हमको भिजवाया जाता था जीप में। अब वो एक कैसे लग रहा था, अभी तो सोचते हैं कि सही में वो सपना था, अभी तो ये साकार हो गया ऐसा लग रहा है। अभी तो 1 घंटा नहीं लगता है वहां पहुंचने के लिए जब उस समय था। और ऐसे कंपनी के यहाँ कम्युनिकेशन भी नहीं, वायरलेस सीखना पड़ा, हमारी वायरलेस सेट रखना पड़ा, और वायरलेस में आपको कभी कभी मोर्स में, कभी कभी जैसे आर्मी में यूज करते हैं उसमें रेडियो फोन में, उसको यूज करके हम अपने हेड ऑफिस को उनको भेजते थे कि क्या किसका किसका माल गया, किससे किससे पैसा लेना है, क्या क्या माल अवेलेबल है। कोई फैक्स तो बहुत बाद में आया, वो दिन देखा। और आज का दिन में तो लोगों के पास में, हमारे पास में, जैसे आप कहाँ बैठे मैं कहाँ बैठा हूँ, दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसे ही करके हम प्रोडक्ट को दिखा सकते हैं कि हम देखिए आप ऑनलाइन देख लीजिए, प्रोडक्ट देखिए लीजिए। अभी फॉरेन कस्टमर को ऐसा हो गया है कि वो देख के खुश हो जाते हैं, सही में हमने बहुत अच्छा पार्टनर चुना। अब जब एक दूसरे को चुनते हैं, प्रोडक्ट चुनते हैं और आपका उसका परफॉर्मेंस के बारे में बात होता है, तो उनको ऑनलाइन में सब कुछ हेल्प मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। यस नो वहीं पर आएगा, वहां तो 15-15 दिन, 1-1 महीना के बाद में उसका रिजल्ट मिलता था कि ये ऑर्डर का। और बुकिंग टाइम बहुत बहुत लगता था, लेकिन उस समय में चैलेंजेस तो कंपटीशन इतना नहीं था, कंपटीशन कम था और लोग मार्केट प्लेस में इतना कम थे, और साथ में डिमांड भी था, काफी डिमांड था। जब डिमांड ज्यादा रहता है उस समय में प्रोडक्ट बेचने में आसान होता है, अभी तो डिमांड चैलेंजेस कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी तो मैं ये कहूंगा कि अभी मार्केटिंग करना, अगर हमें मॉडर्न ट्रेंड्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट, वो क्या चाहते हैं और किस लाइन में हमें उनको देना है, उसका सेटिस्फेक्शन तुरंत समझ जाते हैं। समझने के लिए आपको करना पड़ेगा कि उसका एंड यूज क्या है, उद्देश्य क्या है। अगर जब मैं उनमें उनके गुण को मैं अपने संभालूं कि उनको क्या चाहिए, तो ऐसा आसान हो जाता है उनको। एक एग्जांपल दूंगा, मैं एक होटल में जाके बैठता हूं, अगर खाने का ऑर्डर देता हूं, अगर वो समझ जाते हैं ये किस टाइप का खाना पसंद करते हैं, और मैं बोलूँ ठीक है आप जो अच्छा बनाते हो मेरे लिए ले आओ। अगर वो समझ पाया तो मैं तो उस होटल के लिए परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। वैसे जो अगर हम कस्टमर को जो उसको चाहते हैं उनको जो मैं अगर स्टडी कर लूंगा उसको समझ लूंगा तो ऐसा लगेगा कि हमने तो उनको वो हमें कैद कर लिया, हम उनको कैद कर लिए, जिंदगी भर के लिए एक दूसरे को हो गए। ये बहुत आसान तरीका है, अभी कम्युनिकेशन
1: बिल्कुल
0: बहुत इजी हो गया, परिवर्तन हो रहा है, अभी तो आगे भी बढ़ेगा। ये धरती सही में मतलब भारत विश्वगुरु तो बनना ही है, अभी बहुत सुंदर सुंदर।
1: आपकी बातें सुनकर बहुत बड़ा चेंज जो है वो आपकी बातों से पता चल रहा है कि 90s में आपने जिस तरह से काम किया आज के समय में, उस समय ट्रांसपोर्टेशन का भी बड़ा मुश्किल था।
0: जी हाँ जी हाँ, बहुत जैसे हम
1: चीजें हैं बिल्कुल चेंज हो गई हैं और हम सभी लोग जो है अच्छी तरह से उन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आता है समय के साथ साथ, वो आपके बातों से आपके माध्यम से ही हमने समझा। तो कमल जी, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता जी
0: जीवन
1: कमल
0: में। हाँ हाँ जी रमेश भाई, मैं तो ये
1: जी
0: कहूँगा जीवन में जितना आपका मुश्किलें आती है वो आपके
1: जी
0: बहुत सुंदर रास्ता चुनने के लिए अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक नहीं अनेक उसमें गुण समाए हुए हैं, भविष्य समाए हुए हैं। अगर देखिए आज मैं मॉर्निंग में बात कर रहा था, एक स्टूडेंट आया कि साहब एग्जाम है आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए, और मेरे को थोड़ा 2 दिन से टेंशन हो रहा है नज़दीक है। मैं बोले भाई जी जीवन तो बहुत आसान है, और स्टूडेंट जीवन अगर अगर आपको एग्जाम नहीं होता तो कैसा लगता? बोले आसान लगता। मैं बोले सो कि एग्जाम है ही नहीं, आपको जाके वहाँ बैठना है, आप जो जानते हो उसको लिखना है, आपके अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, उसको आप रिकॉल करो और उसको अपने आगे में लिखते जाओ। तो बोले ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे अंदर में सब कुछ समाया हुआ है, अनंत, ये जो हमारे अंतरात्मा है इस आत्मा के अंदर में सब कुछ समाया हुआ है। अगर हम समय सा नेगेटिव को लेके चलें कि ऐसा कैसा होगा वैसा क्या क्या क्या करते रहे तो हम तो अभी आगे अंदर से निकल नहीं पाएंगे, और वो हमारे फेस में नहीं आएगा कि हमारे चेहरे में नहीं आएगा, चेहरे में नहीं आएगा तो चलन में नहीं आएगा, और चलन में नहीं आएगा तो चरित्र में नहीं आएगा। अगर हम देखेंगे हमारा क्या क्या गुण है अंदर में, वो स्ट्रेंथ को हम अपने आप में अगर सोचते रहे कि हमारे सामने में जो बैठे हैं उनके साथ में क्या गुण है, वो गुण तो मैं ले लूंगा। ऐसा है कि मेरे अभी कई हजार मित्र है व्हाट्सएप में जुड़े हैं, और जब उनको आज तो टाइम नहीं मिला मैं उसको भेज देता, और जब मैं उन लोगों से बात करता हूँ गूगल मीट में बात करता हूँ अभी, तब लगता है कि हर मनुष्य के पास में एक यूनिक गुण, यूनिक कैपेसिटी है जो हम के अंदर में फ्लो, हम मेरे अंदर में फ्लो हो रहा है, और मैं भी उनको कुछ दे रहा हूँ। अगर ये भावना है
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो हम तो सही में सार्थक हो जाते हैं, समा जाते हैं, और वो अनंत में हम सही में समुद्र के अंदर में ऐसा लग रहा है कि मैं मेरे को आनंद आ रहा है।
1: बिल्कुल कमल जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, और मैं चाहूंगा कि आप अभी भी इसको शेयर कर सकते हैं, लोग देखेंगे आपको, सुनेंगे आपको, और बहुत ही अच्छी बातें आपने शेयर किया अपने अनुभव के। आइए, मैं जाते जाते भी अगर हमारे संतोष जी जुड़ गए हैं तो एक छोटा सा बीज गाने का डेडिकेट करें, उसी के साथ हम लोग कार्यक्रम पूरा करेंगे। संतोष जी
0: थैंक यू अच्छा जी जी बात
1: एक
0: बताओ
1: छोटा सा बीज सुनाइए 1 मिनट का।

0: ओम शांति
1: ओम शांति। संतोष जी, प्यारों से गीत आपने सुनाया और कमल
0: थैंक
1: जी को भी अच्छा लगा है, और हम चाहेंगे कि आप बीच बीच में इसी तरह जुड़े और बहुत ही अच्छा लगा। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं। चाहूंगा कि आप सभी को अच्छी तरह से आज के इस एपिसोड में, जहां पर कमल जी ने अपना अनुभव सुनाया, वो काफी मोटिवेशनल रहा, उनके जीवन के, लाइफ के जो खट्टे मीठे अनुभवों को साझा करते हुए किस तरह से उन्हें एनर्जी मिली, परमात्मा शक्ति मिली और कैसे उन्होंने काम किया, ये सारी बातें हमने सुनी। तो कमल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं। संतोष जी, थैंक यू सो मच, एक छोटा सा प्यारा सा गीत सुना कर भी आपने मन को मोह लिया, तो बहुत बहुत साधुवाद आपको ऐसा जुड़ने के।
0: थैंक यू।
1: तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: नमस्ते दोस्तों, चलो जल्दी से मिलते हैं पोंगाराम चाचा से, उनके घर चल के। अरे नहीं नहीं, उनके घर में कोई दावत नहीं है। आप सब यही सोच रहे हैं ना कि अगर दावत नहीं है तो फिर हम पोंगाराम चाचा के घर क्यों जा रहे हैं, है ना? चलो मैं आपको बताता हूँ, हम पोंगाराम चाचा के घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अपनी मीना भी आने वाली है बेला को कहानी की किताब लौटाने।
1: पिताजी, मैंने अपना निबंध लिख लिया, देखिए।
2: वो सब ठीक है बेला बेटी, पहले तुम ये तरबूज चक्कर देखो, बहुत मीठा है।
1: मेरा निबंध तो सुन लीजिए।
2: निबंध भी सुन लूंगा बेटी, इतनी क्या जल्दी है।
1: पिताजी, आप मेरी कोई भी बात नहीं मानते। हमारे आंगन में जो गड्ढा है उसमें आज सुबह ही मेरा पैर फंस गया था, कम से कम उस गड्ढे को तो ढक दीजिए ना।
2: सब हो जाएगा बेटी, पहले ये तरबूज खा लूं।
0: लो भाई, बेला तो उदास होके घर के अंदर चली गई और मीना बेला को आवाज लगाते हुए वहाँ पहुँच गई।
3: बेला दीदी, बेला दीदी।
4: अरे मीना बेटी, संभल के, गड्ढे से बचकर चलना। अरे मीना, तुम ठीक तो हो ना बेटी?
1: हाँ चाचा, ठीक हूँ, लेकिन ये गड्ढा देखा पिताजी? मैंने कहा था ना कि हमें इस गड्ढे को ढक देना चाहिए।
2: वो मैं
5: कोई बात नहीं बेला दीदी, बस हल्की सी चोट लगी है।
1: लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून निकल रहा है, मैं अभी मलहम लेकर आती हूँ।
2: बेला बिटिया ने ठीक ही कहा मीना, मुझे खाने पीने के साथ साथ जरूरी कामों पर भी ध्यान देना चाहिए।
5: गलती मेरी है चाचा जी, मुझे देख के चलना चाहिए था।
2: नहीं मीना, गलती मेरी है, अब मैंने ठान लिया है, आज जब तक मैं कोई तीन भले काम नहीं कर लेता, मैं खाने को हाथ भी नहीं लगाऊंगा।
3: कुछ नहीं खाऊंगा।
1: ये लो मीना मलहम, इसे अपने घाव पर लगा लो।
5: जी बेला दीदी, अरे मैं तो भूल ही गई थी, ये लीजिए आपकी कहानियों की किताब, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते चाचा जी।
2: नहीं मीना बेटी, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आऊंगा अपनी साइकिल पे। आओ मैं तुम्हें बिठाता हूँ, ये मैंने तुम्हें बिठाया साइकिल पे, और ये मैं बैठा। हाँ अब ठीक है, चले बेटी।
5: जी चाचा।
2: ये मैंने शुरू किया साइकिल चलाना। वो क्या है ना मीना, मैंने काफी समय से साइकिल नहीं चलाई ना, इसलिए थोड़ी ज्यादा मेहनत लग रही है।
5: पर चाचा आप तो।
2: हाँ हाँ, मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा बेटी।
3: चाचा जी, मेरे घर तो हम तभी पहुंचेंगे जब साइकिल स्टैंड से उतरेगी।
2: ओह, मैं तो साइकिल को स्टैंड से उतारना ही भूल गया, ये मैंने साइकिल उतारी स्टैंड से नीचे। चलो अब चलते हैं।
0: अभी पोंगाराम चाचा और मीना थोड़ी दूरी पहुंचे थे कि उन्हें एक झाड़ी के पीछे कुछ दिखा।
4: अरे वो देखो मीना, वो लाल लाल चीज क्या है?
5: चाचा ये तो दीपू की कमीज है।
4: कहीं उसे चोट तो नहीं लगी? लगता है आज का दिन ही खराब है, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। दीपू बेटा।
6: पकड़ लिया। दीपू, अगर पोंगाराम चाचा तुझे आवाज ना देते तो मैं तुझे कभी ना पकड़ पाता।
7: क्या चाचा, आपने मुझे आउट करा दिया।
2: ओहो, ये तो मुझसे फिर एक गलती हो गई। तुम लोग खेलो भाई, मैं चलता हूँ।
0: मीना और पोंगाराम चाचा साइकिल पर सवार होके आगे बढ़ने लगे, तभी मीना को कुछ और नजर आया।
5: चाचा वो देखिए, गीता दीदी के घर के दरवाजे से धुआं निकल रहा है।
4: अरे हाँ मीना, कहीं वहाँ आग तो नहीं लगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया।
0: पोंगाराम चाचा ने झटपट पड़ोस के घर से एक बाल्टी में पानी भरा और गीता के घर का दरवाजा खोल के सारा पानी अंदर फेंक दिया।
1: अरे
8: ये आपने क्या किया चाचा?
2: लो, एक तो मैंने धुआं देखकर तुम्हारे घर को जलने से बचाया और तुम हो कि
6: जलने से? चाचा, वो धुआं तो चूल्हे का था।
4: चूल्हे का?
6: हाँ, क्योंकि मैं खाना पका रही थी, अब आपके पानी डालने से सारा खाना भी खराब हो गया।
2: ओहो, एक और गड़बड़ कर दी मैंने।
5: रीता दीदी, महक इतनी जोर से क्यों खांस रही है?
8: मीना, जब भी मैं खाना बनाती हूँ महक खांसने लगती है।
2: तो फिर तुम्हें खाना बनाते समय महक को रसोई में लाना ही नहीं चाहिए। गीता, 9-10 महीने की छोटी सी बच्ची है और वैसे भी धुआं लगने से इस उम्र के बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है।
8: चाचा, मैं तो सिर्फ महक को अपने पास रखना चाहती थी।
2: सो तो ठीक है बेटी, लेकिन तुम महक को ऐसी जगह रखो जहाँ उसे धुआं भी ना लगे और तुम उसे देख भी सको।
5: देख भी सको, रोटी सेक भी सको। गीता दीदी, माँ भी खाना पकाते समय रानी को दूसरे कमरे में रखती है ताकि चूल्हे के धुएं से उसे खांसी ना हो।
8: आप दोनों ठीक कह रहे हैं, अब मैंने सोच लिया है, अब से जब भी खाना बनाऊंगी महक को दूसरे कमरे में ही रखूंगी ताकि उसे चूल्हे के धुएं से कभी कोई तकलीफ ना हो।
2: और मैंने भी सोच लिया है गीता बिटिया कि आज दोपहर का खाना तुम मेरे घर पर ही खाओगी।
8: लेकिन चाचा, चाची तो खाना बना भी चुकी होंगी।
2: अरे बेटी, तुम्हारी चाची को मेरी खुराक का पता है। खाना कम नहीं पड़ेगा। मैं पहले मीना को घर छोड़ाता हूँ, फिर तुम्हें और महक को लेता चलूंगा। क्यों गीता बिटिया?
8: जी चाचा।
2: चलो मीना।
5: चाचा, गीता दीदी को खाने पर बुलाकर आपने एक और भला काम किया है।
2: सो तो है मीना, लेकिन मैं अभी भी कुछ नहीं खा सकता।
5: खा सकते हो चाचा।
2: लेकिन मैंने तो अभी सिर्फ दो ही भले काम।
5: दो नहीं चाचा, तीन। देखिए, मुझे घर छोड़ा, गीता दीदी को खाने पे बुलाया और तीसरा, गीता दीदी को ये बताया कि वो महक को चूल्हे के पास ना बैठाया करे। हो गए ना तीन भले काम।
9: तीन भले काम, चाचा को आया आराम।
0: देखा दोस्तों, कितनी जरूरी बात पता चली आज। छोटे बच्चों को सांस की तकलीफ से बचाने के लिए उन्हें हमेशा चूल्हे के धुएं से दूर रखना चाहिए। इसलिए चूल्हे के पास खिड़की का होना बहुत जरूरी है, ना लगेगा धुआं ना होगा बच्चा बीमार। चलो अब देखते हैं मीना और मिट्टू क्या कर रहे हैं।
5: मुन्ना मुन्नी कभी ना हो खांसने पर मजबूर।
9: याद रहे है रखना उनको धुएं से बहुत दूर।
0: वाह, क्या मजा आया इस कविता को सुनकर। चलो अब गाने का मजा भी ले लिया जाए।

0: गाना सुनकर सचमुच मजा आ गया। क्यों दोस्तों, अब चलते हैं मीना की क्लास में।
1: क्या कहा, क्यों?
0: अरे भाई खेलना नहीं है? जल्दी से चलो, देखें आज बहन जी कौन सा खेल खिलाने वाली है।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे पहचानो कौन। मैं तुम्हें एक मशहूर व्यक्ति के बारे में 3 चीजें बताऊंगी और तुम्हें ये बताना है कि मैं किस मशहूर व्यक्ति की बात कर रही हूँ। तो तैयार?
3: जी बहन जी।
2: तो पहली बात सुनो, गांधी जी के साथ मिलकर सत्याग्रह को बढ़ावा देने से पहले ये देशभक्त नेता एक वकील थे।
4: पहले वकील थे, बाद में गांधी जी के साथ, मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे, है ना बहन जी?
2: ठीक कहा मीना। अब दूसरी बात, इन महान नेता को सरदार के नाम से भी जाना जाता था।
4: सरदार के नाम से जाना जाता था, वकील रह चुके थे और इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा भी लिया। बहन जी मतलब वो गांधी जी के खास दोस्त रहे होंगे।
2: शाबाश गोलू, लगता है बहुत जल्द सही जवाब मिलने वाला है। और तो और, इनके साहस और आत्मविश्वास के लिए इन्हें पूरे देश में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था।
5: समझ गया बहन जी, इनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
2: शाबाश कृष्णा, बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों इस खेल में मजा आया ना?
3: बहुत मजा।
0: भाई मजा तो हमें भी आया, क्यों दोस्तों? तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
3: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखें।
2: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली टियारा ऑफ फ्लावर्स जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा ये बैज ऑफ लाइफ जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
3: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार।
1: हेलो चिल्ड्रन, अगेन दिस इज संदीप त्रिवेदी। आई हैव कम विद द फिफ्थ लेसन विच इज अ हीरो। हीरो इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी विच इज रिटन बाय आर के नारायणन। फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद about the author. R.K. Narayan, born on 10 October 1906, was a leading writer of Indian English writing. R.K. Narayan jo the, unka janm hua tha 10 October 1906 mein, aur wo भारतीय जो राइटिंग है इंग्लिश खासकर, तो उसके बहुत ही प्रमुख अग्रज लेखक माने जाते हैं। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स आर सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, which was first introduced in Swami and Friends. उनका जो ज्यादातर काम है, अधिकतर जो काम किया है उन्होंने, जो भी मतलब लिखा है उन्होंने, वो एक काल्पनिक दक्षिण भारतीय शहर है, कस्बा है, जिसका नाम है मालगुडी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा मालगुडी डेज, वो सब आर के नारायण का लिखा हुआ है। टीवी पर उसके सीरियल्स भी आते रहे हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले इस शहर के बारे में, सिटी के बारे में, या इस टाउन के बारे में उन्होंने किस बुक में लिखा था? स्वामी एंड फ्रेंड्स में। इस फेमस नॉवल द गाइड हैज बीन वुवन इनटू द हिंदी फीचर फिल्म गाइड। उनका जो एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है द गाइड, उसी के ऊपर एक भारतीय हिंदी फिल्म भी बनी है गाइड के नाम से, देवानंद की फिल्म थी ये। हिज वर्क्स डिपिक्ट द सोशल कॉन्टेक्स्ट्स एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर्स हु आर प्री एमिनेंटली इंडियन। उनका जो कार्य है, उनकी जो लेखनी है, उनके जो लिखने का जो तरीका है, उसमें ज़्यादातर सामाजिक जो बातें हैं उन्हीं के ऊपर लिखा गया है, जीवन की, डेली की, एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की। और उनके जो पात्र हैं जिनके बारे में भी वो लिखते हैं, वो पूरी तरह से भारतीय हैं। ही इज़ वेल नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी इन प्रोज स्टाइल। और आर के नारायण को इसलिए भी जाना जाता है कि जो उन्होंने लिखा है बहुत ही सरल भाषा में, उसके लिए भी जाना जाता है। अबाउट द टेक्स्ट, अब हम टेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम मालगुडी टेल्स, रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण ने दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्ट, ये एक बहुत ही रुचिकर कहानी है फ्रॉम मालगुडी डेज, और इसको लिया है उन्होंने मालगुडी डेज से ही, जो कि आर के नारायण ने लिखी है। इट इज अ स्टोरी अबाउट अ बॉय, ये एक लड़के की कहानी है नेम्ड स्वामी, जिसका नाम है स्वामी, हु इज अफ्रेड ऑफ स्लीपिंग अलोन। अक्सर होता है ना, बच्चे अकेले सोने से डरते हैं, वो भी अकेला सोने से डरता है, खासकर कहाँ, इन डार्कनेस, अंधेरे में। He is mistaken to be a hero whose one desperate act leads to the imprisonment of most notorious thief of the area. अब कहानी में होता ये है कि जब एक बार उसको गलती से सोना पड़ गया अकेले, एक उसने गलती से बोल दिया कि मैं तो हीरो हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, और इसी की वजह से आखिरकार निराश होकर के उसको जब अकेले सोना पड़ा तो एक ऐसी घटना हुई कि उस इलाके का जो बहुत ही प्रसिद्ध चोर था उसको जेल की हवा खानी पड़ गई, यानी स्वामी की वजह से चाहे गलती से ही सही। द बॉयज फादर कंपेल्स हिम टू स्लीप इन अ डार्क रूम। जो स्वामी के पिता हैं, लड़के के पिता, वो उसको विवश कर देते हैं एक अंधेरे कमरे में अकेले सोने के लिए, इन ऑर्डर टू टीच हिम अ लेसन। उसको वो सिखाना चाहते थे ऑफ करेज फॉर हिज फ्यूचर लाइफ, अपने भविष्य के लिए उसको साहसी बनाना चाहते थे कि भाई डरने से कोई काम नहीं चलेगा। द बॉय हैज अ नाइटमेयर इन विच इज chased by a tiger and awakens only to find himself lonely and sees something moving down which turns out to be a burglar। अब होता क्या है कि जब वो अकेला सोता है तो उसको एक सपना आता है रात में। उसको लगता है कि एक जो बाघ है, टाइगर है, वो उसका पीछा कर रहा है और वो जाग जाता है। और अकेला जब अपने आप को पाता है तो वो देखता है कि कोई चीज है ऐसी जो चल रही है धीरे धीरे, और वो बाद में पता चलता है एक बहुत बड़ा सेंधमार था। तो ये बेसिकली कहानी है, इसी के इर्द गिर्द ये कहानी है। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अ हीरो बाय आर के नारायण। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। स्वामी के लिए घटना अचानक ऐसे मोड़ पर आ गई जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अनएक्सपेक्टेड। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर। पापा ने अखबार पे देखा। ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प, जो कि हॉल लैम्प की रोशनी में, हॉल में जो लालटेन थी उसकी रोशनी में वो एक समाचार पत्र को पढ़ रहे थे। एंड सेट, उन्होंने कहा, स्वामी लिसन टू दिस, स्वामी जरा ये सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ अ विलेज लैड, कि एक गांव का लड़का है उसकी बहादुरी को सलाम करती हुई ये खबर है। हु, जो कि वो लड़का, गांव का लड़का, वाइल रिटर्निंग होम, घर जाते हुए, बाय द जंगल पाथ, जंगल के रास्ते से, केम फेस टू फेस विद अ टाइगर। और क्या हुआ, उसका सामना एक बाघ से हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर। और इस पैराग्राफ में लिखा है कि किस प्रकार उस लड़के ने इस बाघ से लड़ाई की। एंड इज फ्लाइट अप अ ट्री Where he stayed for half a day। और वो क्या किया, लड़ने के बाद जल्दी से फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर लगभग आधे दिन रुका। टिल, जब तक some people came that way and killed the tiger। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ गांव वाले आए, उन्होंने बाघ को मार दिया। तब तक वो बहादुरी से पहले तो लड़ा, फिर उसे छुड़वा करके पेड़ पे चढ़ गया और वहीं पे रुका रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, इसको पढ़ते हुए, फादर लुक्ड एट स्वामी, पिताजी ने स्वामी की तरफ देखा, फिक्स्डली एंड आस्क्ड, और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, तुम क्या कहते हो स्वामी इसके लिए। स्वामी सेड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन। स्वामी कहता है, मैं सोचता हूँ कि वो एक बड़ा लड़का होगा, वयस्क होगा और हट्टा काटा मजबूत होगा आराम से, यानी वो ऐसा होगा जो लड़ सकता है किसी से भी। नॉट एट ऑल अ बॉय, और एक लड़का तो बिल्कुल नहीं होगा। हाउ कुड अ बॉय फॉट अ टाइगर, स्वामी ने आगे कहा, एक लड़का भले बाघ से कैसे लड़ सकता है भाई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, अब पिताजी कहते हैं तुम सोचते हो कि तुम समाचार पत्र से ज्यादा बुद्धिमान हो, वाइजर। फादर स्नीड और पिताजी ऐसा कहते हुए इसका एक तरह से मजाक उड़ाते, उसको हंसी उड़ाते हुए बोलते हैं, चिढ़ाते हुए एक तरह से। स्नीर्ड, SNEERED, अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कावर्ड। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति में इतनी ताकत होती कि वो हाथी भी हो सकता है और या फिर वो बहुत ही कायर भी हो सकता है। वेयर इज अनादर मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ कंसम्प्टिव बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो भले ही किसी बीमारी यानी टीबी जैसी बीमारी से भी, अगर वो ट्यूबरक्लोसिस है ना उसके जैसी बीमारी से भी कंजम्प्टिव, उससे जो पीड़ित होता है उसको बोलते हैं कंजम्प्टिव। तो ऐसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति भी अगर उसके अंदर साहस है तो वो ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मेन बात क्या है, पिताजी कहते हैं करेज इज एवरीथिंग, जो कुछ है वो बच्चों साहस है। एवरीथिंग इज करेज, करेज नहीं है, साहस नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ताकत और उम्र मायने नहीं रखती है। कोई बड़ा आदमी भी कायर हो सकता है और कोई बच्चा भी बहुत बहादुर हो सकता है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी ने इस कहानी पे जरा कुछ विवाद किया, डिस्प्यूटेड। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है पिताजी। सपोज आई हैव ऑल द करेज, कहता है मान लो मैं तो बच्चा हूं, मेरे अंदर बहुत साहस है, वॉट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, अगर मेरे पर कोई बाघ अगर हमला कर दे तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं कर सकता हूं मैं तो। लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज। अब कहानी बदल गई, पिताजी ने कहा चलो ताकत वाकत को तो छोड़ो, क्या तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है। किससे कहा, स्वामी से कहा, लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, देखते हैं जरा तुम्हारे अंदर साहस है तो क्या तुम मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकते हो आज। अ फ्राइटफुल प्रोपोजिशन स्वामी थॉट। अब स्वामी थोड़ा सा घबराया, अब डर के मारे वो सोचने लगा। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, वो तो हमेशा अपनी दादी माँ के पास होता है इन द पैसेज, वहाँ खुले में हॉल में बड़े कमरे में। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस व्यवस्था में अगर किसी भी तरह का परिवर्तन किया जाए, केप्ट हिम ट्रेम्बलिंग एंड अवेक ऑल नाइट, तो वो लगता है कि परेशान हो जाएगा, लड़खड़ा जाएगा और पूरी रात जागता रहेगा। ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वर ओनली जोकिंग, शुरू में तो उसने सोचा उसके पिताजी केवल मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, वो धीरे से बड़बड़ाया, यस हाँ, एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और विषय बदलने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली, उसने बहुत जोर से कहा, एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज्म, पूरे उत्साह से कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर। स्वामी ने कहा आज से पिताजी हमारा जो क्रिकेट का क्लब है उसमें आप जैसे लोगों को भी शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स, हम नए नए बैट्स खरीद रहे हैं एंड बॉल्स, और बॉलें भी खरीद रहे हैं। आवर कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे जो कैप्टन हैं, कप्तान जो है हमारी टीम के, उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बात करूं इस बारे में। वी विल सी अबाउट इट लेटर, पिताजी ने कहा, पिताजी ने बीच में उसको रोकते हुए कहा, फादर कट इन, बीच में रोका कट इन है ना, कि हम इस बारे में बाद में देख लेंगे, वी विल सी अबाउट इट लेटर, ये बाद में भी देख लेंगे इस बात को। यू मस्ट स्लीप अलोन हियरआफ्टर, लेकिन तुम्हें आज अकेले ही सोना है। स्वामी रियलाइज्ड दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। अब स्वामी समझ गया कि जो मुद्दा है वो उसके नियंत्रण से यानी उसकी पकड़ से बाहर चला गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। लगता है पिताजी अकेले सुला करके ही मानेंगे। फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड। एक चुनौती से अब ये एक आदेश बन गया था। ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स। वो अपने पिताजी की आदत को जानता था कि ऐसी स्थितियों में पिताजी क्या किया करते थे और कितना गुस्सा हो जाया करते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। उसने कहा पिताजी अगले महीने की जो पहली तारीख है तब से मैं अकेला सो जाऊंगा। नो यू मस्ट डू इट नाउ। तुम्हें अभी ही अकेले सोना है। इट इज अ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। अरे छोटे बच्चे की तरह अभी भी दादी के पास सोना जो है बहुत ही बेकार बात है, अपमानजनक स्थिति। ऐसा नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म। अब तुम दूसरी कक्षा में हो। एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप। और जिस प्रकार तुम्हारा लालन पालन किया जा रहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो तरीका। ही सेड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि अपने कामों में पहले से ही व्यस्त थी। व्हाई डू यू लुक एट मी व्हाइल यू से इट। ऐसा कहते हुए तुमने मेरी तरफ क्यों देखा। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, मैं लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती हूं। नो नो आई डोंट मीन यू, फादर सेड। पिताजी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हारा ये मतलब है कि तुम्हारी माता जी उसको खराब कर रही हैं, टेल हर सो, तो उनको बताओ ये। एंड डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो। शी सेड एंड टर्नड अवे, वो कह करके मुड़ गई। स्वामीज फादर सेट ग्लूमिली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। अब स्वामी के पिताजी जो है वो थोड़ा सा दुखी होकर के ये सब सुनने के बाद अखबार देखते रहे जो कि उनकी गोद में रखा हुआ था लैप, और बैठे रहे। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस सो दैट ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड एंड फॉल अस्लीप बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन। अब स्वामी ये प्रार्थना करने लगा भगवान से कि भाई पिताजी जो है अखबार अपने चेहरे के सामने रख लें उठा करके, जैसे कि अक्सर लोगों की आदत होती पढ़ने की, और वो चुपचाप से उठ करके चला जाए और अपने बिस्तर पे जा करके सो जाए इससे पहले कि पिताजी उसको बुलाएं। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर, उसकी प्रार्थना के जवाब में फादर रसल्ड द न्यूज़पेपर, पिताजी ने अखबार उठाया एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, अपने चेहरे के सामने रख लिया। एंड स्वामी रोज साइलेंटली, चुपचाप उठा एंड टिपटोड धीरे से अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। और जो जो खुल जो एरिया था जहाँ सोने की जगह थी उसकी, वहाँ पर वो चला गया। ग्रैनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, अपने बिस्तर पे दादी बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, दादी ने कहा, बॉय लड़के आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम्हें नींद आ रही है। डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी, क्या आज तुम कहानी नहीं सुनोगे। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस, स्वामी ने इशारा किया हाथ से, पस पस चुप हो जाओ दादी ऐसे, टू साइलेंस हिज ग्रैनी, अपनी दादी को। बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग, लेकिन उस महिला ने तो कुछ भी नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, अपने आप को स्वामी ने एकदम से जैसे बिस्तर पे फेंका, एंड पुल्ड द ब्लैंकेट, कंबल उठाया, ओवर हिज फेस, अपने चेहरे पर रख लिया। ग्रैनी सेड, दादी ने कहा, डोंट कवर योर फेस, अपना चेहरा मत ढको, आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम्हें सचमुच नींद आ रही है? स्वामी लेंट ओवर एंड विस्पर्ड, स्वामी उठा और कान में फुसफुसाते हुए बोला, प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, दादी चुप हो जाओ, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनी वन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, अरे घर में अगर आग भी लग जाए तो मुझे आवाज मत लगाना, इफ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं नहीं सोया जल्दी से, आई शैल परहैप्स डाई, तो शायद मैं मर जाऊं। क्यों मर जाऊं? क्योंकि पिताजी ने कह दिया था आज अकेले सोना है ऑफिस के कमरे में। ही टर्न्ड ओवर कर्ल्ड एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसका कंबल किसी ने खींच नहीं लिया, उसने कंबल अपने ऊपर डाला और जोर जोर से जैसे खर्राटे लेते ना, स्नोर्ड, खर्राटे लेने लगा, बहाना बनाने लगा एक तरह से कि मुझे बहुत नींद आ गई है। फादर स्टैंडिंग ओवर हिम, पिताजी खड़े थे उसके पास, स्वामी गेट अप, स्वामी उठो, ही सेड, उन्होंने कहा, ही लुक्ड लाइक एन अपेरिशन, अब वो किसी मतलब भूत से कम नहीं लग रहे थे इस वक्त, इन द सेमी डार्कनेस, उस कुछ अंधेरे कुछ उजाले वाले कमरे में, ऑफ द पैसेज विच वॉज लिट बाय अ कॉन ऑफ लाइट रीचिंग फ्रॉम द हॉल लैम्प, जो कि रोशनी हॉल की लालटेन से अभी भी आ रही थी। स्वामी स्टेड एंड ग्राउंड एज इफ इन स्लीप, स्वामी थोड़ा हिला, वैसे उसने बहाना किया जैसे वो सो रहा है। फादर सेड, पिताजी ने कहा, गेट अप, उठो स्वामी। ग्रैनी प्लीडेड, दादी ने कहा, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम क्यों उसको परेशान करते हो? गेट अप स्वामी, उठो स्वामी, ही सेड ऑफ द फोर्थ टाइम, चौथी बार उन्होंने कहा, एंड स्वामी गॉट अप, स्वामी उठा। फादर रोल्ड अप हिज बेड, पिताजी ने उसका बिस्तर उठाया, टुक इट अंडर हिज आर्म, अपने हाथ के नीचे रख के, एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने दादी की तरफ देखा, हेजिटेटेड, कुछ क्षण के लिए वो हिचकिचाया, एंड फॉलोड हिज फादर, आखिरकार पिताजी का आदेश था तो पापा के पीछे पीछे जाना पड़ गया, इनटू द ऑफिस रूम, कहाँ पे, सीधा ऑफिस के कमरे में। ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, जाते हुए रास्ते में उसने एक नज़र अपनी मम्मी को भी देखा कि माता जी शायद बचा लें, एंड शी सेड, उन्होंने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, तुम इसको ऑफिस के कमरे में क्यों लेकर के जाते हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, वो हॉल में सो सकता है, आई डोंट थिंक सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, फादर सेड, पिताजी ने कहा, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, सिर झुका करके बेचारा स्वामी जो है उनके पीछे पीछे जाने लगा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि चलिए मुझे दादी के पास नहीं तो कम से कम हॉल में ही सोने की अनुमति दे दो, ऑफिस के कमरे में नहीं, योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, आपका ऑफिस का कमरा तो बहुत धूल भरा है, एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और आपकी जो लॉ की किताबें उनके पीछे बिच्छू वगैरह भी हो सकते हैं, देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, छोटे बच्चे वहाँ पे कोई बिच्छू नहीं है, स्लीप ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर सो जाना इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, उसने पूछा स्वामी ने कि क्या मैं लालटेन को जला सकता हूँ? नो, नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें अंधेरे से जो डर है तुम्हारा वो भगाना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा कि अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, इट इज ओनली अ टाइम ऑफ हैबिट, ये केवल एक इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल आदत की बात है और कुछ नहीं है. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें बनानी होंगी. विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप दरवाजा खुला छोड़ेंगे प्लीज? ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन तुम वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम तुम्हारा बिस्तर समेटोगे नहीं, एंड गो टू योर ग्रैनी, और कहीं दादी माँ के पास जाकर के नहीं सो जाओगे रात को. इफ यू डू इट, अगर तुमने ऐसा किया, माइंड यू, ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो तुम्हारे स्कूल में आकर के, तुम्हारे विद्यालय में आकर के मैं तुम्हें हंसी का पात्र बना दूंगा, इस बात का ध्यान रखना. तो ओके चिल्ड्रन, टुमारो आई विल कंटिन्यू. गुड बाय.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: शिवांशी, तुझे पता है मैं बड़े होके ना अपनी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी।
3: हाँ, रखूंगी तो मैं भी, पर बड़ी होके तुम क्या बनोगी?
2: मैं बड़े होके ना एक अच्छी से है ना डॉक्टर बनूंगी, जो सब लोगों का अच्छे से ख्याल रखा करेगी, बिल्कुल फ्रेंडली डॉक्टर बनूंगी।
3: और मैं बड़े होके तो अपने देश के लिए कुछ करूंगी।
4: बड़े होके क्या करेंगे, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है ना आपसे?
3: हाँ जी,
4: है ना, बार बार पूछते ना बड़े होके क्या बनोगे क्या बनोगे, स्कूल में भी पूछते हैं, जो मिलते हैं वो भी पूछते हैं, ऐसा होता है?
3: हाँ
4: होता है ना। तो क्या बनेंगे वो तो चलो एक बात है, लेकिन बड़े होना होता कैसा है? चलो एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज देखते हैं बड़ों की दुनिया कैसी होती है। आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में? ठीक है? ठीक है, चलो तो फिर एक बार बता दो आज हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग?
5: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ।
6: मेरा नाम हर्षिता है, मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ।
7: मेरा नाम शिक्षा है, मैं क्लास 10th में हूँ।
8: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
4: ओके, तो आप लोग को क्या लगता है बड़ा होना, मतलब मैं आपसे ये नहीं पूछ रही हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, लेकिन बच्चे होने और बड़े होने में क्या अंतर होता है, क्या लगता है आप लोगों को?
6: जब हम बड़े होते हैं तब जिम्मेदारियां बढ़ती है, और जब हम छोटे होते हैं जिम्मेदारियां कम होती है। अगर हम कुछ गलती करते हैं तो वो माफ भी हो जाती है।
4: ओके,
8: नहीं जब छोटे होते हैं ना तब मतलब खेलने कूदने में ज्यादा ध्यान रहता है, ऐसा नहीं रहता कि हाँ घर का काम करना ये करना है। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना फिर ऐसे होता है हाँ अब खेलना कूदना कहाँ है, अब तो बस घर का काम ही है।
4: ओके,
5: दीदी जब छोटे होते तो ऐसा लगता है बड़े बंदों की लाइफ आसान होती होगी, और जब बड़े होते हैं तो लगता था कि छोटे बच्चे ही होते हैं।
4: नहीं अभी तो, अभी जैसे आप छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, ठीक है। अच्छा बड़े होना क्या होता है, क्या लगता है कितनी एज में बड़े हो जाते, जिसको हम कह सकते हैं कि अभी आप बड़े हो गए?
5: 18+।
4: ओके, आप लोगों को क्या लगता है कब बड़े हो जाते हैं?
7: दीदी जब जॉब करने लगते हैं तो बड़े हो जाते हैं, 20।
4: ओके, जब जॉब करने लगते हैं। ओके, कब बड़े हो जाते हैं?
8: वैसे तो कभी बड़े होते नहीं अपने पेरेंट्स के लिए, पर मेरे को 25 लगता है।
4: ओके, आपको क्या लगता है?
6: मुझे 17+।
4: ओके, ठीक है, तो जब आप लोग 17, 18, 20, 25 के हो जाओगे तब कैसे होगे आप लोग, क्या क्या करोगे? ऐसी कोई चीजें हैं जो तब कर सकते हो और अभी नहीं कर सकते, या फिर आपको ऐसा लगता है अब ज्यादा चीजें कर सकते हो और तब शायद नहीं कर पाओगे?
5: दीदी जब 18+ के हो जाते हैं तो हमारा गाड़ी का लाइसेंस बनता है, तो हम गाड़ी भी चला सकते हैं।
4: ये तो है,
6: और हम वोटिंग भी कर सकते हैं।
4: वोटिंग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। और क्या लगता है बड़े होना ज्यादा अच्छा है कि बच्चे होना ज्यादा अच्छा है, मतलब इंटरेस्टिंग क्या है?
6: बच्चे रहना ज्यादा अच्छा होता है।
4: ओके,
8: बच्चे रहना ही होता, क्योंकि बच्चे जब रहते हैं तब अगर कोई गलती भी कर दे बड़ी छोटी तो माफी में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब बच्चे होते हैं ना फिर ही हम मतलब अच्छी लाइफ जी सकते हैं, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं उस टाइम कोई मिस्टेक कर दें या कोई बड़ी गलती कर दें तो माफ़ी मिल जाती है या फिर डांट पड़ जाती है थोड़ा। तो अगर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उसके बाद अगर वही गलती रिपीट करें तो उस बात की हमें बड़ी सज़ा मिलती है।
4: ओके, शिक्षा आपको क्या लगता है?
6: दीदी छोटे होना ही अच्छा है, क्योंकि छोटे में ना मम्मी पापा का प्यार मिलता है कितना। बड़े हो जाते हैं फिर तो बिजी हो जाते हैं, मम्मी पापा के लिए टाइम ही नहीं होता है किसी के पास।
4: ओके, वैलिड पॉइंट है, टाइम बचपन में ज्यादा मिलता है ना मम्मी पापा के। राघव आपको क्या लगता है, बड़े होना अच्छा है कि बच्चे होना अच्छा है?
5: बच्चा होना अच्छा है।
4: क्यों?
5: क्योंकि उधर हम खेल सकते हैं और खेलते हैं तो सबको खुशी भी मिलती है।
4: खेलने में मजा तो आता है ना। तो बड़े लोग नहीं खेलते क्या?
5: नहीं, वो कभी कभी खेलते हैं, ऐसे ज्यादा नहीं खेलते।
8: वो बस कोई महीने में एक दिन खेलते हैं, कोई मतलब जिस दिन छुट्टी हो या फिर कहीं उनको कहीं बाहर काम ना हो फिर ही खेलते हैं, और उस टाइम भी अगर उनको कुछ और काम अर्जेंट आ गया तो वो भी नहीं खेलते।
6: और मतलब जब उनके ग्रुप्स होते हैं फ्रेंड्स के, उस टाइम पे महीने में एक बार कभी दो बार जाते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ, या फिर उस टाइम पे कोई अर्जेंट काम आता है तो
4: तब नहीं खेल पाते हैं।
6: नहीं।
4: शिक्षा आपको क्या लगता है, बड़ों के लिए खेल होते हैं या बच्चों के लिए ही होता है?
6: दीदी खेल तो कोई भी खेल सकते हैं, क्योंकि खेल है ना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बनाए गए हैं। खेल तो बड़े लोग भी खेलते हैं, बस वो बिजी रहते हैं इस वजह से नहीं खेल पाते हैं।
4: बट खेलना अच्छा लगता है बड़े लोगों को, लगता है आपको?
6: हाँ, उनको खेलना अच्छा लगता है।
5: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें ना मॉल में खेलने के लिए जगह बना रखी थी, तो सब बड़े है ना खेल रहे थे, फिर ऐसा लग रहा था कि वो अपने बचपन की लाइफ ही जी रहे हैं। मतलब वो बारी बार खेल ही रहे थे,
4: इतना मजा आ रहा था। ओके, अच्छा आप लोगों को लगता है बड़े होने के कुछ फायदे होते हैं जो सिर्फ बड़े होके ही मिलते हैं, अभी नहीं मिलते आप लोगों को, ऐसा लगता है? बोलो।
8: बड़े होके वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, गाड़ी का लाइसेंस बन जाता है, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, बहुत सारे कार्ड्स बन जाते हैं जो बस हमें बड़े होने के बाद ही मिलते हैं, छोटे बच्चे में नहीं मिलते।
4: तो कुछ फायदा क्या है लेकिन, इसका फायदा क्या लगता है आपको?
8: फायदा वोटिंग का तो ये फायदा है कि हाँ हम अपनी खुद की जो हमारा जो लीडर है हम उसको डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ हमारा लीडर ही यही होगा। और
4: पर्सनल लाइफ में कोई फायदे लगते हैं आप लोगों को बड़े होने के?
6: दीदी बड़े होके हमारी खुद की एक आईडी बन जाती है, जैसे कि लोग जब हम छोटे होते हैं तो जानते हैं कि है ना उनकी बच्ची है, ऐसे बड़े होते हैं ना तो मतलब ऐसे बड़े हो जाते हैं तो पहचानते हैं, खुद के नाम से पहचाने जाते हैं,
4: खुद के नाम से पहचाना जाता है। हाँ,
8: और अगर हम बड़े होकर कुछ बन भी जाते जैसे कोई आईएएस आईपीएस, तो मतलब पहले जब हम अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स को हमारे नाम से जाना जाता होगा,
4: कुछ बन जाते हैं।
8: हाँ, ताकि हाँ ये उनके पापा हैं, उनकी मम्मी है,
4: तो अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है।
8: हाँ, ऐसे लगता है कि उस क्या बताएं।
4: ओके, अब बोल रहे थे
6: बड़े होने के बाद मतलब अपनी एक प्रॉपर्टी, अपना मतलब जो भी है घर में थोड़ा बहुत अपना चलने लग जाता है। बचपन में ऐसे कुछ नहीं, ये जो मम्मी बोलती है वही करना है।
4: अपनी चलती नहीं है ना बचपन में?
6: नहीं।
4: और बड़े होके अपनी बात कह सकते हो?
6: बात कह सकते हो,
4: और जो करना है वो कर सकते हो।
6: हाँ।
4: ओके, राघव क्या लगता है आपको?
5: दीदी बड़े होना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अपनी खुद की आईडी बनती है वो एक अच्छी चीज है।
4: वो एक अच्छी चीज है। ओके, और जैसा अभी हर्षिता ने भी बोला ना कि अपनी आप थोड़ी चलती है अपनी, अभी तो सिर्फ सुनना पड़ता है ना, बच्चों को तो बड़ों की बात माननी भी चाहिए क्योंकि बड़े अनुभवी होते हैं ना, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है, क्या लगता
6: है? हाँ, ये भी ठीक है कि बड़े मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ज्यादा ये होता है सब, तो उनकी बात मानना भी अच्छी बात है।
4: लेकिन अपनी कोई बात अगर आपको सही लगती है तो उनके सामने बोलनी चाहिए या नहीं?
6: नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा करते हैं।
4: गुस्सा करते हैं
6: या फिर मम्मी डांटेगी कैसे नहीं बोलना चाहिए था।
4: लेकिन अगर हम कायदे से प्यार से बोले तो
6: हमें फिर ऐसे प्यार से बोले, लड़ते हुए नहीं बोलेंगे तो फिर अच्छी बात है, फिर वो कभी मतलब कभी कभी ऐसे हाँ ये भी बराबर है ऐसे
4: बोल सकते है ना। तो मतलब बड़ों से हम अपनी बात थोड़ा प्यार से अलग से जाके बोल सकते हैं, अपने दिल की बात तो बोलनी चाहिए,
6: ऐसा तो करना ही है,
4: करना है ना। बिल्कुल, और क्या लगता है आप लोगों को बड़े होने के फायदे और क्या होते हैं, पर्सनली बताओ, क्या नुकसान लगते हैं तो नुकसान भी बता सकते हो?
8: नुकसान तो बस यही है कि अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा मतलब टाइम नहीं बना पाते, जैसे बचपन में जैसे हम मतलब उनके साथ बैठते थे, टाइम स्पेंड करते थे, उनके साथ खाना खाते थे, फिर बड़े होके वो सब नहीं मिलता, क्योंकि बड़े होके मतलब जॉब में लग जाते हैं, किसी काम में लग जाते हैं,
3: तब पूरे दिन तो अलग ही रहते हैं, मतलब अलग कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो उधर रहते हैं, रात को आते हैं तो लेट आते हैं तो पेरेंट्स खाना खा चुके होते हैं या फिर कई बार नहीं खाया होता, तो बस एक बाय चांस कोई एक दो टाइम ऐसा होगा जिससे एक साथ बैठ के खाएंगे। और छुट्टी के दिन भी कई ऐसे कई लोग होते हैं कि छुट्टी होती है तो हाँ चलो आज बाहर घूमना चल पड़ते, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर पाते,
4: ऐसा हो जाता है। और कोई फायदा नुकसान बड़े होने का जो लगता है?
6: दीदी है ना, बड़े होने का नुकसान तो है कि देखो सबसे बड़ी बात तो जब छोटे थे तब पेरेंट्स के साथ कितने अच्छे से रहते थे, उनके साथ खाते थे, बड़े हो जाते तो इतनी जल्दी में रहते हैं कि साथ में बैठ के खा भी नहीं पाते हैं। अभी है ना जैसे कि मेरे पापा हैं वो दादी से मिलने भी है ना बहुत टाइम निकालना पड़ता है उनको, या फिर है ना एक दिन वो है ना लेट चले जाएंगे अपनी दुकान पे काम के लिए। कभी कभी ऐसा दिन होता है रात को वो बहुत लेट सोने के जगह दादी से मिलने चले जाते हैं क्योंकि वो मिल नहीं पाते हैं उनसे, इतने बिजी रहते हैं। दादी इसीलिए पापा से कभी कभी काम की भी नहीं कहती है क्योंकि वो इतना बिजी रहते हैं कि वो फोन लगाती हैं तो भी बात नहीं हो पाती है। तो मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि बड़े होके अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं कर पाते।
4: ये तो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है, क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा है चाहे कितने भी बड़े हो जाए ना।
3: जब हम छोटे होते हैं तब हमारी पढ़ाई भी बहुत कम होती है और जब हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे पढ़ाई बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। छोटे होने के टाइम चाहे कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े चलेगा, पास हो जाते हैं, बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना तब पास से बस कुछ नहीं होता, पास हुए तो बस यही मानते हैं कि फेल के बराबर ही माना जाता है अब तो। पहले पास तो मतलब टॉप पे था पहले के टाइम पे, अब पास मतलब फेल के बराबर है, रैंक आना चाहिए टॉप 10 में। तो अब पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा वो हो जाता है,
4: कंपटीशन बहुत आ जाता है
3: और स्ट्रेस भी बहुत बढ़ जाता है बड़ों को फिर। जैसे मतलब यूपीएससी का एग्जाम है उसमें कितना स्ट्रेस हो जाता है कि हाँ फर्स्ट पे आना है सेकंड पे आना है, बट स्ट्रेस बहुत हो जाता है, फिर कई बार हेल्थ भी खराब हो जाती है स्ट्रेस के चक्कर में।
4: तो अभी नहीं लगता आप लोगों के पास स्ट्रेस है?
3: अभी तो बस स्ट्रेस स्टार्ट हुआ है, फिर तो बढ़ता जाएगा अब तो आगे आगे चल के।
4: ओके
6: दीदी, मेरे एक मामा और मामी है वो दोनों जॉब करते हैं, इतना स्ट्रेस है कि मेरी जो मामी की आंखें है ना वो पूरे ऐसे काजल जैसे लगाते हैं ना वैसे पूरे एकदम काली काली हो गए, उनको इतना स्ट्रेस होता है। और कभी कभी ना वो मेरे अंकल के से हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, इतना मतलब वो स्ट्रेस होता है वो जॉब का।
4: तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े होके मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है ना?
6: हाँ, अगर कोई अपने को मतलब बड़े होके कुछ तो मतलब IAS बनना है या फिर DM बनना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे कुछ बनना है तो फिर बहुत स्ट्रेस आ जाता है।
4: वो कंपटीशन भी है, स्ट्रेस भी लगता है।
6: और जैसे कि उसने कहा कि बड़े होने के बाद मतलब वो टेंशन बढ़ता ही चला जाता है, टेंथ से शुरू होता है तो टेंशन बढ़ता है।
4: तो कभी कम होता है आपको लगता है, बड़ों का टेंशन कम भी होता है कभी?
6: हाँ कभी कभी ऐसे हो सकता है,
4: बढ़ना बढ़ता है ज्यादातर
6: तो बढ़ता ही है।
7: दीदी फैमिली का टेंशन में मतलब जो जॉब वगैरह करता है उसका टेंशन तो तभी कम होता है जब अपनी फैमिली के साथ बैठे अपना स्ट्रेस वगैरह क्या उसको है ना मतलब जो बात दिल में होती है वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं तब अच्छा लगता है। मेरे पापा को इतना स्ट्रेस रहता है कि उन्हें लगता है कि अब तो उन्हें दादी के पास जाना ही पड़ेगा टाइम निकाल के, फिर वो वहाँ पे जाएंगे, जिस दिन उन्हें स्ट्रेस होगा ना वो हम लोगों से भी हंसते नहीं है सामने में, वो बस ऐसे सोचते रहेंगे कुछ ना कुछ, पापा से बोलो पापा खाना खा लो, हाँ खा रहे खा रहे, वो मतलब बिल्कुल खोए रहते हैं अपनी बात अपने संकल्प चलते रहते हैं उनके। वो दादी के पास जाते हैं उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, फिर दादी के यहाँ से बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए आते हैं, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है।
4: मम्मी तो मम्मी है ना चाहे कितने भी बड़े हो जाए।
6: हाँ जैसे कि उसने कहा कि अभी वो दादी के पास जाते हैं तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, पर जब हम पेरेंट्स के पास जाते हैं तो फ्रीली जाना चाहिए, उनको अभी उतना सा टाइम देके जा रहे हो तो भी उनको टेंशन में भरा रहे हो, हाँ ऐसे था फिर क्या करूँ मैं अब, तो फिर पेरेंट्स के पास ऐसे जाना ही नहीं मिलता जिसमें अगर हम फ्रीली बात करें कि हाँ कैसे हो कैसे हो, वैसे नहीं टेंशन में जा रहे हम लोग वैसे।
4: तो पेरेंट्स को भी टेंशन हो जाती है?
6: हाँ उनको भी थोड़ी टेंशन आ जाती है, मतलब वो पहले से
4: टेंशन
6: है उनको, मतलब वो बड़े थे उस टाइम पे भी टेंशन था, अभी उनके ये भी उनको टेंशन दे रहे, पर अगर उनको ऐसे अच्छा लग रहा है कि मतलब वो उनको अच्छा फील करवा सकते हैं फिर उनको अच्छा लग रहा है तो फिर ठीक है, मतलब वो जैसे उसने कहा कि मुस्कुराते हुए आते फिर.
4: कितनी अच्छी बात है मुस्कुराना तो अगर, लेकिन फिर टेंशन तो कम करनी पड़ेगी, कोई तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना.
6: वो तो है, कोई तरीका भी ढूंढना पड़ेगा.
4: ठीक है, तो और तरीके ढूंढ सकते हैं मतलब.
6: और टेंशन कम करने के ऐसे नहीं कि एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं. जैसे कि अगर आप, आपका एकदम मूड सैड है, एंग्री हो आप, तो आपको मतलब कभी कभी बुरा लगता है ना, कोई बात नहीं करता है, तो फिर उससे अच्छा आप मतलब मुस्कुराते रहो, तो कोई बात करेगा तो फिर अपने आप वो टेंशन भूल ही जाओगे आप.
4: ओके, मुस्कुरा के बात करोगे तो टेंशन भूल जाओगे.
8: दीदी जैसा कि अभी इन दोनों ने कहा, इसने मतलब शिक्षा ने कहा कि पेरेंट्स को बता के हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, फिर हर्षिता ने कहा कि पेरेंट्स को बताने से उनका टेंशन बढ़ जाता है. बट ऐसा कुछ नहीं है, उनका टेंशन नहीं बढ़ता, बल्कि हमें एक सजेशन मिलता है कि हाँ उस टेंशन को कम कैसे करें. वो पेरेंट्स बात अपने दिल तक नहीं लेके जाते, वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ के अपने बच्चों को बताते हैं. थोड़ा टेंशन लेंगे तो ही सॉल्यूशन बताएंगे. अब जो उनके बेटे हैं उनको इतना टेंशन है, उनको कुछ और सूझ नहीं रहा है. अब जो उनके पेरेंट्स हैं वो फ्री माइंडेड हैं, उनको थोड़ा सा टेंशन मिलेगा तो उनको सॉल्यूशन आराम से मिलेगा. तो उनको टेंशन थोड़ा सा देना ही, मतलब उनके लिए टेंशन वो थोड़ा सा है, बट जो उनके बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा है. वो सॉल्यूशन देंगे फिर वो.
4: राघव आपको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता राघव को बड़ों के बारे में, कुछ बड़े होने के बारे में फायदा नुकसान कुछ तो लगता होगा. बड़े होकर ये करूंगा ये करूंगा कभी नहीं सोचा? कभी नहीं, बस बच्चे होना ही अच्छा है.
6: हाँ.
4: चलो वो भी अच्छी बात है.
6: दीदी बड़े होकर एक फायदा भी है कि हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर कर पाते हैं. जैसे वो हमारी करते थे वैसे हम भी उनके लिए कभी कुछ लेके आते हैं तो वो कितना खुश होते हैं. फैमिली के लिए जैसे कभी कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके आओ, पापा आए घर पे आपके लिए कुछ लेके आए, ऐसे मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो जब उनके है ना इनकम हो जाती है, वो जब कमाने लगते हैं तो वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं सबको, तो उनको भी खुशी मिलती है अंदर से कि हमने कुछ तो अच्छा किया है,
4: कुछ करना है मतलब बड़े होके ना पेरेंट्स के लिए.
6: हाँ.
4: वो चीज अच्छी है.
6: हमारे ना जब फोर्थ का गैदरिंग था ना तब एक थीम थी, उसमें मेरी एंकरिंग थी. वो ना एक फर्स्ट की छोटी बच्ची थी और उसकी और मेरी एंकरिंग थी कि छोटे रहना ज्यादा अच्छा होता है, कि छोटापन कभी नहीं भूलना चाहिए. जिंदगी में तीन टाइम आते हैं, पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है जो बूढ़े होते हैं वो. तो और मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं हम हमारे पेरेंट्स की केयर करते हैं जैसे वो हमारी केयर करते थे. तो वैसे ही कह सकते
4: हैं. ओके, दैट्स आल्सो नाइस. तो मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, ऐसा कभी लगता है?
6: नहीं, बिल्कुल नहीं लगता.
4: किसी को लगता है?
6: नहीं
8: दीदी, लगता नहीं है, बस बड़े होते जाते हैं. कब पूरा साल बीत जाता है पता ही लगता है. ऐसे लगता है कि अभी तो कल नया साल शुरू था और आज खत्म भी हो गया.
6: और दीदी मतलब बचपन में ऐसे लगता है जब हम फर्स्ट सेकंड में होते कि यार वो फोर्थ के बच्चे फिफ्थ के बच्चे कितनी शाइनिंग मारते हैं, हमको भी उनके जैसे बड़े होने. पर बड़े होने का ऐसा लगता है यार अभी बच्चे ही अच्छे थे, हम क्यों नहीं बच्चे हैं.
4: ओके, और शिक्षा को क्या लगता है, बड़े होने का मन करता है कि नहीं करता है?
6: दीदी मुझे नहीं होता बड़े होने का मन, क्योंकि मुझे तो है ना बस अपने मम्मी पापा के साथ रहना है. बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज या जॉब के लिए दूर जाना होता है उनसे, मुझे उनसे दूर नहीं जाना. और
5: दीदी हमको ना मतलब टाइम तो निकालना ही चाहिए, जैसे कभी हम रात को लेट आते हैं और अगर वो उठे होते हैं तो हमको उनके पास जाना चाहिए. और अगर वो सो रहे होते हैं तो हमको सुबह जल्दी उठ के जितने बजे

0: इधर से उधर, उधर से इधर, फिर बॉस की सुनो। वैसे
1: लगते में तो ऐसे लगते कि बहुत अच्छा पैसा है उनके पास, पर उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना करना पड़ता है, वो नहीं लगता अपने को।
2: बहुत मेहनत होती है, बिल्कुल।
3: दीदी एक बार ना मैंने यही सुना था कि ना माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है, तो मैं उनके पैरों के अंदर देखने लग गया था। फिर मैंने उनसे पूछा, स्वर्ग नहीं दिख रहा मुझे।
2: तो मिला नहीं मिला फिर?
3: नहीं मिला।
2: जो क्या बोलते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि वो लिटरल नहीं होती है, है ना, कि वो देखने में नहीं पता चलता है, लेकिन उनका मीनिंग भावना से जुड़ा होता है ना। तो अगर माता पिता का हम आशीर्वाद लेते हैं तो समझ लो हम स्वर्ग मतलब क्या, बहुत सुंदर दुनिया है ना।
3: हाँ।
2: तो उनके पास हमारी सबसे सुंदर दुनिया होती है, हमारा जिसमें भला ही भला होता है, हमारा जिसमें अच्छा ही अच्छा होता है, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता।
3: दीदी हमको बड़े होके ना कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। मान लो कि हमको किसी ने नौकरी से निकाल दिया और हमको किसी से कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे, तो हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको नौकरी ढूंढती रहनी चाहिए।
2: हाँ, बड़े होके कभी कभी गलत काम करने लगते हैं ना हम, बच्चे होके तो सुन लेते हैं, किसी ने डांट दिया तो मान भी लेते हैं गलती।
3: दीदी कई कई बच्चे भी चोरी करते हैं।
2: बच्चे भी करते हैं मतलब?
3: दीदी हमारे स्कूल में एक बच्चा है, वो भी चोरी करता था, तो हमारी एक म्यूजिक मैम है, उन्होंने बोला कि पुलिस को बुलाया हमने, और पुलिस मतलब किसी काम से आई थी, तो मतलब उनको कोई डॉक्यूमेंट, तो उसको सच्ची लगा कि पुलिस आ रही है, तो वो जाके छुप गया कहीं।
2: तो बच्चों को डरा दिया जाता है ना कभी कभी, लेकिन बड़े नहीं समझते ऐसे, पर बड़ों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा आपने बताया ना कि जॉब ढूंढते रहना चाहिए लेकिन गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।
4: दीदी वो पुलिस तो काली का पेट्रोलिंग यूनिट आई थी।
2: अच्छा।
4: गर्ल्स से मिलने आई थी वो।
2: ओके, तो बच्चे को डरा दिया कि ताकि वो नहीं करे ना इसलिए।
4: बच्चे को डरा दिया पर वो मिलने गर्ल्स से आए थे।
1: तो दीदी वो मतलब कहते हैं ना कि अगर किसी मतलब किसी पर्सन के पास मतलब सब कुछ है, एक भी कमी नहीं उसकी जिंदगी में, पर अगर मम्मी पापा का प्यार नहीं है ना, तो उसके पास मतलब कुछ नहीं है, जैसे कि वो बेघर है ऐसे।
2: तो मतलब बड़े भी हो जाओ तो मम्मी पापा से मिलते रहना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, है ना। और आप लोग जैसे बड़े हो जाओगे ना तो कभी कभी आप बिजी भी हो सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम टाइम नहीं निकाल सकते। जैसा आपने बताया ना आपके पापा निकालते हैं टाइम, स्पेशली निकालते हैं, तो अगर निकालना चाहें क्यों नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप लोग भी देखते हो अपने घर पे निकालते हुए।
1: दीदी मतलब जैसे कि मैंने अभी कहा कि उनका जो प्यार होता है ना वो ऐसे होता है कि जैसे हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ मतलब मेरी मम्मी या फिर मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, मुझे जैसे अच्छा लगता है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है।
2: बिल्कुल सही कहा। तो चलो अभी तो वक्त हो गया है गुड बाय करने का, कुछ बोलना चाहते हो? अच्छा, बड़ों को, मान लो आपको आपके बड़े वर्जन को फ्यूचर में जाके कुछ कहने का मौका मिले तो उनको क्या बोलोगे?
1: दीदी मैं तो ये कहूंगी, कहना चाहे कितना भी है ना बिजी हो जाओ, कितना भी कितने भी दूर चले जाओ, पर कभी मम्मी पापा को नहीं भूलना, अपने पेरेंट्स को हमेशा उनकी केयर करना है दूर रह के भी।
4: पेरेंट्स को तो भूलना ही नहीं है, पर अपने बचपने को भी कभी नहीं भूलना, अगर बचपना मर गया तो जीना ही बेकार है।
1: और मतलब जो मम्मी पापा का मतलब मम्मी पापा के पास हम जब भी जाते हैं, पेरेंट्स को दूर भी रहते हैं ना, तो एक बार दो बार कम से कम कॉल तो कर लेना चाहिए, वीडियो कॉल, एक मतलब एक महीने में नहीं, एक हफ्ते में एक बार कर लो सिर्फ।
2: आप क्या बोलोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, बड़े राघव को क्या बोलोगे?
1: मुझे
2: अभी आपको मान लो यहाँ पे एक विंडो मिले जिसमें से जाओगे तो आपको बड़ा राघव मिलेगा जो 18+ होगा, 20 ईयर्स का होगा, तो उसको क्या बोलोगे?
3: मैं उसको बोलूंगा कि ना अपने बचपने को कभी मत भूलना, जैसे हमने बचपन में मस्ती की थी वो कभी मत भूलना, और ऐसे ही चलते रहना,
2: ऐसे ही चलते रहना, बस बचपन वाले राघव को छोड़ नहीं देना, है ना,
3: और मम्मी पापा से भी मिलते रहना।
2: मम्मी पापा को भूल नहीं जाना। ओके ठीक है।
4: कभी भी पैसों के पीछे भी नहीं भागना, पेरेंट्स के साथ ही रहना, अगर पैसों के पीछे भागना शुरू कर दिया तो पेरेंट्स दूर हो जाएंगे।
2: तो पेरेंट्स के पास रहना, पैसों के पीछे नहीं।
3: दीदी मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें था कि मतलब है ना एक बंदा था और वो पैसे कमा रहा था सिर्फ, और वो पैसे कमाते कमाते बूढ़ा हो गया, मतलब उसने कभी पैसे खर्च ही नहीं किए।
2: तो इसीलिए मतलब उनको स्पेंड

0: करना, क्या कहना चाहते हो आप फिर?
1: कि हमको अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट भी लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए.
0: तो फ्यूचर राघव अपने मम्मी पापा के लिए गिफ्ट जरूर लेना है ना, और उनका केयर करना, भूलना नहीं है. ओके डन. तो चलिए जब आप लोग बड़े हो जाएंगे ना तब फिर ये सुनिएगा, तब आपको याद आ जाएगा कि आप बचपन में अपने को क्या कहना चाहते थे. तो ये वाले जो एपिसोड है ना, ये आप लोग जब बड़े हो जाएंगे तब आपको सुनाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा कि बड़े कैसे होना है आपको.
2: जैसे कि अब हम अभी रेडियो में आते हैं वैसे हम आते रहेंगे और 9 ईयर्स बाद हम यही ऑडियो सुनेंगे.
0: अच्छा, 9 ईयर्स बाद या 10 ईयर्स बाद कैसे हो गए आप? कैसे, क्या वैल्यूज होंगे, क्या चीज होगी जिस पे आप फोकस करोगे, कैसे हो गए, क्या लगता है क्या कर रहे हो गए उस टाइम या कैसे हो गए उस टाइम?
3: दीदी ये तो पता नहीं क्योंकि ये तो फिर फ्यूचर हो गया है.
0: फ्यूचर सोच के बताओ, क्या लगता है फ्यूचर शिक्षा कैसी होगी?
2: दीदी ये तो भविष्यवाणी हो जाएगी फिर तो.
0: आपको क्या लगता है ताकि आप बाद में जब सुनोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा मुझे ऐसा लगता था.
3: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मम्मी पापा के लिए टाइम जरूर निकाल पाऊंगी.
0: ओके, कैसे होगे, क्या वैल्यूज होंगे आपके अंदर, कैसे रहते होगे, कहाँ रहते होगे, क्या करते होगे, कुछ लगता है?
2: दीदी मैं तो मेरा बचपना तो कभी नहीं भूलूंगी, जैसे अभी हंसती खेलती रहती हूँ वैसे भी बड़े होके भी रहूंगी और बड़े होके देश के लिए कुछ करूंगी.
0: ओके
3: दीदी जब भी हम दोनों फ्री होंगे तो हम तो खेलने चले जाएंगे बैट और बॉल उठा के,
0: बड़े होके भी ना. तो ये फ्यूचर सेल्फ से प्रॉमिस है भाई, बैट बॉल नहीं उठाना भूलना. हाँ
2: दीदी फुटबॉल उठाना भी नहीं भूलेंगे.
0: पक्का?
2: पक्का प्रॉमिस.
3: दीदी बास्केटबॉल भी नहीं तो और दीदी बैडमिंटन भी नहीं.
0: ओके मतलब बड़े होके गेम्स खेलना जरूरी है.
3: यस, उससे स्ट्रेस भी कम हो जाएगा और अच्छा भी फील होगा.
0: गेम्स से स्ट्रेस भी कम होगा,
3: उससे हमारी फिटनेस भी बनी रहेगी.
0: बड़े होके फिट रहना है. ओके
3: ऐसे नहीं कि ज्यादा भी ओवरवेट हो गया या फिर एकदम पतले हो गए.
0: ओके ओके तो कर ली हमने ढेर सारी बातें और थोड़ा फ्यूचर में भी विजिट करके आ गए. तो मुझे लग रहा है जब बड़े हो जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल अभी जैसे रहने वाले हैं और बहुत प्यार से रहने वाले हैं और बहुत इंजॉय भी करने वाले हैं, पेरेंट्स को कभी नहीं भूलने वाले हैं और ढेर सारे गेम्स खेलने वाले हैं.
3: दीदी अभी जैसे नहीं रह सकते तब तो बैट और बॉल भी फ्यूचर वाले आ जाएंगे.
0: हाँ तो फ्यूचर वाले टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट वाले बैट बॉल से खेलना.
3: दीदी आपने हम सबसे तो क्वेश्चन पूछ लिया, अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी है. आपको बड़े होके कैसे लगता है और क्या कैसे लगता है कि बचपन ज्यादा अच्छा होता है फिर बड़े होना ज्यादा अच्छा लगता
0: है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप लोगों को लगता है ना सेम, बचपन ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि बचपन में हम बहुत केयर फ्री होते हैं, बहुत ईजी होती है हमारी लाइफ कि हमें पढ़ना है खेलना है, यही दो चीजें होती हैं हमारी लाइफ में. लेकिन बड़े होके बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हम सिंपल कर सकते हैं बट कभी कभी हम भूल जाते हैं उसको सिंपल करना, है ना?
3: और कुछ अथॉरिटीज बताइए जिसको आप बड़े होके के बाद आपको मिली है.
0: हाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आप डिसीजन ले सकते हो कि आप करियर में क्या करना चाहते हो, है ना, आप कैसे रहना चाहते हो, आप किस चीज़ को किस तरीके से आप रिलेशंस को अपने बनाना चाहते हो, निभाना चाहते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं आपको. और हाँ जैसे आप लोगों ने बात की वोटिंग राइट्स और वो सब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, आप सोसाइटी के लिए क्या करना चाहते हो, वो भी आपको एक बेनिफिट होता है.
2: दीदी आप बड़े ही हो तभी तो आप हमारे साथ बच्चों की दुनिया में बातें कर रहे हो.
0: हाँ बिल्कुल सही कहा, तो मुझे तो पीछे जाना पड़ेगा और आप लोगों को फ्यूचर में. चलो अभी फिलहाल तो वक्त हो गया है गुड बाय कहने का दोस्तों को, क्योंकि अब भाई आगे के प्रोग्राम्स भी तो सुनाने हैं उन्हें. और हम मिलेंगे बच्चों की दुनिया की अगली कड़ी में, तब तक के लिए बाय बाय.

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माय कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका तथा यूरोप के शिक्षित समाज के सामने भारतीय दर्शन और वेदांत की बातों को रखकर एक क्रांति की सूचना कर दी थी। उनके भाषणों को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ती थी। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि फैलती गई और कई लोग उनके अनुयायी बन गए।
1: स्वामी जी के विदेशी शिष्यों और शिष्याओं में सबसे पहले याद आती हैं कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, यानी भगिनी निवेदिता। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समर्पित कर दिया और अपने गुरु द्वारा दिए गए नाम निवेदिता को पूर्णतः सार्थक कर दिया।
0: निवेदिता का अर्थ है समर्पिता, और उन्होंने अपने नाम और हिंदू गुरु शिष्य परंपरा के अनुरूप अपने श्रम के फल को अपने गुरु तथा परम गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें जो जीवन प्रकाश और अपार सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, उसका उद्गम स्थान स्पष्ट करने के लिए ही वो अपना उल्लेख रामकृष्ण विवेकानंद की निवेदिता किया करती थी। उन्होंने उस पवित्र देवालय की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उन्हें तथा भविष्य में समस्त विश्व को ज्ञान का प्रकाश, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्ति मिली।
1: निवेदिता के जीवन को 3 स्वतंत्र विभागों में बांटा जा सकता है। पहला विभाग यानी वो काल जिसमें उनके जन्म से लेकर उस समय तक जब उनकी स्वामी विवेकानंद से भेंट हुई थी। दूसरा भाग जब वे अपने जीवन के कर्तव्यों के प्रति सचेत हुई थी से लेकर गुरु के महानिर्वाण तक का काल। और तीसरा भाग आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद एक निस्वार्थ और धैर्यवान कार्यकर्ता के रूप में उनका उदय काल।
0: मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का जन्म 28 अक्टूबर 1867 में टायरोन जिले के डुगनन नामक गांव में हुआ। उनके पितामह का नाम जॉन नोबल था। नोबल परिवार स्कॉटिश मूल का था और पिछली 5 शताब्दियों से आयरलैंड में आकर बस गया था।
1: मार्गरेट अपने पिता सैमुअल नोबल की बहुत लाडली थी। उनके पिता जब भी किसी धार्मिक अनुष्ठान या प्रवचन के लिए या दीन दुखियों की सेवा के लिए बाहर जाते तो मार्गरेट को वे अपने साथ जरूर ले जाया करते। पर सादगी पूर्ण और कठिन जीवन के श्रमसाध्य कष्टों ने सैमुअल के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाला और सिर्फ 34 वर्ष के अल्प वय में ही सैमुअल की मृत्यु हो गई।
0: अपने पिता के धर्माचरण का गहरा प्रभाव मार्गरेट के बाल मन पर पड़ा था। धार्मिक कार्यों तथा धर्म के प्रति गहरी रुचि तथा अदम्य उत्साह जिस प्रकार मार्गरेट ने अपने पिता से सीखा था, उसी तरह उसके नाना ने उसके मन में देश के प्रति प्रेम तथा स्वतंत्रता की भावना की ज्योत प्रज्वलित की थी। यथासमय मार्गरेट को हेलिफैक्स महाविद्यालय भेजने की व्यवस्था की गई, जहां उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी थी। मार्गरेट कितनी दृढ़ निश्चयी अन्वेषिका थी, ये उनकी इसी बात से पता चलता है जो उन्होंने हिंदू महिला मंडल मुंबई में सन 1902 में एक भाषण के दौरान कही थी। उन्होंने कहा था,
2: एक अंग्रेज स्कूल में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ था तथा उम्र के 18वें वर्ष तक सर्व सामान्य अंग्रेज बालिका के समान ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई। बचपन से ही मेरे मन पर क्रिश्चियन धर्म के संस्कारों का प्रभाव था। सभी धर्मों की शिक्षाओं और सिद्धांतों के प्रति मेरे मन में नितांत आदर था। जीसस की मैं समर्पित हृदय से पूजा करती थी, उसे प्यार करती थी। बालवय में भी यीशु दूसरों के लिए कैसे स्वेच्छा से त्याग करते थे, ये सुनकर तो मेरा मन उनके प्रति आदर से भर गया। मानव जाति के उद्धार के लिए स्वयं को सूली पर चढ़ाकर, स्वयं का बलिदान कर जितना कुछ ईसा ने मानव जाति को दिया है, उसके लिए मैं कैसे उनकी पूजा ना करूं? किस तरह अपनी श्रद्धा के फूल उन पर चढ़ाऊं? कितना सम्मान उन्हें दूं? ये मैं कभी भी नहीं समझ पाई। मैंने हमेशा यही अनुभव किया है कि जितना कुछ प्रभु ईसा ने मानव जाति के लिए किया है, उसके अनुरूप मैं पर्याप्त रूप से उन्हें सम्मान आदर नहीं दे पा रही हूँ।
1: निवेदिता फिर भी शांति और सत्य की खोज में भटकती रही।
2: इसके बाद मेरा ध्यान बुद्ध के जीवन ने आकर्षित किया। उनके जीवन और धर्म तत्वों का गहरा अभ्यास करने के बाद मुझे लगा कि बाल बुद्ध जो बाल क्राइस्ट के कुछ शताब्दी पहले इस पृथ्वी पर आए थे, उनका आत्म त्याग किसी अन्य के त्याग से कम नहीं था। उन्होंने पूर्णतः स्वत्व का परित्याग किया था। इस प्यारे से बालक गौतम ने 3 वर्षों तक मेरे पर अधिकार जमाए रखा। 3 वर्षों तक मैं उनसे बहुत प्रभावित रही तथा बौद्ध धर्म के विस्तृत अभ्यास में पूर्णतः लीन रही।
0: परंतु निवेदिता का मन फिर भी अशांत रहा। उन्हें लगा कि वे सही रास्ते पर नहीं चल रही हैं।
2: और अब मेरी श्रद्धा, मेरे विश्वासों में अमूल परिवर्तन लाने का क्षण आया। स्वामी जी जिनसे मेरी भेंट हुई वे और कोई नहीं स्वामी विवेकानंद हैं, जो बाद में मेरे गुरु बने। उनकी शिक्षाओं, सिद्धांतों और उपदेशों ने मेरी व्याकुल आत्मा को वो शांति दी जिनकी मुझे लंबे समय से चाहती।
1: उसके स्वयं के उदार मनोभाव और सत्य के प्रति उत्कट लालसा ने उसे स्वामी जी के वैदांतिक सिद्धांतों और शिक्षाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया। सत्य का प्रकाश कहीं से भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकार करना ही मार्गरेट के जीवन का मुख्य उद्देश्य था, और इसीलिए उसने स्वामी विवेकानंद के सर्वोत्तम शिष्य का स्थान प्राप्त किया था।
2: स्वामी जी के शब्दों ने हम में से कुछ लोगों के जीवन को ठीक उसी तरह प्रभावित तथा आनंदित किया जैसे प्यास से व्याकुल व्यक्ति के लिए जल करता है। हम में से बहुत से लोग पिछले कई वर्षों से धर्म के प्रति बढ़ती हुई अनिश्चितता तथा निराशा की स्थिति के प्रति सचेत रहे। ये भावनाएं यूरोप के बुद्धिजीवी जनमानस को करीब आधी शताब्दी तक व्याकुल करती रही, पर अब वे साधन हमारे पास उपलब्ध हैं विवेकानंद विचारधारा के रूप में। इन वेदांतिक शिक्षाओं ने हमारे अविश्वासी अंतर्ज्ञान को एक बौद्धिक प्रमाणीकरण तथा दर्शन शास्त्रीय आकार दिया है। धर्म विषयक गलत कल्पनाओं के अंधकार में जो अब तक चल रहे थे उन्हें अब प्रकाश का अनुभव होगा।
1: सन 1895 में जब स्वामी जी लंदन गए तब उन्हें हिंदू योगी के नाम से जाना गया। उन्होंने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता हासिल की थी। लंदन में ही एक दिन सुश्री इजाबेल मार्गेसन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। स्वामी जी से मिलने और उनके भाषण को सुनने के लिए ही कुमारी मार्गेसन ने अपने कुछ मित्रों को भी बुलवाया। इन निमंत्रित अतिथियों में मार्गरेट भी एक थी। मार्गरेट के बहुत से दोस्त उनकी मानसिक धार्मिक लालसा के बारे में जानते थे, और उन मित्रों में से एक ने मार्गरेट को सलाह दी कि ये हिंदू योगी सत्य की खोज के मार्ग में उसकी मदद कर सकते हैं। मार्गरेट वहां जाना नहीं चाहती थी, केवल कौतूहलवश वहां क्या हो रहा है ये जानने के लिए मार्गरेट ने इजाबेल का आमंत्रण स्वीकार किया। इसी तरह की एक एक घटनाएं धीरे धीरे उसके लक्ष्य की ओर जाने का मार्ग दिग्दर्शित कर रही थी।
0: लेडी इजाबेल मार्गेसन के घर पर मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से प्रथम भेंट हुई। नवम्बर का महीना था, रविवार का दिन और दोपहर का वक्त था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। 15-16 व्यक्ति स्वामी जी के चारों ओर अर्धवृत्ताकार में बैठे हुए थे। मध्य भाग में गैरिक रंग के लबादे समान वस्त्र धारण कर स्वामी जी उन लोगों के समक्ष बैठे थे। कमर में उन्होंने कमरबंद लपेटा था। उनके पीछे गर्माहट हेतु अग्निकुंड प्रज्वलित था। वे बार बार शिव शिव इस शब्द का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे।
1: स्वामी जी वहाँ शाम को देर तक बैठे थे। एक हिंदू योगी अपने पश्चिमी श्रोताओं और स्नेही जनों के समूह के बीच बैठकर उन्हें अपने देश के अनंत धर्म के सनातन सत्यों के बारे में बता रहा था। उनसे हिंदू धर्म के अक्षर तत्वों की चर्चा कर रहा था। लंदन के उस पाश्चात्य ढंग से सजी बैठक में ठीक भारत के किसी गांव के वातावरण के समान वातावरण निर्मित हो गया था। जैसे कि भारत के किसी गांव में वृक्ष के नीचे बैठे साधु के इर्द गिर्द लोगों का समूह परमार्थ की बातों को तल्लीनता से सुनता है। गोधुली बेला रात्रि के अंधकार में परिवर्तित हो रही थी।
0: स्वामी जी ने कहा कि वे यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वे समझते हैं कि अब वो समय आ चुका है जब इन दोनों देशों के बीच विचारों का, जीवन कल्पनाओं का आदान प्रदान हो, जिस तरह इन दोनों देशों के बीच व्यापार विनिमय प्राचीन काल से होता आ रहा है। स्वामी जी के संभाषण में अनेक विविध विषय आ रहे थे। स्वामी जी ने वहाँ उपस्थित लोगों को ईश्वर के बारे में बताया। आध्यात्मिक उन्नति के 3 मार्ग बताए, कर्म, ज्ञान और भक्ति। उन्होंने अद्वैतवाद, एकेश्वरवाद, एक तत्ववाद की चर्चा की। उन्हें बुद्ध धर्म, हिंदू धर्म और क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया।
1: मार्गरेट के मन पर कुछ अलग ही प्रतिक्रिया हुई। आने वाले सप्ताहों में जब मार्गरेट ने स्वामी जी के कार्यों का अवलोकन किया तो उसके समक्ष स्वामी जी के विचार स्पष्ट होने लगे। जब स्वामी जी अवतार के जन्म के बारे में बोल रहे थे तब उन्होंने भगवद गीता के एक श्लोक को उद्धृत करते हुए कहा कि जब जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का बोलबाला होता है तब तब सज्जनों के रक्षण हेतु और दुष्टों के नाश हेतु मैं बार बार जन्म ग्रहण करता हूँ। साधु धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूँ। मार्गरेट गीता के इस विचार की महानता से बहुत प्रभावित हुई थी। अब उसे समझ में आया कि क्यों स्वामी जी ने कहा था कि सभी धर्म सत्य है, अतः किसी भी ईश्वरीय अवतार की ईश्वरीय आविर्भाव व पुनर्जन्म की निंदा नहीं करनी चाहिए।
0: और वो समय आया जब मार्गरेट ने स्वामी जी को गुरु कहकर संबोधित किया। वो वक्त था लंदन से स्वामी जी की वापसी का। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए मार्गरेट लिखती है,
2: मैंने इस व्यक्ति के ईश्वरीय अंशों को, असामान्य नेतृत्व गुणों को पहचान लिया है। मेरी इच्छा है कि मैं उनके सामाजिक विषयक, उनके प्रेम का दासत्व स्वीकार कर लूं। मैं चाहती हूं कि जिस समाज से वे इतना प्रेम करते हैं उस समाज की सेवा के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूं। ये वही व्यक्तित्व है जिसको मैं शत शत प्रणाम करती हूं। ये वही चरित्र है जिन्होंने मुझे विनम्र बनाया है, यद्यपि मैं उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई थी, पर फिर भी मेरे मन में पूर्ण शंकाओं के समाधान के बाद ही मेरी उन पर श्रद्धा दृढ़ हो सकी। उनके संपर्क में आने के बाद मेरे समक्ष अब किसी भी असामान्य बुद्धिमान व्यक्ति और स्वामी जी में अंतर स्पष्ट हो गया है।
1: और जब स्वामी जी शरद ऋतु में अमेरिका की ओर रवाना हुए तो मार्गरेट उनके तीनों गुणों का बार बार मनन कर रही थी। पहली थी उनकी विशाल धर्म दृष्टि या धार्मिक विचारों की विस्तीर्णता, दूसरी थी उनके विचारों की महानता, नूतनता तथा बुद्धि निष्ठा। उन्होंने जो विचार उन लोगों के समक्ष रखे थे उन विचारों के प्रति गहरी रुचि। और तीसरी थी वो सच्चाई जिसकी शुद्धता और महान ऊंचाई को मानव मन के आधारभूत तत्व स्पर्श भी नहीं कर सकते थे।
0: स्वामी जी ने 15 अप्रैल 1896 को लंदन जाने के लिए न्यूयॉर्क छोड़ा। उनके दोस्त तथा सहयोगी उन्हें फिर अपने बीच पाकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी स्वतः भी बहुत ही खुश थे।

0: कि स्वामी शारदानंद भारत से यहाँ आ पहुँचे थे और दो वर्ष के वियोग के पश्चात ये दो गुरु भाई भी स्टडी के निवास स्थान पर जो सेंट जॉर्ज रोड पर स्थित है मिले।
1: स्वामी जी के वार्तालाप और भाषणों के विषय अलग अलग होते थे और ये तो भाग्य की ही बात है, उन भाषणों को लिपिबद्ध करने के लिए श्री गुडविन ने, जो आशुलिपिक थे, अपनी सेवाएं प्रदान की और उन्हीं की मेहनत के फलस्वरूप स्वामी जी के अधिकांश भाषण सुरक्षित और लिपिबद्ध रह सके। श्री गुडविन स्वामी जी के सानिध्य में बहुत वर्षों तक कार्य करते रहे और वे स्वामी जी से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। अपने घर परिवार के माया मोह के बंधनों को तोड़कर वे आजीवन स्वामी जी के साथ ही रहे और उन्होंने अपने गुरु की सेवा में गुरु के कार्य के लिए खुद को समर्पित कर दिया।
0: मार्गरेट तथा उसके कुछ साथी उन लोगों में से थे जो बिना एक भी दिन नागा किए स्वामी जी के भाषणों में उपस्थित रहते। खुले और उदार मस्तिष्क के धनी ये लोग स्वामी जी के वेदांतिक उपदेशों की सत्यता को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। उनमें से प्रत्येक उन्हें जितना भी सिखाया जाता उसके अर्थ को अपने अनुभवों तथा धर्म कल्पनाओं के आधार पर समझने की कोशिश करता। अपनी धार्मिक परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर ये लोग स्वामी जी के उपदेशों के गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयत्न करते।
1: एक दिन प्रश्नोत्तर की कक्षा के दौरान स्वामी जी एकाएक उठ खड़े हुए और जोरदार गर्जना करते हुए बोले,
2: क्या इस पूरे इतने बड़े संसार में 20 ऐसे स्त्री पुरुष भी नहीं हैं जो किसी शहर के मुख्य मार्ग पर सबके समक्ष खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत करें कि उनमें ईश्वरीय अंश मौजूद है? बोलिए, आप में से कौन खड़ा होकर सबके समक्ष ये स्वीकार करेगा? क्यों हमें ये स्वीकार करने में डरना चाहिए? यदि ये सत्य है कि ईश्वर हम में मौजूद है, यदि हमारा ईश्वर सानिध्य सत्य है, तो फिर इसे स्वीकार करने में हिचक क्यों? और यदि नहीं है तो फिर हमारे जीवन का क्या लाभ? ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ?
0: इन शब्दों को जो स्वामी जी ने कहे थे मानो उन वास्तविकताओं के सार थे जो वास्तविकता या सच्चाई स्वामी जी विश्व को दिखाने आए थे, और इन्हीं शब्दों ने मार्गरेट के हृदय को आंदोलित कर दिया तथा वो स्वामी जी का साथ देने के लिए तत्पर हो उठी।
1: एक दिन वार्तालाप के दौरान स्वामी जी ने उसकी ओर मुखातिब होकर कहा,
3: मैं मेरे देश में वहां की स्त्रियों की प्रगति हेतु कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहा हूँ और मैं सोचता हूँ कि उस कार्य में तुम मुझे बहुत मदद कर सकोगी।
0: मार्गरेट भी भारत जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थी, पर उसने अभी तक इस बारे में स्वामी जी से कुछ कहा नहीं था। एक संध्या को जब कुमारी मुलर ने स्वामी जी के समक्ष मार्गरेट की इच्छा का जिक्र किया कि मार्गरेट स्वामी जी के साथ भारत जाकर उनके कार्यों में मदद करने की इच्छुक है, तब स्वामी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। स्वामी जी ने बड़ी ही शांति के साथ कहा,
3: जहां तक मेरा सवाल है, मैंने जन कल्याण का जो कार्य अपने जिम्मे लिया है उस कार्य को करने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं अपने लोगों के बीच 200 बार जन्म लेने के लिए तैयार हूं।
1: स्वामी जी भारत लौट आए। स्वामी जी का ध्यान इस देश की जिन बहुत सारी समस्याओं ने आकृष्ट कर रखा था उनमें से एक समस्या थी महिलाओं की समस्या। वे प्रायः अपनी भावना इन शब्दों से दर्शाते थे कि किसी भी देश की सर्वांगीण उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि इसका एक अंश शक्तिहीन हो। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक ही पंख के सहारे कोई भी पक्षी उड़ नहीं सकता, वे स्त्री और पुरुष को देश रूपी गाड़ी के दो पहिए मानते थे और देश की सर्वांगीण प्रगति के लिए दोनों पहिए स्वस्थ, शिक्षित और सबल होने चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने सुश्री बुल को 25 फरवरी 1897 में लिखा था, मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा यदि मैं दो पृथक पृथक केंद्रों की स्थापना किए बिना ही इस संसार से विदा ले लूं। वे दो केंद्र हैं, एक तो सन्यासियों के लिए और एक महिलाओं के लिए। यदि उसके पूर्व ही मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे जीवन का व्रत अधूरा रह जाएगा।
0: श्रीमती बुल ने स्वामी जी के समक्ष सन्यासियों के लिए मठ का निर्माण करने हेतु आर्थिक मदद देने का प्रस्ताव रखा था, परंतु उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि अभी तक उनके पास मठ निर्माण हेतु कोई निश्चित रूपरेखा नहीं थी। उन्हें धन की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें ये बात खूब अच्छी तरह से मालूम थी कि काम जब एक बार शुरू हो जाएगा तो धन की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं से अपने आप हो जाएगी। परंतु इस महान कार्य का प्रारंभ करने के लिए महिलाएं कहाँ थी? सिर्फ शिक्षित महिलाएं ही इस कार्य में उन्हें मदद कर सकती थी।
1: स्वामी जी जानते थे कि मार्गरेट इस कार्य के प्रति गंभीर है और बहुत ही अधिक निष्कपट तथा सच्ची है। भारतीय महिलाओं की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने की इच्छा रखती है। अतः स्वामी जी ने उसे ढेर सारे पत्र लिखे और प्रत्येक पत्र द्वारा उसे भारत में इस कार्य की प्रगति से अवगत कराया।
0: मार्गरेट भारत आकर उनके कामों में हाथ बटाना चाहती है, ये जानकर स्वामी जी खुश तो हुए, परंतु उन्होंने मार्गरेट को पत्र लिखकर यहाँ की कठिनाइयों के बारे में बार बार आगाह किया।
3: मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं है, या यूं कहो कि मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि मुझे अब निश्चित रूप से लगने लगा है कि यहाँ भारत में तुम्हें काम के ऐसे ऐसे मौके मिलेंगे कि यहाँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल रूप धारण करेगा। ये कार्य ऐसा है कि इसमें एक पुरुष की अपेक्षा एक स्त्री की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि ये कार्य एक स्त्री ही सुव्यवस्थित रूप से कर सकती है। एक वीर साहसी तथा सिंहनी की भांति निडर स्त्री ही इस कार्य को भली भांति कर सकेगी। विशेषकर भारतीय महिलाओं के कल्याण के लिए किए जाने वाले इस कार्य की पहली आवश्यकता एक स्त्री ही है। अभी भारत ने महान नारियों को उत्पन्न नहीं किया है, अतः उसे ऐसी महान नारियां दूसरे देशों से उधार मांगकर लानी होंगी। तुम्हारी शिक्षा, पवित्रता, कार्य के प्रति लगन, दृढ़ निश्चय प्रवृत्ति तथा इस देश के प्रति अगाध प्रेम और सबसे ऊपर तुम्हारे सेल्टिक वंश के रक्त ने तुम्हें वो नारी बना दिया है जो इस कार्य के लिए पूर्णतः योग्य है। यहां बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां बहुत हैं। तुम यहां की गरीबी, दुख, अंधविश्वासों और गुलामी की जंजीरों से जकड़े लोगों के बारे में कोई धारणा बना ही नहीं सकती। ये सब तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हें यहाँ अर्ध नग्न स्त्री पुरुषों की भीड़ के बीच कार्य करना होगा, जिनके जाति प्रथा तथा छुआछूत संबंधी बड़े विचित्र तथा पुरातन विचार हैं, जो गोरी चमड़ी के लोगों को डर और घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें अछूत मानते हैं, और सफेद चमड़ी वाले लोग भारतीयों से तीव्र घृणा करते हैं। दूसरी ओर गोरे लोग तुम्हें सनकी समझेंगे। यहाँ तुम्हारे प्रत्येक कार्यकलापों के आचार व्यवहार का निरीक्षण किया जाएगा तथा हर पल तुम्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा। यहाँ की जलवायु बहुत ही अधिक गर्म है। अधिकांश स्थानों पर हमारी शीत ऋतु तुम्हारे ग्रीष्म के समान है। सारे दक्षिण में तो हमेशा गर्म लू चलती रहती है, मानो आग बरस रही हो। यहाँ के शहरों के बाहर यूरोपीय ऐशो आराम की कोई भी सामग्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इतना पढ़ने के बाद भी यदि तुम में इस साहसिक कार्य में शिरकत करने की हिम्मत है तो तुम्हारा यहाँ स्वागत है, शत शत बार स्वागत है। जैसा बाहरी देशों में मेरा प्रभाव है उतना यहाँ तो नहीं, फिर भी जितना थोड़ा सा प्रभाव है और जो कुछ मेरा सामर्थ्य है उतना मैं तुम्हारी सहायता तथा सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा।
1: इस पत्र को पढ़ने के बाद मार्गरेट को कुछ और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। मार्गरेट के लिए भारत आने का मार्ग खुला था और वो जब भी आना चाहे आ सकती थी। अतः जैसे ही उसे स्वामी जी का ये पत्र मिला, उसने अपने मित्रों से जो भी पहला मौका मिले उस पर भारत जाने की व्यवस्था करने के लिए कहा।
0: 28 जनवरी 1898 को उनका जहाज कलकत्ता बंदरगाह पर पहुँचा। स्वामी जी खुद बंदरगाह पर उसका स्वागत करने आए।
1: कलकत्ता के पहले के कुछ दिन मार्गरेट ने अपने अंग्रेज दोस्त मैकडोनल्ड डटसन और अर्बत नॉट के कलकत्ता के दर्शनीय स्थल देखने में बिताए। इसी बीच उसका भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीश चंद्र बसु तथा उनकी बहन लावण्य प्रभा बसु से परिचय हुआ। लावण्य प्रभा बसु एक विद्यालय का संचालन करती थी। साथ ही मार्गरेट ने टैगोर परिवार के लोगों से, माताजी से और सरला घोषाल से भी परिचय प्राप्त किया।
0: तब तक स्वामी जी ने मार्गरेट के बंगाली भाषा सीखने की व्यवस्था की। इसी बीच 8 फरवरी को स्वामी शारदानंद रेलगाड़ी द्वारा मुंबई से कलकत्ता पहुंचे। मुंबई में वे इंग्लैंड से आए थे तथा उनके साथ कुमारी जोसेफाइन मैकलाउड तथा श्रीमती सारा सी बुल थी।
1: भारत पहुंचने के बाद उन्होंने स्वामी जी से पूछा था कि वे किस तरह उनके कार्यों में सर्वोत्तम ढंग से मदद कर सकती हैं। जब स्वामी जी ने उत्तर दिया था, भारत को प्यार करो, इसके पश्चात ही एक महत्वपूर्ण अवसर मार्गरेट के भाषण का था, जो रामकृष्ण मिशन के उद्घाटन सभा पर आयोजित किया गया था, जो स्टार थिएटर में 11 मार्च को हुआ। मार्गरेट का परिचय कराते हुए उन्होंने अपने स्थान पर खड़े होते हुए कहा,
3: पहले ही इंग्लैंड ने अपने कुछ महान विद्वान हमारे इस रामकृष्ण मिशन की सहायतार्थ दिए हैं, और जब इंग्लैंड ने मार्गरेट नोबल के रूप में एक और बहुमूल्य उपहार हमें दिया है, जिनसे हमें ढेर सारी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, और अधिक आपका समय ना लेते हुए मैं आप लोगों का परिचय कुमारी मार्गरेट नोबल से कराता हूं।
4: मैं यहां आप लोगों को इंग्लैंड में इन 1.5 वर्षों के दौरान हुए काम के बारे में निश्चित रूप से कुछ बताने आई हूं। 1.5 वर्ष पहले आपके आध्यात्मिक विचारों का प्रचार प्रसार हम लोगों के बीच हुआ था। मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रही हूं कि आप लोगों ने जो इन महापुरुष के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश हम लोगों के बीच इंग्लैंड भेजा था, वो संदेश हमारे बीच में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता जा रहा है।
0: मार्च 17 गुरुवार को एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। उस दिन निवेदिता माँ शारदा मणि देवी से, जो रामकृष्ण देव की पत्नी थी, मिली।
4: वो अविस्मरणीय दिन मेरे जीवन में किसी उत्सव से कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन कट्टरवादी हिंदू धर्म परायण महिलाओं के साथ सहभोजन की याद भी भूलने लायक नहीं है, और ना ही वे पवित्र तथा सुखदायक बंधन जो उस दिन संस्कारित हुए और अपने अस्तित्व में मुझे जीवन भर के लिए बांध गए, उन बंधनों को मैं आज जन्म भुला नहीं पाऊंगी।
0: इस तरह मार्गरेट नोबल सच्चे अर्थों में निवेदिता बन गई। उसके बाद की घटनाएं और भी रोमांचकारी हैं, जिन्हें अगली कड़ियों में आप जान पाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 28 मई की बातें हो रही हैं और आज उत्तराषाढ़ा है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ आइए। डीवी फुलस्कर, वीर सावरकर, गोपाल रामानुजू महंत, अवैधनाथ, एनटी रामाराव, प्रतिभा भौमिक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गोपाल प्रसाद व्यास, महबूब खान, विजय सिंह पथिक, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ, आपको जोड़ना चाहूँगा और विचार के बाद फिर हम लोग कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। हाँ, वीर सावरकर जी का जन्मदिन है आज, गोपाल रामानुजम इनका भी जन्मदिन है। ऐसे एक विशेष व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। एक विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए, शाम के 4 बजकर हो गए हैं कुछ मिनट और 5 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। कहते हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए, ऐसी शुभ आशा के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ आप सभी को ले चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ। कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के इस दिन में विशेष, जैसे कि 28 मई की बात हम लोग करें तो डीवी पुलस्कर की बात आती है। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे। एक ऐसे विलक्षण भालक के तौर पर जाना जाता है जिनके गाने की अपनी एक अलग पहचान थी। तो आइए इनके बारे में बात करें। तो पंडित डीवी पुलस्कर का जन्म आज ही के दिन 1921 को नासिक महाराष्ट्र में एक विख्यात हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ। जब इनके पिता का देहांत हुआ वे केवल 10 वर्ष के थे और पश्चात उन्हें पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव पटवर्धन ने पंडित चिंता मन राव और पंडित मीराशी बुआ ने भी ट्रेनिंग दिया। डीवी पुलस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में पंजाब में हरि बल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया। उत्तराधिकारी में उन्हें ग्वालियर घराना और गंधर्व महाविद्यालय मिला, परंतु वे अन्य घरानों और शैलियों की सुंदर विशेषताओं को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और डीवी पुलस्कर की आवाज़ बहुत मधुर और सुरीली थी। उनके आलाप उनके गाय राग का स्पष्ट रेखांकन करते थे। इसके बाद उनकी सहज शैली की तानों से सुसज्जित बंदिशें आती थी और उन्हें थोड़ी ही अवधि में राग का संपूर्ण आकर्षण चित्र प्रस्तुत करने में महारत हासिल थी। शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त वे महान भजन गायक भी थे। उन्हें फिल्म बैजू बावरा 1952 में उस्ताद अमीर खान के साथ एक अविस्मरणीय युगलबंदी के लिए जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाता है, तो पंडित डीवी पुलस्कर भी संगीत की दुनिया में एक नया नाम छोड़ कर चले गए। और 26 अक्टूबर 1955 को इनका निधन हुआ। बहुत कम वर्ष में 34 वर्ष की अवस्था में ही ये इस दुनिया को अलविदा कहें, क्योंकि एंसीफिलिटाइटिस नाम का एक बीमारी हो गया था और वो इनकी अपनी चपेट में लेकर ही दम तोड़ा। तो चलिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में अच्छा व्यक्ति को लंबा जीना चाहिए, लेकिन जितना भी जिए अच्छा काम करके जिए तो वो हमेशा अमर रहते हैं। आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक और गीत के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर मायसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। तो अब बात करते हैं, आइए, एक महान राष्ट्र सेवा करने वाले देशभक्त के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। जी हाँ, और ये विशेष व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी प्राणों की आहुति देकर देश को बचाने का काम किया। और बगुगांव नासिक में इनका जन्म हुआ। ये ना सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों में महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर इन्हें खड़ा कर देता है। वीर सावरकर जी का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणता वीर सावरकर के नाम से ही विख्यात हुए। और इनका

आज ही के दिन 1883 को नासिक के बगूर गांव में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत गांव के बहुत ही पॉपुलर व्यक्तियों में गिने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया और दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदुस्तानी थे। हिंदू शब्द से बेहद लगाव, वो कहते थे उन्हें वीर की जगह हिंदू संगठक कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर महसूस करेंगे। जीवन भर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया था और 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा सा गीत की तरफ, उसके बाद फिर आपको सावरकर जी की कुछ विशेष कहानी से जोड़ना चाहूँगा। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं। वीर सावरकर जी ने हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक पास की और बचपन से ही पढ़ाकू थे, पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे। कविताएं लिखना, लेख लिखना, इस तरह के काम तो करते ही रहे। और फिर फर्गुंस कॉलेज पूना में उन्होंने राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो जैसी भाषण देते हुए जब वे विलायत में कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। और फिर 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा आज़ाद प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सलीस बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले, किंतु पुनः पकड़े गए और भारत लाए गए। भारत की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहाँ सावरकर देश को आज़ाद कराने के लिए निरंतर जो है संघर्ष करते रहे, वही दूसरी और देश की आज़ादी के बाद भी उनका जीवन संघर्ष से घिरा रहा। जेल यात्रा, एक विदेश न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली। और फिर 1911 से लेकर 21 तक अंडमान जेल में सड़ते रहे और 21 में वे स्वदेश लौट आए। फिर 3 साल जेल वापस और 37 में उन्हें मुक्त कर दिया गया था, परंतु भारतीय उनका समर्थन न प्राप्त हो सका। और 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध भी किया और महात्मा रामचंद्र वीर ने उनका समर्थन भी किया और 48 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह किया गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बाहरी करना पड़ा। और इस तरह से ये मातृभूमि के सुपुत्र को फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के चरणों में पहले ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा में ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है, ये हमेशा वो लिखा करते थे, वीर सावरकर। तो उनकी कुछ बिंदुओं पर नज़र डालें तो काफ़ी लंबा जो है उन्होंने काम किया, लेकिन इन सभी के बावजूद बाहर रहकर देश सेवा करते हुए जब उन्होंने वहाँ पर संगठन बना लिया तो धीरे धीरे उस संगठन के वजह से हर चीज़ उनको बनती रही, मिलती रही और विदेश में जाकर भारत का आज़ादी का संग्राम उन्होंने बखूबी किया। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई। वीर सावरकर को उनके निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी। अपने राजनीतिक विद्रोह को जवाब देने के लिए वीर सावरकर को यह सम्मान दिया गया था। अहिंसा के पुजारी के रूप में शायद यह हमारा ही एकमात्र देश भारत ही ऐसा हो सकता है जहां राष्ट्रपिता की हत्या के 2 आरोप फांसी की सजा पाए और एक को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इनके नाम पर ही पोस्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये थे कुछ खास बातें वीर सावरकर जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे। हम झूठ तभी बोलते हैं जब हमें सच बोलने का डर है, और डर ये है कि सच बोलेंगे तो कोई एक्शन लिया जाएगा। इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी, मैं आपको सच बता दूंगी। लेकिन इफ आई एम श्योर अबाउट दिस कि आपको सच बताने के बाद मुझे डांट पड़ेगी, तो इजियर चॉइस फॉर मी इज झूठ बोलो और निकल जाओ। सो इट्स ऑल अबाउट आई नो व्हाट योर रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी। ट्रस्ट आ जाता है ना उसमें, आपको पता है कि दूसरा आपको समझेगा कि आपने जो गलती की, नेवर माइंड, ही विल एक्सेप्ट यू। आप सच बोलेंगे, देयर इज नो रीजन। कोई झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि खुद को बहुत गिल्टी लगता है उसके बाद।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए गोपाल रामानुज के बारे में बात करते हैं। एक और शख्सियत है जिनका जन्मदिन है और भारतीय राजनीतिक जाने माने समाज सेवक और भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सह संस्थापक थे। 22 अगस्त 1997 से लेकर 24 नवंबर 1997 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। गोपाल रामानुज को समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार ने 1985 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और गोपाल रामानुज का जन्म आज ही के दिन 1915 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के एडिरकोटा गांव में हुआ था इनका। और उन्हें 1945 से 47 के दौरान हिंदुस्तान मजदूर सेवा संघ और अहमदाबाद के मजदूर महाजन महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संस्थान में ट्रेड यूनियन के काम में ट्रेनिंग दिया गया था। और 58 और 60 तक INTUC के अध्यक्ष हुए और 64 और 68 के बीच में महासचिव रहे। ट्रेड यूनियनवाद के प्रति गोपाल रामानुज की प्रतिबद्धता का सम्मान करने के लिए चेन्नई स्थित नेशनल सेंटर फॉर इंस्टीट्यूशनल हार्मनी वार्षिक जी रामानुजू मेमोरियल लेक्चर आयोजित करता है और तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज में उनके नाम पर एक स्थायी कुर्सी भी बनी है। तो ये थी कुछ खास बातें गोपाल रामानुजू के बारे में। एक ऐसे व्यक्ति जो खास मजदूरों के पक्ष में निर्णय करते रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। और एक विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। सपना एक देखोगे मुश्किलें आज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कमाल का विचार है। तो चलिए सपने ज़रूर देखिए, मुश्किलें आएगी तो उसके सामने खड़े रहो, और जब जीत आपकी होगी तो बहुत बड़ी जीत होगी। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: सुनते जाना।
1: महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।
0: ये सब है जाल इसका, मालूम है हाल इसका,
1: चोरी का है माल इसका, धोखा न खाना।
2: मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो मौजी, मौजी बोलो
1: बाबू आना, सुनते जाना।

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा,
0: तू जा ए जा जा जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

की पहाड़ी है कांटे की लाला।

0: सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां, सुनते हो सुनने वालों मारो एक बार तालियां।
1: ए रुक जा निकाल की मैं तेरा दीवाना,
0: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला, तू जा जा घर जाके।

0: बाउदी बाउदी बोलो बाउदी बाउदी बाउदी
1: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गांव की रहने वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता रहा।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: तो रुक। ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी बगाए चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। युवाओं के इस मंच पर दोस्तों आज एक ऐसे विषय के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो हमारे करियर से भी जुड़ा है, हमारे माइंड से भी जुड़ा है, हमारे डिसीशन से भी जुड़ा है। दोस्तों हम सभी किसी न किसी माध्यम से शिक्षित जरूर होते हैं। स्कूल जाना, कॉलेज जाना, घर पे शिक्षा हासिल करना, नैतिक शिक्षा हासिल करना, खाने बनाने की शिक्षा हासिल करना, स्किल्स की शिक्षा हासिल करना, बहुत कुछ है जो हम सीखते जाते हैं और बहुत कुछ है जो हमें लगता है कि काश हमने सीखा होता। तो ये काश शब्द हमारी डिक्शनरी से हट जाए, ये शब्द हमारे पास ना हो, ऐसा क्या कोई उपाय है? अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, कभी कभी ये काश तब महसूस होता है जब बहुत साल निकल गए होते हैं और तब लगता है कि काश काश

मैंने भी पढ़ाई पढ़ ली होती या ये कोर्स कर लिया होता या उस समय ये कर पाता, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। लेकिन ये काश शब्द हट सकता है दोस्तों, और वो कैसे आपको बताएंगे कुछ ही क्षणों में। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप कार्यक्रम है युवा मंच। और जैसा कि आपसे कहा था दोस्तों कि ये काश शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा देना है, खास तौर से जब बात हो शिक्षा की। दोस्तों वैसे तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज़रूरत है बस एक जिज्ञासा की, ज़रूरी है बस एक हिम्मत। दोस्तों वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो आज आपको पढ़ाई करवा रही हैं और ऐसे पढ़ाई करवा रही हैं कि आपको कॉलेज जाना भी नहीं पड़े। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं या आप कहीं बिजी हैं तो आप वो भी करते रह सकते हैं और साथ साथ आप शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करवाई जा रही है। अगर आपको वो भी मुश्किल लगता है तो डेफिनेटली अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो आज YouTube या ऑनलाइन कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिसमें हो सकता है डिग्री ना मिले लेकिन शिक्षा ज़रूर मिलेगी। और कुछ ऐसे माध्यम तो बिल्कुल अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको डिग्री भी मिल सकती है, जहाँ पे आप अपना चाहे तो 10वीं कर सकते हैं या 12वीं कर सकते हैं, स्नातक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें अलग अलग रूप में अवेलेबल हैं आपके लिए। ज़रूरी है बस एक कदम बढ़ाना। एज कोई मैटर नहीं करती, आपको बस करने की इच्छा होनी चाहिए और बस एक बार फिर ये कोशिश कर देनी चाहिए कि हाँ चलो मैं करूँगा या मैं करूँगी। दोस्तों कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको मतलब ऐसे कोर्सेज में मिल जाएंगे जो हो सकता है आप सोचते हो इसमें तो नहीं पढ़ाई होती होगी लेकिन उसमें भी मिल जाएंगे आपको। जी हाँ, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हो, पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट हो, मतलब कोई भी आप एनवायरनमेंट, आप पर्यावरण के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आर्ट, हिंदी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, ऐसी कोई भी भाषा हो, चाहे उर्दू हो, फ्रेंच हो, जापानीज़ हो, आपका कितनी सारी चीज़ हैं, टूरिज़्म और मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, कॉमर्स पढ़ना चाहते हो, आप रिटेलिंग के बारे में जानना चाहते हो, डिजिटल मीडिया के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, माइक्रो या मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे जो बिज़नेस शुरू होते हैं जो बहुत एक्चुअली बहुत बड़े रूप में आज हमारे भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन साइंस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, मतलब नाम लेते जाएं तो नाम ख़त्म ही नहीं होंगे। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आप 6 महीने के कोर्स कर सकते हैं, इनमें आप 3 साल के कोर्स कर सकते हैं। आपको अगर बहुत समय नहीं मिलता है तो आप छोटे छोटे कोर्सेज कीजिए, फ़ायदा बहुत होता है। एक तो हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारी बुद्धि खुलती है, दिमाग में और 4 बातें आती हैं, नॉलेज आपको और आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा, सोचिए कि अगर आपको बोला जाए कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी है और अगले हफ्ते उसका इंटरव्यू है, मान लीजिए आपके पास 1 हफ्ता भी है या कभी कभी तो उससे भी कम समय होता है, तो क्या 1 हफ्ते में वो 3 महीने का कोर्स या 6 महीने का कोर्स हम कर सकते हैं? नहीं, संभव ही नहीं है। पढ़ना भी चाहें, पता भी करना चाहें तो उतना नहीं कर पाएंगे। कर सकते हैं, इच्छा है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 6 महीने या 3 महीने जितना तो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसी मौके का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई इंटरव्यू आएगा या जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई हमारे से पूछेगा या हम कहीं जाएंगे तो पढ़ाई करेंगे। नहीं, पढ़ाई तो आज ही करनी है। अपॉर्चुनिटी हो सकता है आज ना आए, कल आए, परसों आए, कुछ समय बाद आए, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट भी कर सकते हैं आप ये कोर्सेज करके, यानी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उस काम को बढ़ा सकते हैं, उसमें तरक्की ला सकते हैं। कैसे? शिक्षा के साथ, सही जानकारी के साथ, रिसर्च के साथ, मेहनत के साथ। तो दोस्तों इसीलिए शिक्षा अगर आपको हासिल करनी है, एक थॉट भी आ गया है ना तो दूसरा थॉट ये मत आने दीजिए कि नहीं छोड़ो, दूसरा थॉट ये लेकर आइए कि मुझे करना ही है, मुझे और पढ़ना ही है। और पढ़ने से और जानकारी मिलने से आपके लिए और मौके खुलेंगे और जानकारियाँ आपको मिलेंगी। ऐसे ही कुछ कोर्सेज के बारे में आपको बताएंगे जो आप घर बैठे कर सकते हैं। फिलहाल कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार, बढ़ते हैं आगे अगले गीत की ओर। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि ऐसे ऐसे कोर्सेज के बारे में आपको बताने वाली हूँ जो आप घर बैठे कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जिसके डिग्री की कोर्सेज की मान्यता है, और उसका नाम है इग्नू, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज। दोस्तों, ऐसी अनेक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी कोर्सेज करा सकते हैं, उनका भी आप पता कर सकते हैं। इग्नू के प्रोग्राम्स अगर आप पता करना चाहें तो igno.ac.in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं आप। इग्नू अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो वो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाएगा, जो कि याद रखें igno.ac.in है। वहाँ पे आपको लिखा मिलेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, यानी कि इग्नू, और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश या हिंदी में भी आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको छात्र सेवाएं, कर्मचारी सेवाएं, हमारे बारे में, आजीविका, घोषणाएं, मीडिया, हमें संपर्क करें, इस तरह के बहुत सारे टैब्स मिलेंगे। थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो आप उसमें ऑनलाइन शिक्षा का एक देखेंगे कि बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बड़ा लिखा हुआ है, उस पर बना भी हुआ है किस प्रकार से आप ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं, उसका एक सिंबल भी छोटा सा बना हुआ है। तो ऑनलाइन कार्यक्रम आपको पता चलेंगे, स्वयं पाठ्यक्रम आपको पता चलेंगे, वर्चुअल कक्षाएं कैसे होती हैं वो आपको पता चलेगा। आप दूसरे ब्लॉक में देखेंगे कि हमारे कार्यक्रम को ब्राउज़ करें, मतलब अब आप देख सकते हैं अपने कौन कौन से आप पढ़ना है, आपको स्नातक करना है, स्नातोत्तर करना है, अन्य कार्यक्रम है या PhD करनी है आपको, वो भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार उस पर क्लिक करके ढूंढ सकते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, दो चीज़ें हैं, ODL कार्यक्रम भी होते हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम भी होते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम की पढ़ाई, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, सब कुछ ऑनलाइन है। ODL जो है वो, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात हो रही है, वो कुछ इस प्रकार होता है कि आपके सेंटर्स होते हैं, स्कूल्स को, कॉलेजेस को कुछ सेंटर्स बनाया जाता है जो कि इग्नू के सेंटर्स होते हैं। आपके नियरेस्ट जो होता है आप पता कर सकते हैं, अमूमन शहरों में ये मिलते हैं। आबू रोड में अभी इग्नू का सेंटर मेरी नॉलेज में नहीं है, आपको उदयपुर में, जयपुर में या अहमदाबाद में ज़रूर मिलता है। तो वो आपके सेंटर्स ऐसे होते हैं कि थोड़ी थोड़ी क्लासेस भी आपके बीच में रख सकते हैं, और साथ साथ वहाँ पे अगर आप नहीं भी जा पा रहे हैं तो आपको किताबें वहाँ से मिल जाती हैं, किताबें आप तक पहुँचा दी जाती हैं, कई जगह ये भी सुविधा उपलब्ध होती है, आप क्लियर कर सकते हैं सब चीज़ें। तो उसमें आपको हाथ में पुस्तक मिलती है, आप पढ़ते हैं, आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है, वो जो सेंटर्स आपका आपको दिया जाएगा, जो नज़दीकी है, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म में वो लिखना होता है हमको, तो वो या ऑनलाइन जो होते हैं वो आपके फिर फ़ोन में या फिर लैपटॉप में, जो भी आपके पास सुविधा है उसमें आप पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम देने सेंटर्स पे जाना ज़रूर होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम भले ऑनलाइन है लेकिन आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किसी एक पर्टिकुलर सेंटर पे जाके होगा, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम देने ही जाना होता है आपको। बाकी जो भी आपका काम है, आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं, प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं, है ना, वो सब आप घर बैठे कर सकते हैं। और आपको एक पता दिया जाता है, एड्रेस दिया जाता है, उस पर आपको वो भेज देने होते हैं, डाक के माध्यम से उनको भेज देना होता है। तो उसके नंबर भी आपको मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन आपका रिपोर्ट कार्ड भी दिखाई देता है कि मेरे को कितने नंबर मिले, क्या हुआ, एग्ज़ाम्स कब हैं, वो भी आपको पता चल जाता है। तो ये दो तरीके के हैं, उनमें से आप चूज़ कर सकते हैं आपको जो ठीक लगे। आपको कैसे आवेदन करना है वो भी सारी जानकारी यहाँ पे है, और आपको यहाँ पे एक और टैब मिलेगा, हमारा नेटवर्क, जिसमें लिखा है क्षेत्रीय केंद्र कहाँ कहाँ है, शिक्षार्थी सहायता केंद्र भी है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं शिक्षार्थियों के लिए उपलब्ध हैं, किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं बच्चों के लिए, आप सब पता कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कोर्स का बेनिफिट लेते हैं, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हर किसी की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, कई बार हमारे डिसीजन बदलते भी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शिक्षा का मौका सबको मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार सबके पास होना चाहिए। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ाई के लिए समय निकालना,
बहुत सारे काम होते हैं जीवन में, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी भी मेहनत होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन जहाँ चाह है वहाँ राह है दोस्तों। और इतिहास गवाह है, बहुत से ऐसे लोग जिनकी आप कहानियाँ आज सुनते होंगे कि उन्होंने ये कर दिखाया, ये कर दिखाया, इनको कोई अलग से समय नहीं मिला था या अलग से जीवन नहीं मिला था, विषम परिस्थितियों में ही अपने लिए और समय निकाला, मेहनत कर डाली और जी जान लगा दी अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए। तो हम क्यों नहीं कर सकते? और अगर हम ये सोचें कि कल शायद कुछ बदल जाएगा, तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है कुछ तो हमें शुरुआत करनी होगी, आज ही करनी होगी, कल नहीं। सही कहते हैं, कल कभी नहीं आता। तो दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से इजाज़त लेने का। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी जो भी आप सपने देख रहे हैं वो उसे पूरा कर पाएँ, शिक्षा को और ग्रहण कर पाएँ, अपने विकास पर खास ध्यान दें, अपने ऊपर खास ध्यान दें। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी उसमें से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें, शिक्षा के लिए ज़रूर निकालें। और आज इंटरनेट है, फ़ोन है, तो उसका पूरा फ़ायदा अपने बेनिफिट के लिए आप ज़रूर लें। फ़िलहाल वक्त हो गया इजाज़त लेने का। दोस्तों, रेडियो मधुबन आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। अगर आपको लगता है कुछ और जानकारियाँ आपको चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। आप कॉल कर सकते हैं लाइव प्रोग्राम्स के द्वारा हम, या मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं हम कभी भी। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ डांस, अ डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज अंटिल आई सॉ अ मैन हु हैड नो फीट। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं है, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस। इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है, वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। हाँ, तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

0: गुड इवनिंग, नमस्ते। आज गुरुवार की खूबसूरत शाम बिताने के लिए मैं मोना
1: और रूहानी,
0: हम दोनों साथ में लेकर आए हैं आज उड़ान। नमस्ते, गुड इवनिंग। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है रूहानी। हम जरूर लेकर आएंगे आपके लिए कुछ अमेजिंग जानकारी, साथ ही साथ पूछेंगे आपसे सवाल भी, होमवर्क भी आज करेंगे और कविता भी जरूर लेकर आएंगे। आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, इन सवालों का जवाब देंगे आप। नंबर है हमारा
1: 9414151415 पर।
0: देर मत करिए, रेडियो मधुबन के साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए।
2: कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे

0: एटी गोट, गोट माने बकरी, लायन, लायन माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: ए

0: वेलकम बैक दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। आज ऐसे दो व्यक्तित्व के जन्मदिन को लेकर आप तक पहुंच रही हूं जो खास है और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ अमेजिंग बातें हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र विरोध भड़काने के आरोप में उन्हें 50 साल की सजा सुनाई गई और उन्होंने अंडमान की सेलुलर जेल में 10 वर्ष बिताए, जहां उन्हें असहनीय यातनाएं भी दी गई। जेल में से रिहा होने के बाद रत्नागिरी में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करने का अथक प्रयास किया और सुंदर मंदिरों की स्थापना की। उन्हें हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्रवाद की राजनैतिक विचारधारा को व्यवस्थित रूप देने वाला प्रमुख विचारक भी माना जाता है। मैं बात कर रही हूँ वीर सावरकर की, विनायक दामोदर सावरकर, जिसे हम सभी वीर सावरकर के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 28 मई 1883 भगूर गांव नासिक में हुआ था। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा महाकवि और महान इतिहासकार, साथ ही साथ ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा किया। वीर सावरकर
1: का पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले विनायक दामोदर सावरकर साधारणतया वीर सावरकर के नाम से विख्यात थे। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता दामोदर पंत गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से जाने जाते थे। जब विनायक 9 साल के थे तभी उनकी माता राधाबाई का देहांत हो गया था। विनायक दामोदर सावरकर 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े हिंदूवादी थे। उन्हें हिंदू शब्द से बेहद लगाव था। वह कहते थे कि उन्हें स्वतंत्रतया वीर की जगह हिंदू संगठित कहा गया है। उन्होंने जीवन भर हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। वह अखिल भारत हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया गया था।
0: 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। बाद में वो निर्दोष सिद्ध होने के साथ साथ राजनीति से संन्यास भी लिया। पढ़ाई और उनके गुणवत्ता को कुछ जरूर सुना, लेकिन इनमें से कौन सी वस्तु आम तौर पर मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है? आपके ऑप्शन है ए
1: जूते, ऑप्शन बी है पेंसिल, ऑप्शन सी है घड़ी।
0: सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम।
2: महिला स्वयं में है शक्ति और इसलिए आपकी सुरक्षा है आपके हाथ ही। कभी भी कहीं भी अगर आपको किसी प्रकार के खतरे का आभास हो तो डायल करिए 1090 या 1091। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: दादी अम्मा तो मान गई। रूहानी, आज का सवाल एक बार क्या तुम दोहरा दोगे?
1: इनमें से कौन सी वस्तु आम तौर पर मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है?
0: भाई मुझे तो लगता है जूते चप्पल, या फिर आप दोस्तों को लगता है पेंसिल, या फिर घड़ी। सही जवाब दे देना 9414151415 पर देना। आगे बढ़ते हैं और कविता आज की आप तक पहुंचाते हैं। वंदन वीर सावरकर की। वंदन वीर सावरकर की, सावरकर भारत संवार कर, तीर तरुण तरकश में डार कर,
1: मातृभूमि का वंदन कर, गए भार मुनिवर उतार कर,
0: फांसी का फंदा चूमा और काले पानी की यातना सही, भारत माँ की बेड़ियों को काटने में कोई कसर न छोड़ी,
1: वह सावरकर की हुंकार थी जिससे डरती फिरंगी सरकार थी, ऐसे वीर सपूत पर भारत को गर्व अपार है,
0: अंडमान की काली कोठरी में जहाँ रोशनी तक नहीं जाती थी, अंडमान की काली कोठरी में जहाँ रोशनी तक नहीं आती थी, स्वतंत्रता का वह पुजारी बुलबुल के पंख पर बैठकर
1: मातृभूमि की सैर कराता था, यह इतिहास के पन्नों में अमर एक सच्चे देशभक्त की कहानी है।
0: चलिए दोस्तों, वीर सावरकर की इस खूबसूरत कविता के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, एक और गीत आप तक पेश करते हैं और झटपट आपसे आग्रह करते हैं कि कॉल कीजिए 9414151415 पर कॉल कीजिए। सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए,
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आपको क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या, इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आज का होमवर्क आपके लिए हीरा और मोती दो बैलों की कथा। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने जुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दड़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर।
1: आया और दोनों मित्रों को कुल्हों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें ऐसे क्यों टटोल रहा है।
0: इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा,
1: गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी।
0: मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती।
1: भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रह लेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे।
0: ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना तो क्या चिंता है।
1: मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम तो आ ही जाएगा।
0: नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था।
1: राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब।
0: किसी को भी चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ में पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित रहा है, हाँ इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था ना, वही खेत वही बाग वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान सारी दुर्बलता
1: गायब हो गए। आह ये लो अपना ही हार आ गया, इसी कुएं पर तो हम चलाने आया करते थे ना, यही कुआं है।
0: मोती ने कहा, हाँ हमारा घर नगीच आ गया।
1: हीरा बोला, भगवान की दया है,
0: मैं तो अब घर भागता हूँ।
1: यह जाने देगा,
0: इसे मैं मार गिराता हूँ।
1: नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे।
0: दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए
1: और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था।
0: झूरी द्वारा बैठा धूप खा रहा था द्वार पर। बैलों को देखती दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी के हाथ का को चाट रहा था। दड़ियल ने
1: जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली।
0: झूरी ने कहा,
1: मेरे बैल हैं।
0: तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खानी से नीलाम करके लेकर आया हूँ।
1: मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने क्या अखेतर है।
0: जाकर थाने में रपट दूंगा।
1: मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।
0: दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चला दी।
1: दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुक गया।
0: पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर रखड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर भी फेंक रहा था, और मोती
1: विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह सब तमाशा देख के हंसते जा रहे थे।
0: जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा,
1: मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो।
0: अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता।
1: अब न आएगा?
0: आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है।
1: जो गोली मरवा दे तो?
0: मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊंगा।
1: हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता है, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं।
0: जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहलाता रहा और बीसियों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उच्छासा मालूम हो रहा था।
1: उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए।
0: और आज का ये कहानी, या हम कहें
1: होमवर्क,
0: खत्म हुआ। चलिए दोस्तों, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरी कहानी लेकर आते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
3: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

अरे ये क्या, ये पत्थर तो चमक रहा है। अब देखता हूँ, एक दो बार और मार के देखता हूँ चमकते हैं क्या।

चलो, आज का काम खत्म हो गया और ये जो पत्थर है ना, इन्हें लेकर घर जाता हूँ। बीवी इन्हें देखकर खुश हो जाएगी।

0: भगवान, ओ भगवान, अरे कहाँ गई? ये तो देखो मैं क्या लाया हूँ।
1: कितना चमचमाता हुआ पत्थर है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर से सोना निकल रहा हो। हाँ हाँ हाँ, ए दो ना, दो दो दो दो दो, मैं जरा देखूं, अच्छी तरह से पानी में धो कर देखती हूँ।

0: जितना धो रही हूँ उतना ही ज्यादा ये चमचम कर रहा है। ये तो सोना है। नहीं नहीं नहीं, कोई शक नहीं है, ये तो असली सोना है, असली।
1: क्या क्या क्या बोल रही हो? मतलब वहाँ पर पत्थर जो भी चमक रहे थे वो सब सोना सोने के पत्थर है? मैं जाकर ये खबर ठेकेदार को दे आता हूँ, है ठीक है ना?
0: बुद्धों जैसी बात करो, बुद्धों जैसी बात मत करो। सबको पता लगने से पहले ही जितना ज्यादा हो सके हम सोना इकट्ठा कर लेते हैं। किस्मत बदलने का यही मौका है। हाँ
1: नहीं, ये चीज गलत है। हा? इतना लोभ करना अच्छी बात नहीं है। मैं जाकर ठेकेदार जी को बता कर आता हूँ।
0: नहीं, ऐसा लगता है जो करना है वो मुझे ही करना होगा।

0: अरे ठेकेदार तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है, लगता है मालिक के साथ में पहाड़ के उस तरफ गए होंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका इंतजार नहीं करता हूँ, मैं खुदाई शुरू करता हूँ।
1: मैं भी यही चाहती हूँ। तुम तोड़ोगे और मैं थैले में सोना भरूंगी, तुम तोड़ोगे मैं थैले में भरूंगी।
2: तुम जितना ही ठेकेदार को बताने की सोच लो, ये सोना मुझे चाहिए, ये सोना मुझे चाहिए।
0: अरे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो और उस थैली में क्या डाल रही हो, बताओ बताओ ना। अरे क्या कर रही हो बताओ तो हैं?
2: तुम तो कुछ भी नहीं करोगे, तुम तो कुछ भी नहीं करोगे, इसीलिए जो करना है मुझे ही करना है।
3: क्या हो रहा है यहाँ? दोनों छुप छुप के पत्थर तोड़ रहे हो और ये बोरी में क्यों भर रहे हो?
2: क्या भरूंगी थैले में, पत्थर के टुकड़े ही तो है।
3: नहीं नहीं नहीं, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, कोई मामूली पत्थर को ऐसे बोरी में डालकर लेके जाता है।
0: मालिक, मैं आपको सब खुल के बताता हूँ, ये पहाड़ जो है ना, कोई मामूली पहाड़ नहीं है, ये सोने का पहाड़ है, सच में सोना मिल रहा है।
3: अच्छा ये बात है, तो मुझे जरा ध्यान से देखना पड़ेगा।
0: देखिए ना, देखिए, मैं भी ठेकेदार साहब को बोल दूंगा, फिर मैं सबको बोल दूंगा।
3: नहीं नहीं नहीं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं ये सारी चीजें नहीं देख लेता हूँ तब तक मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, समझे?
0: अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो हमें, अरे छोड़ो ना, अबे क्या कर रहे हो ये?
2: नहीं नहीं नहीं, इस तरह से आप हमें बांध कर नहीं रख सकते, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दीजिए।
3: मैं क्या कर सकता हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, और वो मैं करके दिखा भी दूंगा। तुम दोनों को मैं बंदी बना कर रखूंगा, अगर सबको इस सोने के पहाड़ के बारे में पता चल गया तो मैं ये सारा सोना कैसे हड़पूंगा। चलो चलो चलो, जल्दी हाथ चलाओ, मुझे बहुत सोना चाहिए, मुझे और बहुत ज्यादा सोना चाहिए।
4: सोने का पहाड़, हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, सोने का पहाड़।
3: हम लोग नहीं बेवकूफ, सिर्फ मैं माला माल होऊंगा तो सिर्फ मैं, सारा सोना निकल जाने के बाद मैं तुझे भी ठिकाने लगा दूंगा।
4: अरे वाह, ये तो बहुत सारा सोना जमा किया मैंने।
3: ये सब मेरा है, ये सब सोना मेरा है, ये सब मेरा है।
4: नहीं नहीं, ये सारे पत्थर तो मैंने तोड़े हैं ना, तो ये सारा सोना तो मेरा हुआ।
3: तेरे हिस्से का सोना मैं बाद में दूंगा, अभी कोई झमेला मत कर।
4: मुझे मेरे हिस्से का सोना अभी चाहिए, मैं नहीं छोड़ूंगा।
5: अरे अरे, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ बताओ।
4: मैं सोने के पहाड़ का पत्थर तोड़ के सोना निकाला हूँ, ये हिस्सा नहीं दे रहे हैं।
3: इस सोने के पहाड़ को मैंने खोजा है तो ये मेरा हुआ ना।
5: नहीं सुनो, तुम देख क्या रहे हो, दोनों को बांध कर पहाड़ के एक कोने में बिठा दो, बाकी सबकी छुट्टी कर दो, और तुम दोनों मेरे साथ रहकर ये पहाड़ तोड़ोगे। उसके बाद चिंता मत करना, काम होने के बाद सबको अच्छी खासी रकम मिलेगी, ठीक है?
6: अरे अरे, ये क्या है, ये तो काम बंद करने का नोटिस है।
7: हाँ, वही तो देख रहा हूँ, फिर हमारा क्या होगा,
3: तब तो हम भूखे मर जाएंगे।
5: आज से तुम लोगों का काम बंद, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें घर बैठने के बावजूद भी पूरा पगार मिलेगा। हाँ ठीक है, जाओ अब घर जाओ, मजे करो। चलो जोर जोर से हाथ चलाओ, जो जितना खोदेगा उसको उतना ही ज्यादा सोना मिलेगा। चलो हाथ चलाओ, जल्दी करो। अरे नहीं नहीं, अभी रुकने का समय नहीं है, पहले काम करो उसके बाद में विश्राम। नहीं नहीं, मैं जो चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा, मुझे इस पूरे पहाड़ का सोना चाहिए, सब सोना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय ढूंढना ही होगा, अब कुछ ना कुछ करना होगा।
0: च,
5: चलो, अपने आप को हमने बचा तो लिया, क्या कहती हो भगवान?
2: हाँ, अब किसी भी तरह से हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ से निकलना होगा।
5: एक उपाय है, ये ऊपर वाली छत हटाकर हम यहाँ से निकल जाएंगे।

0: चलो हम बाहर आ गए हैं, अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें बस सही जगह पर सही खबर सावधानी से पहुंचानी है। अरे इन्हें क्या हो गया, आज कोई काम नहीं कर रहा है, सभी गप्पे लड़ा रहे हैं। अरे ओ भाइयों, क्या बात है, आज कोई कामकाज नहीं है क्या, खुदाई नहीं है?
1: ठेकेदार साहब हम लोगों को छुट्टी दिए हैं।
2: काम बंद है लेकिन रोज का रोज मजदूरी मिलता रहेगा,
1: इसलिए अब हमारा ना कोई चिंता है ना ही कोई परेशानी है।
0: अच्छा मतलब ठेकेदार जी को भी सोने के बारे में खबर पड़ गई है, अंदर ही अंदर सब माल समेट रहा है।
1: क्या बोला तुमने, सोना मिला है? कहाँ मिला है सोना, बताओ हमें अभी बताओ, नहीं तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कहाँ है सोना?
3: सोना तो है उस पहाड़ पर, पहाड़ का पत्थर तोड़ते ही सोना निकलेगा।
1: अच्छा ये बात है, तब तो मैं अभी जाता हूँ, मैं भी जाऊँगा।
0: अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग, अरे देखो वो सोना सरकारी संपत्ति है, उस पर हमारा कोई हक नहीं है, सुनो तो।
3: कोई फायदा नहीं, वो लोग नहीं रुकेंगे, चलो हम भी उनके साथ जाते हैं और जितना हो सके सोना अपना बना लेते हैं, चलो।
0: हाँ हाँ लालच का फल बहुत बुरा होता है, उन्हें तो रोकना होगा, हमें किसी भी तरह रोकना होगा उन्हें, वरना बहुत बुरा होगा।
4: वाह क्या दिमाग लगाया है मैंने, वाह एक झटके में इस पहाड़ का पूरा सोना मेरा हो जाएगा, वाह क्या बात है। पहाड़ के कोने कोने में मैंने डायनामाइट लगा दिया है, झट से बम फूटेगा, फट से सोना मेरी जेब में हो जाएगा, वाह क्या बात है, पूरा सोना मेरा और किसी का नहीं।
1: ये सोना हमारा है, हम लेंगे
5: और आप लेंगे तो छीन लेंगे।
4: अरे ये लोग कहाँ से आ टपके, क्या करूँ। अब एक काम करता हूँ, एक ब्लास्ट से ही इन सब का काम तमाम कर देता हूँ, सोना भी मेरा है।
3: ये क्या सर्वनाश हो गया, पूरा पहाड़ ही मिट्टी के नीचे चला गया, उसके साथ ही वो सब भी।
0: देखा तुमने, इस लालच के चक्कर में कैसे सबने जान गंवाई, कहावत है ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी।
3: सोने का पहाड़ नहीं रहेगा तो क्या हुआ, मेरे पास तो एक असली सोना है। हाँ
0: अच्छा कौन है वो,
3: क्यों ये तुम ही तो हो, तुम ही तो असली सोना हो, आज के समय में भी तुम में बिल्कुल भी लालच नहीं है।
0: अरे क्या कह रही हो, मुझे तो शर्म आ रही है।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को
1: वेल दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप सुन रहे हैं उड़ान, आप सुन रहे हो उड़ान और मैं हूँ आपकी दोस्त मोना, मेरे साथ है
2: रूहानी।
1: चलिए सवाल पुनः एक बार और दोहराते हैं।
2: इनमें से कौन सी वस्तु आमतौर पर मंदिर में ले जाने नहीं दी जाती है?
1: आपके ऑप्शन है जूते, पेंसिल या घड़ी। क्या सोचती हो कौन सी घड़ी के बारे में तुम्हारे क्या नॉलेज है? क्या घड़ी को अंदर लेकर जाने देते होंगे?
2: हाँ, समय तो देखने देते।
1: अब मैं आपको इतना बताती हूँ कि बहुत सारी जगह पर आज के दिन पर घड़ी को भी बाहर निकाल दिया जाता है। ये कौन से मंदिरों में है? ये जो अहमदाबाद में भी जो मंदिर है स्वामी नारायण का, वहाँ पर भी, और भारत देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर लेदर बेल्ट, लेदर की घड़ियों को, चमड़े, क्योंकि वो जानवरों से बनती है, जानवरों की खाल से बनती है, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। पेंसिल जो है इसे मना नहीं करते हैं, लेकिन जूता जो है वो कभी भी मंदिर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, कई बता रहे ना, घड़ियों को भी खुलवा दिया जाता है। हम दिल्ली के इसमें स्वामीनारायण मंदिर पे गए थे, वहाँ पर भी हमारे डिजिटल वॉचेस, सारे वॉचेस, हमारे इवन मोबाइल फोन को भी और वॉलेट को भी बाहर रखवा दिया गया। लेदर वॉलेट्स नहीं अलाउ है। सो सही जवाब आज का कौन सा है?
2: ऑप्शन ए, जूते।
1: जी हाँ दोस्तों, इनमें से वो वस्तु जो आमतौर पर मंदिर के अंदर नहीं ले जाने की अनुमति है वो जूते ही हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम
2: 6 बजे।
1: तब तक के लिए उड़ान से कहना चाहेंगे गुड बाय, सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो
1: और कुछ बेहतरीन गीतों को अब एंजॉय करो।
0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में, नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई। चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।

0: आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
2: एक माँ का अपने बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है वो निस्वार्थ स्नेह होता है। एक बार माँ जो थी ना किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी, और बेटा जो होता है वो मम्मी के पास आता और कहता, मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मी कहती, व्हाट? लाइक यस। तो मम्मा को बिल देता है तो मम्मा उसको देखती है, मालूम बेटा क्या लिखता है? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, एट द रेट ऑफ 3 रुपीज पर ट्रिप, 9 रुपीज बिल। मम्मा आपने बकेट ऑफ पानी को यहाँ से यहाँ उठा के रखने के लिए कहा, अनदर 5 रुपीज। मम्मा आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, वेरी टेरिफिक जॉब, 10 रुपीज। सारा महीने का बिल 66 रुपीज, क्योंकि यू आर माई डियर लविंग मम्मी, 6 रुपीज दिवाली डिस्काउंट, 60 रुपीज बिल। तो मम्मा ये बिल को देखती है, मुस्कुराती है, फिर क्यूट बॉय को देख के। द अदर एंड ऑफ द बिल जो खाली पेज था, माँ लिखती है, 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे तो रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से, ट्यूशन क्लासेस से थके हारे वापस आते थे, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, भोजन, डिनर बनाकर देती थी, नो चार्ज। और मम्मी नीचे लिखते 0 रुपीज बिल, और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को देखता है, अपनी मम्मी को देखता है, कहता है, मामा आई एम वेरी सॉरी, और अपना बिल लेता है, उसको कट करता है और बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखता है, मामा पेड इन फुल, मामा पेड इन फुल बट इनडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा।
1: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी मारो गांव मारो अंचल। सही में जब नाम सुनते हैं मेरा गांव मेरा अंचल यानी मारो गांव मारो अंचल, तो बहुत खुशी लगता है। जिस गांव और अंचल में हम रहते हैं, पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव को कभी भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि गांव का जो शुद्धता, गांव का जो भोलापन देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर जब हम गांव और अंचल में जाते तब हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि गांव का जो भोलापन देखने को मिल रहा है। तो आज नन्हे मुन्ने बच्चे, मासूम बच्चे उपस्थित है, बहुत नादान है, उनका चेहरा देखने से पता चलता है ये सब महात्मा है। ना उनका पास छल, ना कपट, ना हिंसा, ना द्वेष, ना चोरी, कुछ नहीं, बहुत भोलापन बच्चे हैं। क्योंकि बच्चों को जब देखते हैं तो अपना बचपन याद आता है। आज इस कार्यक्रम को लेकर जब मोरथला में पहुंचे, सबको विदित है मोरथला का, बड़े स्कूल बड़े बच्चों को भी हम ले चुके लगे, आज छोटे छोटे नन्हे बच्चों को भी आज बारी बारी सुनने को मिलेगा, उनका आवाज ही उनका पहचान होगा। तो अपना नाम, क्या करते हैं, बड़े होकर क्या बनेंगे, सब चीज आज बताएंगे आज रेडियो कार्यक्रम को लेकर। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जो पूरा कप्तान है मैडम हमारा पूजा जी उपस्थित है, तो उनको भी स्वागत करते, क्योंकि उनका बुलाने पर हम आज पहुंच चुके हैं। और बच्चों को तो हमेशा वो ध्यान देते हैं, चले उनको थोड़ा सा पहले हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए स्वागत करते हैं। पूजा जी आपको स्वागत करते हैं, आप बच्चों को इतना सुंदर रूप में बच्चों को अनुशासन करते हैं, और आप हमारे रेडियो मधुबन परिवार की ओर से पूजा जी आपको स्वागत करते हैं। आप अपना परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं, इस तरह कैसे आए हैं, इस बच्चों को पढ़ाने में आपका कैसे रुचि है, अपना स्वागत।
1: मेरा नाम पूजा है और मैं ये जन चेतना संस्था के थ्रू पढ़ाती हूँ, और मैं मोरथला गांव में रहती हूँ, और यहाँ के आसपास जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको हमारी संस्था निःशुल्क सेवा देती है।
0: ताली बजाओ बच्चे। पूजा मैडम के लिए पूरा ताली हुआ है, क्योंकि पूजा मैडम हमेशा देखते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, और एक हिम्मत है। और मोरथला नाम ही जैसे, इस गांव का नामकरण कैसे, मोरथला कैसे पड़ा पूजा, मोरथला जो नाम है,
1: मोर यहाँ बहुत ज्यादा थे इसलिए इसका नाम मोरथला पड़ा।
0: अच्छा, मोरथला में मोर ज्यादा है। और यहाँ का सरपंच अभी कौन है,
1: श्रीमती चंदा देवी,
0: और उनका मिस्टर
1: श्रीमान लक्ष्मण राणा
0: जी, पहले पूर्व सरपंच थे।
1: पूर्व सरपंच।
0: और आपका गांव में आसपास कौन सा मंदिर, बहुत मंदिर हम जब भी आते तो कुछ ना कुछ मंदिर, छोटे बड़े सब मंदिर है, तो कुछ मंदिर के बारे में थोड़ा बताइए। शिव मंदिर है,
1: शिव मंदिर है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है, और तो हनुमान टेकरी है पास में ही। उसके बाद में इस साइड जाओ, तलेटी साइड मुखरी माता मंदिर है, उसी के पास में बीके है ब्रह्मा कुमारी।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो पूजा जी आप कहाँ तक पढ़ाई की?
1: मेरी एमए फाइनल होगी।
0: एमए कर चुके हो, तो जो जनचेतना नाम है कितना सुंदर है, क्योंकि हम पहले जनचेतना से मिले हैं, रिचिकांत मैडम ने कौन है,
1: रिचा
0: मैम अभी भी है,
1: हाँ, है
0: तो चले हमारा कार्यक्रम में सुन रहे होंगे। रिचा मैम तो बहुत स्ट्रांग है, पूरा वेल है, हेल्दी है, जहाँ भी जाते आगे बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं। तो रिचा मैडम को भी धन्यवाद देते हैं, इस तरह बच्चों को जो ड्रॉप आउट बच्चों को ड्रॉप इन करते हैं, ड्रॉप आउट बच्चों को ड्रॉप इन करते हैं, तो आज इन में सब प्रवेश कर चुके बहुत सारे बच्चे। कितना बच्चे और बच्चियाँ आते हैं आपका
1: इसमें? 30 लड़कियाँ आती है, बस लड़कों का नहीं है, लड़कियों का ही है, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए है बस।
0: लड़के
1: तो मतलब ये है, क्योंकि आज के जमाने में लड़कियों को इतना महत्व नहीं देते, तो ये संस्था हमारी लड़कियों को आगे निकालना चाहती है कि लड़कियां हमेशा, क्योंकि हर परिवार में मतभेद तो होते रहते हैं, कोई बोलता है कि ना मतलब लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना, पर हमारी संस्था बोलती नहीं, लड़कियों को आगे बढ़ाना, लड़के भले पीछे रह जाएंगे तो चलेगा।
0: अरे
1: इसलिए
0: होना भी चाहिए, क्योंकि मातृशक्ति जिसको कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, और जब जहाँ पर नारियों का सम्मान होगा, जहाँ नारियों का पूजन होगा, वो गांव, वो देश महान बनेगा, क्योंकि पहले नारी इसके बाद नर है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण कहते हैं, उस तरह राधे सीता कहते हैं, सीता राम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं, तो पहले स्त्री इसके बाद पुरुष। तो सही में जो जनचेतना संस्थान जन जन तक चेतना जागरूक कराने के लिए उपस्थित है, और पूजा तो पाठ करते रहते हैं, और उनका नाम भी पूजा है, तो हम पवित्रता को धारण करेंगे तब पूजा पाठ हमारा सफलता होगा। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब मोरथला बच्चों को मिले तो बच्चों का जो नादानी अभी तो सुनने को मिलेगा, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबनी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिलता है जब गांव और अंचल में जाते हैं तो चाहे कोई भी वर्ग हो, छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे मध्यम हो, सबसे मिलते हैं। हमेशा बड़ों की आवाज सुनने को मिल रहा था लेकिन आज छोटों का आवाज सुनने को मिलेगा, क्योंकि इसका पहल हम सुन रहे थे जो कप्तान है, जो लीडर है, जो टीचर मैम पूजा को सुन रहे थे। अभी ब्रेक के बाद जो बच्चे पूजा से शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे, तो एक बच्चा आया है तो वो अपना नाम बताएगा और उनसे में थोड़ा हेलो हाय करेंगे, है ना। तो क्या नाम है? हेलो,
1: आशीष बेवा।
0: आशीष कौन सा गांव?
1: मोरथला।
0: मोरथला पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अच्छा, बहुत होशियार है, वेरी गुड। और खेलकूद करते हैं?
1: हाँ।
0: कौन सा खेल पसंद लगता है तुमको?
1: कबड्डी।
0: कबड्डी। कबड्डी में कितने लोग खेलते हैं? दो टीम में, ए और बी।
1: साथ साथ।
0: साथ साथ। कॉपी कर रहा है तुमको, दे रहा है ना। ए कॉपी करने वाला देने वाला डूब जाना, तुम बोलेंगे तुमको अभी देंगे। ठीक है, तुम्हारा दोस्त है क्या ये तुमको पीछे से कॉपी दे रहा है?
1: हाँ।
0: साथ साथ। आशीष घर में और कौन कौन है?
1: मम्मी पापा और दो बहने।
0: ओ, दो बहन और मम्मी पापा। क्या करते पापा जी?
1: पापा जी नगर पालिका में नौकरी करते।
0: ओ, क्या नाम है?
1: मनोहर बिरवा, मनोलाल बिरवा।
0: अच्छा, बड़ा पर तुम क्या बनेगा, सपना रखा है? तुम्हारे पापा जैसे बनेंगे ना पूजा बहन जैसे?
1: टीचर।
0: टीचर बनेंगे? टीचर क्यों, पुलिस, पायलट, हाँ आर्मी में जाएंगे, नौकरी करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, पुलिस टीचर ही बनेंगे।
1: बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है।
0: ओ, बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, आना चाहिए। अच्छा आशीष, तुम्हारा फेवरेट अति प्रिय रंग, रंगमंच कलर कौन सा है? कौन सा कलर आपको पसंद है?
1: लाल।
0: लाल। अभी तो कोई लाल टमाटर गीत गाया गया, तुम्हारा लाल शब्द सुन, लाल टमाटर टमाटर बोल रहा था पीछे कोई। लाल टमाटर, लाल टमाटर भी लाल होता है?
1: हाँ।
0: अच्छा, और चांद लाल होता है? चांद
1: नहीं, सफेद।
0: सफेद। अच्छा, और ऐसे लाल फूल बताओ कोई, कोई भी लाल फूल, फ्लावर, लाल फ्लावर। अभी सब याद भूल जाते हैं क्योंकि अचानक में जो इंटरव्यू पूछते हैं ना, जो आना चीज भी भूल जाते हैं।
1: गुलाब।
0: हाँ, गुलाब भूल जाते हैं, लेकिन सब याद था। लेकिन आज जब इंटरव्यू रेडियो में दे रहे तो बच्चे, बड़े बड़े बच्चे का प्रश्न आ जाता है। तो ये छोटे बच्चे, अब पहला बार कोई साज नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, फिर भी मोरथला का बच्चे नंबर वन, वेरी गुड। अच्छा आशीष, अभी कितने क्वेश्चन करेंगे? अभी गीत तो गाएगा ही, है ना, गीत प्रस्तुत करेगा।
1: हाँ।
0: लेकिन चांस मिलेगा, चिंता मत करो। लेकिन अभी तुम्हारा पूरा भेजा मींस इंटेलिजेंट आईक्यू देखेंगे, है ना। अच्छा, तुम्हारा अच्छा पक्का दोस्त कौन?
1: वैभव।
0: वैभव कौन सा क्लास?
1: वो भी नाइन्थ में।
0: वो भी नाइन्थ में। अच्छा, वेरी गुड, वो भी नाइन्थ वैभव। और वैभव का कौन सा एक गुण है, कौन सा एक अच्छा चीज है जो आपको बहुत पसंद है वैभव का? ऐसे कौन से इसके बच्चे हैं, लेकिन वैभव को क्यों आप दोस्त बनाए? उसके पास क्या है, चॉकलेट देता है क्या?
1: नहीं, हम सब मिलकर कहते हैं, वो पढ़ाई भी हम दोनों होशियार है इसलिए।
0: अच्छा, दोनों होशियार पढ़ाई में, वो भी होशियार इसलिए आप उसका होशियारी देखते हुए उसको दोस्त बनाया। अच्छा, जिसका जो होशियार नहीं उससे जाना नहीं, जो होशियार नहीं है उसको होशियार बनाना है कि नहीं?
1: हाँ, बनाना है।
0: बनाना है ना, आप होशियार बन जाएंगे तो स्वार्थी होगी ना।
1: हाँ।
0: जो होशियार है उसको तो सभी लोग ले लेंगे।
1: ऐसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं।
0: कितने दोस्त हैं? 50, 60, 1000, 1,00,000? कितना है?
1: 5-6।
0: 5-6 बता फटाफट।
1: क्रिस सैनी, विकास बेरवा,
0: ओके,
1: बरस बेरवा, सूरज बेरवा और गौरव बेरवा।
0: सब तुम्हारे जाति भाई का नाम ले लिए, क्योंकि तुम बेरवा जाति है तो सबको दोस्त बना दिया। हाँ, मेघवाल है, मीना है। हाँ, उन लोग नहीं मनाएंगे
1: हमारे गांव में, सब बेरवा ही रहते।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, बनाना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा तुम्हारा बात को सुनते हैं, तुम तो पूरा एक चांद निकला है और सो तारे हैं, इतना तारे इतना बट है, लेकिन कोई चुप बट है, कोई बोल नहीं रहे, लेकिन तुम एक चांद है जो पूरा प्रकाश रात को पूरा क्या करते है, प्रकाश दे देते। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। एक ऐसा कोई गीत बड़ा पसंद गाते हैं? हाँ कि नहीं?
1: हाँ।
0: अरे गीत भी तुम गाता है, क्या बात है, ताली बजा भाई, भवन ऑफिस के लिए। शुरू करें अभी कोई गीत, भजन।
1: कबीरा।

गाना। सीता साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी

0: क्या बात है,
1: कितना सुंदर और कितना कला। तुम्हारे पास कहाँ से आया बा, किस तरह चोरी किया क्या किससे? कहाँ से, कौन आपको इतना सिखाया, बुद्धि इतना तेज हो, कौन?
2: आसपास के लोगों से।
1: आसपास लोगों से, हाँ?
2: पूजा जी, जी।
1: पूजा जी से। पूजा जी आपको क्या लगते हैं मैम?
2: दीदी लगती है।
1: दीदी लगती है, अच्छा। पूजा बहन से सीखी है और मम्मी पापा भी से सीखे होंगे, है ना? सीखे, अच्छा, वेरी गुड। तुम और हम खेलेंगे मिलकर, कबड्डी खेलेंगे?
2: हाँ।
1: लेकिन तो मुझे तो कबड्डी खेला आता नहीं है, तुम मुझे हरा देगा?
2: हम सिखा देंगे।
1: सिखा देंगे, अच्छा, वेरी गुड, कोई बात नहीं। आशीष अभी लेते छोटा सा ब्रेक, है ना? ब्रेक, अब तुमको थोड़ा पानी पानी पीना होगा तो पानी पी लेना, ठीक है? अगला बार फिर तुमको

बचपन की सुरक्षा है एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम आशीष को सुन रहे थे और आशीष जब सुना रहा था हमको ही वो क्वेश्चन कर रहा था भाई हम ऐसे करेंगे तैसे करेंगे और बड़े अच्छे बच्चे हैं क्योंकि जब सखियों के बाड़ी में बच्चियां जब आते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उसको सहयोग देने के लिए जब फ्री रहते हैं तो बच्चे भी आ जाते हैं सुनते हैं देखते हैं क्या पढ़ा रहे हैं लेकिन मैम तो सबको संभालते हैं इधर उधर को बात को नहीं है लेकिन चलिए और दोनों कन्याएं दोनों किशोरियां आए हैं तो उनको भी हेलो करते हैं नाम क्या है हेलो क्या नाम है
1: कंचन
0: कंचन अरे वाह कंचन सबको बनना चाहिए कंचन मतलब पवित्र है ना कंचन सोना को कंचन कहते हैं है ना और तुम्हारा दोस्त का नाम
1: नीतू
0: बोलो नाम
1: नीतू
0: और तुम्हारा जो जहाँ पर क्लास करते हैं वो मैडम का नाम क्या है
1: पूजा मैम
0: पूजा मैम अच्छा और उसमें जो मोरथला में भी चल रहा है सेंटर क्या कहेंगे सखी की बाड़ी क्या बोलेंगे
1: सखिया की बाड़ी
0: सखियों के बाड़ी तुम सखी है ना हाँ तुम्हारा सखी का नाम बताओ और कुछ कौन कौन सखी आए हैं बोलो सखियाँ कौन कौन सखियाँ
1: प्रिय
0: और किसको नाम नहीं आता कोई बात नहीं तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे गीत गाएंगे सुनो
1: काली कोयल बोले ये डाल डाल पर बोले कुकू करके गीत सुनाते कभी नहीं मेरे घर आती थी
0: उसको पूरा से तुम्हारे यहाँ ट्रेन चलता है ना स्पीड में जा रहा है अभी तुम्हारा पैसेंजर ट्रेन को जैसे धीरे धीरे बोलो कविता जैसे हाँ
1: काली काली कोयल बोल रही है डाल डाल पर बोल रही है मीठी मीठी सुना रही है चीची चीची कर रही है बैठ डाल पर बोल रही है
0: अच्छा तुम क्या बोल रही तुम वो तो काली कोयल बोल रही तुम क्या बोलेगी अच्छा तुम बोलेगी कुछ घर में और कौन कौन है
1: मम्मी पापा दादी बड़े पापा
0: अरे वाह पूरा बड़ा परिवार
1: बड़ी मम्मी
0: मम्मी पापा दादा दादी नानी नाना कौन तुमको बहुत अच्छा लगता है बात तुमको बहुत प्यार करते हैं मम्मी पापा दादा दादी कौन तुमको गल्ला करते मैंने प्रिय करते मैंने प्रेम करते हैं आशीर्वाद देते हैं सकाश देते हैं सब चीज में बुलाते हैं हाँ बोलो
1: मम्मी
0: मम्मी तुमको अच्छा लगती है पापा नहीं पापा देते
1: पापा भी लगते हैं
0: लगते हैं पहले मम्मी इसके बाद पापा हा?
1: पापा
0: पापा भी अच्छा लगते हैं वेरी गुड और तुमको घर में किसको अच्छा लगते हैं
1: पापा मम्मी को
0: पापा मम्मी क्या गरम गरम रोटा खिलाती है मम्मी अच्छा मम्मी को हेल्प करती तुम मम्मी को काम में कौन सा काम में हाथ बटाती तुम
1: बर्तन घसने का और झाड़ू मारने का
0: क्या बोला फिर से बोलो
1: झाड़ू निकालने का न बर्तन मांजने का
0: और खाना बनाना नहीं आता है रोटा अच्छा नहीं आता है मुख से बोलो कौन सा क्या क्या नहीं आता है तुमको
1: खाना बनाना रोटी बनाना इतना नहीं आता
0: है नहीं आता और गाली करना गाली देना आता है गाली नहीं आता है अच्छा बात बताते हैं हाँ अच्छा बात बताते तुम्हारे गांव के जो अच्छा आदमी का नाम बताओ अच्छा बहन का नाम बताओ कोई औरत का नाम बताओ अच्छा बहन का नाम बताओ तुम्हारे गांव के
1: प्रेरणा
0: प्रेरणा अच्छा है? अच्छा प्रेरणा
1: प्रेरणा
0: ठीक है चलो बहुत अच्छा और तुमको कौन सा खाना भोजन अच्छा लगता है दाल चावल रोटा
1: दाल
0: दाल खाली दाल खाएंगे दाल बाटी दाल चूरमा क्या
1: दाल रोटी
0: रोटी दाल रोटी आपको अच्छा लगता है सब्जी में हरी सब्जी का नाम बताओ
1: भेड़े पालक भिंडे
0: अच्छा ये सब हरी सब्जियां खाएंगे तो खून में ताकत आएगी बुद्धि तेज होगी कोई भी बीमारी नहीं होगी अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हैं तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभी सभी बच्चे एक ही साथ गीत गाएंगे एक अच्छा गीत समूह रूप में है ना चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बच्चे थोड़ा पहला बार आए हैं तो थोड़ा डरते हैं झिझक भी है कोई बात नहीं आगे के लिए जब नेक्स्ट बार आएंगे तो बच्चे का पूरा उमंग उत्साह भी आएगा हम कामयाब जरूर होते हैं क्योंकि फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस कहते हैं कोई भी काम हम करते तो पहले थोड़ा सा होता है शुरुआत में डगमग लेकिन बाद में पूरा टकाटक हो जाते हैं और पूरा होशियार हो जाते हैं चलिए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए एक ग्रुप सामूहिक रूप में बच्चे गाएंगे और पूजा मैडम तो है ही है तो शुरू करते दीदियों का साथ हमारा आशीष इस कार्यक्रम को पूरा लीड कर रहे हैं और उसका साथ देने के लिए सभी बच्चियां बच्चे उपस्थित है तो पुनः स्वागत करते हैं चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं आशीष एंड ग्रुप शुरू हो जाइए बच्चों का आवाज वो भी सामूहिक रूप में बोलेंगे बहुत अच्छा लगेगा हमारा बच्चियां ही आगे के लिए उनका आवाज ही पहचान होगा आशीष शुरू करिए
2: हम

0: din.
1: क्यों कामयाबी नहीं होंगे भाई, कामयाबी तो होंगे ही, क्योंकि कामयाबी हमारा सफलता का आधार है। जब हम लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे कामयाबी। सब लोग चाहते हैं हमारा बच्चे कामयाबी बने, लेकिन गीत का माध्यम से बच्चों का उमंग, उत्साह, उद्दीपना, जो जोश है, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन फिर भी उनका जो होश है, जोश है, उमंग है, उत्साह है, कई में देखने को मिलता है। इसका क्रेडिट तो जाता ही हमारा टीम लीडर को, पूजा जी को, क्योंकि सखियों का बाड़ी में आज सखियों का आवाज, सखा का भी आवाज मिल रहा है दोनों का, तो खुशी लगता है। तो चलिए आशीष एंड टीम को धन्यवाद, इतना सुंदर प्रस्तुति दिए, और होना भी चाहिए है कि नहीं। तो और एक आशीष एक गीत गाएगा क्या लास्ट में? अच्छा, वंस मोर, कोई पीछे बोला और एक बार हो जाना चाहिए, बगल अगल में बोला आशीष को और एक बार चांस मिले, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स कोई नहीं गा पा रहे, तो हमारा चांस तो ही है, सितारा तो कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ आशीष खड़े हो जाओ, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

कर गए कोल अनेक, गिनता गिनता गिस गई मारी आंगुलियां री।

0: हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खाई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर।
1: सावधान रहे, ये एक स्कैम कॉल है। अपना ओटीपी या एटीएम पिन किसी के साथ भी शेयर ना करें।

0: समझते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिलता है, क्योंकि बच्चों को एक मंच मिलना चाहिए। उनके पास बहुत सारा हुनर है, लेकिन जब मंच एक स्टेज मिल जाता है तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जैसे गीत इसका पहले हम सुन रहे थे, हम होंगे कामयाब। कब कामयाब होंगे? जब इस तरह मंच, इस तरह मीडिया जब बच्चों को चांस देगा। क्यों नहीं, उनके पास जो ताकत है, क्योंकि बच्चे नादान होते, मासूम होते, कोई छल कपट हिंसा नहीं है, पूरा महात्मा कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को। उनका चेहरे को जब देखते हैं बच्चों का, तो उसमें पूरा उनका सात्विक जो स्वरूप है ना, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सब स्वरूप में दिखाई देता है। तो चले आशीष को पुनः बुला रहे हैं, आशीष एक गीत प्रस्तुत करेगा, है ना आशीष? धन्यवाद, शुरू करते हैं आशीष।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास और बहू का जमाना, सास कहती है बहू आएगी जरूर।

0: जरूर आके बीस लगाएगी जरूर। देखो सास लगा रही बिस्तर, बहू देखने चले गई पिक्चर। जिंदगी एक सफर है सुहाना, आया सास और बहू का जमाना।
1: क्या बात, आशीष एक गीत में क्या प्रेरणा मिलेगा जो सुन रहे इस तरह, जब गीत सुनेंगे तो सास तो रोएगी और बहू तो बोलेगा आ रहा हमारा तो विजय हो रहा है। विजय तो सास को होना चाहिए, सास तो बड़े होते हैं ना, है ना, सास माने मम्मी माँ है ना, दादी माँ जैसे। सास बहू में जिस तरह जब गीत तुम सुनाया, ये तो वर्तमान समय का पुकार है, समय में जो ऐसे हो रहा है। सही में समय का जो समय कहता है भाई, समय की बात है, कभी बहू का तो कभी सास है। एक दिन सास बहू थी, वो भी अपना पावर दिखाती है, लेकिन जब वो सास बन गई तो उनका बहू शासन करने लगी। वो गीत क्योंकि सभी माँ बाप चाहते हैं हमारा बहू अच्छा बने, तो आशीष इस गीत से हमको क्या प्रेरणा मिलना चाहिए और क्या होना चाहिए, क्योंकि आज सास सब कुछ कर रही है लेकिन वो सोचती थी मेरा बहू आएगी तो हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, आराम से दो रोटी आराम से प्यार से खिलाएगी, लेकिन उल्टा हो रहा है ना, तो क्या कहना चाहेंगे आशीष?
0: सास तो बहू के आने की आशा रखती है, लेकिन बहू को तो सास की कोई इज्जत ही नहीं है, वो तो पराया घर समझकर कुछ इज्जत ही नहीं देती है। सास तो समझती है बहू आएगी और आकर खाना बनाएगी, काम करेगी तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन उल्टा इसमें तो सास को ही काम करना पड़ रहा है। ऐसी बहू क्या काम की?
1: अरे वाह क्या बात है, लेकिन हमारा जो बहू सुन रहे अभी सास लोग का तो आपका सपोर्टिंग कर दिए, लेकिन जो बहू सुन रहे तो बहू भी कभी एक दिन तो सास बनेगी ना, इसलिए वो इससे सीख लेना चाहिए भाई, हम मिलजुल कर सास का जो काम है बहू का जो काम है इस तरह कुछ नहीं है, मिलजुल कर करेंगे तो अति सहज से हो पाएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, एक जनहित में एक प्रेरणा एक हिसाब से, कोई किसको हम छोटा किसको बड़ा हम नहीं सोचते हैं, सभी हमारा सभी बड़े हैं, क्योंकि मम्मी हो चाहे हमारा भाभी हो चाहे माँ हो, सभी अपना अपना जगह में अपना कर्म करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आशीष को धन्यवाद देते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन मतलब कुछ तो है, चलो तो हमारा साथ और एक गुड़िया है, तो गुड्डा का बाद गुड़िया का आवाज अभी सुनने को मिलेगा। हेलो क्या नाम है सखी?
2: प्रेरणा।
1: प्रेरणा, अरे वाह नाम ही कितना सुंदर, प्रेरणा पहले भी सुना था। प्रेरणा जी जो है बहुत अच्छा लगता है, और प्रेरणा तुम क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, तुम्हारा जैसे जो छोटे छोटे बच्चियां आती है हा? सखी कबाड़ी में, तुम भी सखी कबाड़ी में आई है तो कुछ न कुछ सीखती होगी, और बच्चों को जब देखते हैं बच्चियों को देखते हैं तो आपको क्या प्रेरणा मिलती है?
2: मैं इन सब बच्चों को ना अच्छा ही कुछ सिखाऊंगी, थोड़ा मैं जो सीखती हूँ उनसे भी अच्छा इनको पढ़ा के, तो इनका इनके बिल कास्ट में इनके बच्चों को नहीं पढ़ाते थे, हम इनको बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाएंगे इनके कास्ट के बच्चों को।
1: प्रेरणा तुम बड़ा होकर क्या बनेगी, पहले तुम्हारा बात बताओ।
2: मैं बड़ा होकर बच्चों को पढ़ाना का टीचर बनना।
1: टीचर ही बनेगी पक्का? भूलेंगे नहीं?
2: नहीं।
1: टीचर सिर्फ नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? मान जी मिल जाएगा तो ठीक है, मान जी हुआ नहीं नहीं होगा मैंने कोई बात, मतलब हो सकता है यस और नो होता है ना, गारंटी भी नहीं है, नहीं होगा तो एक अल्टरनेटिव व्यवस्था भी रखना पड़ेगा ना।
2: हाँ,
1: टीचर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, और एक अल्टरनेटिव व्यवस्था रखना पड़ता है, मैम रोटा आज नहीं तो चावल तो रखना पड़ेगा ना। चावल है ना, चावल से खा लेते हैं, तो ऐसे जॉब तो टीचर मिल जाना चाहिए, लेकिन लेकिन कभी कभी कुछ कारण बस लेकिन हो जाता है, तो उस समय आप क्या करेंगे, कौन सा जॉब करेंगे?
2: उस समय कोई अच्छी सी पटवारी वगैरह कोई एग्जाम देखे आगे की पढ़ाई।
1: पटवारी कैसे शब्द आ गया, कहाँ से कोई देखा है किसका नाम कोई काम में है पटवारी?
2: हाँ।
1: कैसे आपको प्रेरणा मिला पटवारी तो बहुत हिसाब किताब
2: हमारे गांव में देते है, मेरा भाई वगैरह जो पटवारी का परीक्षा देके आते हैं।
1: को इसलिए तो आपको भी बोला हमारा भाई लोग करे, बहन भी कर सकते, भाई लोग करते तो बहन भी कर सकती है, लेकिन आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, जमीन में प्रम हिसाब किताब करना जाएगी, तुम तो बहन है
2: तो क्या हो गया, लड़की भी जा सकती है।
1: हाँ लड़की भी जाना चाहिए, लड़की भी फ्रीडम है, लड़का लड़के एक बगान का दो फूल है, लड़का का अंदर में जो जज्बा है लड़की का अंदर में भी वो जज्बा, क्योंकि जेंडर को लेकर हम कभी कभी ये लड़की है ये लड़का है उनका पास ये करना चाहिए, जो बाउंड्री देखते कभी कभी देखने को मिलता है ना।
2: हाँ।
1: ये बहन है ये भाई है, है? तो इस तरह आपका गांव में कभी कभी अगल बगल आपका घर पे तो नहीं होता होगा?
2: नहीं,
1: किंतु और अगल बगल कभी देखते ना, ये लड़की ये क्यों हंसती है, ये क्यों इतना खाती है, ये क्यों घूमने जाती है, इस तरह?
2: हमारे वहाँ तो कोई नहीं, इस तरह मैंने देखा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कों को पढ़ाना, लड़के को जॉब पे जाने देना, लड़कियों को कोई दूसरे घर पे झाड़ू पोछा करना भेजना, हमारे गाँव में तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिस्तर बंदी के बिस्तर कोई चीज का कुछ नहीं।
1: अच्छा, वेरी गुड।
2: हमारे तो वहाँ के लड़कियाँ सब होशियार और लड़कियाँ पढ़ती है, लड़कों को पीछे छोड़ते थे।
1: ठीक है, बहुत होना चाहिए, तब तो मोरथला नाम रोशन करेगा। और अब आबू रोड का जो वाइब्रेशन है, शहरांचल का जो वाइब्रेशन पहले आपको मिलता होगा, तरतोली ये मोरथला सब क्या है खड़ा, क्योंकि आबू रोड का पास है, जिसे दौत्रा जामबुड़ी बहुत दूरस्थ जगह में वो तो इतना वाइब्रेशन नहीं मिलेगा, है ना? क्या नाम बताया था? प्रेरणा।
2: हाँ, प्रेरणा बेरवा।
1: आपका नाम प्रेरणा है, कौन रखा है?
2: मम्मी पापा।
1: प्रेरणा मतलब क्या है, किसको प्रेरणा का अर्थ क्या है?
2: कोई प्रेरणा है नहीं, प्रेरणा देना।
1: प्रेरणा स्कूल में कभी तो पढ़ी होगी ना, तुम स्कूल में कभी गति जाती थी, अभी भले नहीं जा रही है लेकिन कभी जाती थी, है ना?
2: हाँ।
1: तो क्या क्या गीत सीखते हैं वहाँ पर, सिखाते हैं? प्रेरणा कोई प्रार्थना बरा?
2: हाँ, प्रार्थना है ना,
1: तो याद है कोई?
2: थोड़ी बहुत याद।
1: भले एक लाइन बा, एक अंतरा हो चाहे एक मुखड़ा, शुरू करो। प्रार्थना हो चाहे।

0: में मधुर तहां दो।
1: एक गीत में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मधुरता, वाणी में मधुरता, मीठा बोलो, कम बोलो, है ना, धीरे बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो, तब तो हम तो देवी बन जाएंगे। लेकिन देवी देवता धीरे बोलते हैं, मिठास में बोलते हैं, है ना, धीरे बोलो,
0: मीठा बोलो
1: और कम
0: बोलो।
1: अच्छा, जो हम बोलते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, है ना, कौन करता है? खाने वाला, देखने वाला, कहने वाला, गीत गाने वाला कौन है? अभी तो तुम कह,
0: आत्मा।
1: आत्मा, बारे बार, ये तो पहले आत्मा गाती है, आत्मा देखती है। कैसे पता चला आत्मा गाती बोल के?
0: यानी अपना शरीर तो ये सिर्फ मान का होता है, जो है जो आत्मा, आत्मा निकल जाती है, उसके बाद कुछ भी शरीर में कोई रहता ही नहीं है।
1: अच्छा, आत्मा ही सब कुछ करते है, आत्मा ने आँख से देखने वाला आत्मा, है ना, खाने वाले आत्मा, सुनने वाली आत्मा, आत्मा निकल जाएगी, मैंने आत्मा मतलब प्राण, आत्मा मतलब जीवन, आत्मा मतलब जीवन, प्राण, है ना, लाइफ, जीवन चला जाएगा तो हम ऐसे रहते हैं, है ना, गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी से ड्राइवर निकल जाएगा तो गाड़ी चलेगा?
0: नहीं चलेगा।
1: तो आत्मा ड्राइवर है, आत्मा
0: ड्राइवर
1: ये शरीर को चलाता है,
0: चलाता है,
1: आँख से देखती है, कान से सुनती है, बहुत होशियार तुम, हा? आत्मा हो, है ना, प्रेरणा तुम्हारा नाम है, प्रेरणा तुम्हारा नाम है, तुम प्रेरणा नहीं
0: हो,
1: तुम आत्मा हो, है ना, पक्का तुम आत्मा हो, तुम्हारा नाम, जैसे मेरा हाथ, मेरा
0: हाथ,
1: मैं हाथ हूँ बोलेंगे तो गलत होगा, मैं हाथ हूँ
0: नहीं,
1: मेरा हाथ है, उस तरह मेरा शरीर है, मेरा नाम है, लेकिन मैं एक सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीवन है, प्राण है, ऊर्जा है, लाइट है, ज्योति है, वो आग से देख नहीं सकते, आत्मा को, ज्योति को देख नहीं सकते, ज्योति तो एक प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आत्मा निराकार है, उसका पिता परमात्मा भी निराकार है, भगवान निराकार है, ईश्वर निराकार है, अल्लाह निराकार है, निराकार मीन्स आत्मा जैसे निराकार है, इस स्थूल चक्षु से देख नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, महसूस करते हैं, बहुत अच्छा, आज थोड़ा ज्ञान का बात भी मिल गए, है ना, बच्चे होशियार है, ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का बिना हमारा जीवन अधूरा है, आध्यात्मिकता का बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जब हम आत्मा रूप में जो भी कर्म करेंगे, परमात्मा को याद करेंगे, तो दैहिक भान छोड़ के आत्मिक आत्मा को देखेंगे, ज्योति एक आत्मा है, पूजा एक आत्मा है, प्रेरणा एक आत्मा है, आशीष भी एक
0: आत्मा
1: और मैं भी एक
0: आत्मा,
1: आत्मा है, पक्का। चलिए, आज रेडियो के कार्यक्रम में आध्यात्मिक ज्ञान का बात भी बच्चों को सुनने को मिल रहा है, और इसका बात तो देखेंगे सुनेंगे कुछ, लेकिन आज के लिए धन्यवाद सभी के लिए, ताली बजा खुद के लिए। चलिए, अभी इस कार्यक्रम को जो संचालन कर रहे थे, हमारा जो टीम को लीडिंग कर रहे थे, जिसका प्रेरणा से इतना तक बच्चों को चांस मिला, मंच मिला, बच्चों का आवाज को दूर दूर पहुंचाने के लिए कोशिश कराए, वो पूजा मैम है, जो कि सखी की बाड़ी मोरथला का चलाती है, जनचेतना संस्था से, मैं तो इतना ही मुझे मालूम है, उनको धन्यवाद देते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम जब हुआ, बच्चों को देखें, बच्चों से गीत गवाए, तो क्या कहना चाहेंगे पूजा जी?
2: हाँ, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसको और आगे बढ़ाएंगे हम, और नेक्स्ट टाइम वापस आए आप, बस यही।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय, सबको धन्यवाद, नाम का साथ सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल, रेडियो मधुबन।

0: आए हम।
1: रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
3: सपोज आपने मुझे अभी आकर कहा कि आपका शरीर कमजोर है, एक आपकी बात को इग्नोर कर दो, ठीक है। सेकंड मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, है कमजोर तो है, आई कांट हेल्प, खाना ऐसा है आजकल, पानी ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो ये कमजोर है। थर्ड ऑप्शन इज ठीक है, आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट टूडे, एंड अगर मैं आज भी उस पर काम करना शुरू कर दूँ, चाहे मैंने 50 साल कोई काम नहीं किया उसके ऊपर एंड वो कमजोर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो गया, लेकिन आज भी अगर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आई एम मूविंग फ्रॉम डिजीज टू हेल्थ। आज अगर काम करना नहीं शुरू किया उस पर, देन इट्स डिक्लाइनिंग फर्दर फर्दर फर्दर। तो आज डिप्रेशन नहीं होगा ये बात सुन के, लेकिन आज अगर ध्यान नहीं रखा और कल अगर कोई बड़ी बात आ गई तो ताकत नहीं होगी उसको फेस करने में, तब डिप्रेशन होने का चांस होता है। आज इस बात को सुनने से नहीं होना चाहिए, आज एक रियलाइजेशन होने चाहिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

0: ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, मेरे ख्याल से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतना इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम जब कहते हैं ना क्षमा करना तो बहुत डिफिकल्ट है, नहीं कर सकते हम, उनकी गलती इतनी बड़ी थी और अगर हम क्षमा कर देंगे तो

0: मिलेंगे मिलेंगे, जितना घाव को नहीं भरेंगे तो अगला वाला हथौड़ा, अगली वाली चोट और जोर से लगेगी। जितनी और जोर से लगेगी, दर्द और जोर से होगा। हम कहेंगे इस बात को भी मैं नहीं भूलूंगा, अगली बार कोई मारेगा तो क्या होगा, और जोर से लगेगी। तो घाव को रहने दें या भरते जाएं, घाव को रहने देना चाहिए या भरना चाहिए? भरना चाहिए, ऑब्वियस है। हर चीज़ फिजिकल तो ऑब्वियस होती है और हर चीज़ इमोशनल इम्पॉसिबल होती है। फिजिकल चीज़ को भरना है, ऑब्वियस है। आप शाम को चाय पी रहे हैं, चाय पीते पीते सोफे पर आप बैठे हैं, सोफे पे चाय गिर गई, तुरंत क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? चाय गिर गई चाय पीते पीते, अभी कप में चाय है लेकिन तुरंत क्या करेंगे? उठकर साफ करेंगे। ये ऑब्वियस है, ये बात ऑब्वियस है, नेचुरल है। क्यों तुरंत उसी टाइम बैठ उठकर साफ करना है? कल सुबह भी तो साफ कर सकते हैं। इसका मतलब अगर सोफे पे कुछ गिरा उसी टाइम साफ करना है। अगर उसी टाइम साफ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? दाग लग जाएगा। और यहाँ कुछ गिरा, यहाँ कुछ गिरा, कोई आया कुछ कह दिया, दूसरा कोई आया कुछ और कह दिया, तीसरा कोई मिला उसने और कुछ कह दिया, चीज़ें गिरती गई गिरती गई गिरती गई। लास्ट कब साफ किया? और धीरे धीरे धीरे इतने दाग पड़ते गए, इतने दाग पड़ते गए कि क्या हो गया? कि ओरिजिनल कलर ही भूल गया।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे

G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी. L-I-O-N, lion. Lion माने शेर. अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

फिर भी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में फंस जाना तो कॉल 1930 पर लगाना। ऑनलाइन होने वाले धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से पीड़ित होने पर गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, अभी बजे हैं रात के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे।

0: दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के आते हैं हम आपके साथ और कुछ नए अनुभव और कुछ ऐसी बातें जिसे हमें महसूस हो कि हाँ, इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। लेकिन वो बातें होती क्या है और कैसे होती है? अगर हम अपनी जीवन में हमारे रोल मॉडल्स को देखते हैं कि हमें ये व्यक्ति बहुत पसंद है लेकिन उन जैसा बनने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा क्या है जो ऐसा बन सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्या मेहनत किया है अपने जीवन में जिसे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाए और वो जो व्यक्तित्व बनना चाहते थे वो बने हैं। चलिए बातचीत करते हैं आज की हमारी मेहमान से। हमारे साथ है चेतन चौधरी भाई जी। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, शिवनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। दोस्तों, चेतन भाई जी, आप ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन परिसर में पिछले 3 दशक से समर्पित जीवन जी रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य कुशलता के साथ आपको दिए हुए जिम्मेवारियों को निभाना और एक्यूरेसी डिसिप्लिन की एक प्रतिबिंब बनना जीवन में देखने की बातें हैं। चलिए देर ना करते हुए हम बातचीत करते हैं और इससे पहले स्वागत करते हैं चेतन जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में, और हमें बेहद खुशी है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से रेडियो के लिए भी थोड़ा सा समय निकाला और आपके जीवन की अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए आपने तैयार हो गए हैं। शुक्रिया आपको
1: जी।
0: भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो बाल्यकाल, आपकी जो लौकिक जीवन है वो कैसा रहा और कहाँ से ये शुरुआत हुई आपकी जर्नी का, और कहाँ तक आपने पढ़ाई किया और ब्रह्म कुमारीज के परिचय में कैसे आए हैं आप?
1: सबसे पहले रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति।
0: जी ओम शांति।
1: हम वैसे तो एक गांव के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में एक मोहवर्रा गांव है, बहुत छोटा गांव, और हमारा पारिवारिक जीवन एकदम ऊंचा भी नहीं था, एकदम नीचा भी नहीं, और हमारे पिताजी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति से रहते थे और उन्होंने अपने जीवन को बहुत सादगीपूर्ण जीवन बिताया। हमारा भी जीवन जैसे बचपन से ही धार्मिकता की ओर रहा और कभी हमको धार्मिक इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमें बहुत दुनिया के आडंबर या कोई बातों से हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो हमें भगवान में आस्था, देवी देवताओं में आस्था, ये हमारी बनी रहती थी। और हमारे जो चौधरी फैमिली के जितने भी हमारे परिवार थे या सदस्य थे, सभी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से और गायत्री परिवार को मानते थे, और अभी भी बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति से काफ़ी हमारे जितने परिवार के हैं सब बहुत अच्छा आगे बढ़ते जा रहे हैं और समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं।
0: जी, आपकी भाई बहनी और वो क्या करते हैं?
1: हाँ, हम ऐसे 4 भाई हैं। हमारे 2 भाई छोटे ऐसे, वो एक माना दुकान चलाते हैं, किराना का दुकान, और एक अपना जो टेंट हाउस है डीजे आदि बजाने का वो कार्य करते हैं, और हमारे पिताजी भी खेती का कार्य करते थे और हमारे भाई भी खेती का भी कार्य करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं छोटा मोटा, और बहुत सुखी परिवार है। अभी तो सभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वो लोग को कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छा सब अच्छा चल रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमें ऐसे परिवार हमें मिला है जो सभी पूरे धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक संस्थाओं में सबसे जुड़े हुए हैं।
0: जी चेतन भाई जी, आप ये बताइए कि जब आपकी धार्मिक परिवार में जन्म हुआ और बचपन से ही आप गायत्री मंत्र जपना और सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, तो कब और कैसे आपका संपर्क हुआ ब्रह्म कुमारीज के साथ और आपको क्यों लगा कि ये सत्य ज्ञान है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए?
1: जी, हाँ, जब मैं इस ज्ञान से जुड़ने के पहले बहुत भक्ति करता था, इतने छोटी उम्र में भी 10th क्लास पढ़ने के पहले ही करीब 5 वर्ष तक हनुमान जी का उपवास जो शनिवार का होता है वो किया, और सोमवार का अपना उपवास जो शिव जी का होता है वो मैंने शुरू किया। फिर गायत्री परिवार में भी हम जुड़े, तो हमने गायत्री परिवार में भी जुड़कर हम काफ़ी वहाँ पर जो यज्ञ होते थे, जगह जगह वहाँ पर जाना, सबको संदेश देना व्यसन मुक्त होने का या अपने जीवन को ऊंचा बनाने का, मतलब कार्य करते हुए, अपने कारोबार करते हुए भी सभी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं, ये हम कार्य करते थे बचपन से ही। और जैसे हमें भोजन करने के पहले मेरी ये बचपन से ही धारणा थी हमारे घर में और हम्मी कि जब बिना आरती किए, बिना पूजा पाठ किए हम भोजन नहीं करते थे। रोज़ मंदिर में जाना ये तो हमारा था ही रोज़ कि हमें ज़रूर जाना ही मंदिर में। कभी बाहर गए हैं तो बात अलग है, यदि हम घर पे हैं, गांव में हैं तो मंदिर में हम ज़रूर जाते थे। हम लोग जब भी वहाँ पर गाँव में अखंड रामायण पाठ होता था वहाँ पर भी हम जाते थे, और हनुमान जी के मंदिर में तो मैं जरूर जाता था। मैंने जैसे हनुमान चालीसा तो मुझे अभी भी कंठस्थ याद है और पूरा हमने रोल मॉडल बनाया था, और भगवान राम जो हमारे उनके साथ जो हनुमान जी का जो कर्तव्य दिखाया गया है उसको हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते रहे। गायत्री मंत्र तो हमने कई डायरियाँ भर दी थी
0: जी,
1: गायत्री परिवार में जब रहते थे हम। ओम भूर भुवस्वः सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो जहाँ पर भी यज्ञ होता था हम पूरे परिवार सहित जाते थे और जो भी वहाँ पर सेवा होती थी वो सब करते थे।
0: तो फिर ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में कैसे आया?
1: हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में हमने ये सब भक्ति तो हमने बहुत किया, पहले से बैकग्राउंड था, लेकिन एक ललक रहती थी कि क्योंकि कम से कम 10-12 आरती करते रहता था मैं, हनुमान जी की भी करता था, कई देवियों की भी करता था, लेकिन एक सत्य मना एक विजन जैसे परमात्मा एक है ये कहते हैं तो वो मना स्पष्ट नहीं हो पाता था। जिसने जो कहा वो भक्ति हम शुरू कर देते थे या उसको मानना शुरू कर देते थे। तो एक लक्ष्य भी एक नहीं था कि भाई हमें क्या हमारी मंजिल होना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी के इसमें हमें तब आया जब मैं बचपन में ही हम लोग कम से कम 3री-4थी क्लास में थे, तब हमारे घर के सामने में एक भैया आकर वो ज्ञान सुनाते थे। तो जैसे ही हमने तो सब भक्ति तो करते थे, लेकिन जैसे वो बाबा शब्द कहते थे, शिव बाबा कहते थे, शिव परमपिता परमात्मा कहते थे, तो एक अजब सी एक अंदर में फीलिंग आती थी। और मैं छोटा बच्चा था, वो दूसरे भैया को सुनाते थे ज्ञान, तो मैं वहाँ ऐसा नीचे जाकर बैठ जाता था और वो बातें सुनता था। तो वो बात इतनी मना मेरे मन में अंदर ये हो गई, और ये बस 2-3 दिन ही सुना हमने, ना कोई कोर्स किया कुछ नहीं, और इतना भगवान में शिव बाबा में इतना हमें निश्चय हो गया कि जो पाना था वो पा लिया, और उसके लिए मुझे सब कुछ त्याग करना पड़े वो कोई मैटर नहीं था। इतना हमारे में निश्चय हो गया था कि भाई जिसकी चाह थी वो मिल गया है।
0: तो आपके परिवार में सबसे पहले आपने परिचय लिया?
1: जी जी, सबसे पहले का? हाँ, सबसे पहले मुझे ही परिचय मिला, फिर बाद में धीरे धीरे माना पूरा परिवार ज्ञान में आया, फिर जो रिलेटिव्स आते थे हमारे घर में उन्होंने को भी हम समझाते थे। तो करीब रिलेटिव जितने भी आए और रिलेटिव से संबंधित करीब 25 बहनें या गांव से संबंधित वो माना ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ी और ब्रह्मा कुमारी बनी।
0: ओ, बहुत बड़ी बात है।
1: जी,
0: जी, आप जब 10th क्लास में थे उससे पहले भक्ति भी और इस राजयोग मेडिटेशन भी दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे थे, तो फिर वो कौन सा मोमेंट था आपको लगा कि अभी मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ उससे मुझे जो परमात्मा से मिलन हो रहा है यही सही है और मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है?
1: जी जी हाँ, क्योंकि हम ऐसे गायत्री परिवार से जुड़े थे तो बहुत सभी से हमारा मेल जोल बहुत अच्छा था और सभी उसी हिसाब से जानते थे। लेकिन ये जैसे ज्ञान में जुड़ने के पहले लौकिक पढ़ाई जो करते थे हम, वो पढ़ाई में बड़े मुश्किल से हम 3rd डिवीज़न आ पाते थे या बड़े मुश्किल से पास होते थे। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान मुझे मिला तो हर क्लास में 1st डिवीज़न हमारा आता था, और स्कूल में भी हमें इनाम मिलना शुरू हो गया, और घर में भी हम जितना कार्य करते थे उससे कई गुना कार्य की क्षमता बढ़ गई। और धीरे धीरे जैसे मुझे जो पाना था, जैसे कोई लक्ष्य हासिल कर लेता है, जैसे कोई पढ़ाई पढ़ लेता है और जिसको नौकरी मिल जाती है और तो पढ़ाई फिर ए बी सी डी या ऐसा कोई पढ़ेगा तो है नहीं, इसलिए वो धीरे धीरे कैसे वो भक्ति के हमारे छूटते गए और ज्ञान मार्ग ऑटोमेटिक जैसे आता गया। लेकिन माना कितना हमें उलाहना मिलता था सबके द्वारा कि भाई इतने अच्छे भक्ति करते थे और आपके घर में अब ऐसा कर लोगे, भक्ति नहीं करोगे, देवी देवताओं की पूजा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हम तो ये कहते थे हमको जो लक्ष्य मिला था, जो देवी देवताओं समान बनने का, वो लक्ष्य मिल गया है, अब जिसको पाना था वही पा लिया है, उनके समान ही हमें अभी बनने का लक्ष्य मिल गया है, उनका जो सच्चा परिचय, उनकी बायोग्राफी क्या है वो सब मालूम हो गया है। तो अभी जैसे हम घरों में जैसे पिताजी को हम भले रोज़ रोज़ नमस्कार करें, उनकी आराधना करें, वो चीज़ हमें जब ज्ञान मिल गया तो हमें पता चल गया कि ये तो हम ही उनके घराने के हैं, हमें उनकी ऐसी दुनिया में जाना है। तो ये धीरे धीरे निश्चय होता गया और परमात्मा भी निश्चय हो गया और अपने सतयुग की दुनिया में भी निश्चय होता गया, अपने आप में भी निश्चय होता गया कि हम पहले क्या थे, अभी मुझे हमें क्या बनना है, हमें पूरा विश्व कल्याण के कार्य में अपने जीवन को लगा देना है। ये अंदर में ऑटोमेटिक मन में भावना आती गई।
0: जी, तो वो कौन सा साल था जब आपको ये ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से परिचय हुआ, और ये कौन सा साल था जब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं अभी मुझे वो लक्ष्य को साधन करना है तो मुझे अभी सब कुछ छोड़ के आश्रम जाना है?
1: जी, वैसे तो 1987 में मुझे ये ज्ञान मिल गया था उस समय से, लेकिन धीरे धीरे मुझे 91 में मुझे ये आभास हुआ कि नहीं, अभी मुझे इस जीवन को विश्व कल्याण की सेवा में लगा देना है, भगवान के कार्य के प्रति न्योछावर कर देना है। हालांकि हमारे पिताजी के मना हर प्रकार से कार्य करने का मुझे अनुभव था, भाई भी दो छोटे थे, एक तो बड़े थे, लेकिन वो इतना अनुभव नहीं होता था उनको पिताजी के साथ रहने का।
0: आप घर के बड़े भाई हैं?
1: हाँ, मेरे से एक बड़े भैया हैं।
0: अच्छा।
1: और है ना, लेकिन वो थोड़ा न्यारे रहते थे, लेकिन पिताजी के साथ मेरा बहुत अच्छा ये था कनेक्शन और उनके साथ जो भी कारोबार करना था करते थे। लेकिन जैसे मैं 91 में मुझे ये आभास हुआ कि भाई नहीं, मुझे अभी इस जीवन को एक केवल इस छोटे से क्षेत्र में नहीं रखना है, मुझे बहुत बेहद कार्य करना है, विश्व का कल्याण करना है, सभी को परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, जीवन जीने की कला मिल जाए, जीवन जीने की राह मिल जाए, एक सबको उद्देश्य मिल जाए, इस भावना से मतलब मेरे जीवन में ऑटोमेटिक ये भावना आती गई। तो ऐसा लगा कि भाई मुझे, और धीरे धीरे वो रास्ता खुलता गया। और फिर हम, वैसे तो बहुत लंबा है इसका, हम यदि बताएंगे तो कैसे है लेकिन हमारे यहाँ तक आने का सफ़र, माउंट आबू तक आने का सफ़र, बहुत कैसे कैसे हम पड़ाव पार करते गए और क्या क्या हुआ
0: जी। तो भाई जी, जैसे आप 91 में तो आश्रम में रहना शुरू किया था।
1: जी जी हाँ।
0: फिर आश्रम से माउंट आबू आने का कैसा हुआ?
1: हम जैसे मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अपने जीवन को समर्पित कर देना है, तो मैं, हमने कभी सोचा नहीं कुछ नहीं, हमने केवल दीदी जब हमारे गीता पाठशाला जहाँ पर रहते थे, हम क्लास करते थे, हमारे घर में गीता पाठशाला थी उस समय में, माना जो सिवनी ज़िले में पहली गीता पाठशाला हमारे घर में ही स्थापन हुई। और जितना भाई बहनें या सदस्य गीता पाठशाला में होते थे उससे माना उतने सेंटर पर भी नहीं होते थे, इतनी जनसंख्या थी आती थी, क्योंकि हम जितने भी हमारे सहपाठी थे या जितने भी हमारे संबंधी थे सब बहुत जुड़ते गए इस ज्ञान से, और हमसे भी आगे बढ़ते गए हैं और हमसे भी अच्छा वो अपना रोल निभा रहे हैं इस कार्य में। तो जैसे हम 91 में मैं सेंटर पे चले गया, हमें पता नहीं था कि हम मधुबन भी जा सकते हैं, हमने कहा जहाँ भी जाएं लेकिन हम आश्रम में समर्पित होकर इस कार्य को करेंगे। तो हम सेंटर पे जाकर हम रहने लगे फिर वहाँ पर ही। फिर उसके बाद 93 में फिर हम इंदौर में आ गए, वहाँ पर भी 2 वर्ष रहा। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 2 मास वहाँ रहकर और आपको मधुबन भेज देंगे। तो धीरे धीरे जैसे हमारी सेवा की भावना देखते रहे वो लोग, तो उन्होंने फिर मुझे प्रमोट करते गए और फिर हम यहाँ पर आ गए माउंट आबू में।
0: जी, एक छोटे सी गांव, छोटा परिवार से, छोटे सेंटर से, अब इतने बेहद घर में, इतने बड़े कैंपस में, संस्था के हेडक्वार्टर्स में जब आए, आपको कभी चैलेंजेस या कोई ऐसे महसूस नहीं हुआ कि इतने बड़े परिवार में हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे?
1: हाँ जी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ये लगा कि मैं अपने ही परिवार में आ गया हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि एक तो बड़ों के साथ रहने का भाग्य मिल गया और मेरे ऐसा इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे यहाँ पर मिलता गया कि कभी कोई चैलेंज का अनुभव ही नहीं कर किए हमने। हमें ये लगा कि हमें जो पाना था वो बहुत ज़्यादा पा लिया, हमने त्याग कुछ भी नहीं किया है, इतना हमें मना मिला है, परमात्मा का सत्य परिचय मिला, इतना अच्छा जीवन मिला, दूसरों के कल्याण करने का भाग्य मिला, सेवा मिली, बड़ों के साथ रहने का भाग्य मिला, पूरे विश्व के आत्माओं से मिलने का, उनकी सेवा करने का भाग्य मिला। ये हमेशा चिंतन चलते रहता था और कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें घर बार का त्याग करना पड़ा, या उन्हों को भी ये संकल्प नहीं आया हमारे घर। उन्हों वो बहुत खुश हुए, वो भी घर वाले, हमारे परिवार वाले और हमारे रिश्ते रिलेटिव या जितने भी संबंधी थे, सब को बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा परिवार से, हमारे एरिया से हमारे भाई जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। सभी उसी भाव से मिलते हैं और हमने कभी चैलेंजेस का या उसका अनुभव नहीं किया, या जो बातें भी आती थी तो हमारे इतना उमंग उत्साह रहता था और भगवान के प्रति इतना प्यार कि कभी वो अनुभव ही नहीं होता था कि भाई कोई बात भी है।
0: सो जैसे आपने कहा कि बचपन से ही आप अपने पिताजी के साथ बहुत करीब रहे, कार्य देखते थे, तो ठीक है एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप यहाँ रहते हैं तो कभी भी आपको बुला सकते हैं, लेकिन जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अभी माउंट आबू जाना है, वहीं रहना है, तो पिताजी को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे से बिछड़ के जा रहा है, मैं इसको कैसे छुट्टी दूँ?
1: हाँ, पिताजी को थोड़ा सा हल्का सा लगा, लेकिन उन्होंने मन में ये था, क्योंकि वो भी इसी ज्ञान को फॉलो करते हैं, उनको भी ये लगा कि भाई इस छोटे घर से मेरा बेटा बड़े घर में जा रहा है, वो भी अपना ही घर है, क्योंकि जितने भी हमारे ब्रह्म कुमार कुमारी भाई हैं, सभी बाबा के जितने भी घर हैं या मधुबन घर को अपना ही घर समझते हैं, यहाँ पर अपना घर समझ के आते हैं, कई इसी भावना से भी रहते हैं कि हमारा ओरिजिनल एड्रेस माउंट आबू है, जितने भी बीके बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम सेवा स्थान है, इस भाव से सभी सेवा भी करते हैं। तो उसी भाव को अंदर में था, ज्ञान की बहुत अंदर गहराई रही, इतनी गुह्यता को जानते थे, तो कभी उनको ये नहीं लगा कि भाई मेरे से पिछड़ गए, वो ये लगा कि भाई देखो हमारा लक्ष्य बन गया है कि विश्व का कल्याण हो, सबको सहयोग मिले, हर प्रकार से हमारे द्वारा हर किसी को प्रेरणा मिले, तो क्यों ना हम एक यदि हम करेंगे, भगवान को ध्यान दान दे देना अपने पुत्र को, ये उन्होंने बहुत गौरवान्वित अनुभव करते थे अपने आप में वो, तो कभी उनको ये नहीं लगा कि भाई ये हो गया। लेकिन जैसे कारोबार हम संभालते थे तो थोड़ा सा उनको कमी तो महसूस हुई, लेकिन फिर भाइयों ने हमारी संभाल लिया
0: जी,
1: तो उनको ऐसा भी नहीं लगा कि
0: जी। तो चेतन भाई आप ये बताइए कि इतने समय से लगभग आप 30 ईयर्स से
1: जी
0: मधुबन में शांतिवन में संस्था के जो प्रमुख है दादी प्रकाशमणि जी, उनके अंग संग रह करके उनके साथ कारोबार आपने किया है
1: जी।
0: तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखा मधुबन में रहते हुए, चाहे वो कारोबार की बातें है या अपने व्यक्तिगत जीवन की बातें है, ये 30 साल की जर्नी में आपने क्या सीखा है यहाँ पर मधुबन में रह के?
1: हाँ, मुझे मधुबन में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो जो इस देह अलग है और आत्मा अलग है, ये मैंने मधुबन में रह के, भले वहाँ सेंटर पे भी रहा, घर में भी रहे, लेकिन यहाँ आकर मैंने जो अभ्यास किया कि देह अलग है, तो बेहद में मतलब मेरी स्थिति भावना ये रही कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर माध्यम है ये कार्य करने के लिए। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, सेपरेट है, तो वो मैं शुरू से ही अभ्यास करता था। और दादी प्रकाशमणि जी के साथ जो रहते थे, जो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रही 69 से लेकर 2007 तक, उनके साथ जब हमने 12 वर्ष रहने का भाग्य मिला हमें उनके साथ, तो उनकी जो बेहद की भावना

0: वो करते गए कि भाई
1: मुझे भी बहुतों का कल्याण करना है, मुझे अपना यहाँ पर रहने के बाद मुझे एक तो बेहद एक परिवार की भावना कि मैं अभी बेहद घर से जुड़ा हूँ, जितने भी भाई बहने आते हैं मेरे अपने परिवार के हैं, परमात्मा की संतान हैं, मुझे एक एक की सेवा करनी है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता है चाहे स्थूल है सूक्ष्म है उसको ज़रूर मुझे देना है, या जो भी या फिर यहाँ पर भी जो समर्पित रहते हैं तो हम बड़ों के साथ रहने के कारण जो भी स्टॉक हमारे पास रहता है उस द्वारा हर किसी को संतुष्ट करें, ये भावना हमेशा बनी रहती थी और इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि हर आत्मा मुझसे संतुष्ट रहे, ये मैं अभ्यास करता था और मैं भी स्वयं संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ करता रहा। और यहाँ पर माउंट आबू आने के बाद मेरे जीवन में एक तो जो प्योरिटी होती है उसकी पावर को मैंने स्वयं अनुभव किया कि यदि संसार की सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो पवित्रता है, उसको मैंने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उसको अनुभव किया यहाँ आने के बाद, तो वो बहुत अंदर से एक ताकत और सुकून का अनुभव और शक्तिशाली रहने का अथक रहने का वो एक मेरा एक पुरुषार्थ रहा कि और बहुत अचीवमेंट रहा समझ लीजिए मुझे।
2: जी इतनी सारी एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो एक सिद्धियाँ है, ये पवित्रता की शक्ति है या फिर दृढ़ता है आपके अंदर जो निरंतर अभ्यास की एक सदाकाल का करने का अभ्यास है, ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करते हैं, आपको जब भी देखते हैं एक स्थिरता है आपके अंदर, तो ये सारी एक प्रकार से सिद्धियां जो आपने प्राप्त की है, कभी आपको ऐसे चैलेंजेस आए जीवन में, भले जैसे आपने कहा कि कोई चैलेंज आता है तो भी आपको लगता नहीं कि कोई चैलेंज है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन के हिसाब से देखते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि उसको सामना कर, तो कभी ऐसा कुछ हुआ और आपने उसको कैसे फेस किया?
1: जी जी हाँ, वैसे तो शारीरिक रूप से काफ़ी मेरे पास चैलेंजेस भी आई, काफ़ी पहले बीमारी कुछ ना कुछ हो जाती थी, लेकिन आत्मा में और दिल में इतना उमंग रहता था कि वो चैलेंजेस धीरे धीरे ख़त्म होती गई और उसको मैं अपने जो दिनचर्या को अपना काफ़ी पहले ध्यान नहीं दे पाता था कि भाई जैसा मिला जिस समय मिला जो मिला वो स्वीकार, लेकिन मुझे ये ध्यान में रहा कि भाई मुझे इस शरीर को चलाने के लिए क्या चीज़ और कब खाना है और क्या खाना है, ये मैंने इस शरीर के लिए ध्यान रखा अपने आप में, और तो काफ़ी उससे मैं इम्प्रूव होता गया और उससे भी मैं निश्चिंत होता गया। बाकी चैलेंजेस कई बार ये आता है कि साथी भाई बहनों का कभी कभी स्वभाव संस्कार, लेकिन मेरे मन में ये सदा ये भावना रहती है कि भाई वो उसका अपना पार्ट है, मुझे तो देने के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है, मुझे चाहे गुणों को का दान देना है या सहयोग देना है, लेने की भावना मुझे 1% भी नहीं रखनी है, तो मैं किसी की परिस्थिति या कोई ऐसा कुछ बोल देता है या कुछ कह देता है तो मैं अपने पर ये भी एक लेना हो जाता है, मुझे ना लेना ही नहीं है किसी से कोई चीज़, मुझे देना ही, मुझे देवता बनना है तो देने के संस्कार मुझे धारण करने हैं, तो किसी से कोई बुराई या कुछ ऐसा कुछ कह देता है या कोई ऐसी बात आ जाती है परिस्थिति आ जाती है या कोई इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन एक रहता है कि भाई उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहा होगा उस आत्मा के साथ, तो ये सब बातें को जैसे हम ज्ञान के माध्यम से उसको ना सोल्यूशन करते थे, बातें तो आती ही है, ऐसा नहीं कि भाई जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं
2: तो चढ़ाई भी आएगा
1: है ना ढलान भी आएगा या पत्थर भी आएगा, खराब भी होंगे, रास्ता जाम भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, कई बातें आती ही हैं, तो ऐसे ही ये जीवन रूपी यात्रा है, इसमें बातें तो आती ही, ऐसा नहीं कि भाई बातें नहीं आती हैं या परिस्थिति नहीं आती, आती हैं, लेकिन हम किस
2: अप्रोच के साथ
1: चल रहे हैं या किस लक्ष्य के साथ हमारा कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य को ध्यान रखते हैं तो ये सब चीज़ें कम लगती है।
2: बहुत सुंदर। सो भाई जी, आप वर्तमान समय में संस्था में किस कारोबार में हैं और क्या करते हैं आप?
1: जी वर्तमान समय में हम वैसे अभी दादी प्रकाश मणि जी का जो कॉटेज है वहाँ पर हम रहते हैं और हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी हैं जो इस संस्था की जो यहाँ पर अभी तो एडिशनल चीफ हैं, वो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला हुआ है, और जितने भी कारोबार होते हैं जो भी सिस्टम होता है यहाँ का यज्ञ का चारू रूप से चलाने का वो दीदी जी हमारा माना ध्यान रखती है, तो उनके साथ हम सहयोगी के रूप में पाठ बजा रहे हैं कि जो भी भाई बहने आए सबको सब प्रकार की सुविधा मिले, किसी को कोई तकलीफ ना हो, चाहे रहने की, खाने की या कोई चीज़ की आवश्यकता है।

0: या उनको गिफ्ट देना है, उनको कोई चीज़ की कोई कमी तो ना ही होती है, या जो यहाँ पर हमारे समर्पित भाई बहनें रहते हैं इनको भी कोई चीज़ की कोई आवश्यकता है, तो यहाँ सिस्टम है कि भी जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है वो एक पर्ची लिख के देता है और वो चीज़ उसको पूर्ति कर दी जाती है। वैसे तो यहाँ पर हर चीज़ बिना कहे मिल जाती है, ये इस ज्ञान की बहुत बड़ी नवीनता है या इस संस्था की बहुत बड़ी बात है कि मांगना कुछ नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक मिला हुआ है। वैसे ही इस ज्ञान में वैसे आते ही परमपिता परमात्मा के सत्य परिचय को प्राप्त करते ही जन्मते ही इस ज्ञान में एक दूसरा जैसे हमारा जैसे जन्म होता है ना, तो ऐसे ही इस सिस्टम में एक ज्ञान के में जैसे आते हैं तो एक दूसरा नया जन्म होता है हमारा, तो ऐसे जन्मते ही परमपिता परमात्मा से सर्व वरदान, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व प्रकार की खुशियाँ, खजाने माना वरदान में मिले हुए हैं। केवल हमको स्मृति में लाना है कि हम किसकी संतान हैं। जैसे दुनिया में भी कोई बड़े व्यक्ति का पुत्र होता है तो उसको कितना ये रहता है, अपने आप में नशा रहता है, बहुत रॉयल परिवार के जो होते हैं कितनी रॉयल्टी रहती है, तो हम भी ऊँचे से ऊँचे भगवान के संतान हैं तो हमारे में भी कितनी रॉयल्टी रहनी चाहिए। हमारा भगवान जो दाता है, सबका पिता है, सबके लिए देने की भावना रखते हैं, लेने की भावना नहीं, ऐसे ही हम पिता समान बन जाएं, ये इस भाव को हम अपने आप में जीवन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा खुशी का जीवन बीतता है।
1: बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू सो मच। आज अपने समय निकाल करके जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के द्वारा, आप अपने जीवन को कैसे जिया है उसी को एक उदाहरण बना करके लोगों को ये बताते हैं कि इस तरीके से जो जीते हैं इसे जीवन कहा जाता है। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सबका
1: जी।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। दोस्तों ये थे चेतन भाई जी, जिनका आपने अभी तक इस या आध्यात्मिक जीवन की एक यात्रा में कैसे हमारी लौकिक जीवन भी निखर जाता है और हम कैसे ऐसे एक व्यक्तित्व बनते हैं जिनके जो हमेशा देने वाले बन जाते हैं, ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: ये हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन

0: आसमान में छाए हैं काले बादल, सूरज आंख में चोली खेल रहा है और हवा ऐसी चल रही है मानो अपने साथ उड़ाकर ही ले जाएगी। ओह, आप सोच रहे होंगे कि खिड़की के बाहर तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, आखिर ये मौसम के गलत सलत हाल क्यों बताए जा रहे हैं हमें? तो जी, मैं आपको बता दूं कि ये मौसम की जानकारी नहीं बल्कि एक घर का हाल है। जी हाँ, ऐसे घर का जहाँ लोगों का स्वभाव ऐसा है जैसे सर्दी गर्मी बरसात पतझड़ एक साथ रहते हों, और जज्बात ऐसे कि सूरज को पश्चिम से उगा दे और तारों को दिन में दिखा दे। यहाँ रोज होते हैं नए नए किस्से, गुस्सा, प्यार, हंसी मजाक, सब कुछ भरपूर है। यहाँ बातें होती हैं हवा में, इसलिए ये घर है ऑन एयर। मिलिए राजस्थान के राठौड़ परिवार से। हाल में ढल चुके हैं, वहीं राठौड़ परिवार में रहते हैं 16 सदस्य, 16 अलग अलग स्वभाव, कैरेक्टर और 16 आइए मिलते हैं राठौड़ घर के सबसे बड़े भाई श्री गजेंद्र सिंह राठौड़। बात सब स्कूल टीचर हैं, साथ चलते हैं। अरे अरे, रुकिए रुकिए, और पूरे होते हैं साथ में मिली जो बात बबर, ये सब की रंग बदलती हैं।
1: ठीक है, लगाता हूँ।
2: अरे मैंने बोला ना यार, उसमें नहीं लगाने पैसे, इसमें लगा।
3: पैसे लगाना मतलब सट्टा। आजकल के बच्चे ना शर्म है ना संस्कार। क्या कर रहे हो तुम लोग ये हैं जी? ये सट्टा वट्टा इस देश को बर्बाद कर रहा है
2: अंकल। हम
3: देखो, तुम युवा पीढ़ी हो, तुम्हारे ऊपर अपने देश की जिम्मेवारी है।
1: अंकल हम
3: आदर्श ये कहते हैं कि मानव को सदा सच्चा धन ही कमाना चाहिए, झूठा धन समृद्धि नहीं लाता है।
4: ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं अंकल जी?
1: अरे ताऊ जी हैं ये राठौड़ परिवार के। एक बार को प्लेन को भी ब्रेक लग सकता है, लेकिन इनका ब्रेक।
5: अजी सुनते हैं, जल्दी आइए, आपके कॉन्स्टिपेशन की दवा गई।
3: अरे आ रहा हूँ। क्या तुम सबके सामने बोले जा रही हो?
5: झूठ बोलूं तो मिर्ची खाऊं, मैं तो इनकी चिंता कर रही थी। अब मेरे अलावा इस घर में है ही कौन जो इतना ध्यान रखे किसी का। ये बहू को देखो, बाप समान जेब की कोई फिक्र ही नहीं है, लगी हुई है टीवी देखने।
0: अगर कोई आपसे कहे कि चलता फिरता रेडियो देखा है तो आप उसे एक बार ताई जी से जरूर मिलवा दीजिएगा। कभी ताने कभी गम, इनका तो बस यही नारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं राठौड़ परिवार की दो बहनों से। बड़ी बहन है रागिनी, ये फेमिनिज्म के राग अलापती है। छोटी बहन है शांति, लेकिन असल में जिनसे शांति कोसों दूर भागती है।
6: आज तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मुंह काला करके गधे पे घुमाएंगे। अरे पत्नी पे हाथ उठाना ये कोई आम बात नहीं है। जिस दिन सारी पत्नियां जाग गई ना, देखना इन मर्दों की तो खैर नहीं। चलो कल सुबह अनशन पर मिलती हूँ।
7: फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई। दीदी थोड़ा चिल करो, हिंसा तो आप मेरी नींद पर कर रही हो। थोड़ा सोने दो ना, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। मुझे आज पार्टी में भी जाना है।

0: क्या हुआ माँ, सुबह सुबह मुझे क्यों बुला रही हो?
1: अरे मैं भगवान को बुला रही हूँ, तुझे नहीं। और आंखें खोल, 8 बज गए हैं। क्या कुंभकर्ण की तरह सोई हुई है? ओ राम राम राम राम, माफ करना प्रभु, माफ करना। मैंने आपको याद करते करते अपने मुख से राक्षस का नाम ले लिया। माफ करना भगवान, माफ करना। आज ही मंदिर जाके पूरे 2 नारियल चढ़ाऊंगी प्रभु।
2: चलिए बढ़ते हैं अब आगे और मिलवाते हैं आपको राठौड़ परिवार के सबसे छोटे भाई किशन राठौड़ जी से। बच्चों के साथ ये बच्चे बन जाते हैं। छोटे हैं पर बड़ा शायराना मिजाज रखते हैं। मनमौजी हैं थोड़े, थोड़े से हैं जिम्मेदार। जिंदगी के पेचीदा मसले इनकी कलम से सुलझते हैं।
3: अंधेरे बाहर हो तो मंजर, अंदर तलक आए तो गम है। जिंदगी की तस्वीर में मुश्किलों के भी अपने रंग हैं।
4: चाचू, लिखा तो बहुत अच्छा है आपने, लेकिन...
3: लेकिन क्या?
4: लेकिन बात कुछ समझ नहीं आई।
3: कोई बात नहीं बेटा, जीवन है, जीवन में सब कुछ समझ नहीं आता। ये बताओ, कल जो टेबल याद कराई थी वो तो भूल नहीं गया ना?
4: नहीं चाचू, आपने गाने में गा के सिखाई थी ना, कैसे भूलूंगी। लेकिन एक बात बोलूं प्लीज?
3: बोल बेटा बोल।
4: ये कविताएं आप किसी अपने उम्र वालों को क्यों नहीं सुनाते हो? हम बच्चों को क्यों सताते हो?
3: अच्छा बेटा रुक, अभी बताता हूँ।
4: अरे चाचू मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ।
2: बचपन किसी पौधे की तरह होता है। अगर शिक्षा की खाद और स्नेह का पानी न मिले तो ये पनप नहीं पाता। जहाँ इतने बड़ों का हाथ सर पर हो वहाँ तो ये हंसी खुशी लहराएंगी ना। अब मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि बा मुलायजा होशियार पधार रही हैं राठौड़ परिवार की राजकुमारी, मतलब राठौड़ परिवार की मंझली बहुरानी राजकुमारी जी, जो भोली भाली हैं दिल की पर रहती हैं थोड़ी अस्त व्यस्त। किचन के बर्तन भी डरते हैं इनसे, देती हैं उन्हें इतना कष्ट। और साथ में आपको मिलवाते हैं घर की सासू माँ यानी अंबिका देवी राठौड़ से, जो सबका रखती हैं ख्याल, पर इनके ख्याल कभी कभी करते हैं सबको हैरान।
5: ये बर्तन किसने बनाए? अब कटोरी इतनी गोल कि हाथ से सरक जाए और थाली इतनी चपटी कि हाथ पकड़ ही न पाए। किसी का बुरा ना बोलूं। चल राजकुमारी फिर से सारा काम कर।
6: राजकुमारी क्या कर रही है, आराम से कर।
5: हाँ ठीक है माँ साहब, बस खाना तैयार है, लेके आई बस।
6: बेटा राजकुमारी, दाल में इस बार नमक ही डाला है ना?
5: हाँ माँ, इस बार तो चीनी का डब्बा ही खाली हो गया ना, तो पक्का नमक ही डाला है।
2: आई नो आप लोग यही आशा कर रहे होंगे कि खाने में नमक ही पड़ा हो, वरना खाने वालों का तो भगवान ही मालिक है। चलिए अब आपको मिलवाता हूँ घर के सबसे बड़े व्यक्ति यानी राठौड़ परिवार के पिताजी श्री भगवत सिंह राठौड़ जी से, जो हैं ज्ञानी, धैर्य है इनकी निशानी, दुनिया के किसी भी मुद्दे पर सुना सकते हैं ये एक न एक कहानी। और साथ में मिलिए इनके मंझले बेटे यानी वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो वक्त के हैं पक्के, करते हैं सबका सम्मान, नई टेक्नोलॉजी से जूझते हैं। इनके जोक्स को तो करता हूँ मैं भी सलाम।
7: श्री ये बताओ कि मौसम का हाल कैसा है? अरे बोलो श्री। अब क्या तुमको श्री श्री महाराज बोलूं तब जवाब दोगे?
8: डैड व्हाट हैपेंड?
7: अरे ये श्री जवाब ही नहीं दे रही।
8: ये श्री कौन है डैड?
7: अरे ये फोन में होती है, हमारे ऑफिस में आज हमने देखा था, वो सौरभ अपने फोन से बात कर रहा था कि श्री ये बताओ वो बताओ, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करूं।
8: अरे डैड वो श्री नहीं सीरी है, और वो महंगे वाले फोन में होता है। आपके वाले बजट फोन में नहीं।
7: ठीक है पढ़ाई करो जाकर, वरना बड़े होकर ये बजट वाला फोन भी नहीं खरीद पाओगी।
9: अरे ये फोन क्यों खरीदेगी, मैं दिलाऊंगा ना इसको, मेरी प्यारी पोती को।
7: पिताजी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा मैं।
9: हाँ भाई बिल्कुल बने, आखिर भगवत सिंह राठौड़ की पोती जो है, बच्चों को प्यार और शिक्षा के बैलेंस से बड़ा करो तो वो जीवन में सफल भी होंगे और अच्छा इंसान भी बनेंगे।
7: जी पिताजी, बच्चों के सर पर माँ बाप के साथ साथ दादी दादा और बड़ों का साया है तो फिर मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। चलो आ जाओ बच्चों, आज दादाजी तुम सब के लिए मालपुआ लाए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
2: देखिए भाई, सारे परिवार के सदस्यों से तो मैंने आपको मिलवा दिया, अब ये कौन आया है गेट पर, आइए चलिए देखते हैं।
10: मैडम 50 पिज्जा की डिलीवरी है आपके घर।
7: 50 पिज्जा किसने मंगाए?
11: राजकुमारी।
12: अरे मैंने कुछ नहीं किया।
13: हाँ हाँ, इल्जाम हमेशा एक औरत पर ही आता है।
12: वाओ पिज्जा, मजा आ गया।
14: ये विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, दाल बाटी चूरमा खाओ, ये क्या लगा रखा है पिज्जा।
15: बच्चों रुको, लाओ इधर लाओ पिज्जा, ये हमने नहीं मंगवाया भाई साहब।
16: कौन मंगवाते रहे?
17: अरे फिर मंगवाया
12: किसने?
18: मुझे तो चाहिए।
16: क्या करते रहते हो?
12: कैसे करेंगे भाई, क्या हो रहा है?
17: नहीं नहीं वापस कर दो उसको।
12: लेके जाओ।
18: नहीं नहीं नहीं नहीं, मेरा वाला पिज्जा तो वापस नहीं जाएगा।
14: नहीं नहीं, कोई पिज्जा नहीं रहेगा यहाँ पर।
2: अब इतने सारे पिज्जा का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इस परिवार से मिलके आपको बहुत मजा आने वाला है। खुशी, नोक झोंक, प्यार की मिठास और अनबन का तड़का भी है। राठौड़ परिवार में सब कुछ मिलेगा आपको। अब जिस घर में इतनी वैरायटी है लोगों की, सोचिए किस्सों की कितनी होगी। जीवन के हर रंग को लेकर अगले एपिसोड में फिर लौटेगा कार्यक्रम घर ऑन एयर, सिर्फ रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, 107.8 की फ्रीक्वेंसी पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
19: घर ऑन एयर, पात्र परिचय। दादाजी भगवत सिंह राठौड़, आरजे ज्ञानेश्वर। दादी जी अंबिका देवी राठौड़, आरजे संध्या। चाचा किशन सिंह राठौड़, आरजे श्रीनिधि। ताऊ जी गजेंद्र सिंह राठौड़, आरजे रोहित। ताई जी चंद्रावती, आरजे प्रभा। बुआ रागनी राठौड़, आरजे कृष्णा। बुआ शांति राठौड़, आरजे मोना। वीरेंद्र राठौड़, आरजे विशाल। राजकुमारी राठौड़, आरजे आरुषि। बच्चे रूहानी, अमीक्षा। नैरेटर आरजे अमित। आशा करते हैं घर ऑन एयर का पहला एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का, क्योंकि राठौड़ परिवार की कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

समय सुबह का तब बनता है एकदम खास जब आती है उषा अर्चना के साथ। नमस्कार जी आप सभी को, राम राम जी, जय श्री कृष्ण, खम्मा गणिसा। अगर तिल्ली की खराबी है तो क्या करेंगे, जरा सोचिए। उपाय तो जरूर बताएंगे लेकिन आप भी कुछ सोचिएगा। और जी हाँ सैजल, आज भी आपको एप्पल की कटिंग कैसे करेंगे, कैसे उसको सुंदर तरीके से सजा करके रखेंगे कि एकदम इच्छा हो जाएगी खाने की, तो बहुत ही क्रिएटिव तरीका सिखाएगी सैजल। और जी हाँ मैं भी आपको कुछ सिखाने वाली हूँ, परंतु क्या वो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और आज हम कैसे अपने जीवन में क्रिएटिव रहेंगे, कुछ न कुछ क्रिएटिव कार्य करते रहेंगे तो मन हमारा खुश भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा, तो इस विषय पर ही हम बातचीत भी करेंगे। और सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर प्यार और स्नेह प्राप्त होता रहेगा। जरा विचार करिएगा कि ऐसा क्यों। प्रश्न तो आज का बड़ा ही सुंदर और सरल है, तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हम शपथ लें कि आज के बाद जब कभी भी हम गाड़ी चलाएंगे तो स्पीड का ख्याल रखेंगे, खुद का भी ख्याल रखेंगे और सामने वाले का भी ख्याल रखते हुए हेलमेट पहन करके ही अपनी गाड़ी को चलाएंगे।
1: रेडियो मधुबन।
2: पुनः आप सभी का आशियाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है, सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर स्नेह प्यार सब कुछ प्राप्त होता है। सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर सत्कार प्यार स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। कैसे? तो आइए आज के विचार का विस्तार एक दृष्टांत के साथ करना चाहूंगी कि एक बार एक राजा थे, वन विहार को निकले थे। रास्ते में प्यास लगी, नजर दौड़ाई, एक अंधे की झोपड़ी दिखी, उसमें जल भरा घड़ा दूर से ही दिखाई दे रहा था। राजा ने सिपाही को भेजा और एक लोटा जल मांग लाने को कहा। सिपाही वहां पहुंचा और बोला, ए अंधे, एक लोटा पानी दे दे। अंधा भी बड़ा अकड़ू था, उसने तुरंत कहा, चल चल, तेरे जैसे सिपाहियों से मैं नहीं डरता, पानी तो तुझे नहीं मिलेगा। सिपाही निराश होकर लौट पड़ा। इसके बाद सेनापति को पानी लाने के लिए भेजा गया। सेनापति ने पास में जाकर कहा, अंधे, पैसा मिलेगा, पानी दे दे। अंधा फिर अकड़ पड़ा, उसने कहा, पहले वाले का यह सरदार मालूम पड़ता है, फिर भी चुपड़ी बातें बना करके दबाव डालता है, जा जा, यहां से पानी नहीं मिलेगा। सेनापति को भी खाली हाथ लौटता देखकर राजा स्वयं चल पड़े। समीप पहुंचकर वृद्ध जन को सबसे पहले नमस्कार किया और कहा, प्यास से गला सूख रहा है, एक लोटा जल दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। अंधे ने सत्कार पूर्वक उन्हें पास बिठाया और कहा, आप जैसे श्रेष्ठ जनों का राजा जैसा आदर है, जल तो क्या, मेरा शरीर भी स्वागत में हाजिर है, कोई और भी सेवा हो तो बताइए जनाब। राजा ने शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई, फिर नम्र वाणी में पूछा, आपको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर जल मांगने वालों को सिपाही सरदार और राजा के रूप में कैसे पहचान पाए? अंधे व्यक्ति ने कहा, वाणी के व्यवहार से हर व्यक्ति के वास्तविक स्तर का पता चल जाता है, तभी कहा जाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि सदैव मीठा वचन बोलना चाहिए, इससे सभी जगह आदर सत्कार प्यार स्नेह सब कुछ प्राप्त होता है। तो ये हुआ आज का सुंदर सा विचार, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।
3: घरेलू नुस्खों का खजाना आशियाना,
4: रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आइए अब आपको बहुत ही सुंदर नुस्खे दूंगी कि तिल्ली की खराबी हो जाए तो क्या करेंगे। देखिए, अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए और सेंधा नमक लेना है 1/2 ग्राम और फिर आप इनको आप मिला दीजिए। दोनों समय भोजन के बाद गर्म पानी के साथ लीजिएगा, इससे तिल्ली की खराबी ठीक हो जाएगी, प्लीहा की विकृति दूर होगी। अजवाइन का चूर्ण 2 ग्राम ले लीजिए, सेंधा नमक 1/2 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके आप फाकी लेकर के ऊपर से गर्म पानी पी लीजिएगा दोनों ही समय, सुबह और शाम को, ठीक है, भोजन के बाद। जब हम दोपहर का भोजन करते हैं उसके बाद और शाम का भोजन करते हैं उसके बाद आप ले लीजिए गर्म पानी के साथ, तो प्लीहा की विकृति दूर होगी। और भी सुंदर आपको उपाय बता रही हूँ कि तिल्ली अथवा जिगर, जिसको यकृत भी कहते हैं, तिल्ली माने प्लीहा, दोनों अगर बढ़ जाती है तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप पुराना गुड़ 1.5 ग्राम और बड़ी पीली हरड़ के छिलके का चूर्ण, दोनों ही बराबर वजन मिला करके एक गोली इसकी बनाइए और ऐसी गोली दिन में 2 बार सुबह सुबह शाम को हल्के गर्म पानी के साथ 1 महीने तक लेना है। इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे ना तो भी ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तिल्ली और जिगर, जिसको हम यकृत और प्लीहा कहते हैं, अगर ये बढ़ जाता है तो भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखिए, शरीर हमारा ऐसा है कि कोई भी ऐसी वैसी समस्या शरीर सहन ही नहीं कर पाता है। कुछ अंदर गड़बड़ होने लगती है, वो हमसे सहन नहीं होता है। तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आप घरेलू नुस्खे भी आजमा सकते हो कि अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही बड़ा हुआ हो या बढ़ने की शिकायत है, तो आप पुराना गुड़ लीजिएगा 1.5 ग्राम और बड़ी पीली वाली हरड़, इसके छिलके का चूर्ण बरोबर मात्रा में लेना है। गुड़ और ये चूर्ण, इन दोनों को मिला करके आप गोली बनाइए, और फिर गोली बना करके 2 बार आपको लेना है, सुबह और शाम को। और ये गोली लेने के बाद हल्का गर्म पानी, 9 सेक का पानी आप पीजिएगा। 1 महीने तक लेंगे तो इससे यकृत और प्लीहा यदि दोनों ही बड़े हुए होंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसके 3 दिन के प्रयोग से ही अम्ल पित्त का भी नाश हो जाता है। और लास्ट उपाय आपको बता रही हूँ, पेट दर्द में अजवाइन का चूर्ण 6 भाग और काला नमक पिसा हुआ 1 भाग लीजिएगा, और इसमें से 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच गर्म जल से लीजिए। इससे पेट दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। बच्चों को अगर देना हो तो आधी मात्रा दीजिए। इससे क्या है, अपारा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिट जाती है। तो फिर से इस नुस्खे को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप कि अजवाइन का चूर्ण लीजिएगा 6 भाग और काला नमक पीसा हुआ लेना है आपको 1 भाग। फिर दोनों को मतलब आधा चम्मच आप ये ले सकते हैं। पहले आपको मात्रा तो बताई दी है, अब आप इसकी फाकी लीजिए, ऊपर से गर्म जल पी लीजिएगा। इससे पेट के दर्द में तुरंत आराम मिलेगा। अगर बच्चों के पेट की तकलीफ है तो उनको आधी मात्रा दीजिए, ठीक है। जैसे उम्र आपको बताना चाहूँगी, बच्चे 10 साल के, 11 साल के, ऐसे बच्चों के पेट में तकलीफ है तो आप आधी मात्रा दीजिए। इससे भी कम, जैसे 4-5 साल के बच्चों के तकलीफ है तो आधी से भी आधी मात्रा दीजिए। देखिए, इससे अपारा भी ठीक होगा, वायु, गोला और पेट की गैस भी मिटेगी। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और चाहो तो आजमा सकते हो। डॉक्टर को तो दिखाना ही है, लेकिन घरेलू नुस्खे कहते हैं ना, दवा और दुआ दोनों ही करिएगा, ठीक हो जाएंगे। और आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है, इसके 2 जवाब है, 2 प्रश्न मिक्स है, दोनों ही जवाब आपको देना है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, कहीं भी जाइएगा नहीं, कार्यक्रम अभी बाकी है। तो सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: हेलो,
2: मैं आपको कर रहा हूँ। मैं एक तो आपने वो प्रश्न पूछा था ना कि 5 जून को क्या मनाते हैं।
1: हाँ जी,
2: तो 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
1: अच्छा,
2: विश्व पर्यावरण दिवस
1: जी,
2: यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे
1: जी।
2: और पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को।
1: अच्छा ठीक है, तो आप इंतजार करिएगा, आपके प्रश्न का जो आपने जवाब सुनाया है हम जरूर उसको सुनाएंगे बहुत ही जल्दी कार्यक्रम के अंत में। ठीक है जी, जी शुक्रिया। तो ये थे मुरलीधर जी माउंट आबू ढूंढाई से, और प्रश्न का जवाब देने की इन्होंने बहुत ही अच्छी कोशिश की है। आप भी जरूर कोशिश करिएगा। प्रश्न भी आज का बहुत ही सुंदर और सरल है कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है। ठीक है, और आइए अब आशियाना के किचन में पधारिए, आज कुछ क्रिएटिव करेंगे। सेजल जिसने 10th का एग्जाम दिया है, अब 11th में आई है और ये आबू रोड की रहने वाली है। ये कहते हैं ना, बच्चे बड़े ही क्रिएटिव होते, कुछ न कुछ तो क्रिएटिव करते ही रहते हैं। और सचमुच में हमारे ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे होते हैं ना, उनका फल फ्रूट रखोगे ना तो नहीं खाएंगे। हाँ, उनको आप पैकेट ला करके दे दोगे, कुरकुरे है इस तरह की चीजें, वो खाने के लिए लालायित रहेंगे लेकिन फल फ्रूट से दूर भागेंगे। लेकिन वही फल फ्रूट को अगर हम क्रिएटिव तरीके से प्लेट में सजा करके रख देते हैं अपने टी टेबल पर या अपने डाइनिंग टेबल पर या फिर जहां पर भी आप भोजन करते हो, भोजन कक्ष में जहां बच्चों की नजर तुरंत पड़ती है, तो ऐसी जगह पर आप इस तरह क्रिएटिव तरीके से रखेंगे तो बच्चे अपने आप खाने के लिए कहेंगे, मांगेंगे जिद करके कि मुझे ये खाना है, ये खाना है। और क्रिएटिव तरीके से जो रखी हुई चीज है तो क्यों नहीं, बच्चों का तो क्या बड़ों का भी दिल करता है। तो सेजल बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताएगी कि एप्पल को किस क्रिएटिव तरीके से हम काट करके अपने मेज पर रखेंगे कि बच्चे खाने के लिए मचलेंगे। है सेजल, स्वागत रेडियो मधुबन में, स्वागत।
3: थैंक यू।
1: अच्छा, तो एप्पल को कैसे आप काटोगी, किस क्रिएटिव तरीके से काट करके आप प्लेट में सजाओगी, बताओगे आप हमारे श्रोता बंधु को।
3: जी, तो हम कोई एप्पल है ना, तो जैसे कि उसको नीचे का भाग तो हम रहने देंगे, उसके 3 भाग कर लेंगे और बीच का रहने देंगे उसे, मतलब कि जैसे कि जो काट लेंगे वो जो...
1: अच्छा, एक एप्पल लेनी है, साइज कौन सी लेनी है, बड़ी छोटी मीडियम,
3: कोई सी भी
1: साइज। फिर उसको क्या करना है, पहले तो धुलाई करनी है, स्वच्छ कपड़े से पोंछना है। फिर आपने कहा है कि 3 भाग में उसको काटनी है, तो ऊपर के भाग जिधर डंठल होता है उधर से काटनी है या नीचे के भाग से?
3: नीचे का भाग रहने देना है और डंठल की तरफ से काटना है।
1: अच्छा, तो ये कट कौन सा लगाना है, खड़ा कट लगाना है या आड़ा?
3: आड़ा।
1: आड़ा कट। अच्छा, फिर?
3: फिर उसके 3 भाग मतलब कि जो है ना उसको भाग करके उसके ऊपर वापस रख के उसमें जो लकड़ी की जो उसको ऐसे ऊपर की तरफ करके और उस पर लकड़ी लगा दो।
1: अच्छा, तो 3 कट लगाने हैं एप्पल के ऊपर, 3 आड़ा कट, और फिर नीचे से भी आड़ा कट ही लगाना है।
3: हाँ,
1: नीचे से भी आड़ा कट लगाना है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, ऊपर से भी आड़ा कट लगाना है और तीनों ही भाग को काट देना है, नीचे जुड़ा रहे ऊपर भी।

0: जुड़ा रहे, ठीक है, और बीच में से उन फाकों को पतली परत से काटना है। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी फाक काट रहे आप, पूरी पूरी फाक अगर आप काटेंगे तो एप्पल के दो तीन टुकड़े हो जाएंगे, हमें टुकड़े नहीं करना है, ठीक है। तीन भाग से जैसे हम आलू की स्लाइस करते हैं ना, ऐसे एप्पल के थोड़ी मोटी वाली स्लाइस निकालनी है ना सेजल?
1: हाँ।
0: और फिर क्या करना है इनको?
1: फिर इनको डिजाइन में आप जमा दो।
0: अच्छा, तो सेजल ने बताया है कि जैसे हमने तीन स्लाइस तीनों ही भाग से काटी है, ठीक है, इनकी फिर आपको फाके करनी है, तीन तीन तीन तीन फाके करके अब आपको जैसे नीचे का भाग आपका जगह हो चुकी है यहाँ पर, तो आप एक फाक रखिए, फिर उसको थोड़ा सा बरोबर मात्रा में न रख करके उसको थोड़ा सा आगे की तरफ रखिए, दूसरी फाक, उसके ऊपर तीसरी फाक रखिए थोड़ी सी और आगे, तो जैसे आप सीढ़ी चढ़ते हैं ना ऐसे हो जाएगा। तो फिर आप ये तीनों ही फाके तीनों ही तरफ लगाइएगा, और एक लकड़ी की स्टिक आती है जिससे हम फ्रूट भी खाते हैं तो उसका मुंह तीखा होता है, उसको आप डाल दीजिए ताकि ये फाके अलग नहीं पड़े, ठीक है। तीनों ही फाकों को, तीन भाग जो काटे हैं तीनों ही तरफ फाके करके इन स्लाइस की और सजाइएगा और स्टिक लगा दीजिएगा। तो ये क्या है कि स्टिक लगाने से आपकी ये फाके गिरेगी नहीं, और फिर इसको आप प्लेट में रख दीजिए, और फिर आप जहाँ भी आप भोजन करते हैं, जहाँ पर भी आप रखना पसंद करते हैं कि आपके बच्चों की नज़र पड़े, ऐसी जगह पर रखिए। तो बच्चे क्या जैसे ही किचन में आएंगे नज़र पड़ेगी कि ये क्या चीज़ है मम्मी, ये तो हमको खानी है, एकदम बच्चे खुद मांगेंगे, तो माताएं तो बड़ी खुश हो जाएगी ना, क्योंकि हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा फल फ्रूट खाए ताकि हेल्दी रहे, है ना। तो अब नहीं खाते, अक्सर बच्चों के नखरे होते हैं, वो ऐसी चटपटी चीजें खा लेंगे लेकिन फ्रूट से दूर भागते हैं। तो जो भी बच्चे दूर भागते हैं फ्रूट से, उनको आप इस तरीके से खिलाएंगे तो जरूर बच्चे खुद मांगेंगे और बड़े चाव से बड़े प्यार से खाएंगे, ठीक है। तो एप्पल काटना तो आपने सीख लिया ना। अब देखिए, ये क्या वीडियो तो है नहीं कि मैं आपको काट करके बता दूं, लेकिन अभी सेजल ने क्या है प्रैक्टिकल में काटा है और काट करके मुझे बता रहे हैं कि दीदी ऐसे ऐसे किया जाता है, और आपके सामने बोल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रही है ये एप्पल, जरूर आप भी ट्राई करिएगा। अगर कहीं कुछ आप भूल जाए या नहीं सही तरीके से हो रहा है तो आप फोन कॉल्स कर सकते हो, नंबर तो आप जानते ही हो, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स करिएगा। और एप्पल काटने का तरीका में कुछ भी थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा है तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेजल बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा क्रिएटिव तरीका सिखाया है एप्पल को कैसे काटा जाता है।
1: थैंक्स।
0: आइए आज के प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बड़ा ही सरल है, ध्यान से सुनेंगे कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है, ठीक है। दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आइए एक गीत सुनने के बाद हम पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

0: पुनः आशियाना में आप सभी का स्वागत है। महेश भाई शर्मा आबू रोड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार नमस्कार महेश भाई, कैसे हो आप?
1: नमस्कार जी, नमस्कार, बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास है जी।
0: जी हाँ। जी, और आज के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
1: हाँ बोलो, क्या प्रश्न है जी?
0: जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं और पृथ्वी दिवस कब है?
1: अच्छा, 5 जून को ये आ रहा है मातृ दिवस, मदर डे, ये तो नहीं है?
0: वो तो आपको जवाब देना, अभी हम नहीं बताएंगे।
1: अच्छा मदर, ठीक है।
0: अच्छा
1: वाह,
0: दो प्रश्न है, दो जवाब आपको देना है। पृथ्वी दिवस कब है? हाँ जी,
1: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, पृथ्वी दिवस तो यार ध्यान से उतर रहा मेरे भी।
0: कोई बात नहीं, आप फिर से फोन कॉल्स कर सकते हो। ठीक है
1: ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है
0: जी, बहुत बहुत आभार आपका
1: जी।
0: तो आशियाना के किचन में आप सभी हो और सेजल ने बहुत ही अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से एप्पल को काटना सिखाया, जिसको हम सेब भी कहते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से काटा है। अब आइए मैं आपको सिखाती हूँ कि अमरुद को कैसे काटा जाता है। लेकिन हमारे पहले श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं तो उनसे जरूर बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में।
2: फिरोज भाई पालमपुर से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी फिरोज भाई, नमस्कार, कैसे हो आप?
2: बस एकदम अच्छे, अभी मेरे पास बहन जी रेडियो नहीं है, तो आज के कोई प्रश्न हो तो बोलो, बताओ।
0: हाँ जी, आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और मतलब पृथ्वी दिवस कब है?
2: पृथ्वी दिवस,
0: हाँ जी, 5 जून को कौन सा दिवस मनाने जा रहे हैं हम सभी और पृथ्वी दिवस कब है?
2: अच्छा जी, तो पृथ्वी दिवस है ये अपना 22 अप्रैल
0: जी। और दूसरा जवाब?
2: और दूसरा सवाल है, ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और उसमें क्या वो 5 तत्वों का जो प्रदूषण हो रहा है तो उसको बचाने के लिए, जंगल है, हवा है, पानी है, उसका वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए
0: जी।
2: और दूसरा ये 22 अप्रैल को जो जो पृथ्वी पर जो ये हो रहा है तो उसका जो
0: ये हम बात करेंगे फिरोज भाई, विस्तार में हम बात करेंगे। आज तो प्रश्न का जवाब ही दीजिएगा, जब भी होगा उस दिन हम बात करेंगे, है ना?
2: जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। तो अब आप सभी आशियाना के किचन में है और मैं आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे हम काटेंगे कि बच्चे फिर से नहीं दोहराऊंगी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम अच्छे क्रिएटिव तरीके से फल फ्रूट को काट के रखते हैं तो बच्चे अपने आप वो मन से मांगते हैं और खा भी लेते हैं। तो अमरुद की धुलाई करिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछिएगा। अगर थोड़ा सा बड़े साइज का है तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी साइज है आप लीजिएगा। और हमारे श्रोता बंधु से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि विषय को जो हम सिखा रहे हैं उसको पूरा करके। पर अभी चलिए उठा लेते हैं फोन। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, ओम शांति उषा बहन जी।
0: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बिल्कुल अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, बाबा की कृपा है, आप सभी मित्रों की कृपा है। और आज मधुबन सुन रहा था, बहुत ही अच्छे नुस्खे भी बताए और एप्पल भी किस तरह काट के रखना चाहिए वो भी सिखाया, तो बच्चों को भी कोई भी नहीं खा सकता है, वो भी अपनी ओर आकर एप्पल को देखकर आकर्षित होगा, खाएगा।
0: जी जी दयाराम जी, आज जी, के प्रश्न का जवाब देंगे आप?
3: बिल्कुल मैम।
0: हाँ जी, प्रश्न तो आपने सुना ही है या दोहराऊं?
3: मैंने सुना है दीदी
0: जी।
3: आज के प्रश्न का सही जवाब है, जो हम 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाती है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, तो विश्व पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है तो प्रकृति के प्रति सभी को जागरूक करना है।
0: जी जी जी, हम उस दिन जरूर बात करेंगे, है ना, जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस होगा उस दिन आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है? बहुत सारे विस्तार में हम बातें करेंगे। बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन से जुड़े और आपने प्रश्न का जवाब देने की काफी अच्छी कोशिश की। तो बहुत ही देखिए सुंदर तरीके से आपको सिखाने जा रही हूँ अमरुद को कैसे काटेंगे, अमरुद जिसको हम राजस्थान में जामफल भी कहते हैं, ठीक है। आप जो भी साइज है लीजिएगा, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछ करके फिर ऊपर जो थोड़ा सा डंठल ऐसा होता है ना उसको आप कट करके निकाल दीजिए। अब आप नीचे की साइड में से तो चिपका रखना है, ऐसे बिल्कुल फांके अलग नहीं पड़नी चाहिए, और सभी तरफ से फांके इस आकार से काटिएगा कि जैसे कि गुलाब का फूल दिखाई दे, ऐसा ही। तो बीच में जो आप काटेंगे ना, तो बीच में से तो आप वो कटिंग रखिएगा। और अब आपको क्या करना है, ऐसे ही तीन कट आपको लगाना है, आड़ा कट, ठीक है, थोड़ा सा नीचे तक, लेकिन नीचे का डंठल अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का जो भाग है उससे अलग नहीं होना चाहिए, नीचे का भाग चिपका रहे, ऊपर आप वो डंठल का भाग काट करके फिर बीच में थोड़ा सा रखना है, साइड में से मोटी मोटी स्लाइस तीनों तरफ से आपको कट करनी है। कट करने के बाद भी पूरे अलग नहीं करनी है, उसके बाद उसके लंबे लंबे चीरे लगाने हैं, तो सब तरफ से ये फांके हो जाएगी और बीच में वो जो डंठल का भाग काटा है वो डंडी की तरह दिखाई देगा, पतला पतला डंडी दिखाई देगा और नीचे से चिपका रहेगा। तो इस तरह अमरुद को काट करके भी अगर आप अपनी मेज पर रखते हैं, टी टेबल पर रखते हैं या डाइनिंग टेबल पर रखते हैं एक प्लेट के अंदर, तो भी बच्चे आकर्षित होंगे, खुद ब खुद मांगेंगे कि ये क्या चीज़ है मम्मा, ये हमें खाना है। तो बच्चे बड़े ही उत्साह से मांगेंगे और हर एक की इच्छा रहती है कि बच्चे इस तरह के फ्रूट खाए। तो इस तरह आप काट करके रख सकते हैं। देखिए हम सीधे सिंपल तरीके से सभी काटते हैं, लेकिन कभी कभी क्रिएटिव तरीका भी आजमाते हैं तो कुछ नवीनता भी आ जाती है और बच्चे बड़े चाव से बड़े प्रेम से खाते हैं। और बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो भी उनके डिब्बे में इस तरह आप काट करके रख दीजिए टिफिन बॉक्स में, तो वो खोलेंगे तो अपने आप ही इच्छा हो जाएगी कि हम खा ले, वे है ना। तो ये अमरुद की कटिंग हो गई। अब मैं एक और तरीका बता रही हूँ, पापड़, जो जग जाहिर है भोजन के साथ अक्सर लोग पापड़ लेते ही हैं, पापड़ को हम सेकते हैं, ठीक है, सेकते हैं, उस समय वो गरम गरम होता है तो एकदम नरम होता है, फिर वो ठंडा हो जाता है तो फिर वो कड़क हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, पापड़ को सेकने के बाद उसका आकार समोसे की तरह कर दीजिए, फिर आप रखिए प्लेट में, कोई मेहमान भी आ गए या बच्चे हैं या आप खाना चाहते जो भी है घर के अन्य परिवार के सदस्य है, सभी को आप प्लेट में जो पापड़ पूरा ही सेक करके ऐसे खुला खुला रखते हैं, इसके जगह आप समोसे का आकार दे करके फिर आप रखिए, फिर ये ठंडा होने के बाद आकार आप नहीं दे पाओगे और ये टूटेगा नहीं, ठीक है ना, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे तो टूटेगा नहीं, इसलिए जैसे ही सेका तुरंत ही गरम गरम को आप जो भी आकार चाहे दे सकते हो और फिर आप भोजन में पिरसिए पापड़ को, तो इस तरह भी अच्छा लगेगा कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। एक सेकंड के लिए तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कहीं समोसा तो नहीं लेकिन समोसा तो आप सभी जानते हो कि समोसा का थोड़ा सा कलर अलग होता है, थोड़ा फुला हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक नई चीज़ समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, फिर समझ जाएंगे कि अच्छा पापड़ है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रखा है। तो वो कहते हैं ना कि ऐसे नहीं कि हमको भाई रोज़ भोजन कर रहे हैं और चलेगा, चलाना नहीं है, भोजन को आप रोज ही अलग अलग तरीके से रखिएगा और बड़े प्यार से, बड़े ही भाव से रखिएगा कि खाने वाले की अपने आप इच्छा उत्पन्न हो और बड़े प्यार से वो भी खाए। तो ये पापड़ भी हो गया है और मसाला पापड़ भी आप बना सकते हो। मसाला पापड़ के लिए भी आप क्या करेंगे, जैसे पापड़ आपने सेक लिया, ठीक है, सेक करके इसको एक कोन का आकार दे दीजिए, जैसे हम कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं ना, ऐसे कोन का आकार आपको देना है। फिर इस आकार में आप थोड़े से टमाटर की कटिंग कर लीजिए, पत्ता गोभी की बारीक बारीक कद्दूकस कर लीजिए या कटिंग कर लीजिए, और हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए, अनार के दाने भी, इन सभी को थोड़ा सा मिक्स करके इसमें आप थोड़ा जलजीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा सेंधा नमक और ये सभी, मतलब काली मिर्च पाउडर भी आप चाहो तो डाल करके मिक्स करके आप पापड़ के अंदर भर करके, जैसे कोन बनाते उसमें आइसक्रीम होती ना, ऐसे आप इसमें भर के भी प्लेट में दे सकते हो। तो देखिए सलाद भी हो जाएगा साथ में और पापड़ भी हम भोजन में रखते हैं तो पापड़ भी हो जाएगा। तो हो गए ना एक पंत दो काज, कि पापड़ भी है, सलाद भी है और खाने वाले बड़े प्यार से खाएंगे कि वाह क्या खूब सजा के रखा है। तो कुछ जीवन में क्रिएटिव ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पापड़, अमरूद, एप्पल, सबको क्रिएटिव तरीके से तो सजा दिया है। अब भोग तो कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, भोग ज़रूर लगाइएगा, सात्विक चीज़ों का भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि देखिए भोग लगाते समय हमारी भावनाएं एकदम निश्चल हो जाती है ना, बहुत ही भाव पूर्ण हो जाती है, बड़े ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उमड़ती है, तो वो वाइब्रेशंस भी भोजन में जाते हैं, जो भी हम बना रहे हैं उसमें जाते हैं, और फिर वो जो भी परिवार के सदस्य स्वीकार करते हैं तो उनमें भी वो भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए भोजन हमेशा प्यार से परोसना चाहिए और भोजन को प्यार से करना चाहिए। भोजन करते समय अक्सर हम देखते हैं ना, कुछ भी खाते पीते हैं तो मोबाइल देखते हुए खाते हैं, भले मुंह का कवा खत्म हो गया है,

दूसरा कवा लेना है, लेकिन नहीं, मोबाइल में लगे हुए हैं। इसलिए कितने ही जने क्या भोजन के समय मोबाइल चलाते हैं तो आधा आधा घंटा पौन पौन घंटा पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, भोजन और भजन हमेशा एकाग्रता में करना है, हमेशा एकांत में करना है। एकांत बोले तो ऐसा नहीं कि परिवार के सदस्यों से हट करके आप करो, नहीं, परिवार के सभी सदस्यों के साथ करिए, प्यार भी बढ़ेगा, स्नेह भी बढ़ेगा, और हो सके तो उस समय बातें कम करिएगा, भोजन पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ ईश्वर का धन्यवाद भी करिएगा कि परमात्मा सभी को भूखा उठाता है लेकिन किसी को सुलाता नहीं है। तो अच्छी अच्छी भावनाओं के साथ जब हम भोजन करते हैं तो सचमुच में वो भोजन एकदम महाप्रसाद बन जाता है और वो हमारे मन बुद्धि पर बहुत ही अच्छा पॉजिटिव असर करता है। ठीक है, तो ये तो आपने क्रिएटिव तरीका सीखा है। अब हम गीत सुन करके पुनः आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो आज के प्रश्न में फिर से दोहरा रही हूँ, बहुत ही सुंदर और सरल प्रश्न है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि अरे भाई हमारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि सभी का सही है। और मान लीजिए सही है तो भी क्या बात है, आपका भी तो नॉलेज काम आना चाहिए ना। तो आप भी जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और जवाब देने की कोशिश जरूर करिएगा कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। तो जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15। और आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: जीवन में नवीनता लाते रहिए, जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। क्या कहेंगे आप, हम तो आपके द्वारा जानना चाहते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर और सरल है, विषय भी बहुत अच्छा है, जरूर आप जुड़िएगा। आज का प्रश्न है, 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। 2 प्रश्न है, 2 जवाब आपको देना है, क्योंकि सरल प्रश्न है तो दोनों ही प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा। और विषय भी बहुत ही सुंदर है कि जीवन में नवीनता लाते रहिए और जीवन को खुशनुमा बनाते रहिए। दोनों में ही आप जरूर जुड़िएगा, जवाब भी दीजिएगा, अपने विचार भी व्यक्त करिएगा। नंबर हमारे है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के विषय को आप स्पष्ट कर सकते हो कि जीवन में नवीनता लाना क्यों जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उषा दीदी पता नहीं क्या क्या विषय लेकर के आ जाती है, लेकिन नवीनता तो देख के हर कोई चाहता है ना। चाहे हम कितने भी पैसे वाले हैं या कितनी भी फैसिलिटी में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़े दिनों में ही हम ऊब जाते हैं उन चीज़ों से। फिर ऐसा लगता है कि अरे क्या रोज़ ये का ये, कुछ तो नवीनता होनी चाहिए। फिर लोग प्लान बनाते हैं, चलो थोड़ा सा घूम आए या फिर चलो कुछ नया करें, कुछ बनाए, जैसे कि भोजन का ही देख लेते हैं, ठीक है। रोज़ आपको सुबह पोहे खिला दिया जाए नाश्ते में, दिन के खाने में आपको रोटी सब्जी और शाम को कड़ी खिचड़ी, रोज़ यही, कोई चेंज नहीं। 4 दिन में आप लोग थक जाएंगे और आप ज़रूर कहेंगे कि अरे ये क्या, रोज़ पोहे, रोज़ रोटी सब्जी और रोज़ कड़ी खिचड़ी, ना भाई ना, कुछ तो बनाओ, है ना। सभी के साथ होता है, घबराइए नहीं, ऐसा नहीं कि आप अकेले ही है, हर कोई। मैं भी होंगी तो मैं भी 4 दिन के बाद 5वें दिन परिवर्तन जरूर चाहूंगी कि नहीं नहीं, मुझे भी कुछ अलग बना करके खाना है। चाहे कोई बना के दे या नहीं दे, स्वयं ही बनाने लग पड़ते हैं फिर। तो जीवन में नवीनता क्यों जरूरी है, तो जीवन में नवीनता का ख्याल जरूरी है। क्या आप नवीनता नहीं चाहते हैं, नवीनता चाहते हैं तो जरूर जोड़िएगा। एक सप्ताह के बाद आप क्या करेंगे, अरे मैं रोज क्यों ये किए पहनूं, क्या मेरे पास कपड़े नहीं है, नहीं है तो लाने की कोशिश करेंगे और चेंज करने की कोशिश करेंगे कि आज ये कल वो परसों वो। तो हर चीज़ में हम नयापन देखते हैं, नवीनता चाहते हैं, तभी तो जीवन एक सुंदर तरीके से चलता है और शांति भी रहते हैं जीवन में। हेलो, हमारे श्रोता बंधु थे शायद, चलिए फिर से फ़ोन कॉल्स करेंगे, कुछ कारण से बात नहीं हो पाई है, कोशिश कर रहे हैं। हेलो
3: नमस्ते,
2: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप।
3: बस बिल्कुल बढ़िया है, अच्छे है और अच्छी बातें भी सुन रहे हैं और विषय भी बहुत अच्छा रखा है और कहीं ना कहीं बिल्कुल सही दीदी बताया आपने कि भोजन की भी जो आपने बात की थी, हम हर रोज इतना ही भोजन करते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है इतना क्या खाना, कुछ अच्छा बनाइए कुछ नया बनाइए, ये भी सही है। कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है चलो आज दिन के दिन नया कपड़ा पहन दे तो अच्छा रहेगा, कुछ नया चेंजिंग करेंगे। तो जीवन में भी दीदी ऐसा ही है कि हम कुछ न कुछ नया करने की जरूरत है। देखो हम कोई भी काम करते हैं तो अच्छा काम करते हैं तो बुरा भी काम करते हैं, कभी कभी अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन हम कुछ नया चेंजिंग करें, चलो आज हमने एक अच्छा काम कर दिया, चलो सेवा को कोई काम कर दिया तो हम आगे जाते और भी कोई नया सेवा का काम करेंगे, थोड़ा आगे जाके कुछ किसी को मदद करेंगे, किसी को कुछ काम आएंगे, और कुछ नया करने की भी कोशिश करेंगे। जीवन में कई मोड आते हैं दीदी
2: जी,
3: और परिवर्तन बिल्कुल जरूरी है। परिवर्तन के बिना तो जीवन चलता ही नहीं है
2: जी।
3: हम एक ही बात हर दौर लगा रखे हैं तो कोई ऐसा ना करे, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश जरूर करना। तो नया चेंजिंग करना है जीवन में, कुछ नया धारण करना है, कोई अच्छी सेवा, अच्छी कोई बात, किसी को काम आना, किसी की मदद करना, ये भी जरूरी है
2: जी।
3: बस हम तो यही कहेंगे हर रोज नया कुछ करने की कोशिश जरूर करना जीवन में। हम कभी कभी हमारे को कच्चा किसी के पास हम बैठते तो कच्चा कोई किसी को गुण धारण करना, ये भी जरूरी है
2: जी। तो सुरेश भाई, जैसे आप सिलाई काम करते हैं, ठीक है, रोज एक जैसे सिलते हैं या कुछ अलग अलग डिजाइन भी रखते हैं?
3: नहीं दीदी, हम अलग अलग काम करते हैं
2: जी,
3: सभी कपड़े तो एक जैसा नहीं आते हैं और एक डिजाइन भी नहीं आती है, डिजाइन में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है
2: जी,
3: चेंजिंग बनी करनी पड़ती है। हम कोई भी नए कोई फैशन आती है तो नए फैशन का भी बनाना पड़ता है
2: जी। तो फिर आप पहले सीखते हैं फिर बनाते हैं?
3: हाँ, पहला देखते हैं बाद में बनाते हैं
2: जी।
3: और कभी कभी तो खुद पोस्टर भी ऐसा आता है कि इस पोस्टर से बनाना है तो बन जाता है
2: जी जी जी,
3: और हम बना भी देते हैं,
2: कोशिश करते हैं तो हो जाता है।
3: हाँ, हो जाता है, क्योंकि आज देखो कितनी ही फैशन डिजाइन जो मार्केट में आ रही है, तो चलना तो जरूरी है
2: जी।
3: इतना ही कपड़ा में एक टाइप का पहनते तो पता ऐसा लगता है। देखो हम एक सैंपल दे, तो जो जेठालाल का कार्यक्रम हम देखते हैं
2: जी।
3: तो खुद जेठालाल अलग अलग फेस डिजाइन का कपड़ा पहनते हैं
2: अच्छा। जी।
3: तो मैं कई बार देखा है कि सभी जो शर्ट होता है इसका अलग अलग डिजाइन का बनता है
2: जी।
3: तो चेंजिंग जरूर है दीदी, और करना है जीवन में चेंजिंग करना है
2: जी,
3: तरीके से भी जीना है
2: जी। जी, बहुत सुंदर, आभार आपका जी। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, सिलाई काम करते हैं। तो आपका कहना है कि सिलाई में भी हम नवीनता लाते हैं, कितनी बार तो पोस्टर के द्वारा भी डिजाइन कही जाती है कि ये पोस्टर और ये डिजाइन आपको डालनी है, तो भी बता रहे हैं कि हो जाता है, बिल्कुल कोशिश करते हैं तो हो जाता है सब कुछ। तो नवीनता जीवन में लाना बहुत जरूरी है, आपका क्या ख्याल है? हर कोई चाहता है जीवन में नवीनता लाना, क्योंकि भाई आज भले हम क्रिएटिव नहीं करते हैं ना, रोज ही कुछ न कुछ होता रहता है। हेलो
4: हेलो, नमस्कार, ओम शांति दीदी।
2: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
4: बहुत ही अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, दोस्तों मित्रों की कृपा है और आसपास का माहौल भी अच्छा है, और हरदम कुछ नया नया करने की जो जोश और जज्बा रखते है, और हर दिन कहीं न कहीं से कोई नई जानकारियों भी प्राप्त करके, और ये ऐसे कोई ग्रुप बनाए हुए उसमें डालना है, ये हमारा स्वभाव है। तो दीदी मैं एक मेरा जो एग्जाम बताता हूँ
2: जी,
4: जो मैं दीदी पहले किसान था तो हम कई मजदूरियों करते थे, तो उसमें कहीं हमें सफलता ही नहीं मिलती थी। जैसे हम जो 400-500 रुपये मिलते थे तो उसमें हमारा गुजारा जो पूरा चलता ही था, तो हमने कुछ न कुछ नया करने के लिए सोचा और कुछ पैसे ब्याज के ला के कुछ दो भैंसे खरीदी, और दो भैंसे जो भी आई तब हमने डेयरी में दूध भरना चालू कर दिया
2: जी।
4: डेयरी में दूध भरना चालू कर गया तो हमारी एक आमदनी आने लगी हर साल 5,000-6,000 रुपया महीने का, जो 10,000 तक पगार आया करते थे
2: जी।
4: तो हमने कुछ नया करने के लिए प्लान बनाया और सोचा, तभी हम आगे बढ़ पाए और उसमें हम सफल भी हुए
2: जी।
4: तो
2: हर
4: इंसान इस तरह का कार्यक्रम अच्छा अच्छा नया करने का कुछ जज्बा रखे, कुछ अपने जो माइंड से काम ले, तो वो बिल्कुल एक खुशनुमा जीवन जी पाएंगे और दूसरों को भी प्रेरणा रूप भी बनेंगे। बस नमस्कार दीदी
2: जी,
4: सभी
2: बहुत
4: को
2: सुंदर,
4: आपको भी
2: बहुत सुंदर, आभार आपका दयाराम जी। तो ये दयाराम जी लाखनी से थे और इनका कहना था कि पहले ये किसान थे, लेकिन किसान के साथ साथ जैसे 400-500 रुपए कमा लेते थे, लेकिन गाय भैंस ला करके दूध बेचना शुरू किया तो और भी ज्यादा पैसा मिलने लगा। तो बिल्कुल हर कोई चाहता है कि कुछ और भी नया करे, एक रस जीवन में टिक नहीं सकता है, क्योंकि एक रस से हम बोर हो जाते हैं, अलग अलग रस को सभी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपको भोजन में कहा ना कि एक तरह का भोजन 4 दिन के बाद 5वें दिन तो बंदा परेशान ही हो जाएगा और कुछ न कुछ जरूर डिमांड करेगा कि भाई कुछ अलग बनाओ। तो हर कोई जीवन में नवीनता चाहता है और नवीनता के द्वारा ही ये खुशियां बरकरार रहती हैं। हम और भी आपसे रूबरू होंगे, मिलेंगे, परंतु समय हो चला है एक अल्प विराम लेने का। तो अल्प विराम लेकर के पुनः लौट रहे हैं, बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

कल केसरिया आज बजरिया गाता है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हम खुशनुमा जीवन की बातें कर रहे हैं कि कैसे जीवन में नवीनता लाना जरूरी है, जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो बहुत ही हमारे श्रोता बंधुओं ने भी अच्छी बातें बताई है। हम तो चाहते हैं कि आपके द्वारा और भी सुने कि कैसे हम जीवन में नवीनता लाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को क्रिएटिव बनाएंगे। देखिए, जैसे कि आप आशियाना सुनते हैं, ठीक है, अब मैं रोज एक एक भजन सुनाऊंगी या एक ही गीत या एक ही कविता रोज सुनाऊंगी तो आप बोर हो जाएंगे ना। आप क्या कहेंगे, अरे ये उषा दीदी तो पता नहीं दूसरा कुछ सुनाती नहीं है, एक ही भजन, एक ही कविता या एक ही गीत सुनाती है। दूसरे दिन आप सुनना बंद कर देंगे। हर कोई नयापन चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है, तो कौन लाएगा, हमें ही लाना पड़ेगा ना। देखिए, हमारे वैज्ञानिक है, अगर वो आविष्कार ही नहीं करते तो क्या हम साइंस के इतने चीजों का आनंद ले पाते, नहीं ले पाते ना। हम बस में ही चलते, फ्लाइट आती नहीं तो फ्लाइट में कभी जाते ही नहीं, ट्रेन नहीं आती, या फिर मान लीजिए बस नहीं आती, या भले मान लीजिए टू व्हीलर नहीं आता, लेकिन नवीनता आई है ना। समय के साथ बदलाव आया है, और बदलाव आया है तो क्रिएटिविटी बढ़ी है ना, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहिए। छोटे बच्चे को आप देखोगे खिलौने खेलते हैं, लेकिन वो भी अजीब तरीके से खेलेंगे, कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ ना कुछ बनाएंगे। जैसे हम उनको खिलौने देंगे, जो भी करेंगे तो उनको गोल गोल गोल गोल सजाएंगे या टेढ़े मेढ़े सजाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ वो करते रहेंगे। उनको देख करके हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वाह देखो बच्चे ने क्या, मतलब किस तरीके से ये सजा रहे हैं। भले उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके इन छोटी सी हरकत को देख करके हमें तो आनंद आता है ना कि बच्चे भी कुछ करना सीख रहे हैं। जैसे बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, भाई वन लिखो, एक लिखो, गुजराती में तो एकड़ एक कहते हैं, लेकिन हम जब वन लिखाना सिखाते, एक लिखाना सिखाते हैं, बच्चे को बार बार घुटाते हैं और बार बार वो घोटता है उसी को एक, जब तक वो परफेक्ट नहीं होता आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जैसे ही उसको एक लिखना आ गया, फिर वो कुछ और सीखने की कोशिश करेगा कि एक तो लिख लिया ना, कितनी बार सिखाओगे, अब आगे बताओ। फिर हम उसको दो सिखाएंगे, फिर तीन सिखाएंगे, तो बच्चों के लिए तो वही नवीनता है ना। ऐसे हर एक के जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, नहीं तो जीवन से हम बोर हो जाएंगे, और जीवन से बोर नहीं होना है। जहां हम जीवन से बोर हुए, समझ लीजिए जीवन हमारा खत्म, निराशा में डूब जाएगा। और निराशा वाला जीवन भला कोई जीवन है? आप अक्सर देखते होंगे रास्ते में कोई मिलता है तो एक तो खिलखिलाहट के साथ मिलता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख करके ही आप में भी तरोताजगी आ जाती है कि चलो इस बंदे से बात ही कर लेते हैं, भले पहचान नहीं है फिर भी बोलेंगे राम राम जी, राम राम, नमस्कार, कुछ तो बोलेंगे ना, जय श्री कृष्ण, कुछ भी बोलेंगे, भले पहचान नहीं है लेकिन बोलेंगे। और एक आप देखेंगे कि अरे सामने वाले का चेहरा तो जैसे कि ऐसा लटका हुआ है कि 10 मन का वजन उसके सिर पर रख रखा है, तो पहचान वाला होगा फिर भी आप किनारा कर लेंगे, अरे भाई इसका मूड नहीं अच्छा लग रहा है, चलो अपन साइड से निकल जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो जब एक उदास चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, तो सोचिए कि जीवन में एक ही चीज, एक ही चीज, एक ही चीज कौन पसंद करेगा, कोई ना कोई नवीनता आती रहती है और आनी ही चाहिए। जैसे कि मैं आपको भोजन की बात बता रही थी कि हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई लोग भी ट्राई करते रहते हैं, बहुत जने तो यूट्यूब में से भी चीजें सीखने की कोशिश करते हैं कि भाई परिवार वालों को रोज एक सा भोजन क्यों फिर से, चलो आज यूट्यूब में से ये चीज सीख लूँ, वो चीज सीख लूँ, ऐसे कुछ भी सीखेंगे और फिर बनाएंगे, खिलाएंगे, तो ये सारी नवीनता है। तो जीवन में नवीनता बहुत जरूरी है, कुछ न कुछ करते रहिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु। वो कहते ना, एक ही आप लाइन में चलेंगे तो थक जाएंगे जीवन से, बोर हो जाएंगे, इसलिए कुछ न कुछ नवीनता जरूरी है। और हाँ, जैसे कोई हमको कह दे कि आपको तो अब घर में ही रहना है, एक सप्ताह के लिए घर से बाहर नहीं निकलना है, कोई एक सप्ताह तक घर में नहीं रह पाएगा, घर में सब कुछ है, खाना पीना उठना बैठना पंखा लाइट हवा सब कुछ है, पानी वगैरह, फिर भी हम एक सप्ताह घर में टिक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगेगा, अरे हम क्या घर में ही बंधे रहेंगे क्या, क्यों, हमें भी जीने का अधिकार है, इस तरह की बगावत भरी वाणी बोलने लगेंगे कि हम तो बाहर जाएंगे, कौन रोक सकता है हमें। हर कोई चेंज चाहता है, अब बाहर क्या है, बाहर जाएंगे तो भी आना तो हमको घर में ही है, मिलेगा तो सब कुछ घर में से ही, फिर भी इंसान बाहर जाता है, क्यों जाता है, कि भाई चार जनों से मिलेंगे, चार जनों से बात करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ सीखेंगे, इसलिए हम घर से बाहर जाते हैं, है ना। तो कहने का भाव यही है कि जीवन में नवीनता बनी रहनी चाहिए, उसके लिए
ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई नवीनता लाने के लिए हमें बड़े बड़े खर्चे करने पड़ रहे, हमें नहीं चाहिए नवीनता, ऐसा नहीं है। बिना खर्चे के भी आप नवीनता कर सकते हैं, जैसे कि भोजन के लिए आपको कहा है, जैसे कि कपड़ों के लिए कहा है कि भाई दो ड्रेस आप रोज पहनेंगे तो वो जल्दी फटेगी, चार ड्रेस पांच ड्रेस रखेंगे तो थोड़ी देर से फटेगी, और नवीनता आती रहेगी, आज ये पहन लिया दूसरा तीसरा दिन वो पहन लिया तो नवीनता आती रहेगी, बोर भी नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमें बड़े बड़े खर्चों के द्वारा ही जीवन में नवीनता लानी है। आप चाहो तो आप किसी भी तरह नवीनता ला सकते हो। जैसे आप घर से बाहर निकले हो, कोई बुजुर्ग है उनकी मदद कर लीजिए। जैसे बहुत सारे हम गांवों में देखते हैं पानी की व्यवस्था नहीं होती, बुजुर्ग भी जा कर के दूर दूर से पानी लेके आते हैं, तो उनको कहिएगा कि आप रुक जाइए, हम आपके लिए ले आते हैं। ये भी एक नवीनता आ गई ना कि चलो कुछ तो किया आपने किसी के लिए, खुशियां मिली आपको अंदर से ही, वो भी दुआ देंगे और अंदर से भी खुशी होगी। कोई बच्चा है उसके माता पिता नहीं पढ़ा रहे हैं, गरीब का बच्चा है, तो आप उसको थोड़ी सी मदद कर लीजिए, पढ़ा दीजिए। ये भी एक नवीनता आ गई कि चलो कुछ तो किया है और हमारी पढ़ाई भी वो बनी रहती है, नहीं तो फिर एक समय आता है हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो अपने जो भी शौक है मौज है उनको जिंदा रखिए और किसी न किसी तरीके से उसको आप आजमाते रहिए बीच बीच में, ठीक है। और कुछ नया सीखते रहिए, नया सीखेंगे तो जीवन में स्फूर्ति रहेगी और जीवन में खुशियाँ बनी रहेगी कि मैंने कुछ सीखा है। जैसे कि हमारे श्रोता बंधु ने बताया ना कि कैसे वो कपड़ों में भी नई नई डिज़ाइन डालते हैं, फिर खुशी तो मिलती है ना, अरे वाह मैंने तो सोचा ही नहीं कि ये डिज़ाइन मैं बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, मैंने बना दी तो खुशी हुई ना। स्वयं से वो ये कहते हैं नवीनता ला करके स्वयं को ही खुश रखना है। दूसरों के साथ तो खुशी से रहना ही है, दूसरों को खुशियाँ देनी ही है, लेकिन सबसे पहले खुशी किसको मिलती है, स्वयं को मिलती है ना, कि मैं कुछ नया कर रही हूँ तो मुझे खुशी मिलेगी। जैसे मैं आपके समक्ष कभी दो पंक्तियाँ बना बना करके रखती रहती हूँ तो अब आपको कितनी खुशी मिलती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे खुशी मिलती है कि मैंने कुछ बनाया और आपके समक्ष पिरसा, है ना। तो नवीनता लाते रहिए, यही खुशनुमा जीवन का राज है कि नवीनता से ही हमारा जीवन और भी सुचारू रूप से चलता है और एनर्जी बनी रहती है। आइए अब फिर से सुनेंगे गीत, उसके बाद पुनः लौट करके आ रहे हैं, कहीं भी जाइएगा नहीं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुवन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

0: स्वास्थ्य का हो या सफाई का, जवाबों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन।
1: प्यारे श्रोता बंधु, समय अब समाप्त होने को आया है। आज के कार्यक्रम आपने सुने हैं, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था। विचार आप सभी ने सुना है कि मीठे वचन हमेशा बोलिए, इससे आपको सम्मान भी प्राप्त होगा, प्यार स्नेह सभी का मिलेगा। और रेसिपी में आज आपको क्रिएटिव तरीके से कैसे एप्पल काटा जाता है, अमरुद काटा जाता है, कैसे पापड़ आप समोसे की तरह डिजाइन बना कर रखेंगे या मसाला पापड़ बनाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ऐसे नहीं कि खाली हमने सिखाई वही है, बहुत सारी चीज़ों को आप क्रिएटिव तरीके से बना सकते हैं, सजा सकते हैं। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई। तो आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर था कि 5 जून को हम सभी कौन सा दिवस मनाएंगे और पृथ्वी दिवस कब है। हमारे श्रोता बंधुओं ने सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे पहले फोन कॉल्स आया था माउंट आबू ढूंढई गाँव से मुरलीधर जी का। उन्होंने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है और पृथ्वी दिवस कल है 22 अप्रैल को। सुरेश भाई चोटाना से, महेश भाई शर्मा आबू रोड से, इन्होंने गलत जवाब दिया है। इन्होंने कहा 5 जून को मदर्स डे मनाएंगे, वो गलत है। फिरोज भाई पालनपुर से, आपका भी जवाब सही है। दयाराम जी लाखनी से, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है, इसके लिए ढेर सारी तालियां। और बाकी सभी ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है, इसके लिए भी सभी के लिए ढेर सारी तालियां। आज का मीठा मोती इस प्रकार है, दूसरों को बदलने का प्रयत्न करने के बजाय स्वयं को बदल लेना कहीं अधिक अच्छा है। अब मैं आपको नवीनता पर एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी, आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणिक खम्मा सा, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन। कल एक झलक जिंदगी को देखा, कल एक झलक जिंदगी को देखा, वो राहों पे मेरी गुनगुना रही थी, फिर ढूंढा उसे इधर उधर, वो आंख मिचोली कर मुस्कुरा रही थी। एक अरसे के बाद आया मुझे करार, वो सहला के मुझे सुला रही थी। हम दोनों क्यों खफा है एक दूसरे से, मैं उसे और वो मुझे समझा रही थी। मैंने पूछ लिया उसे क्यों इतना दर्द दिया कमबख्त तूने, वो हंसी और बोली, मैं जिंदगी हूँ पगली, तुझे जीना सिखा रही थी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। दो पल की जिंदगी है, आज बचपन कल जवानी, परसों बुढ़ापा फिर खत्म कहानी। चलो हम सभी हंस कर जिए, फिर ना आने वाली ये रात सुहानी, फिर ना आने वाला ये दिन सुहाना। कल जो बीत गया सो बीत गया, क्यों करते हो आने वाले कल की चिंता। आज और अभी जियो दूसरा पल हो या ना हो। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले। आओ जिंदगी को गाते चले, कुछ बातें मन की करते चले, रूठों को मनाते चले। आओ जीवन की कहानी प्यार से लिखते चले, कुछ बोल मीठे बोलते चले, कुछ रिश्ते नए बनाते चले। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, आओ कुछ लुटाते चले, आओ सबके साथ चलते चले, जिंदगी का सफर यूं ही काटते चले, जिंदगी का।

0: ये ले बहू, इसे पी जा।
1: ये क्या है माँ जी?
0: ये काढ़ा है, इसे पीते ही तेरा गर्भपात हो जाएगा।
1: नहीं माँ जी, अब बस, मैं और गर्भपात नहीं होने दूंगी। इससे पहले भी आपने मेरी बच्ची की जान ली है, इस बार मैं आपको यह पाप नहीं करने दूंगी और ना ही इस पाप को मैं स्वयं करूंगी।
0: जुबान चलाती है, एक तो पोता दे न सकी, ऊपर से जुबान चलाती है। पोते के आस में बैठी हूँ, न जाने कब मेरी आँख बंद हो जाए।
2: क्या हुआ माँ, क्यों गुस्सा कर रही है, क्या बात है?
0: ये महारानी काढ़ा पीने से इनकार कर रही है।
1: मैं ये काढ़ा पीकर अपनी बच्ची की अब और हत्या नहीं कर सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को नहीं मरने दूंगी। लड़का लड़का सुन सुन कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे बस मेरी बच्ची चाहिए, वो भी जीवित।
2: माँ ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी बहू। बस अब बंद करो ये जानलेवा खेल। मुझे भी बच्ची ही चाहिए। मुझे लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। आज के दौर में तो लड़कियां लड़कों से भी ज्यादा सफलता पा रही हैं। बस अब बंद करो ये खेल, सब बराबर ही तो हैं आज।
1: भ्रूण हत्या करना मतलब आप स्वयं अपनी बेटी की हत्या का अपराध कर रहे हैं। क्या आप जल्लाद हैं? आप जल्लाद हैं? नहीं ना।
3: नटखट बंटी। बंटी पहली बार दिल्ली गया। स्टेशन की भीड़ भाड़ देखकर वह दंग था।
4: मम्मी देखिए यहाँ कितनी भीड़ है। मम्मी मुझे बहुत भूख लग रही है।
5: बंटी हम यहाँ सामान खरीद लें, फिर तुम्हें कचौड़ी दिला दूंगी।
3: बंटी के पास पैसे थे, इसलिए वह झट कचौड़ी खरीदने चल दिया।
4: भैया जल्दी से तो गरम गरम कचौड़ी दे दीजिए।
3: तब कचौड़ी की दुकान पर बैठे आदमी ने बंटी से कहा,
6: ये लो मुन्ना गर्मा गर्म कचौड़ी।
3: जैसे ही बंटी कचौड़ी खरीद कर

0: वापस आया।
1: अरे मम्मी पापा तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ चले गए?
0: उसने इधर उधर देखा। जब उसे कहीं मम्मी पापा दिखाई नहीं दिए तो वह घबराकर रोने लगा। उसे रोता देख वहाँ भीड़ जमा हो गई। तभी एक आदमी बंटी के पास आया और बोला,
2: बेटे तुम्हें कहाँ जाना है?
1: मुझे अपने मामा के घर गोविंदपुरी जाना है।
2: अच्छा तो तुम्हें गोविंदपुरी जाना है, मैं भी तो वही रहता हूँ, चलो मैं तुम्हारे मामा के घर छोड़ देता हूँ।
0: बंटी खुश होकर आदमी के संग चल दिया।
1: वाह दिल्ली बहुत सुंदर है, यहाँ घूमने में बड़ा मजा आ रहा है।
0: तभी आदमी ने बंटी को अपनी तरफ खींचा और उसे चाकू दिखाते हुए बोला,
2: अंदर मुंह करके बैठ और शोर मचाने की कोशिश मत करना।
0: बंटी यह देखकर घबरा गया।
1: हे भगवान अब क्या करूं? मैं क्यों इस आदमी के साथ आ गया? पापा ने कहा था कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए बल्कि हिम्मत और बुद्धि से उसका सामना करना चाहिए।
0: अचानक चौराहे की लाल बत्ती पर गाड़ी रुकी। बंटी दरवाजा खोलकर भाग गया, उसके पीछे पीछे आदमी भी भागा।
1: यही सही मौका है भागने का।
2: अरे भागता कहाँ है, रुक।
0: बंटी जल्दी से ट्रैफिक पुलिस के पास पहुँच गया।
1: अंकल जी गुंडा मेरे पीछे पड़ा है, वह मेरा अपहरण करके मुझे ले जा रहा था।
0: ट्रैफिक पुलिस ने आदमी को पकड़ लिया और वहां लगी भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। पुलिस बंटी को उसके मामा के घर ले आई। वहां रो रो कर सभी का बुरा हाल था।
3: बंटी मेरा लल्ला तो कहां चला गया था?
0: पुलिस ने उन्हें बंटी की बहादुरी वाली बात बताई और मुसीबत में समझदारी से काम करने के लिए उसे शाबाशी दी और सबक भी कि बच्चों को किसी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत। जागृति इस कार्यक्रम में महिलाओं को जागरूक करने का एक कार्यक्रम, जहां पर हम अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को लेके आते हैं और उनसे महिलाओं के संबंधित जानकारियां हम लेते हैं और कुछ नई बातें भी सीखते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम सभी को जानकारियां देने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इस विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे और हमें जानकारियां देंगे। हमारे साथ है वीरेंद्र जी। आप पिछले 10 सालों से एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हमारे साथ एक और एक्सपर्ट है आज, हर्षिता सेतिया जी। आप एक साइकोलॉजिस्ट है, यानी मनोरोग विशेषज्ञ हैं। आप दोनों हरियाणा से हैं और हैदराबादी जनरल हॉस्पिटल में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो चलिए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं, खास करके जब महिलाओं की बातचीत हम कर रहे हैं तो उनके लिए मानसिक स्वास्थ्य क्या है और उनके मानसिक स्वास्थ्य क्यों अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जब कुछ ऐसी बातें होती हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इनकी मानसिक असंतुलन हो रही है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे दोनों आज के इस विशेषज्ञों को, हर्षिता जी और वीरेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम जागृति में और रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: जी। तो हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो अभी तो हम काउंसलर एक शब्द से बहुत परिचित हैं, लेकिन जैसे आप दोनों की थोड़े डिफरेंसेस है प्रोफेशन में, लेकिन डील करते हैं वही मानसिक रोग के लिए। तो काउंसलिंग तो वही है, लेकिन जैसे हर्षिता जी आप कहते हैं कि आप मनोरोग विशेषज्ञ हैं और वीरेंद्र जी मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, तो ये डिफरेंस क्या है?
3: बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या फिर जिसको हम साइकैट्रिस्ट भी कहते हैं, उनकी एक प्रॉपर डॉक्टर हैं वो, जिन्होंने पहले MBBS किया है, उसके बाद वो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में गए हैं जो कि साइकैट्री है। तो वो एक आपको प्रॉपर डॉक्टर हैं जिनसे आप जाकर अपने मानसिक रोग के बारे में बातचीत कर सकते हैं। और दूसरा, जब हम मनोरोग विशेषज्ञ के बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए आप BA या BSc, MSc या MA करके फिर आप PhD करते हैं या MPhil करते हैं। आप दवाइयाँ नहीं लिख सकते, लेकिन जो साइकैट्रिस्ट हैं, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं, वो बेसिकली आपको दवाइयों से, उनके द्वारा आपको ठीक किया जाता है। लेकिन मनोरोग विशेषज्ञ का जो बेसिक काम है, जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो आपको थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है।
1: बहुत सुंदर। मतलब जब हमारी मानसिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो उस समय जब उस तीव्रता को कंट्रोल करना है, जहां पर मेडिसिंस की भी आवश्यकता होती है, तो फिर वो साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं उनको। और जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, एक लंबे अरसे की लाइफस्टाइल के कारण कुछ आदतें ऐसी हो जाती जिससे खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं और दूसरे भी उनसे डिस्टर्ब होते हैं, तो फिर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो इमोशंस को डील करने के जो तरीके हैं, वो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं। बहुत सुंदर। तो हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी स्पेशलिटीज और आपकी एक्सपर्टीज को तो हम समझे हैं, तो हम आगे बढ़ते हुए ये जानना चाहते हैं, अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मेंटल हेल्थ या फिर मानसिक स्वास्थ्य किसे कहते हैं, और अगर हम महिलाओं के पर्सपेक्टिव्स में देखें तो वो क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसे हम समझें कि हाँ, ये चीज़ें अगर संतुलन में हैं तो हाँ, हम मेंटली फिट हैं।
3: आपने जो अभी क्वेश्चन पूछा है कि महिलाओं के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारी श्रृंखला है वो महिलाओं के बारे में है। हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आज अपने आप से जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या क्या मुझ में या मेरे आसपास जो लोग हैं और महिलाएं हैं उनमें ऐसा हम क्या देखें जो हमें पता लगे कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें हैं कि मुझे दिखाने की ज़रूरत है या फिर मुझे ये देखने की ज़रूरत है कि मेरे आसपास भी कोई इन चीज़ों से तो नहीं जूझ रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारा मन बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है, हम खुशी लोग खुश हैं, मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे खुशी नहीं फील होती है, तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको यहाँ पे कि आपका पॉइंट है, एक इंडिकेटर है, एक रेड फ्लैग है कि आपको रुक के अपने आप को देख लेना चाहिए कि अब 15 दिन या 20 दिन से ऊपर हो गया है तो आपको कहीं ना कहीं अब एक रेड फ्लैग आ गया है कि आपको चेक करने की ज़रूरत है। और जो हम अगर दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं कि क्या करना है जी के, कुछ भी तो नहीं अच्छा लग रहा, किसके लिए जीना है मुझे, मेरे साथ तो ऐसा ही होता रहता है, मेरा तो परिवार ही ऐसा है, सारा दिन तो मैं बच्चों की करती रहती हूँ, फिर भी मेरे को इन रिटर्न तो कुछ नहीं मिलता ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे अंदर अगर ये थॉट्स आ रहे हैं जो कि एक पैटर्न बन के लीड कर रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स पे अगर मैं पहुंच गई हूँ तो आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि अब ये आपके लिए इंडिकेटर है, आपको जान जाना चाहिए कि अब मुझे कहीं ना कहीं सहायता की, मदद की ज़रूरत है। तीसरा, आपकी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, आपको अकेलापन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखाना चाहिए। दूसरा, नींद बहुत कम आने लग गई, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है, आपको बिना दवाई के नींद नहीं आती है, अगेन एक इंडिकेटर है कि आपको दिखा लेना चाहिए। ये 3 से 4 इंडिकेटर मेजर हैं कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ या मेरे आसपास ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको इस समय साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को ज़रूर चले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए।
1: ये पैरामीटर्स हैं जहाँ पे हम बीमार हैं, लेकिन एक स्वस्थ मन या एक अच्छा हेल्दी माइंडसेट हम किसे कहते हैं, क्योंकि आज की डेट में तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। महिलाओं को अगर देखते हैं तो कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे वो डांट नहीं खाती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा कि वो परेशान नहीं है, तो फिर ऐसे में फिटनेस क्या है?
2: देखिए, स्वास्थ्य की जो WHO की डेफिनेशन है उसके अंदर में 2 भाग आते हैं कि आप अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, तभी आप उसको हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO की है उसमें ये बोलते हैं इट्स ए कंप्लीट वेलबींग बहुत फिजिकली एंड मेंटली। इसका अर्थ ये है कि आप अपने मानसिक तौर पर भी अपना 100% अपना 100% दे पा रहे हैं। स्ट्रेस सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ये चीज़ दिखाता है कि आप उस स्ट्रेस को कितना अच्छा हैंडल कर पा रहे हैं, कितना अच्छा कोप कर पा रहे हैं। कोई चीज़ ख़राब हुई, आपको किसी ने डांटा, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, आप उससे कितना जल्दी निकल पा रहे हैं वो आपका मानसिक स्वास्थ्य को दिखाता है। जैसे अगर आप इन्फेक्शन फैल रहा है, बाहर बुखार हो रहा है पर फिर भी आपको बुखार नहीं हुआ तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ चल रहे हैं, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य भी वैसा ही है कि जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही आपके आसपास में, आपका पूरा दिन खराब निकल रहा है, फिर भी आपका दिमाग उससे कोप अप कर पा रहा है, उन चीज़ों से आपको निकाल पा रहा है और आपको इतना एनर्जेटिक रख पा रहा है कि आप अपने काम पर ध्यान रख पा रहे हैं और जो आप काम कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पा रहे हैं मानसिक तौर पर, तो वो मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। और जब भी आपको लग रहा है कि आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं किसी काम के अंदर में, इसका मतलब कि चीज़ें ठीक नहीं रह रही हैं, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है।
1: जी, तो वीरेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि कोई डगमग हो रहा है तो फिर हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है और स्ट्रेस को हैंडल करना आना चाहिए। आमतौर पे ये बताते हैं कि थोड़ी सी तो बात है, अभी घर में बड़े हैं तो थोड़ा सा तो बोलेंगे, अभी इतना भी आप सुन नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, तो फिर एक द्वंद्व चलता है इंसान के माइंड में, मैंने गलत किया मुझे बोला तो फिर भी समझ सकते हैं, जहाँ पे मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों सुनूं। और एक ज़माना था जहाँ पे महिलाएं सुनते सुनते सुनते आदी हो चुकी थी, फिर उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता था कि मुझे उल्टा जवाब देना है या मुझे घर छोड़ना है या उन चीज़ों से परेशान होना है ऐसा। लेकिन अभी की जनरेशन में हम ये देखते हैं कि एक रेबेलियसनेस है, जिससे कभी कभी अगर वो उसको रिस्पॉन्स करती है या फिर उसको समाधान या जवाब देती हैं तो फिर उनको अलग रीति से लोग ट्रीट करते हैं, तो फिर वो जो छोटी सी बात जहाँ पे वो रोकने के लिए कोशिश करती है, वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी या फिर अपने डिग्निटी को बचाने की कोशिश करती है, तो फिर वो बात बढ़ जाती है। तो फिर ऐसे में वो कैसे हैंडल करे कि उसके साथ जो गलत हो रहा है, भले वो लगता है कि बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो छोटी सी चीज़ एक शुरुआत होती है। अभी वो एक छोटी सी चीज़ को अलाउ करती है लोग उनको बोलने में, या फिर पहली वो थप्पड़ है या पहली वो डांट है या एलिगेशन है या कोई भी चीज़, जिससे जो शुरुआत होती है इन चीज़ों की परंपरा की, तो वो कैसे रोके उस चीज़ को?
2: देखिए, सबसे पहले तो जैसे जैसे ज़माना बदला है, समय बदला है, औरतें इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, काम करने लगी हैं, बाहर निकलने लगी हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने लगी हैं, तो उसके बाद में समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। हमारा समाज जो है बहुत वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, और जो गलत नहीं है बहुत हद तक ठीक भी है। हर चीज़ के अपने फ़ायदे और अपने नुकसान हैं, तो औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो इंडिपेंडेंट हो रही हैं तब वो ये एहसास कर पा रही हैं कि हमारे साथ जो कुछ गलत हो रहा है उस चीज़ को समझ पा रही हैं। इससे पहले की जो सोसाइटी थी उस समय अगर गलत हो रहा था औरतों के साथ में, तो उनके पास में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो इस चीज़ों से निकल पाएं या इस चीज़ से लड़ पाएं। जैसे कि आपने बोला कि जब पहला थप्पड़ पड़ रहा है, तो अगर औरत इंडिपेंडेंट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है या वर्किंग है या थोड़ा हिम्मत वाली है, तो उस थप्पड़ का मुकाबला कर सकती है, उसका जवाब दे सकती है या उस थप्पड़ को उठते समय रोक सकती है, बाउंड्री सेट कर सकती है कि ऐसा आप नहीं कर सकते। पर जो आज से पुराने का जमाना था जिस समय औरतों के पास ये इंडिपेंडेंस नहीं थी, तो सिखाया भी ऐसा जाता था, माँ बेटी को आगे यही सिखा के भेज रही है कि जो भी होगा तुझे यहीं पे रहना है, घर से निकल गई तो डोली जा रही है, वहाँ से बर्थी ही निकलेगी, तेरा और कोई देखने वाला नहीं है, तू अलग नहीं हो सकती, तो हंसकर रोककर मार खाकर जैसा भी रहना है तुझे वहीं पर रहना है। अब ये मेंटेलिटी चेंज हो रही है, इसमें इंटरनेट का बहुत योगदान है, लोग पढ़ाई का बहुत योगदान है, लड़कियाँ पढ़ रही हैं अब, मैं समझता हूँ पढ़ाई का सबसे अधिक योगदान है। पढ़ने से ही, एजुकेशन के साथ में ही आदमी का दिमाग खुलता है, उनको एहसास होता है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं और कहाँ उनके अधिकार खाए जा रहे हैं। और देखिए, अधिकार जहाँ तक खाने की बात है, या अधिकारों में जब भी चोट लग रही है तो आपको पहली चोट के साथ ही जवाब देना होता है। आप अगर ट्रैफिक का कोई नियम कोई तोड़ रहा है तो आप हमेशा पहली बार तोड़ते हो, तभी आपको अगर पुलिस ने देख लिया आपको उसी समय फाइन करते हैं। ये नहीं कहते कि आपको पहली बार नियम तोड़ते हुए छोड़ दिया जाए। तो जब भी आपके अधिकारों को नुकसान पहुंच रहा है, जब भी वो पहला थप्पड़ या पहली गाली उठ रही है, आपको उसी समय जवाब देना चाहिए। तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक बल की बात यहां हो नहीं रही, झगड़ने की बात नहीं हो रही, हमें उनको रोकना है, तो उसके लिए मानसिक बल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है।
1: तो वो मानसिक स्वस्थता को कैसे कायम रखें? और जैसे हम बहुत सारी चीज़ें तो सीखते हैं फिजिकली फिट रहने के लिए, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल खाना है, रा खाना है, उससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती है इस तरीके से, लेकिन मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटली हम स्ट्रांग रहने के लिए, और जिस तरीके की आपने बात कही कि मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी उस चीज़ की ट्रेनिंग तो इंटेंशनली या कॉन्शियसली बचपन से तो किया नहीं जाता है। और जैसे आपने कहा कि अभी यहाँ से डोली उठी तो फिर उधर से अर्थी उतर दी, यही साइकोलॉजिकली फिट करके भेजते हैं महिलाओं को, तो वो कितनी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सक्षम है, कुछ भी है, लेकिन वो जो सोच है वो सोच उसको वहाँ पे रोक देती है। तो फिर यहाँ पे फिटनेस या स्ट्रेंथ क्या है जिससे वो अपने आप को मोल्ड करे या फिर उससे बाहर आ सकती है?
2: देखिए, सबसे पहले तो हमें जो एक लूप या साइकिल चल रहा है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी औरतों की ही है, उन्हें अपनी बेटियों को जो सदियों से उन्हें शिक्षा मिलती आ रही है उसको अब रोकना होगा। तभी बेटियां मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक बलवान हो पाएंगी, जब उन्हें समय रहे, जब उन्हें पता रहेगा कि उनके अधिकार क्या हैं और उनको कहाँ रोकना है, और जब उन्हें वो डर नहीं होगा कि अगर मैंने इन्हें रोका या कुछ किया उसके जो अंजाम होंगे उसमें मुझे ही भुगतना पड़ेगा, किसी और को कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हमारे समाज में डाइवोर्स या फिर तलाक जैसे जो शब्द हैं वो औरतों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक माने जाते हैं कंपेयर टू मर्द, और वो उसके पीछे कारण ये है कि पीछे से एक पीढ़ी के पीढ़ी इधर पीढ़ी सेम ही बात सिखाई जा रही है, तो उसको रोकने की जिम्मेवारी औरतों की होगी, क्योंकि बेटियां ये शिक्षा अपनी माँ से ही लेती हैं और कहीं से नहीं मिलती। कोई भाई बाप ये सिर्फ शिक्षा नहीं देता, माँ के साथ सबसे अधिक समय बिताती हैं, तो माँ को वो साइकिल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो एक बेटी के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में उसकी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने बोला कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त किया जाए, तो दो चीज़ें हैं इसमें, आप मानसिक रोगी हुए या नहीं हुए। तो जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन, कि आप मानसिक रोगों से अपने आप को कैसे बचा पाएं। तो उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें जैसे जो जो चीज़ें शारीरिक हिस्से में काम करती हैं, वैसे वैसे चीज़ें मानसिक रूप में भी काम करती हैं। इसमें योग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेडिटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सैर करती हैं, आप पॉजिटिव चीज़ों को देखती हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहती हैं, और सबसे बड़ी बात चीज़ों को वेंट आउट मतलब चीज़ों को बाहर निकालती हैं, तब आप मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाते हैं। चीज़ों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई भी कुंठा हो रही है, कोई भी बात हो रही है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगी, तब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रह सकती। तो आई थिंक वेंटिंग आउट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर में आपको अपना कोई ऐसा साथी, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या कोई ऐसा दोस्त ढूंढना पड़ता है, जहाँ में आपके अंदर जो भी द्वंद चल रहे हैं आप उसको बाहर निकाल पाएं।
1: जी, सो अगर हम पॉइंट आउट करें, हमको हमेशा हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे साथ सकारात्मक बातचीत करते रहे, और जो हम मीडिया में, यूट्यूब में या कहीं पे भी जो इंटरनेट पे चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम कॉन्शियसली फिल्टर्स लगाएं कि हम सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट को ही देखें। और तीसरा, पेरेंट्स का सबसे बड़ा जिम्मेवारी है कि वो लड़कियों को ये चीज़ें ना सिखाए, तुमको दब के रहना है, तुमको सहन करना है, लेकिन जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे हिम्मत से खुद के लिए खड़ा होना भी हमें सिखाना है, और उसके साथ साथ लड़कों को भी कुछ सिखाना है, वो भी तो माँ बाप की जिम्मेवारी
2: होती है। बिल्कुल, लड़कों भी को भी सिखाना है, लड़कों को उनकी बाउंड्रीज सिखानी है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो सामने वाले को भी बुरी लगती है। किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जेंडर देखकर नहीं आती, दोनों की होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों की होती है। तो हाथ उठाना, गाली गलौज करना, बल का प्रयोग करना, ये आप अपने बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी। मैंने वही आपको बोला कि लड़कियों की हमें शिक्षा रोकनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रोकनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें नहीं सीखनी है आपको जो पीछे चलता रहा था, और लड़कों को सिखाना है आपको ऐसे बनकर रहना है, सामने वाले को सम्मान देना है, जितनी आपकी सम्मान है उतना ही सामने वाले की भी इज्जत है। तो ये चीज़ें अपने लड़कों को तो सिखानी ही पड़ेंगी।
1: जी, तो जब घर में माँ बाप या बहन भाई, वो बचपन से जिन भी रिलेशंस के साथ वो रहते हैं, वो हर किसी को अगर रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली एक उम्र के बाद उनके जीवन में जब नए रिश्ते आते हैं, तो फिर उनको भी वो उसी तरीके से सम्मान करना वो सीख पाते।
2: बिल्कुल, जब आप स्त्री का सम्मान करना सीख जाएंगे तो फिर आप हर रिश्ते में करेंगे उसको। सिर्फ ये नहीं होगा कि सिर्फ माँ का सम्मान कर रहे हैं और बीवी का नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होगा, फिर आप हर जगह सम्मान कर पाएंगे।
1: जी, सो वीरेंद्र जी, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसको कैसे हम मेजर कर सकते हैं, और मेंटली फिट होने के लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आपने योग और मेडिटेशन दो चीज़ों का कॉन्वर्सेशन में जो जिक्र किया है, मेडिटेशन तो हमको समझ में आता है कि हमें ध्यान करना है, केंद्रित करना है, हर किसी का एक अलग तरीका होता है मेडिटेशन करने का, लेकिन ये योग और मेडिटेशन का जो डिफरेंस, और योग से हमारी मानसिक संतुलन में कैसे प्रभाव पड़ता है।
2: आई थिंक डॉक्टर हर्षिता इसमें ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगी।
3: जब हम बात करते हैं योग या मेडिटेशन की, दोनों में एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप जो कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, माइंडफुल होके कर रहे हैं। इसमें जो माइंडफुलनेस है वो बहुत बड़ा पावरफुल टूल है जो काम में आता है। मैं जो हूँ यही हूँ अभी हूँ, ना तो मैं कुछ पास्ट का देख रहा हूँ, ना तो मैं कुछ फ्यूचर के लिए सोच रहा हूँ। अगर अभी मुझे माइंडफुलनेस का अर्थ ही यही है, टू लिव इन प्रेजेंट, अभी यहीं पर, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा। जब हम बात करते हैं मेडिटेशन की, बहुत सारे स्कूल्स हैं इंडिया में जो मेडिटेशन सिखाते हैं, अपने अपने तरीके से सिखाते हैं। बेसिकली वो आपको काम डाउन ही करवा रहे हैं, और इससे ज़्यादा वो आपको कुछ नहीं कराना चाह रहे। जब हम कामनेस चाहते हैं, क्या वो कामनेस मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ? आंसर यस है। क्या वो कामनेस, वो शांति मैं अपने रिश्तों में चाहता हूँ? बिल्कुल, इसका आंसर यस है। वही शांति मुझे अपने घर में चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर हम कहते हैं कि मेडिटेशन आपको करना है, आपको एक जगह बैठ के मेडिटेशन करना इज नॉट अ मेडिटेशन। आप चलते फिरते घूमते फिरते आप प्रेजेंट में रहें, यहीं रहें, बिना मतलब आप पास्ट में ना जाएं। उसने मेरे साथ ये किया था, 3 साल पहले उसने मेरे को ये बात बोली थी, अब मेरे अंदर एक ग्रज बैठ गया उसके लिए। हम फॉरगेटफुल और फॉरगिवनेस अगर नहीं लाते हैं, वो चीजें फिर ऐसे ही कॉन्टिन्यू चलती रहती हैं। कहाँ से माइंडफुलनेस को हम एक्सपेक्ट करते हैं? मेरे लिए फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे बेटर चीजें हो जानी चाहिए। एक हद तक थिंक करना इज गुड, बट देन अगेन ओवर थिंकिंग आ जाना इज बैड। ओवर थिंकिंग होना, चाहे वो फ्यूचर की है या वो पास्ट की है, वो आपको कभी मेडिटेशन में लिंक नहीं करवा पाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हैं यही है, अभी हूँ और यही इंजॉय कर रहा हूँ। अब जब हम बात कर रहे हैं कि हम योगा जब अगर करते हैं तो मेरा इससे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट आता है? अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो ही हमारा मानसिक, जो मेरी मेंटल हेल्थ है, वो मैं अच्छा हूँ। मेरी हेल्थ तभी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर मैं बेड पे बैठा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, क्या वो खुशी बहुत देर तक चलेगी? अगर मैं 2 दिन लगातार बेड पे बैठूँ तो नहीं चलेगी। फिजिकली मैं एक्टिव नहीं हुआ, मैं उठ के नहीं चला। सेम जैसे खाने के लिए, शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं। बाहर जाओ, योगा करो, जिम करो, वॉकिंग करो, सैर करो, इट इज़ इंटर रिलेटेड। ये चीज़ें करेंगे तो हमारे जो केमिकल लेवल्स हैं अंदर, जो बनते हैं खुश रहने के हॉर्मोन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल योगा है, आप ज़रूरी नहीं आपको योगा ही करना, आप सैर पर जाएं, आप जॉगिंग पे चले जाएं, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप जिम के लिए जाएं, बट थोड़ा टाइम आपको अपने लिए बाहर निकालना ज़रूरी है। उस रूम से बाहर निकलें, उस स्पेस से बाहर निकलें, बाहर जाएं, गार्डन में जाएं, ग्रीनरी देखें, लोगों से बात करें। ये डायरेक्टली आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है।
1: मतलब कुल मिलाकर के हमारी लाइफस्टाइल में एक ऐसी आदत हो जिसमें हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बैलेंस लेकर के चले, और हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खाने पीने पे अटेंशन हो, और हमारी जो फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, जैसे आपने कहा कि वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, या प्राणायाम, योगा, जो भी कर सकते हैं, जिससे एक रिफ्रेशमेंट होती है, एक रिजुविनेशन होता है, और जब प्रकृति के साथ वक्त बिताते हैं तो बहुत सारी चीज़ें वेंट आउट हो जाते हैं। कुछ चीज़ें बोल के वेंट आउट होते हैं, कुछ चीज़ें बिना बोल के भी वेंट आउट हो जाते हैं। और मेंटली हम एड ऑन करने के लिए मेडिटेशन करें, जिसमें हम अपने विचारों को देखें और सकारात्मकता की ओर हम अपनी विचारों को डाइवर्ट करें या डायरेक्शन दें। सो थैंक यू सो मच आज की इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन के लिए। बहुत ही इंसाइटफुल और बहुत ही सीख वाली बातचीत आप दोनों ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और उम्मीद करते हैं कि हमको आपसे और भी बहुत सारी विषयों के ऊपर, महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के लिए, आज के इस कार्यक्रम का समय की सीमा को देखते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
1: दोस्तों, ये था आज का जागृत कार्यक्रम, जहाँ पर हमने मानसिक स्वास्थ्य, खास करके महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हर्षिता जी और वीरेंद्र जी, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप दोनों से हमने चर्चा की है। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: सोशल मीडिया पर संवेदनशील जानकारी शेयर करने से बचें। अगर आप साइबर बुलिंग का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनशील जानकारी साझा करने से आपकी पहचान की चोरी और धोखाधड़ी हो सकती है। इन जोखिमों से बचने के लिए अपना पासवर्ड कठिन बनाएं और किसी के साथ साझा न करें।
1: अभी बजे हैं रात के 12। एक मिनट का हो आत्मचिंतन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 28 मई की बातें हो रही हैं और आज उत्तराषाढ़ा है और मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ आइए। डीवी पुलस्कर, वीर सावरकर, गोपाल रामानंजू महंत, अवैधनाथ, एनटी रामाराव, प्रतिभा भौमिक, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही गोपाल प्रसाद व्यास, महबूब खान, विजय सिंह पथिक, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक सुंदर विचार के साथ, आपको जोड़ना चाहूँगा और विचार के बाद फिर हम लोग कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। हाँ, वीर सावरकर जी का जन्मदिन है आज, गोपाल रामानुजम इनका भी जन्मदिन है। ऐसे विशेष व्यक्तियों के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। एक विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए, शाम के 4 बजकर हो गए हैं कुछ मिनट और 5 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा। कहते हैं, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो चलिए, ऐसी शुभ आशा के साथ, ढेर सारी खुशियों के साथ आप सभी को ले चलते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत आपके नाम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन, नमस्कार। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आज के इस दिन में विशेष, जैसे कि 28 मई के बाद हम लोग करें तो डीवी पुलस्कर की बात आती है। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, एक ऐसे विलक्षण भालक के तौर पर जाना जाता है जिनके गाने की अपनी एक अलग पहचान थी। तो वही इनके बारे में बात करें तो पंडित डीवी पुलस्कर का जन्म आज ही के दिन 1921 को नासिक महाराष्ट्र में एक विख्यात हिंदुस्तानी संगीतकार विष्णु दिगंबर पुलस्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ। जब इनके पिता का देहांत हुआ वे केवल 10 वर्ष के थे और पश्चात उन्हें पंडित विनायक राव पटवर्धन और पंडित नारायण राव व्यास ने ट्रेनिंग दिया। उन्हें पंडित चिंता मन राव और पंडित मीराशी बुआ ने भी ट्रेनिंग दिया। डीवी पुलस्कर ने अपना पहला कार्यक्रम 14 वर्ष की आयु में पंजाब में हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन में दिया। उत्तर अधिकारी में उन्हें ग्वालियर घराना और गंधर्व महाविद्यालय मिला, परंतु वे अन्य घरानों और शैलियों की सुंदर विशेषताओं को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और डीवी पुलस्कर की आवाज़ बहुत मधुर और सुरीली थी। उनके आलाप उनके गाय राग का स्पष्ट रेखांकन करते थे। इसके बाद उनकी सहज शैली की तानों से सुसज्जित बंदिशें आती थी और उन्हें थोड़ी ही अवधि में राग का संपूर्ण आकर्षण चित्र प्रस्तुत करने में महारत हासिल थी। शुद्ध शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त वे महान भजन गायक भी थे। उन्हें फिल्म बैजू बावरा 1952 में उस्ताद आमिर खान के साथ एक अविस्मरणीय युगलबंदी के लिए जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाता है, तो पंडित डीवी पुलस्कर भी संगीत की दुनिया में एक नया नाम छोड़ कर चले गए। और 26 अक्टूबर 1955 को इनका निधन हुआ। बहुत कम वर्ष में 34 वर्ष की अवस्था में ही ये इस दुनिया को अलविदा कहें, क्योंकि एंसीफिलिटाइटिस नाम का एक बीमारी हो गया था और वो इनकी अपनी चपेट में लेकर ही दम तोड़ा। तो चलिए, कभी कभी हम सोचते हैं कि जीवन में अच्छा व्यक्ति को लंबा जीना चाहिए, लेकिन जितना भी जिए अच्छा काम करके जिए तो वो हमेशा अमर रहते हैं। आइए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ एक और गीत के साथ मैं आपको जोड़ना चाहूँगा। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम याद रखें कि वो एक बार भी जब हमें गुस्सा आया, हम इस विश्व को दूषित कर रहे हैं। हम मन को, शरीर को, रिश्तों को, प्रकृति को दूषित कर रहे हैं। और अगर एक बार भी हमने आज क्रोध को त्याग कर शांति को धारण किया, तो हम सिर्फ अपने मन को सुकून नहीं, रिश्तों में प्यार नहीं, प्रकृति को सद्भावना नहीं, हम विश्व को सुंदर बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो क्या हम सेवा करने के लिए तैयार हैं?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। तो अब बात करते हैं, आइए, एक महान राष्ट्र सेवा करने वाले देशभक्त के बारे में, विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। जी हाँ, और ये विशेष व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने जीवन काल में अपनी प्राणों की आहुति देकर देश को बचाने का काम किया। और बगुगांव नासिक में इनका जन्म हुआ। ये ना सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिवादी, कवि, अप्रतिम क्रांतिकारी, राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, दृष्टा, महान कवि और महान इतिहासकार और ओजस्वी आदि वक्ता भी थे। उनके

हिंदू शब्द से बेहद लगाव। वो कहते थे उन्हें वीर की जगह हिंदू संगठक कहा जाए तो वो ज़्यादा बेटर महसूस करेंगे। जीवन भर हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के लिए कार्य किया। वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 1937 में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और 1938 में हिंदू महासभा को राजनीतिक दल घोषित किया था और 1943 के बाद दादर मुंबई में रहे। बाद में वे निर्दोष सिद्ध हुए और उन्होंने राजनीति से भी संन्यास ले लिया। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ, उसके बाद फिर आपको सावरकर जी की कुछ विशेष कहानी से जोड़ना चाहूँगा। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए बात करते हैं। वीर सावरकर जी ने हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक पास की और बचपन से ही पढ़ाकू थे, पढ़ाई में काफ़ी रुचि रखते थे। कविताएं लिखना, लेख लिखना, इस तरह के काम तो करते ही रहे। और फिर फर्गुंस कॉलेज पूना में उन्होंने राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो जैसी भाषण देते हुए जब वे विलायत में कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तभी 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए। और फिर 1940 में वीर सावरकर ने पूना में अभिनव भारती नामक एक ऐसे क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जिसका उद्देश्य आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग द्वारा आज़ाद प्राप्त करना था। आज़ादी के वास्ते काम करने के लिए उन्होंने एक गुप्त सोसाइटी भी बनाई जो मित्र मेला के नाम से जानी गई। 1910 में एक हत्याकांड में सहयोग देने के रूप में वीर सावरकर एक जहाज द्वारा भारत रवाना कर दिए गए, परंतु फ्रांस के मार्सलीस बंदरगाह के समीप जहाज से वे समुद्र में कूदकर भाग निकले, किंतु पुनः पकड़े गए और भारत लाए गए। भारत की आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों में वीर सावरकर का नाम बेहद महत्वपूर्ण रहा है। महान देशभक्त और क्रांतिकारी सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। अपने राष्ट्रवादी विचारों से जहाँ सावरकर देश को आज़ाद कराने के लिए निरंतर जो है संघर्ष करते रहे, वही दूसरी ओर देश की आज़ादी के बाद भी उनका जीवन संघर्ष से घिरा रहा। जेल यात्रा, एक विदेश न्यायालय द्वारा उनके अभियोग की सुनवाई हुई और उन्हें आजीवन काले पानी की दोहरी सजा मिली। और फिर 1911 से लेकर 21 तक अंडमान जेल में सड़ते रहे और 21 में वे स्वदेश लौट आए। फिर 3 साल जेल वापस और 37 में उन्हें मुक्त कर दिया गया था, परंतु भारतीय उनका समर्थन न प्राप्त हो सका। और 1947 में उन्होंने भारत विभाजन का विरोध भी किया और महात्मा रामचंद्र वीर ने उनका समर्थन भी किया। और 48 में महात्मा गांधी की हत्या में उनका हाथ होने का संदेह किया गया। इतनी मुश्किलों के बाद भी वे झुके नहीं और उनका देश प्रेम का जज्बा बरकरार रहा और अदालत को उन्हें तमाम आरोपों से मुक्त कर बाहरी करना पड़ा। और इस तरह से ये मातृभूमि के सुपुत्र को फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ। देश के चरणों में पहले ही अपना मन अर्पित कर चुका हूँ, देश सेवा में ईश्वर सेवा है, ये मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है, ये हमेशा वो लिखा करते थे, वीर सावरकर। तो उनकी कुछ बिंदुओं पर नज़र डालें तो काफ़ी लंबा जो है उन्होंने काम किया, लेकिन इन सभी के बावजूद बाहर रहकर देश सेवा करते हुए जब उन्होंने वहाँ पर संगठन बना लिया तो धीरे धीरे उस संगठन के वजह से हर चीज़ उनको बनती रही, मिलती रही। और विदेश में जाकर भारत का आज़ादी का संग्राम उन्होंने बखूबी किया। सावरकर एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक एवं सार्वजनिक सुधार बराबरी का महत्व रखते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। सावरकर जी की मृत्यु 26 फरवरी 1966 को मुंबई में हुई। वीर सावरकर को उनके निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। उस समय हमारे देश में राजनीतिक अस्थिरता प्रारंभ होने लगी थी तथा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनी थी। अपने राजनीतिक विद्रोह को जवाब देने के लिए वीर सावरकर को यह सम्मान दिया गया था। अहिंसा के पुजारी के रूप में शायद यह हमारा ही एकमात्र देश भारत ही ऐसा हो सकता है जहां राष्ट्रपिता की हत्या के 2 आरोप फांसी की सजा पाए और एक को राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। इनके नाम पर ही पोस्ट ब्लेयर के विमान क्षेत्र का नाम और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये थे कुछ खास बातें वीर सावरकर जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन पर सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो।

नमस्कार, मैं हूँ शिप्ला, डिस्ट्रिक्ट मोहाली, स्टेट पंजाब से। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहें, मुस्कुराते रहें।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे जब किसी ने इस तरह से गलती की है, तब वो सच बोलेंगे।

तो ये थी कुछ खास बातें गोपाल रामन जी के बारे में, एक ऐसे व्यक्ति जो खास मजदूरों के पक्ष में निर्णय करते रहे। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले कड़ी में और एक विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। सपना एक देखोगे मुश्किलें आज़ार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। कमाल का विचार है। तो चलिए सपने ज़रूर देखिए, मुश्किलें आएगी तो उसके सामने खड़े रहो, और जब जीत आपकी होगी तो बहुत बड़ी जीत होगी। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

महंगा सौदा है इसका लुटना जाना।

0: लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी, ले लो ये हंटर भागे दुश्मन की नानी।
1: अरे चाचा,
0: तू जा जा, ए जा जा, जा मुंह धो के आ, तू जा जा, अरे जा जा।

लड़की पहाड़ी है, काटे की लाला।

0: मारो एक बार तालियां।
1: रुक जा निकालती मैं तेरा दीवाना,
0: जा रे तू पीत जाके गरम मसाला।
1: अरे क्या क्या?
0: तू जा जा घर जा।

0: ಬೌದಿ ಬೋಲ ಬೌದಿ ಬೌದಿ ಬೌದಿ
1: मैं कमलेश माउंट आबू ढूंढे गावड़ी रेवन वाली भूसा और मैं सुन रही हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनता।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तब सुधार का पहला कदम उठाते हैं। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सभी सुनने वालों को नमस्कार। मेरा नाम शरद त्रिपाठी, आपका होस्ट शरद आपके साथ, और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और आपको तो मालूम ही है ना, मन की आंखों से में हम लेकर आते हैं उन व्यक्तियों को जिनके जो शारीरिक चुनौती से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु उन्होंने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है और लोगों को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं। और उसी श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज एक बेहतरीन आवाज और बेहतरीन नाम, देश के गुजरात के नर्मदा जिले से। नर्मदा आप जानते हैं ना, फेमस है हमारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, हमारे देश के महान नेता सरदार पटेल की स्टैच्यू जहाँ पर स्थापित की गई है। उसके कुछ दूरी पर ही से ही एक गाँव है, उस गाँव का नाम आइए जानते हैं। और हमारे साथ हैं उस जगह से आने वाले जय पटेल। तो जय, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में।
1: जी नमस्ते।
0: जय, आपके गांव का नाम बताइए ना।
1: हाँ, मेरे गांव का नाम है धनपुर।
0: जी, धानपुर। जी,
1: यस
0: बहुत बढ़िया। और धानपुर के जय पटेल हमारे साथ हैं। तो जय, आपकी कहानी थोड़ी सी हमें शुरुआत से बताइए। और हमें मालूम चला बातचीत में कि आप विजुअली चैलेंज व्यक्ति हैं और आप स्वयं ही एक वॉलेंटियर, एक स्वयं सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। आप एक स्वयं सेवी संस्था के पदाधिकारी भी हैं, तो
1: बिल्कुल
0: आपकी कहानी थोड़ी शुरुआत से बताइए ना, कैसे ये शुरुआत हुई वॉलंटियरिज्म की।
1: ओके। तो सबसे पहले मैं सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरा नाम जय पटेल है, मैं गुजरात स्टेट के राजपीपला शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 2022 से की है। नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट एनजीओ है जो डिसेबिलिटी के लिए कार्यरत है और 2022 से पहले कोई भी डिसेबिलिटी के लिए एनजीओ वर्किंग में नहीं था, जो हमने स्टार्टअप किया है। और इस एनजीओ का प्रेसिडेंट एंड फाउंडर मैं खुद ही हूँ। मेरी
0: जी
1: एनजीओ का नेम है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन और मेरे साथ में जुड़े हुए हैं राजपिपला स्टेट के प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल जी। इनका मुझे जहां जहां पे भी सपोर्ट की जरूरत रहती है वहां वहां पे मुझे सपोर्ट मिलता रहता है और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मुझे बहुत ही सपोर्ट कर रही है। और मैंने टोटल एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में किया है और मैं स्टैंडर्ड 10th में था तब से ये सेवा किए कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। बट मेरी कॉलेज फिनिश होने के बाद मैंने ये लीगली एनजीओ का रजिस्ट्रेशन किया और एनजीओ को आगे बढ़ा रहा हूँ। और सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट शो ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि ब्लाइंड लोगों में जो टैलेंट छिपा है वो नॉर्मल लोगों तक पहुंचे और ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग समझे, जाने और पहचाने, जिसे ब्लाइंड लोगों को नॉर्मल लोग रिस्पॉन्स दे।
0: जी, तो जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM माउंट आबू की वादियों से, और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपीपला से जय पटेल। मैं आपसे ये पूछ रहा था जय, कि आपने जीवन की शुरुआत के बारे में हमें बताया, लेकिन मैं
1: हाँ
0: जानना चाहूंगा आपको क्या और किस प्रकार की दिव्यांगता है।
1: बिल्कुल, मैं मुझे खुशी होगी आपको बताने में। मुझे बाई बॉर्न आई में प्रॉब्लम है और मैं जन्म से दृष्टि बाधित हूँ और मुझे जन्म से मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था और
0: जी
1: मेरी ट्रीटमेंट हुई है मध्य प्रदेश इंदौर में डॉक्टर हाड़िया के पास।
0: जी
1: और स्टैंडर्ड 5 तक थोड़ा थोड़ा राइट आई में मुझे विजन था। स्टैंडर्ड 8 में आते आते मुझे मेरी संपूर्ण रोशनी चली गई। अभी फिलहाल मैं टोटली ब्लाइंड हूँ। मुझे आई प्रेशर का प्रॉब्लम्स है।
0: श्रोताओं जो हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM, और हमारे साथ हैं जय पटेल जी, नर्मदा जिले के राजपीपला शहर से। जी जय पटेल जी, हम जानना चाहेंगे कि आपको दृष्टि बाधित, आपको जो ब्लाइंडनेस है वो कब हुई और किस प्रकार से आपने शुरुआती दिन अपने बचपन को, मैं अपने आप की पढ़ाई पूरी की।
1: देखो, मेरे को ब्लाइंडनेस तो बाय बॉर्न ही थी पर मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद मुझे राइट आई में थोड़ा थोड़ा विजन था और लेफ्ट आई तो टोटली ब्लाइंडनेस में ही थी। भाई बहन है। सो मोतियाबिंद का ऑपरेशन मैंने मध्य प्रदेश के इंदौर में करवाया डॉक्टर हाड़िया के पास। इसके बाद मुझे थोड़ी थोड़ी रोशनी आई और मैंने एजुकेशन के लिए नॉर्मल लोगों के साथ में मैंने अभ्यास मेरा स्टार्टअप किया और मैंने टोटली एजुकेशन नॉर्मल लोगों के साथ में फिनिश किया। मैंने बीए ग्रेजुएशन किया है और परेशानी तो बहुत आई लेकिन इसका सामना करते करते मैंने ग्रेजुएशन तक पहुंचा और अभी मेरी कोशिश ये है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन के माध्यम से मुझे जो प्रॉब्लम एजुकेशन में हुई है वो मेरे भाइयों एवं बहनों को आगे जाके ना हो, इस दिशा में हम लोग कार्य करना चाहते हैं।
0: जी, ये तो बहुत ही बढ़िया सुझाव है। और आपने नॉर्मल स्कूलिंग की है, और ये तो आपको तो मालूम ही है कि ब्लाइंड व्यक्तियों के क्षेत्र में या डेवलपमेंट के क्षेत्र में इस बारे में बहुत चर्चा होती रहती है कि किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, या नॉर्मल स्कूलिंग की जाए, या इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन किया जाए, या ब्लाइंड व्यक्तियों के विशेष स्पेशल स्कूल में पढ़ाई की जाए। इस संबंध में
1: बिल्कुल
0: डिबेट बनी हुई है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है, लोग अब इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपने
1: बिल्कुल
0: कुछ बात पहले ही कर ली। तो राजपीपला की तस्वीर जो है वो किस प्रकार की है, क्या राजपीपला के चैलेंजेस हैं, या नर्मदा जिले में क्या चैलेंजेस आप देखते हैं एज अ सोशल सेक्टर, डेवलपमेंट सेक्टर वॉलंटियर?
1: देखो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया पड़ता है। सो इधर जो डिसेबल लोग हैं वो बहुत ही गरीबी सीमा के भीतर जीते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हमें ये लाभ मिलता है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हमने जब से एनजीओ स्टार्टअप की है 2022 से, तब से लेके आज तक हमने 500 डिसेबल लोगों को बस पास, ट्रेन पास, पेंशन योजना, सभी सरकारी अलग-अलग जो लाभ मिलते हैं वो सबको हमने घर घर जाके पहुंचाए। और अवेयरनेस के रिगार्डिंग हम लोग 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे का सेलिब्रेशन पिछले 3 सालों से कर रहे हैं और इस साल भी होने वाला है। बहुत बढ़िया।
0: आप अपनी बात रख रहे थे, आप बता रहे थे कि आपने कुछ 500 जमा दिव्यांग व्यक्तियों को आपने मदद पहुंचाई है, और आपकी
1: यस
0: संस्था का विजन क्या है, थोड़ा साझा करेंगे जय पटेल जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। हमारा संस्था का ये है कि सभी लोग एजुकेशन के दिशा में तो सभी लोग काम कर रहे हैं, पर मेरी जो एनजीओ है, मतलब हम सबकी जो ये एनजीओ बनाई गई है दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन, ये दिव्यांगों के भविष्य के लिए काम करेगा और खास तौर पे दिव्यांगों की रोजगारी के अनुसार ये संस्था काम करेगी। दिव्यांगों को रोजगार प्रॉपरली दिलाना, अरे सभी सिटीज में हम लोग ब्लाइंड टैलेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि दिव्यांग को एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म मिले और जिसमें ब्लाइंड कैटेगरी आगे जाए और इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने से उनका भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और
0: जी
1: एक रेसिडेंसी ये एरिया बनाना चाहते हैं नर्मदा राजपिपला शहर में, जिसे कि सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को लाभ मिल सके और इधर रह के ही ये लोग रोजगारी पाए और एक ही जगह पे वो लोग रह के आनंद से उनका जीवन गुजार सके, इस दिशा में मैं काम करना चाहता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत ड्रीम है।
0: जी जी हाँ, इसे कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, और ये कम्युनिटी लिविंग के विचार को लेकर भी एक डिबेट है डेवलपमेंट सेक्टर में कि किस प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति समूह में रह सकते हैं और एक रेजिडेंशियल
1: बिल्कुल
0: टाउनशिप अपने लिए प्लान कर सकते हैं। सरकार की मुझे कोई विशेष नीति इस बारे में दिखती नहीं है कम्युनिटी लिविंग फॉर डिसेबल
1: हाँ
0: पर्सन, तो आप इस नतीजे तक कैसे पहुंचे कि हमें एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या रेजिडेंशियल कॉलोनी बनानी चाहिए जहां पर डिसेबल्ड व्यक्ति साथ में रहे?
1: इसके लिए हमें सरकार तो मदद करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को अभी आइडिया नहीं है, बट जो नॉर्मल लोग अच्छे अच्छे लोग हैं उनको कनेक्ट करके ये अच्छा कार्य को हम स्टार्टअप जरूर कर सकते हैं।
0: जी
1: और ये हमारी बातचीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों को भी हमारी संस्थान मतलब दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन की कार्य सेवा किया कार्य से खुशी मिल रही है तो ये लोग हमारी संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और इस सेवा के कार्य को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं।
0: जी आपने क्या प्लान किया है, और इसके अतिरिक्त और क्या अभी तक संस्था के अचीवमेंट रहे हैं?
1: अभी तक संस्था के अचीवमेंट की बात की जाए तो तो हम लोग पिछले 3 सालों से जो टैलेंट शो कर रहे हैं, इसमें अलग-अलग सिटीज से हम लोग ब्लाइंड को बुलाते हैं और उनका टैलेंट शो रखते हैं। और अभी रिसेंटली हमारा प्रोग्राम हुआ था वडोदरा में ब्लाइंड टैलेंट शो, जिसमें हमने मध्य प्रदेश इंदौर से ब्लाइंड लोगों की 10 लोगों की टीम बुलाई थी और 400 नॉर्मल लोगों के सामने ब्लाइंड लोगों को प्रेजेंट किया था, जो प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुली हुआ था।
0: जी
1: और
0: जी
1: इससे पहले हमने किया था 19 जनवरी को इंदौर में किया था, वो भी बहुत सक्सेसफुली रहा था। वहाँ पे 75 टोटली ब्लाइंड लोगों को हमने मौका दिया था, सिंगिंग, मेमिक्री, कॉमेडी, डांस, सब कुछ इंक्लूड। और पिछले साल हमने किया था बॉम्बे मलाड में जो कार्यक्रम हमारा, वो भी सक्सेसफुली रहा था, जिसमें सिंगिंग कंपटीशन रखी गई थी। और अब हम लोग बहुत बड़े लेवल पे ये कंपटीशन रखना जा रहे हैं और वो अभी डेट जब फाइनल होगी वो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे।
0: आपको क्या लगता है कौन कौन लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ?
1: मेरे साथ अभी फिलहाल तो राजपिपला स्टेट के जो राजा है मानवेंद्र सिंह गोयल, वो हमारे एनजीओ को प्रेजेंट कर रहे हैं, सभी जगह पे प्रमोट कर रहे हैं और उनका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। और डिसेबल के लिए वो बहुत ही एक्टिव पर्सन है।
0: जी, ये बढ़िया है। रॉयल फैमिली तो हमें हमेशा सहयोग करती रही है और हमें तो
1: बिल्कुल
0: लगता है कि हम भी कुछ इस दिशा में स्वयं भी कुछ कर पाए तो सहयोग जो है, या जो किसे कहते हैं कि सिनर्जी जो है, वो साथ में बन जाती है। और
1: बिल्कुल, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो सभी विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत ही एक बढ़िया प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना?
0: जी, तो आप किस प्रकार की प्रतिभाएं देख रहे हैं हमारे दिव्यांग साथियों में?
1: मुझे देख सभी सेक्टर से मेरे साथ में दिव्यांग मतलब ब्लाइंड लोग जुड़े हुए हैं। अभी बॉम्बे से बात कर ले तो बॉम्बे में मेरा एक मित्र है, का नाम है तुषार गोसर, जो कच्छी जैन है और टोटली ब्लाइंड है और 21 प्रकार के मरी मसाला खुद बनाता है और खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है।
0: जी
1: और 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो खुद भी टोटली विजुअली इम्पेयर्ड है।
0: जी
1: और ऐसे ऐसे मेरे साथ में अलग अलग सिटीज से, अलग अलग स्टेट से लोग विजुअली इम्पेयर्ड और हैंडीकैप जो भी हो गए वो लोग जुड़े हैं।
0: जी
1: बिल्कुल
0: और आपको लगता है ना, हमारे एक ये माना जाता है कि भाई अगर आप ब्लाइंड व्यक्ति हैं तो मास्टर बन जाइए, लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे नए प्रोफेशंस आए हैं जिसमें हमारे दिव्यांग साथी झंडे गाड़ रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या चाहे
1: बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी
0: स्पोर्ट्स का
1: सेक्टर
0: क्षेत्र।
1: देख लो, अभी कोई भी सेक्टर देख लो, चाहे बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, अस्पताल हो, कुछ भी हो गया, सभी जगह पे ब्लाइंड लोग अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे।
0: जी, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: संस्था कैसे उन साथियों का सहयोग कर रही है टैलेंट शो के अतिरिक्त?
1: टैलेंट शो जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक बजट फिक्स होता है, वो बजट के बारे में हम लोग सबको डिस्कशन करते हैं। फिर हमारे साथ में जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं और इससे कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है उनको भी रोजगारी प्रोवाइड हो। और एक प्रकार देखा जाए तो रोजगारी का ही ये लक्ष्य है, क्योंकि देखो सिंगिंग करते करते कोई किसी को रोजगारी तो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कराता है ना। सो हमारे एक विजन है कि एक ब्लाइंड टैलेंट तो होगा ही होगा, साथ में उनका रोजगारी का भी आयोजन हो सकता है। हम लोग इस प्रकार से प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं।
0: नहीं, ये तो मानना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारे नए बदलाव भी हुए हैं
1: बिल्कुल
0: और सभी समाज के अलग अलग वर्गों से लोग जो है वो भी दिव्यांगता के बारे में जान रहे हैं, लेकिन
1: जान
0: हमें
1: रहे हैं।
0: भी जी हमें भी बहुत सारी चीजें उनसे साथ साझा करने की जरूरत है। खासतौर पर डॉक्टर्स के साथ भी एक प्रयास करने की जरूरत है कि डॉक्टर्स जो है इलाज करते समय क्लिनिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के बारे में भी मरीजों के साथ बात करें और उनको बता
1: बिल्कुल
0: दें कि अब इसका इलाज संभव नहीं है, जितना हो सकता था उतना बेस्ट हो गया, अब आप भटकना छोड़िए और इस
1: बिल्कुल
0: बच्चे का पुनर्वास की तैयारी करिए। तो क्यों नहीं
1: बिल्कुल,
0: कर
1: वही
0: सकते
1: वही वही काम इधर इधर वही
0: अवेयरनेस
1: काम,
0: कैंपेन प्लान किया जाए जय पटेल जी?
1: बिल्कुल हम लोग अवेयरनेस कैंपिंग ही प्लान कर रहे हैं। और आपके दिमाग में भी अगर कुछ आता है तो हमें श्योरली बताना, हम लोग साथ में मिलके बहुत अच्छे लेवल पे काम करेंगे और डिसेबल को हम आगे ले जाने में, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरा संपूर्ण जीवन ये दिव्यांगों के लिए समर्पित कर रहा हूं।
0: जी,
1: क्योंकि देखो मेरे को जॉब भी मिल सकती है, लेकिन मैंने जॉब को स्किप किया है, मुझे सिर्फ दूसरे की सेवा ही करनी है, बस ये मेरा मानना है।
0: स्वताओं जो
1: और
0: हमसे
1: नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि ट्राइबल एरिया है, सो पेरेंट्स को भी पता नहीं है ना कि क्या हमारे बच्चे को कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा क्या नहीं, तो हम लोग पेरेंट्स को भी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रॉपरली रेडी करते हैं कि आपका बच्चा भी बहुत आगे जा सकता है, इसलिए हम काउंसलिंग करके उनको भी आगे ले जा रहे हैं,
0: आपके
1: और
0: काम जी
1: अधिकतर अधिकतर हमें सफलता भी मिली है।
0: आपके काम के दौरान कुछ ऐसी कहानियों को साझा करिए ना, जिन्होंने जो सफलता की कुछ कहानियां हों, दो या तीन कहानियां जो आप साझा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। दो

0: टोटली विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है जो सूरज से बिलोंग करती है। एक का नाम है वृष्टि वेकरिया और एक है मनस्वी मकवाना, जो बहुत ही बेहतरीन सिंगिंग करती है। इनको एक बार मैंने इधर मेरा फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था जिसमें मैंने उन लोगों को स्थान दिया और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया। तब से लेके आज तक उन लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम दे दिए और आज ये दोनों लड़कियां बहुत ही आगे जा चुकी है।
1: जी
0: बिल्कुल, और ये बहुत ही बढ़िया सिंगिंग भी कर रही है और इनका सूरत में आज जाना माना नाम बन चुका है।
1: जी हम लोग राजस्थान की धरती से आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं, माउंट आबू से, और राजस्थान से भी कुछ प्रतिभाओं से आपका परिचय हो तो बताइए ना।
0: राजस्थान में शायद मेरा एक एनजीओ से मेरा संपर्क हुआ था, बट अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। झालावाड़ के पास में है ना कोई एनजीओ एक?
1: जी खैर,
0: हाँ बस।
1: कोई बात नहीं। और आपकी जीवन की यात्रा में कुछ ऐसे अनुभव जो खट्टे मीठे अनुभव हों जो आप हमसे साझा करना चाहें मन की आंखों से कार्यक्रम में हमारे।
0: बिल्कुल, देखो मैं पढ़ाई करते समय मुझे स्टैंडर्ड 8 में आया ना, तब प्रिंसिपल की एक कंप्लेंट आई थी कि आपका बच्चा लिख नहीं रहा है, मौखिक जवाब दे रहा है लेकिन लिख नहीं रहा है। सो मेरे पेरेंट्स थोड़े अपसेट हो गए। सो मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भाई नहीं, ये मैं लिख नहीं सकता हूँ बट मैं मौखिक जवाब तो दे सकता हूँ, तो मैं मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करूँगा। पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल ने फिर मेरी पोजीशन को समझा और फिर मुझे फुल्ली सपोर्ट किया और मुझे स्कूलिंग से लेके कॉलेजेस तक बहुत ही, चाहे वो प्रिंसिपल हो प्रोफेसर हो, सबका मुझे बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ है। ये जो मैंने सेवा का कार्य आरंभ किया है ये मैंने मेरे नाना जी के पास से सीखा था।
1: जी
0: बिल्कुल, वो मध्य प्रदेश इंदौर से बिलोंग करते हैं।
1: हाँ, एक हमारे परिवार में, हमारे समाज में और हमारे आसपास के माहौल में ही हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: हमारे
0: बिल्कुल, ऐसा
1: रास्ते।
0: ही
1: जी
0: मेरे साथ में हुआ है।
1: मैं वही जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा विस्तार से बताइए ना उस व्यक्ति के बारे में।
0: हाँ, उनका, मेरे नाना जी का नाम है शिवलाल भाई पटेल। वो बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्य में अग्रसर रहते हैं। और मैं जब से, मतलब ये माना जाए कि मेरा बचपन जो है वो उनकी नजर के सामने ही गुजरा है, तो मेरे को ये को बताते हुए खुशी हो रही है कि उनके गुण मेरे में आए और इनके विचारों को मैंने पकड़ के रखा तो आज इस लेवल तक मैं पहुंच चुका हूं।
1: जी
0: और उनके
1: जी
0: पास से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और अभी भी मेरा सीखने का जारी है। अभी मैंने सब कुछ नहीं हासिल किया है, अभी 0.1% ही हासिल किया है
1: आपकी
0: मैं।
1: संस्था जो है आपकी, और कौन से नए कार्यक्रम प्लान कर रही है जिससे कि हम दिव्यांग मित्रों की मदद कर सकें।
0: बिल्कुल, और हम लोग एक इवेंट एक प्लान कर रहे हैं जो ऑल ओवर इंडिया से सभी ब्लाइंड भाइयों एवं बहनों को एक बढ़िया स्नेह मिलन कराने का एक कोशिश कर रहे हैं। स्नेह मिलन,
1: जी
0: क्योंकि हमें सभी ब्लाइंड लोगों से एक परिचय हो, ब्लाइंड लोग किस फील्ड में काम कर रहे हैं ये इनका परिचय हो, और 10 से 15 ऐसे ब्लाइंड लोगों को जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, जो अच्छी पोजीशन पे है, उनको हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं ताकि दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं देखने वाले वो लोग देख के थोड़े से इंस्पायरिंग हो और ब्लाइंड लोगों को रिस्पॉन्स अच्छी तरह से करे, और ब्लाइंड लोग भी जो लोग लाइफ में हिम्मत हार गए हैं वो लोग फिर से दोबारा मैदान में दौड़ने की एक छोटी सी कोशिश करें। ये हमारा अभी का प्लान आउट चल रहा है, लेकिन ये कब होगा ये फाइनलाइज नहीं है, लेकिन करेंगे ये डेफिनेटली।
1: जी
0: और सभी कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए, ये सब कुछ प्रिंस मानवेंद्र सिंह गोहिल मेरे साथ में रहते हैं। हम दोनों मिलके एक अच्छी सी इवेंट प्लान करते हैं।
1: जी निश्चित रूप से प्रिंस मानवेंद्र का सहयोग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर्स और ये सबका भी मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरे फादर का नाम है नीलेश पटेल और मदर का नाम है माया पटेल।
1: जी इस पूरे कार्य योजना में सबसे ज्यादा सहयोग आपको कौन करता है डेली, आपकी जो दिनचर्या है या जो बहुत सारा जो काम है डे टू डे का, उसमें कौन आपको सहयोग करता है?
0: मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर्स
1: अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: मेरी मदर।
1: जी जी तो
0: हाँ
1: क्या वो भी आपके साथ एनजीओ में जुड़े हुए हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहेगा तब तक एनजीओ तो ओपन नहीं कर सकते ना। टफ लेवल की बात है ना एनजीओ ओपन करना भी।
1: जी
0: सो पहले तो फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और मुझे मेरी पूरी फैमिली बहुत ही सपोर्टेबल है,
1: जी
0: मतलब पूरी तरह से कोऑपरेट करती है मेरी फैमिली।
1: आपने एक डिबेट चलता है आजकल की ब्रेल को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: वैसे देखा जाए तो सीखना जरूरी तो है, पर आज टेक्नोलॉजी की इतनी बढ़ चुकी है ना टेक्नोलॉजी, सो किसी को ब्रेल नहीं भी आएगा ना तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। मेरे को खुद ब्रेल नहीं आता है क्योंकि मैंने स्कूलिंग और कॉलेज साइटेड लोगों के साथ में की है, तो आप भी समझ सकते हो कि मेरे को ब्रेल नहीं ही आता होगा। पर मेरा ब्रेल से कोई विरोध नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है और आगे भी बहुत कुछ देने वाली है टेक्नोलॉजी, सो हमें घबराने की जरूरत नहीं है।
1: जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस पूरे भागम भाग भरी जिंदगी में अभी एक्सेसिबिलिटी भी एक चैलेंज है, और एक्सेसिबिलिटी को लेकर बहुत सारे कैंपेन चलाए गए हैं आपके जिले नर्मदा में, क्या परिस्थितियां हैं? आपने आपकी संस्था उस बारे में क्या कर रही है?
0: हमारी संस्था के द्वारा एक्सेसिबिलिटी के बारे में भी बहुत सब कुछ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कार्यक्रम होते रहते हैं, और सभी स्कूल कॉलेजेस में भी कार्यक्रम होते रहते हैं ताकि वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको भी पता चले कि ब्लाइंड लोग इस फील्ड में वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो लोग भी समझ पाए।
1: आप लोग भी जानते हैं, जो श्रोता हमसे देर से जुड़े हैं वे जान लें, आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM और आपका फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से, और हमारे साथ हैं आज के गेस्ट जय पटेल। जय पटेल नर्मदा जिले से आते हैं और अपनी स्वयं की एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, और साथ में उनका मकसद है कि डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक कम्युनिटी हाउसिंग डेवलप की जाए और कम्युनिटी हाउसिंग के माध्यम से उनकी चुनौतियों को कम किया जाए। वे स्वयं भी एक दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं, परंतु देखिए ना उनका हौसला कि उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को अपने आड़े नहीं आने दिया और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल पड़े हैं अकेले ही, लेकिन उनके साथ हैं वहां के प्रिंस नर्मदा जिले से, उनके वहां के राज परिवार का सहयोग ले रहे हैं, और अपने पेरेंट्स की जिंदगी के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग है जय पटेल जी?
0: आगे की प्लानिंग यही है कि इस एनजीओ को मैं बहुत आगे ऊंचाई पे ले जाना चाहता हूँ, और मतलब मुझसे जितना भी हो सके उतनी हेल्प डिसेबल लोगों के लिए करना चाहूंगा।
1: जी मन की आंखों के से कार्यक्रम में निश्चित रूप से हम हमेशा ही एक दिव्यांग व्यक्ति से मिलते हैं, और आज आज जय से मुलाकात हुई है, और जय बता रहे हैं कि वे वॉलेंट्री सेक्टर के माध्यम से कम्युनिटी के लिए भी हेल्प करना चाहते हैं और एक आउटरीच ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स मैं देखता हूँ दिव्यांग व्यक्तियों की, आपका क्या मानना है उसके लिए? क्या कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे हम हर जिले में कंप्यूटर सेंटर बना सकते हैं और दिव्यांग व्यक्तियों को कंप्यूटर सीखने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े, तो क्या ये पॉसिबिलिटी संभव है हमारे देश में?
0: बिल्कुल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने दिव्यांग उत्कर्ष फाउंडेशन एनजीओ के माध्यम से 20 टोटली ब्लाइंड लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी हुई है, 20 लोगों को, और वो भी बहुत ही सक्सेसफुली रहा था। और क्यों हम नहीं कर सकते, सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी स्टेट में हम लोग कर सकते हैं ताकि सभी विजुअली इम्पेयर्ड को इनका फायदा हो और उनके ही जिले में उनको प्रॉपर शिक्षण मिल पाए, एजुकेशन मिल पाए। ये करना चाहिए और ये हम लोग भी करेंगे।
1: हाँ, इसके लिए कुछ योजना तो बनानी होगी ना, लेकिन जी
0: हाँ बिल्कुल, योजना बनानी होगी। मैंने आपको बोला ना पहले रेसिडेंसी हो जाएगा ना, इसके बाद में सभी प्रकार की ट्रेनिंग उपलब्ध की जाएगी, जिसमें कंप्यूटर ट्रेनिंग हो गई, संगीत का हो गया, रोजगार के रिगार्डिंग हो गया, सब कुछ ट्रेनिंग एक ही जगह पे हम लोग प्रोवाइड कराएंगे ताकि सबको अलग-अलग जगह पे ना जाना पड़े, और उनको
1: कम्युनिटी हाउसिंग,
0: व्यवस्था व्यवस्था इस प्रकार से देंगे क्योंकि उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए, बिल्कुल की परेशानी ना आए, उनके पेरेंट्स भी हमारे रेसिडेंसी पे छोड़ने आए, ऐसे हम बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स हमारे पे ट्रस्ट करे, ऐसा हम डेवलप करना चाहते हैं।
1: हाँ, कम्युनिटी हाउसिंग आप कहाँ प्लान कर रहे हैं? नर्मदा में प्लान कर रहे हैं?
0: यस, नर्मदा राजपिपला।
1: कैसी दिखती होगी ये कम्युनिटी हाउसिंग? क्या होगा इसमें विशेष?
0: सभी जगह पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए हॉस्टल बना रहे हैं, हम लोग हॉस्टल नहीं बना रहे, हम लोग बोल रहे हैं सभी डिसेबल लोगों के लिए एक घर बना रहे हैं, हॉस्टल नहीं, इसे घर का दर्जा दिया जाएगा, और जिनका कोई नहीं है इनका हम एक आधार बनेंगे।
1: जी,
0: बिल्कुल,
1: कितने लोगों की आवास की व्यवस्था होगी यहाँ पर?
0: अभी वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन मेरा ड्रीम है कि बड़ी बिल्डिंग बने और 70 to 80 रूम बने, जिसे बहुत बढ़िया बिल्डिंग हो और बहुत ही अच्छा एक्सेसिबल हो और सभी
1: ये आप
0: डिसेबल लोगों के लिए।
1: राजपीपला में प्लान कर रहे हैं?
0: राजपिपला में प्लान कर रहे हैं हम लोग,
1: जी
0: राजपिपला और वडोदरा के बीच में, मतलब।
1: जी जी तो
0: हाँ
1: नर्मदा और वडोदरा लगते हुए जिले हैं दोनों?
0: बिल्कुल नजदीक है, मेरे घर से वडोदरा 70 किलोमीटर, सेवेंटी
1: जी,
0: सेवेंटी फाइव यस।
1: बेहतरीन बातचीत रही जय पटेल जी आपके साथ। और आप कुछ कहानियां हमसे साझा करना चाहें तो बताइए ना, कुछ सफलता की कहानियां, कुछ ऐसी बातें जो हम हमारे श्रोताओं तक ले जा सकते हैं।
0: हाँ देखो, मैंने बहुत सारे कार्य किए, मैं सेवा किए कार्य में बहुत सारी जगह पे इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मेरा सूरत में भी सम्मान हुआ है, मुंबई में भी हुआ है, और रिसेंटली अभी मारुति सुजुकी शोरूम के बारे में आपने सुना होगा, सो नेक्सा शोरूम के यहाँ भी मेरा सम्मान हुआ, और उसमें मुझे चीफ गेस्ट में बुलाया था, और रिबिंग कटिंग भी मेरे हाथ से ही उन लोगों ने करवाई थी, और मुझे सम्मानित भी किया, और कॉलेज कार के दरमियान भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ है।
1: जी,
0: बिल्कुल
1: मुझे लगता है ना कि हम लोग ये सारा जो प्लान कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है
0: बिल्कुल,
1: और लोगों से जुड़ने की
0: क्योंकि
1: आवश्यकता है।
0: लोगों के कनेक्ट, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ हो, ऐसी हम एक आवश्यकता रखते हैं, और आप भी हमारे कार्य में शामिल होगे तो हमें बहुत खुशी होगी, और आपके साथ में आज बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा।
1: जी, मुझे भी अच्छा लगा आपसे जुड़कर, और मन की आपको किसी टीम आपके साथ है हमेशा, और आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। हम
0: बिल्कुल,
1: आपको हमेशा आपके साथ हैं और आपको शुभकामनाएं हमारी ओर से।
0: खास तौर पे मैं मन की आंखों की पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और खास तौर पे कृष्णा दीदी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, कृष्णा दीदी ने हमारे डिसेबल लोगों के लिए बहुत कुछ किया, और ये बहुत ही अच्छा सोच रहे, तो ये रेडियो स्टेशन का जो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया है, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है।
1: बिल्कुल जय पटेल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। कोई ऐसी बात जो हम पूछना भूल गए हों और आपको लगता है कि नहीं, वो बात मन की आंखों से के कार्यक्रम में आनी चाहिए थी, तो आप हमें बताइए ना प्लीज।
0: वैसे तो मैंने आपको सब कुछ मेरा बता दिया है, और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर के रूप में भी काम कर रहा हूँ, और सिंगर एंड कीबोर्ड प्लेइंग भी खुद कर रहा हूँ,
1: जी
0: और मेरा जहाँ पे भी कार्यक्रम रहता है वो नॉर्मली साइटेड स्कूलिंग में ही होता है, कॉलेजेस में होता है, जो नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको ही हम लोग मोटिवेट करते हैं, और ब्लाइंड को भी मोटिवेट करते हैं, और मेरी इवेंट जो भी प्लान होती है ना, वो बहुत ही एक्साइटेड बात है, आप सुनना, मैं जहाँ पे भी इवेंट प्लान करता हूँ वो आदमी से मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में ही मिलता हूँ, इससे पहले हम लोग फोन से कांटेक्ट करते हैं, मैं गूगल से कांटेक्ट करता हूँ और कांटेक्ट निकल के उनसे बात करता हूँ और मेरा प्रेजेंटेशन करता हूँ, फिर वो लोग रेडी हो जाते हैं और फिर हमारा कार्यक्रम होता है, उसी दिन हमारी मुलाकात उस आदमी से होती है जो हमें सहयोग कर रहा है। ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं किसी को कभी, मतलब मेरे से अनजान भी है तो इससे बात करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता हूँ, और फिर जिस दिन प्रोग्राम रहता है उसी दिन हमारी उनसे आमने सामने मुलाकात होती है, और हमें अच्छा खासा सहयोग भी प्राप्त होता है भले ही हम लोग ना मिले हो, और अभी
1: जी
0: हमारी चंडीगढ़ में भी बातचीत चल रही है, उनसे भी मैं अभी मिला नहीं हूँ, लेकिन बहुत ही बड़े लेवल पे एक इवेंट प्लान कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर।
1: जी मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, मन की आंखों से टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं आपको देती है। और श्रोताओं, आप सुन रहे थे आपका फेवरेट रेडियो प्रोग्राम मन की आंखों से, 107.8 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: मां रोज की तरह आज भी सुबह गुनगुनी धूप में चिड़ियों से बातें करती हुई बगीचे में रखे पुराने लोटे को चमका रही थी। पता नहीं उस पुराने लोटे में ऐसा क्या था कि उसे चमकते ही मां के चेहरे की भी चमक लौट आती थी। लोटे की चमक को देख गुनगुनाने लगती थी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। मां की आंखों की चमक को देखकर आज सुमित से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया, मां आप रोज इस पुराने लोटे को चमकाती और खुश होती हो, इसे चमकाने से क्या फायदा? अब ये तो कोई काम का भी नहीं रहा है, बस बगीचे में पानी डालने के तो काम आता है, रोज रोज नहीं भी घिसोगी तो भी चल जाएगा। बेटा तू नहीं समझेगा, रहने दे क्या करेगा जानकर, छोड़ मैं और मेरा लोटा ही भला, तुम अपना काम करो। अरे तुम्हें पुराने लोटे से क्या लेना, बस समझ ले मुझे अच्छा लगता है, मुझे इससे खुशी मिलती है, मां ने कहा। नहीं मां आज तो तुझे बताना ही होगा कि इस लोटे के पीछे क्या राज है जो तुम्हें इतनी खुशी देता है, सुमित ने बच्चे की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा इतनी जिद कर रहा है तो सुन, बहू ने जरूर इस लोटे को घर में रखने लायक नहीं समझा, लेकिन पता है मेरी शादी में देने के लिए मेरे मां पिताजी जो पहला बर्तन खरीद कर लाए थे ना, वो यही लोटा था, तो इस लोटे में मेरी शादी की सारी खुशियां समाई हुई हैं। शादी के बाद जब ससुराल आई तो तेरे परदादा परदादी दादा दादी इसी लोटे में जल भर के घंटों भगवान की पूजा करते थे। इस लोटे से जुड़ी कई यादें हैं और वो यादें मेरे लिए बहुत कीमती हैं बेटा। मैं इस लोटे को केवल मांझती नहीं हूं बल्कि अपनी पुरानी यादों को भी चमकाती हूं, और जब इससे पेड़ पौधों को पानी देती हूं तो लगता है कि इन पेड़ों के रूप में मेरे अपने पूर्वजों को जल तर्पण कर रही हूं। इसमें मेरी मां की ममता, मेरे पिता की मेहनत, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और ससुराल की शान छुपी हुई है। इतना कहके मां फिर लोटे को निहारने लगी। मां की बात सुन सुमित सोचने लगा, हमारी पीढ़ी के लोगों में पूर्वजों के प्रति प्रेम और निष्ठा कहां चली गई? हमने केवल एक लोटे को ही घर से बाहर नहीं किया, अपितु पूर्वजों की यादों संस्कारों और संस्कृति को पुराना समझ बाहर निकाल फेंका है। दोस्तों आप सुन रहे थे देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की लिखी लघु कथा पुराना लोटा। हां कई बार ये पुरानी चीजें हमें अखरती हैं जो कि सहेज कर रखी गई होती हैं हमारे मां पापा दादा दादिया और बड़ों के द्वारा। हमें लगता है कि हम कब तक संभाल करके रखेंगे, लेकिन वास्तव में ये सिर्फ चीजें नहीं है, चीजों से जुड़ी हुई न जाने कितनी यादें हैं। बस चूंकि यादें चीजों से जुड़ी हैं इसीलिए ये चीजें आज भी पुराने ट्रंक संदूक और अटैचियों में रखी हुई हैं। खैर पुरानी चीजों से ही संस्कृति संस्कार यादें प्रेम निष्ठा ये सब जुड़ा हुआ भी होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि शायद हम उनके माइंडसेट में पहुंच नहीं पाते और डिटैच होकर के कई बार कह देते हैं, अरे बेचो ना इन चीजों को, बस एक अनजानापन है वो। मैं ये नहीं कहता कि हम उनकी भावनाओं के प्रति सम्मान नहीं करते, हमें केवल चीजें दिख रही होती हैं लेकिन चीजों के पीछे जो जुड़ी हुई यादें हैं उन तक पहुंचने के लिए इस लघु कथा ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल का काम किया है मैं समझता हूं। ये कहानी आपको पसंद आई हो सभी तक पहुंचाएं ताकि ये पुल बना रहे, समझ बनी रहे, प्यार और सम्मान बना रहे। थैंक यू सो मच। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।
1: हेलो मेरा नाम दीपक है, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
0: नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में एक बार फिर से मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। आज की लघु कथा है डस्टबिन, अनीता ललित जी की लिखी हुई, लखनऊ से। आइए शुरू करते हैं। 6-7 वर्षीय पिंकी अपने गुड्डे गुडियों को लेकर कमरे में अपने सुंदर से डॉल हाउस के पास बैठकर मगन होकर खेल रही थी। छोटे छोटे बर्तन, मेज, कुर्सी और भी कई सारी चीजें उसके आसपास बिखरी हुई थी। कुल मिलाकर मानो छोटी सी गृहस्थी जमी हुई थी। नन्ही पिंकी वहीं बैठे बैठे अपनी माँ की चुन्नी लपेटे गुड्डे गुड़िया से वो बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह बातें की जा रही थी। इतने में सुमन वहां से गुजरी। सुमन पिंकी की माँ। पिंकी को इतने प्यारे ढंग से खेलते बतियाते देखकर वो वहीं ठिटक गई और छुपकर उसे खेलते हुए देखने लगी। अपने जैसे बातें करते देख सुमन को अपनी बिटिया पर बहुत लाड आ रहा था। पिंकी छोटे छोटे बर्तनों में खाना बनाने का खेल खेल रही थी और बातचीत किए जा रही थी। रवि आइए आइए, आपका पराठा बन गया, ये लीजिए। सुमन की हंसी ही फूट पड़ी। रवि उसके पति यानी पिंकी के पापा का नाम था। अरे ये तो ठंडा हो गया सुमन, इतना ठंडा नहीं खा सकता मैं। कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसे, मैं खा लूंगी और आपके लिए ला रही हूं ये गर्मा गर्म, ये लीजिए। कहते हुए पिंकी ने अपने गुड्डे के सामने से एक प्लेट हटाकर दूसरी प्लेट रख दी। फिर पलट कर अपनी गुड़िया से बोली, चलो बेटा आ जाओ जल्दी से, नाश्ता रेडी है, ये लो पहले ये फ्रूट खाओ। क्या मन नहीं है? नहीं बेटा, खाना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो आप बड़े कैसे होगे, हेल्दी कैसे होगे। चलो चलो चलो चलो जल्दी से खा लो, गुड गर्ल। फिर कांटे से झूठ मूठ के फल गुड़िया को खिलाने लगी। फिर उसने छोटी सी कटोरी से उसे कुछ खिलाया, उसके बाद प्लेट से। फिर अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओफो मैं तो थक गई। अरे ये क्या बेटा, आपने इतना सब छोड़ दिया, फिनिश ही नहीं किया। वेरी बैड, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है ना। अच्छा लाओ मैं ही खा लेती हूँ। कहते हुए पिंकी ने अपनी सभी प्लेटों कटोरियों से कुछ समेटने का भी नहीं किया और झूठ मूठ की समेटी हुई सामग्री अपने मुंह में डाल ली। और ये सब देखते हुए सुमन के चेहरे पर हंसी की जगह अब सोच की लकीरें उभर आई थी। दोस्तों आप सुन रहे थे अनीता ललित जी की लिखी लघु कथा डस्टबिन। कई बार जब ये लघु कथाएं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा होता हूं तो इनके भीतर जो इतना सशक्त विचार होता है वो मुझे भी ऊपर से लेकर नीचे तक हिला देता है। क्या क्या बना करके रखा हुआ है हमने घर की उस थोरी को, और जिससे जीवन का सौंदर्य है उसे मैं मानता हूं, शायद उसे तकलीफ ना भी होती हो, शायद वो अपने इस त्याग को कभी संकल्प में भी न लाती हो और इसी त्याग को अपना भाग्य समझती हो। तजे हुए खाने को खा करके ही वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हो। पर हाँ, अगर खाना छोड़ना, खाना वेस्ट करना गंदी बात होती है तो ये बात सब पर लागू होनी चाहिए। और अगर गर्म खाना खाना आपको पसंद है तो हर जीव को पसंद है, चाहे भले ही उसका पार्ट आपकी सेवा का क्यों ना हो। वो घर की मालकिन भी हो सकती है जो सेवाधारी बनकर के बिना कोई मेहनताना लिए सेवा कर लेती है, और वो घर का सेवक भी हो सकता है। हो सकता है इस जन्म में उसका पार्ट सेवक का हो, लेकिन आज सेवा ले रहे हैं तो कल सेवा देनी भी पड़ेगी। बस इतनी सी बात ध्यान रखने की है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अनीता ललित जी के लिए जो भी आप कमेंट करना चाहें आप जरूर कीजिए, और अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।

हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पर रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 29 मई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। कल की मुरली में हम सभी ने सुना तकदीर बनती कैसे है। आज बाबा कहते हैं अगर तकदीर बनाते नहीं है तो कम से कम अपने नसीब को फूटने ना दो। मनुष्य अपने नसीब को या अपनी तकदीर को कैसे तोड़ते हैं, तो बाबा कहते हैं जब दैहिक दुनिया के आकर्षण में फंस जाते हैं, दैहिक दुनिया के तरफ बेधारियों से दिल लगाने लगते हैं, तब नसीब फूटने लगता है। दूसरा, बाबा कहते जितना स्वयं भी घमंड में रहते हैं, बेअभिमान के वश होकर कोई ना कोई घमंड में रहते हैं, मैं फलाना हूं मैं फलाना हूं, तो उससे भी नसीब फूटने लगता है। इसलिए आज की मुरली से पहले जो गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए, तो बाबा के पास हम आए हैं अपना नसीब तकदीर जगाने, तकदीर बनाने। तो उसके लिए बाबा युक्ति बताते हैं, बच्चे तुम बाप के साथी बन, उसके मददगार बन जाओ। इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने में जब मददगार बनते हैं तो तकदीर श्रेष्ठ बनने लगती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना, दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुह्य राज सुनाया है। बहुत सुंदर गुह्य राज की बात बाबा ने की है। कौन सा इस नाटक का गुह्य राज बताया है? उत्तर है, बच्चे अभी ये नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहां हाजिर होना ही है। बाबा के पास सलामी भरने जरूर आना ही है। सब धर्म की आत्माएं अभी यहां हाजिर होगी, हर धर्म की आत्माएं भी यहां हाजिर होगी, क्योंकि सर्व का बाप यहां हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। सभी धर्म पिताएं भी मन मना भव का मंत्र लेकर जाएगी। वह कोई मध्याजी भव का मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेगी। उनको परमधाम में बैठना है तो मन मना भव का मंत्र ही लेकर जाएंगे। सतयुग त्रेता में तो आना नहीं है जो मध्याजी भव का मंत्र धारण कर चक्रवर्ती बने। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना, तुम आज सुन रहे हो और बच्चे दो चार दिन बाद सुनेंगे। उस समय तो मुरली पोस्ट में जाती थी तो दो चार दिन लग जाते थे पहुंचने में, इसलिए बाबा कहते दो चार दिन बाद सुनेंगे। लेकिन अभी तो इंटरनेट के जमाने में जो मुरली मधुबन में चलती है वही सारे विश्व के अंदर चलती है। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वह टूट जाएगी। इसलिए बाबा सावधान करते, बच्चे देह अभिमान के वश नहीं हो। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं।
बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है, इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र रहते भी है, कहीं घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, कहीं पवित्र रहते भी है लेकिन बाबा कहे फिर कहीं घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए, खुदाई खिदमतगार बनना है। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं है सब बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल्प पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बी के बने हैं, वही समझदार बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है, ब्रह्मा के बच्चों को जरूर बी के ही कहेंगे, जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदि देव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज होकर गई है वह फिर से जरूर होनी है, ये जानते हो। सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वह अभी 84 जन्म के अंत में है। अभी न पवित्र है और न वह राजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने, कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चल बाप से वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वह भी युक्ति बताते हैं, बाबा से कैसे वर्षा पाना है वह भी बाबा युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते हैं, कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टरी घमंडी है, लिखते हैं मनुष्य की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकाल आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं, यह भी कितना हुनर है। बाबा कहते हैं यह भी कैसा हुनर है उनके पास, यह हुआ अल्पकाल सुख के लिए। तो हुनर है, प्लास्टिक की हार्ट डाल देंगे लेकिन बाबा का ये हुनर भी अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाए तो शरीर ही खत्म हो जाएगा, प्राप्ति तो कुछ नहीं, अल्पकाल के लिए मिला, जो सुख मिला अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल कर दिखाते हैं, वह भी अल्पकाल के लिए। यह तो बात ही बिल्कुल न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर है। शिव बाबा सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदया लीडर एक ही है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं, सारी दुनिया आ जाती है। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, अपने बड़े नहीं कर सकते हैं तो औरों पर क्या करेंगे। ये दया करते हैं अल्पकाल की, नाम कितने बड़े बड़े रख दिए, सर्वोदया लीडर कितना बड़ा नाम रख दिया है। अब बाप कहते तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूं। इस बात की युक्ति बताते हैं एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो
क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं, जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, श्रीमत है बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहां से मिले। बाप कहते तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है? सर्व को श्रीमत देने की हुनर किसी में है? नहीं। किसको विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं, ये हुनर किसी मनुष्य के पास नहीं है। कहते इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते मुझे याद करो, खाली पवित्र बन करके ज्ञान समझना इतना काफी नहीं है। बाप को याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं मनुष्य, सर्वोदया लीडर शिवोहम तत्त्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते हैं तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा। तुम ही परमात्मा का रूप हो, आत्मा सो परमात्मा, शिवोहम तत्त्वम। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है, प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है, पतित होते हैं कलियुगंत में, द्वापर में आएंगे, इतने पतित ही नहीं बने हैं तो वहां आकर गीता सुनाकर क्या करेंगे। पतित होते हैं कलियुगंत में, पावन होते हैं सतयुग में, तो जरूर संगम पर आएंगे। ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कब आते हैं ये बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। अरे दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहां

भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वॉइसलेस दुनिया, एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है। मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो नहीं सकते, बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है, क्या समझाया जाता है, देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था, वह तो आए ही है आधे में, और धर्म तो आए ही है आधे के बाद, तो सतयुग में हो कैसे सकते। वह है ही अठयोगी निवृत्ति मार्ग के, वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाला हो गया है। भगवान वाश माम एकम याद करो, बाबा कहते भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो, भगवान वाच माम एकम याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएंगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में बस सब सामने आएगा, साक्षात्कार होगा। अंतिम समय कोई भी ऐसा कर्तव्य किया होगा तो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है, बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वह वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे। फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएगी। हाँ, बाबा कहते फिर तकदीर खत्म हो, बदकिस्मती आ जाएंगे। इस बात से अगर कोई अकर्तव्य वाला कर्म किया होगा और बाप से छिपाया बताया नहीं तो अंदर ही अंदर वृद्धि को पाएंगे, जास्ती फंसते जाएंगे और तकदीर खत्म, बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी, इतनी कड़ी सजा के भागी बनेंगे। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबके कयामत का समय है, सब पतित है, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे एक सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूं, ऐसी फीलिंग आएगी। वो सजा होगी एक सेकंड की, लेकिन ऐसी भासना होगी जैसे बहुत समय से ये सजा भोग रहा हूं। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, पाप कर्मों का हिसाब किताब चुकाने की बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है, सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है,
माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है, ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसा सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने कारण हिंदू कहला दिया है। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं। बाबा कहते हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनास्टी नहीं कहेंगे, डिनास्टी राजाओं की होती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजाएं चलती है। यह भी जरूर है पावन से पतित बनना ही है। पतित होने कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। तुम समझते हो हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अपने धर्मों के चित्र को ही पूजते हैं, सिर्फ ये भूल गए हैं। क्या भूल गए हैं? कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों की बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में आकर ज्ञान देते हैं, फिर 100 देवता बनाने के लिए बाकी सब हिसाब किताब चुक कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉडफादर। यह भी समझने की बात है इस समय तुमको 3 बाप है, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और तीसरा ये अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है, पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें? दुख में सिमरण सब करते हैं। यहां फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं। यह भी समझने की बात है वहां आत्म अभिमानी रहते, फिर वे अभिमान में आ जाते हैं। सतयुग त्रेता में आत्म अभिमानी द्वापर के बाद देह अभिमान में आ जाते हैं। यहां तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्म अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। तो बाप शिक्षक सतगुरु है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था ये वर्षा, सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा ही जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। ये दुनिया ही पतितों की है। बाबा कहते ये दुनिया ही किसकी है? पतितों की है। कोई सदगति दे कैसे सकते? बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंत मते सुगति हो जाती है। शास्त्र की बातें याद आएगी तो अंत मते सुगति हो जाती है, फिर छोटे पन में ही कंठ हो जाते सारे शास्त्र। तो बाप तुम बच्चों को इतना अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो। और फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है तो सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएंगे। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे, मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र।
हमारा है डबल मंत्र।

आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, व्यर्थ संकल्प व माया के आकर्षण के संकल्प का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग, इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पास विथ ऑनर बनते हैं। आज का बाप दादा का स्लोगन है हम बच्चों के प्रति, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आज का व्यक्त इशारा है, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति ये ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन पहले ड्रामा की बिंदी लगाकर व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो, फिर माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।